شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: तो जरा सोचें ये कहावत किन लोगों के हवाले से कही गई है। ये वो लोग हैं जो अपने काम में कामयाब होते हैं और दूसरों पर तकिया नहीं करते, एतमाद नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई शख्स खुद खाना खाकर अपनी भूख मिटाता है और किसी से मदद नहीं लेता, ये शख्स भी अपनी जिंदगी के कामों में खुद इन्हिसार करता है, उसकी कामयाबी और फायदा भी खुद उसका होता है।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से दे

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, जिंदगी सिर्फ काम या फिर पैसे का नाम नहीं है, उसमें आपके रिश्ते, ताल्लुकात और मोहब्बत ही असल तवानाई है। आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद ताल्लुकात पर, जो ज़हनी सुकून और दिल की सेहत दोनों को बेहतर बनाते हैं। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक खातून जो हमेशा मसरूफ रहती हैं, दोस्तों और घर वालों से कोई इतना कंसर्न नहीं था, यानी उन्हें वक्त नहीं दे पाती थी, तो एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है। मगर अब वो रोज़ 10 मिनट अपने वालदैन से बात करती हैं, तो उनका जो दिल का बोझ है वो उन्हें हल्का महसूस हुआ और जो खुशी है वो भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो इसके जो फ़वाद हैं, जैसे कि

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। साथियों, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली का दिल बहुत नेक था और वो हमेशा खुश रहा करता था। वो ना सिर्फ अपने घर वालों के साथ बल्कि अपने दोस्तों और दूसरे गांव वालों के साथ भी अच्छा सलूक करता था। अली को हमेशा इस बात की कदर थी कि जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है वो अल्लाह की अता होती है। लेकिन अली एक दिन अपने दोस्त अहमद के साथ खेलते हुए कुछ अजीब महसूस करने लगा। अहमद, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कहाँ से आया है? अली ने अहमद से सवाल किया। अहमद ने कहा, हम तो बस खेलने में मगन हैं, हमें इस बात की क्या फिक्र? अली ने कहा, नहीं अहमद, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा होता है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अहमद हैरान होकर अली की तरफ देखने लगा। लेकिन अली, ये शुक्र अदा करने का तरीका क्या होता है? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अहमद, शुक्र अदा करना सिर्फ जबान से शुक्रिया कहना नहीं होता, बल्कि हमारे दिल में भी ये एहसास होना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। अहमद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसने सोचा कि शायद अली दुरुस्त कह रहा है। फिर एक दिन अली और अहमद अपने दोस्त सलीम के साथ खेलने गए। वो तीनों गांव के एक खूबसूरत बाग में गए, जहां उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर बड़े मजे से खेलकूद किया। एक दिन अचानक सलीम का पीछा करते हुए उसका पांव एक छोटे से पत्थर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। सलीम को दर्द हुआ और वो बैठने की कोशिश करता रहा, मगर वो उठ नहीं सका। अली और अहमद फौरन उसके पास पहुंचे। अली ने कहा, सलीम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए? सलीम ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं आराम से उठ सकूं। अली और अहमद ने सलीम के हाथ पकड़े और उसे उठाने की कोशिश की। वो दोनों सलीम की मदद कर रहे थे और इसकी दिलजोई कर रहे थे कि वो जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद सलीम उठा और उसने कहा, शुक्रिया अली, शुक्रिया अहमद, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। अली मुस्कुराया और कहा, सलीम, तुम्हारी मदद करना हमारे लिए फखर की बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम दोस्तों की मदद करें। सलीम ने कहा, लेकिन तुम दोनों ने मेरी मदद सिर्फ इसलिए नहीं की ना कि तुम्हारा फर्ज था, तुमने तो दिल से मेरी मदद की है। अली ने फिर से कहा, मेरे दोस्त, हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए और जब भी किसी ने हमारी मदद की हो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरे दिन अली अपने वालिद के साथ घर के काम में मदद कर रहा था। उसने अपने वालिद को पानी लाने के लिए कहा, अब्बा जी, मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? वालिद साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, तुम्हें पानी लाने के लिए मेरे पास क्यों आना पड़ रहा है? अली ने कहा,

अब्बा से कहा, अब्बा जान मैंने ये सीखा है कि शुक्रगुजार होना सिर्फ जबान से शुक्रिया कहना नहीं बल्कि दिल में शुक्रगुजार होना भी जरूरी होता है। साथियों, एक दिन अली और अहमद अपने गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत गुजरी जिसका सामान बहुत भारी था। बच्चे इसके करीब गए और अली ने कहा, अम्मा जी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आपका सामान बहुत भारी लग रहा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये सामान नहीं उठा पाऊंगी। अली और अहमद ने इसका सामान उठाकर इसके घर तक पहुंचवा दिया। जब वो वापस आए, अली ने कहा, देखो अहमद, हमने किसी की मदद की है आज और इससे कितनी खुशी मिल रही है ना। शुक्रगुजार होना ऐसा ही है, जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को खुश करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। अहमद ने कहा, हाँ अब मुझे समझ आया है कि शुक्रगुजार होने का मतलब क्या होता है। साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शुक्रगुजार होना जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम अपने वालिदैन, दोस्तों या किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हम ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करते हैं बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। शुक्रगुजार होने से इंसान की जिंदगी खुशहाल और कामयाब होती है। अल्लाह के सामने शुक्रगुजार होना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना हर मुसलमान का फर्ज है। हमें हमेशा अपने दिल में शुक्रगुजारी का एहसास रखना चाहिए, चाहे हमारे पास थोड़ी सी चीज क्यों ना हो। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें बहुत ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि हर चीज अल्लाह की तरफ से है। ये कहानी हमें ये सिखाती है साथियों कि शुक्र अदा करना ना सिर्फ जबान से बल्कि दिल से भी होता है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह ताला हमें और ज्यादा नेमतें अता करता है। हमें अपने वालिदैन, दोस्तों और हर किसी का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारी मदद करता है, क्योंकि शुक्रगुजार होना हमारी जिंदगी में खुशियां लाता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म स्टैगफ्लेशन की। हमने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया, हमने आपको डिफ्लेशन के बारे में बताया और आज हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब इकोनॉमी में दो चीजें एक साथ हो रही हों, जैसे हाई इन्फ्लेशन यानी चीजों का तेजी से महंगा होना, वहीं पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की मार। दोनों ही सिचुएशन जब साथ में होती है तो इससे इकोनॉमी पर दोहरी मार पड़ने लगती है और यही सिचुएशन बड़ी टफ होती है। इस पूरी सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, क्योंकि स्टैगफ्लेशन की वजह से देखा जाए तो चीजें तो महंगी हो ही रही हैं, वहीं लोगों के पास पैसे भी कम होते हैं, बेरोजगारी की वजह से वो खर्च भी नहीं कर पाते हैं और मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डिक्लाइन होने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन ही है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है और लोग काम नहीं ढूंढ पा रहे तो ये सिचुएशन भी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। यानी बेहद सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का एक साथ में तेजी से बढ़ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टर्म स्टैगफ्लेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और मजीद मालूमात लेकर अगले एपिसोड में मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

शख्सियत बनाना चाहता है, ऐसी शख्सियत जो दुनिया भी संवारे और आखिरत भी, जो तिजारत भी करे और इबादत भी, जो तहकीक भी करे और तकवा भी इख्तियार करे, जो तरक्की भी करे और अपने रब को न भूले। इस्लाम की एक मुनफरद खसूसियत ये है कि वो दुनिया और आखिरत को एक दूसरे के मुकाबल नहीं रखता, बल्कि उन्हें जोड़ देता है। एक मुसलमान जब अपने रिज़्क के लिए मेहनत करता है, अगर नीयत दुरुस्त हो तो वो भी इबादत बन जाती है। एक मुसलमान जब दरख्त लगाता है, वो भी सदका बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दरख्त लगाता है फिर उससे कोई इंसान, परिंदा या जानवर फ़ायदा उठाता है तो ये उसके लिए सदका है। ज़रा गौर कीजिए सामिन इकराम, इंसान दरख्त इसलिए लगाता है कि उससे फ़ायदा हासिल करे, लेकिन अल्लाह ताला उसी अमल को आखिरत के अजर का जरिया भी बना देते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है, दुनिया का काम भी और आखिरत का अजर भी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो अगर मुमकिन हो उसे लगा दो। क्या अजीम तालीम है सामिन इकराम, यानी आखिरी लम्हे तक खैर का काम करते रहो, मायूस न हो, अमल से पीछे न हटो। सामिन इकराम, ये सब तरबियत कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से पैदा हुई? जवाब एक ही है, कुरान से। सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक कुरान जिंदगी का मरकज था। वो समझते थे कि असल इज्जत कुरान वालों की है, असल शरफ कुरान वालों का है, असल क़ियादत कुरान वालों की है। इसलिए उनके माशरे में अगर कोई शख्स इल्म हासिल करना चाहता तो पहले उसे कुरान की तरफ भेजा जाता, अगर कोई बुलंद मकाम हासिल करना चाहता तो पहले कुरान से ताल्लुक मजबूत करता, अगर कोई दीन का तालिब इल्म बनता तो कुरान उसकी पहली मंजिल होता। कुरान उनकी शनाख्त, उनकी तहजीब, उनकी ज़िंदगी थी। समय के राम, आज भी अगर हम उम्मत की अजमत वापस लाना चाहते हैं तो हमें दोबारा कुरान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना होगा, क्योंकि जिस उम्मत का रिश्ता कुरान से मजबूत होता है, अल्लाह ताला उसे इल्म, हिकमत, इज्जत और क़ियादत सब कुछ अता करते हैं। तारीख़ के औराक में ऐसे बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक किसी इंसान की असल क़द्र क़ीमत उसके माल, नसब या मनसब से नहीं, बल्कि कुरान के ताल्लुक़ से मुतय्यन होती थी। गोया कुरान उनके नज़दीक इंसान की शख्सियत का मेयार था। वो समझते थे कि जो शख्स अल्लाह के कलाम से जुड़ गया वो इज्जत का मुस्तहिक है, जो कुरान से दूर हो गया उसने अपनी असल दौलत खो दी। क्योंकि इंसान सिर्फ अखलाक के चंद मज़ाहिर का नाम नहीं, इंसान की असल ज़िंदगी उसके दिल, उसकी रूह, उसके ईमान और उसके रब से ताल्लुक में होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह वही भेजी। यहाँ कुरान को रूह कहा गया है। रूह के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। जिस्म हरकत कर सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन रूह निकल जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कुरान के बगैर इंसान बज़ाहिर जिंदा नज़र आता है, खाता है, पीता है, तिजारत करता है, तालीम हासिल करता है, लेकिन हकीकत में उसकी रूह मुर्दा होती है। कुरान आया तो इंसानों में हकीकी ज़िंदगी पैदा हुई। इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया है, इस्तजीबू लिल्लाह वलरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। वह कुरान ज़िंदगी बख्शता है, कुरान दिलों को ज़िंदा करता है। मज़ीद सामने कराम, गुफ्तगू के इख्तिताम मरहले में एक और बुनियादी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इस्लामी माशियात में काफ़ी अहम हैसियत रखते हैं। ये एक बुनियादी रुकन है, ज़कात, इसे क्यों फ़र्ज की गई है? क्या इस्लामी माशरे में माली ज़िम्मेदारी सिर्फ ज़कात अदा करने से पूरी हो जाती है? पहली बात तो यह है कि यहाँ एक अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ज़कात माल में एक ऐसा हक है जो बुनियादी तौर पर साहिब माल के मालदार होने की वजह से वाजिब होता है। यानी एक शख्स निसाब और शरायत के मुताबिक माल रखता है तो उस पर ज़कात आती है। लेकिन इस्लाम में हर माली ज़िम्मेदारी सिर्फ उसी एक सबब से पैदा नहीं होती। कई हुकूक ऐसे हैं जिनके पीछे दो बुनियादें होती हैं, एक किसी ख़ास ज़रूरत या ताल्लुक का वजूद और दूसरी उस ज़रूरत को पूरा करने की आप में कुदरत और इस्तेदाद। मसलन आपका पड़ोसी मोहताज है,
आप उसकी मदद

0: सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आप मालदार हैं, बल्कि एक दूसरा ताल्लुक भी मौजूद है, वो आपका पड़ोसी है और मोहताज है। यहाँ गिना भी है और जिवार यानी पड़ोसी का हक भी। इसी तरह फराइज़ किफाया का दायरा ज़कात से कहीं वसी है। माशरे में कोई ऐसी इज्तिमाई ज़रूरत पैदा हो जाए जिसे पूरा किए बगैर लोगों की ज़िंदगी मुतासर होती हो, तो उसे पूरा करना अहले इस्तेआत की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बन सकता है। इमाम मावर्दी रहमतुल्लाह की मिसाल नहायत वाज़ेह है। फ़र्ज़ कीजिए किसी आबादी के लोग एक चश्मे या पानी के मंबा तक जाने के लिए एक ख़ास रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो रास्ता ख़राब हो गया और उसकी मरम्मत नागुजीर है, जबकि सरकारी ख़जाने में इस काम के लिए वसाइल मौजूद नहीं। अब सवाल यह कि उसे कौन दुरुस्त करे। ये नहीं कहा जा सकता कि गरीब और अमीर सब बराबर रकम दें, जिसके पास इस्तेआत नहीं उससे वैसा मुतालबा नहीं होगा, लेकिन जो अहले वसत हैं उन पर उस इज्तिमाई ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी आ सकती है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मालदार हैं, बल्कि इसलिए भी कि माशरे को उस रास्ते की ज़रूरत है और वो उसे दुरुस्त करने की कुदरत रखते हैं। अलबत्ता अगर एक दूसरा रास्ता पहले से मौजूद हो जो तकरीबन उसी मेयार का हो, लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा हो, तो फिर पहले रास्ते की मरम्मत वही दर्जे की इज्तिमाई ज़रूरत नहीं रहती। यानी फ़र्ज़ किफ़ाया सिर्फ माल देखकर नहीं बनता, बल्कि ज़रूरत और मसलहत भी देखी जाती है। यही नुक्ता हमें एक बड़े उसूल तक ले जाता है कि ज़कात इस्लामी माशरती ज़िम्मेदारी की आखिरी हद नहीं है। कभी किसी माशरे में गुरबत इस कदर वसी हो सकती है कि सिर्फ मुकर्रर ज़कात उस बहरान का काफ़ी जवाब न बने। ऐसे हालात में ये सवाल उठता है कि क्या अहले इस्तेआत पर मज़ीद इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं या नहीं। तो जैसा कि इमाम मावर्दी रहमतुल्लाह की इस मिसाल से बात वाज़ेह हो गई, सामने करम इस बात की वजाहत तो हमने इमाम मावर्दी की मिसाल से कर दी है, और हमारी ये गुफ्तगू दरअसल सिर्फ ज़कात के फ़िक़ी हिसाब की नहीं, ये एक ज़्यादा वसी तसव्वुर की है कि इस्लामी मुआशरा किस चीज़ को इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझता है। क़दीम फ़ुक़हा ने मिसालें दी हैं सिलसिले में कि मैयत को गुस्ल देना, कफन देना, दफन करना ये फ़राइज़ किफ़ाया हैं, यानी पूरी जमात पर ज़िम्मेदारी है। कुछ लोग उसे अदा कर दें तो बाकी बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन सब छोड़ दें तो सब अहले कुदरत गुनाह में शरीक हो सकते हैं। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो इज्तिमाई ज़रूरियात की सूरतें मज़ीद वसी हो गई हैं। मसलन साफ़ सड़कें और गलियाँ, इसी तरह रात के वक्त अगर स्ट्रीट लाइटिंग की बात की जाए, यानी अगर कोई चीज़ पूरे माशरे की बुनियादी सलामती, सेहत और ज़िंदगी से जुड़ जाए, तो इस्लामी फ़िक़ी नज़र में उसे सिर्फ सरकारी कहकर अपनी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह इल्म भी फ़र्ज़ किफ़ाया बन सकता है। हर दौर की अपनी ज़रूरी महारतें होती हैं। तिब की ज़रूरत हो तो माशरे में काफ़ी डॉक्टर होने चाहिए, इलाज के मराकज़ और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत हो तो उनका वजूद ज़रूरी है। ओवरऑल सामने कराम, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इस्लाम में दौलत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितना माल है, कितने पैसे हैं। असल सवाल ये भी है कि आपके पास जो कुछ है उसमें दूसरों का हक कहाँ से शुरू होता है। ज़कात इस हक की एक मुकर्रर और बुनियादी सूरत है, मगर माशरती ज़िम्मेदारी उससे कहीं वसी है। एक मुसलमान का माल सिर्फ उसकी आसाइश का वसीला नहीं, वो भूखे के खाने, बीमार के इलाज, तालिब इल्म की तालीम, महफूज रास्ते, साफ माहौल और माशरे के तहफ्फुज का जरिया भी बन सकता है। और जब ये शोर जिंदा हो जाए तो ज़कात साल में तो एक बार ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन साथ साथ जो दूसरे अखराजात हैं उसके हवाले से भी इन्फाक एक पूरी कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद बन जाएगी बिइज़्निल्लाहि तआला। असल के साथ सामने कराम, आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: हम भी वो हैं जो कभी

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

0: हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नासिया और आप सबको वेलकम कहूंगी इस शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। और आज जब मैं आ रही थी ना, तो मैंने नेचर को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। वैसे तो आप ड्राइव करते हैं, जाहिर है आपको दिखता तो रहता है, लेकिन आप बहुत क्लोजली या माइन्यूटली तो उस तरह से शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने ऐसा किया और मैंने देखा कि जो सुबह की धूप है उसमें एक नरमी है, वो तेज़ी नहीं है, अभी उसकी जस्ट शुरुआत हो रही है। हर तरफ मुझे एक ताजगी महसूस हुई, चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें उस फिज़ा को खुशगवार करती। सड़कों पर लोग हैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उस तरह की भागदौड़ नहीं है। कोई अपने काम पे जाने की तैयारी में है, कोई अभी भी उस तैयारी का हिस्सा बनने की सोच रहा है, कोई नया रोजगार तलाश करने का सफर आज शुरू करने वाला है। कहीं चाय की खुशबू और कुछ चंद लोग चाय पीते हुए, और कुछ लोग ये सोचते हुए कि चाय पिएं या चाय के साथ पराठा भी खाएं। मैंने देखा कुछ दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, कुछ खुलने की तैयारी में हैं। ऑल टुगेदर हर शख्स एक नई उम्मीद के साथ आज की इस सुबह को कहे या ना कहे वेलकम कर रहा है। तो इस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया और कहा कि हाँ, हर नई सुबह एक नई उम्मीद है, नया ख्वाब है, नया मौका है, और ये जो सूरज उगता है, जो नया दिन निकलता है, वो जिंदगी का एक और नया पल होता है, जो हमें और आपको कह रहा होता है कि जी आज ही वो दिन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। यानी आज मेहनत कीजिए और आज अपने मकसद को हासिल कीजिए। तो बस आज वो दिन आ चुका है। आज है वैसे तो मंडे का दिन, August 24, एंड यस, देखा जाए तो ये मंथ यानी अगस्त मंथ बिल्कुल लास्ट चल रहा है, और अब इसके बाद जो है वो एक और नया मंथ आ जाएगा। कितनी तेज़ी से वीक जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से दिन जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से जो है वो वीक्स मंथ्स में, मंथ्स जो है वो ईयर्स में तब्दील हो रहे हैं, हमें और आपको पता ही नहीं चल रहा। और हम जो है अपनी मसरूफियत में भाग दौड़ में लगे हैं, और शायद हमारी भाग दौड़ का कोई एंड भी हमें नहीं समझ में आता। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है कि हर रोज़ हमारे पास एक नया मौका तो है नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने का, अपने ख्वाबों को पूरा करने का। तो बस आज भी अपनी जो है वो मुस्कुराहट कैरी कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी ज़रूर पैक कीजिए, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी सी स्माइल के साथ घर से बाहर निकलिए। और जब निकलने के बाद आप गाड़ी में बैठे तो याद रखना है कि आपको ट्यून इन करना है FM 107, क्योंकि मैं सुबह सुबह आपके साथ जुड़ती हूँ बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर, बहुत सारी अच्छी बातें लेकर, कुछ अपडेट्स लेकर, और आपका मेरा एक अमेजिंग सा साथ रहता है जो रहता है पूरे 3 घंटे यानी 6 से 9। तो बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, नंबर है 666-22-107, और कॉल करना चाहते हैं और कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वही नंबर आप लिख लीजिए, नंबर है 443-443-7-7। ये साथ तो अभी फिलहाल आपका मेरा लंबा है, और आज के भी शो का आगाज करेंगे सुबह के असकार के साथ। तो फिलहाल मॉर्निंग असकार वापस आएंगे तो कुछ मौसम का हाल चाल, कुछ आपकी बात, कुछ मेरी बात।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ. और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की. तो आज मौसम कैसा रहने वाला है? वैसे ही रहने वाला है जैसा कल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी आज भी है. और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इट्स गोना बी 43 डिग्री सेल्सियस, बट यू विल फील लाइक 48. वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस. वहीं अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, सो ह्यूमिडिटी इज़ गोना बी हाई एट 74%, लो एट 16%. वहीं पर विंड की बात की जाए तो विंड स्पीड इज अप टू 13 किलोमीटर पर आवर एंड दैट टू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इसके अलावा यूवी इंडेक्स अगेन इज वेरी हाई एट 8. तो आपसे एक्स्ट्रा केयर जो है वो कही जा रही है व्हाइल यू आर स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. वहीं पर ड्राई रहेगा मौसम, वेदर जो है थ्रू आउट और आफ्टरनून्स में स्पेशली खास करके ड्राई रहेगा. तो आप जो है कितना कुछ कैरी करेंगे, लेकिन हाँ ड्राई रहने के साथ साथ जो है आपको अपने हाइड्रेशन का और अपने जो स्किन है उसके नरिशमेंट का भी ख्याल रखना है. सो यू कैन कैरी लाइक मॉइस्चराइजर और समथिंग इफ़ यू वांट, अगर ये मतलब आपकी चॉइस है, मतलब कंपल्शन नहीं है. इसके साथ विजिबिलिटी देखा जाए तो इट्स जनरली क्लियर ऑल टुगेदर. वहीं पर सनराइज़ की अगर मैं बात करूं तो आज सनराइज़ हुआ है 5:11 पर और सनसेट होगा 6:01 पर. सो ऑल टुगेदर आज का मौसम जो है वो ठीक ठाक गर्म रहेगा. बस अपना खास ख्याल रखिएगा एंड आप बाहर जाते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो रोज़ रोज़ हम आपसे कहते हैं कि आप अपने वाटर इनटेक्स का खास ख्याल रखिए और अपना तो आप रख ही रहे हैं. हाँ जी, तो ये हो गई मौसम की बात और अब बात कर लेते हैं आज के दिन की. आई मीन टू से आज 24th of August है और आज कौन कौन से डेज जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ यंग पीपल्स एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी जो नौजवान हैं उनको इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाना और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए जो है आज वो मोटिवेट उस हवाले से किया जाता है. तो ये दिन अपने आप में इस तरह से खास हुआ. उसके अलावा आज है इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो जो लोग नए और डिफरेंट तरह के म्यूजिक को सुनना एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज दोस्तों आपका दिन है. मतलब पूरे हक के साथ डट के आज अपने इस शौक को पूरा कीजिए. इसके अलावा आज है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इंटॉलरेंस डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस बेस्ड ऑन म्यूजिकल प्रेफरेंसेस लाइफ स्टाइल एंड ड्रेस कोड. अच्छा, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस बेस्ड ऑन म्यूजिकल प्रेफरेंसेस. तो आज जो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं और जो डिफरेंट कल्चरल एक्सप्रेशंस के लिए जो अहमियत को और बर्दाश्त को फ़रोग देने का दिन है, तो ये भी दिन अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे है. इस पर तो सवाल भी हो सकता था, चलिए अब तो खैर वक्त निकल गया. इसके अलावा और अगर कंट्री ऑब्जर्वेंसेस की मैं बात करूँ तो आज है यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे, तो वो मनाया जाता है. और कुछ स्पेशल डेज हैं जो हल्के फुल्के हैं, उनमें है नेशनल वॉफल डे, यानी वॉफल आयरन के जो पेटेंट्स हैं उनको याद करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा आज है नेशनल पीच पाई डे, यानी पीच पाई को सेलिब्रेट करने का भी आज दिन है. और अरे आज तो कागे का दिन भी है, पूछे कैसे ऐसे, क्योंकि आज है नेशनल नाइफ डे, छुरी. हाँ, और छुरी और ये जो नाइफ है ना, इसकी अहमियत को आज उजागर करने का दिन है. काफ़ी ज़्यादा कौन समझ सकता था. अच्छा, इसके अलावा आज है कोबी ब्रायंट डे, यानी जो मशहूर बास्केटबॉल स्टार रह चुके हैं कोबी, उनको याद करते हुए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा कुछ और हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेंसेस देखी जाए तो आज है वेसुवियस डे, यानी माउंट वेसुवियस के जो जो मशहूर जो चीज़ें हैं, जो उसका कल्चर है, जो उसकी कम्प्लीट उसके बारे में जानने के लिए आज के दिन को ऑब्जर्व इस तरह से किया जाता है. तो ऑल टुगेदर बाकी कुछ और एक दो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता. अच्छा, आज प्लूटो डे भी है, यानी छोटा सा जो प्लैनेट है उसको भी याद रखा जाए, एक्नॉलेज किया जाए, तो उस हवाले से भी आज का दिन मनाया जाता है. तो देख लीजिए एक दिन और कितनी सारी बातें, क्या क्या हमें याद रहेंगी, क्या क्या हम मना सकते हैं,

0: लेकिन हमें और आपको ये पता चलता है कि देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कितनी चीज़ों की अहमियत को समझते हैं और चाहते हैं कि हम और आप भी समझें. तो बस इसी तरह से कुछ नहीं तो एक थोड़ा सा वक्त निकाल के हम लोग याद तो कर लेते हैं, ये बड़ी बात है. अच्छा चलिए अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ जो आप मुझे भेज सकते हैं और भेज भी रहे हैं 666-22-107 पर. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. अभी आधे घंटे नहीं मतलब 6:40 तक आप और हम यहाँ पर जुड़ते हैं, देन लेटर ऑन ओवर कॉल हम और आप कनेक्ट होते हैं. वो नंबर है 443-443-77. तो इसे भी आप लिख लीजिए साथ के साथ, जैसे इन केस जैसे ही हम अपना टॉपिक रिवील करेंगे और आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ ऐड करना है, मुझे कुछ बात करना है, मुझे कुछ कहना है, तो यस आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़िए. यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है हुसैन जी का. गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसी है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे. इसके साथ सलाम कहते हैं, क्या हाल चाल है, आपको सुन रहे हैं. इमरान जी हमारे साथ. ओहो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें सुन रहे हैं. नहीं इंजीनियर जी, इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान जी ने एक सवाल किया है तो उस सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे परमिशंस जो हैं उस तरह से नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं. ओके एंड थैंक यू सो मच आपकी इस खूबसूरत से मैसेज का फैज़ान जी. इसके साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं मिस नाजिया और पूरी टीम को, कीप स्प्रेडिंग द स्माइल एंड पॉजिटिव वाइब. थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट रिगार्ड्स यूसुफ शमीम जी. आज यूसुफ जी आपने मुझे नहीं भेजा, आज क्या दिन है, या हो सकता है मैं पहले ही भूल जाती हूँ, ये बात है. हाँ आज ये किसी और ने भी बताया है. अच्छा ये भी मोहम्मद फैज़ान जी हैं और इन्होंने दो नंबर्स इनके पास हैं, इन्होंने दोनों नंबर से मुझे बात वही बताई है और मैंने आपको बताया. ओके इसके साथ यहाँ पे शाहनवाज जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, नूर हमारे साथ है गुड मॉर्निंग कहते हैं, सैयद जी हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्या हाल चाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यहाँ पर मुझे मैसेज है, इनका नाम चेक कर लेते हैं, उस्मान है. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, वेरी गुड मॉर्निंग. और हमें मैसेज किया है, आई डोंट नो बी एस लिखा हुआ है, बट चलिए अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड ये बंदा कौन है, सैयद जी हमारे साथ जुड़ते हुए और ड्राइव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहा. अच्छा जी आप ड्राइव कर रहे हैं, चलिए ड्राइव सेफली यही हम आपसे कहेंगे. जावेद जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, नॉट हिम, नॉट जावेद बाजवा, जावेद लिखा हुआ है. सो थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग का मैसेज है इमरान एंड मोहसिन की तरफ से, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे. और ये मैसेज हमें है एम डी बशीर जी का, सो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग जी हसन हमारे साथ जुड़ते हुए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. तो चलिए यहाँ पे तो प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ चुके हैं, दैट मीन्स ये लोग दे आर ऑन द वे, या फिर ऑफिस पहुँच चुके हैं या अभी पहुँचने वाले हैं. बाकी लोग कहाँ हैं, मेरा मतलब है कि आप पहुँच गए हैं अपने ऑफिस या अपनी जहाँ भी काम करते हैं वहाँ, या फिर अभी भी जाने की तैयारी में है. अगर हैं तो भी मुझे बताइए, पहुँच चुके हैं तो भी मुझे बताइए 666-22-107 पर. फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ और अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं. एंड देन आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर भी बात होगी एंड आई एम श्योर कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है. आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते ही होते हैं पास कि उस पर बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है. अनवर जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम रियली गुड, होप द सेम फॉर यू. अनवर यूके, थैंक यू सो मच आपके प्यारे से मैसेज का. और कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ. एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, प्यार हमारा अमर रहेगा, मदद मूवी. कोई ख़ास बात आरिफ जी? आज कोई ख़ास, आज तो देखिए ट्यूसडे तो नहीं है, आज कल है ट्यूसडे. तो कल ऐसा होता है कि हम थोड़े से पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले कर देते हैं, वो ले लेते हैं. बट आज आई डोंट थिंक कि शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क, पूछना पड़ता है हमें, उसके बाद ही ये चल सकता है कि नहीं. सऊदी अरेबिया से कोई हमारे साथ जुड़ा है जिन्होंने सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा है, ओ ही इज़ मोहसिन. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और क्या हाल चाल है सऊदी अरेबिया में, कहाँ से आप, किस सिटी से सुन रहे हैं वो भी बताइएगा. और फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और अपडेट्स. एंड यस आज का हमारा टॉपिक, स्टे हुक्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: नूर अला नूरी यहदिल्लाहु लिनूरिहि मन यशा, रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई.

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:31 ऑन द क्लॉक. तो चलिए कुछ लोकल अपडेट्स और वो अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं. तो सबसे पहली अपडेट इज अबाउट QSC. दिस इज कतर साइंटिफिक क्लब. और QSC ने यंग इन्वेंटर्स प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू कर दिया है. आपको बताएं कि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ के नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि वेब समिट 2026 में इस साल लॉन्च किया गया था. जी हाँ, ये प्रोग्राम 15 से 30 साल के उन यंग लोगों के लिए है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दिलचस्पी रखते हैं. और आपको बताएं कि इस फेज में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेंट्स को पहला फेज कंप्लीट करना ज़रूरी था जो कि August 4 को ख़त्म हुआ और इसमें डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई गई थी. वहीं तीसरा फेज जो है वो अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन पर फोकस करता है. इसका मकसद पार्टिसिपेंट्स के आइडियाज़ को बेहतर मॉडल्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में तब्दील करना है. वहीं उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ज़रिए अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को हकीकत का रूप देने में भी मदद मिल रही है. आपको बताएं कि तीसरा और जो फाइनल फेज़ है इस महीने के आखिर में शुरू होकर अब इस महीने के एंड में आके ये ख़त्म भी होगा, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें एग्जिबिट किया जाएगा. प्रोग्राम के जो एंड में विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एक्सपर्ट जजिंग पैनल के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. और पहले फेज में देखा गया है कि QSC जो ये कैंप था, इस दौरान 34 मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फीसिबिलिटी स्टडीज और एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशंस भी दिए गए. तो ये अपने आप में बड़ी बात. और जैसे मैंने बताया कि यंग इन्वेस्टर्स प्रोग्राम का जो सेकेंड फेज है वो लॉन्च है और इसका फोकस इंजीनियरिंग डिज़ाइन पर है. पार्टिसिपेंट्स अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में चेंज करेंगे या कह सकते हैं तब्दील करेंगे. और फाइनल फेज में जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा. विनिंग प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे. इसके अलावा बात करते हैं UDST की. जी हाँ, UDST की रिसर्चर अल्फातिमा का कहना है कि आर्टिफिशियल, उन्होंने रिसर्च जो की है वो कहीं ना कहीं उसका बेसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. आपने ये भी कहा कि AI सिर्फ चैटबॉट से आंसर लेने का नाम नहीं है. AI टीचर्स को लेसन प्लान, एक्टिविटीज, फीडबैक, प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने में भी मदद करती है. वहीं पर टीचर्स जो हैं वो AI के जरिए स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके रिमेडियल प्लान्स भी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स AI को पर्सनल ट्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं. अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो AI से सिंपल एक्सप्लेनेशन या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मांगे जा सकते हैं. ऐसा तो कर ही रहे हैं बच्चे. वैसे आपको बताएं कि AI से रिसर्चर का कहना ये था कि डायरेक्टली आंसर्स लेने से कितना अच्छा है कि बच्चे जो हैं, आई मीन स्टूडेंट्स जो हैं, वो AI से क्वेश्चंस जनरेट करवाएं, अपने आंसर्स उनसे चेक करवाएं और साथ ही फीडबैक भी आप ले सकते हैं. आपने ये भी कहा कि चीटिंग, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर ओवर डिपेंडेंस को AI के बड़े रिस्क के तौर पे देखा जा रहा है और इस पर काम भी चल रहा है, क्योंकि अब अगर इस तरह से पूरी तरह से स्टूडेंट्स अगर रिलाई करते हैं तब उनके लिए मसला बन सकता है. इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए और जो सोर्सेज हैं उन्हें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है. तो ये भी एक अच्छी न्यूज़. और इसके साथ एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आ रही है. और मैं आपको बताऊं कि कतर के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगले साल मजबूत रिकवरी की बात या उस तरफ इशारा किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में सेक्टर की जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है यानी GVA, ये ग्रोथ 6.7% तक पहुँच सकती है. एनालिसिस का कहना है कि 2026 के सेकेंड हाफ में स्ट्रक्चर चैलेंजेस कम होंगे जिससे ग्रोथ इंप्रूव हो रही है. जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स टेंपरेरली अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन जैसे कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छे एग्रीमेंट्स आपको पता ही हैं जो आए, जो सुनाई दिए, उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर लिया है. और की मैरीटाइम ट्रेड रूट खुलना और सप्लाई चेन कंडीशंस बेहतर होने से रॉ कॉस्ट भी जो है, रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट है वो भी स्टेबलाइज हो रही है. वहीं पर ये अशगाल रोड प्लान और कतर का नेशनल विजन 2030 से मुतालिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. और लॉन्ग टर्म प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने की उम्मीद है. सो 2027 इज गोइंग टू बी रियली इंशाल्लाह एक अच्छा ईयर हम सब के लिए. ये हम सब की दुआ भी है और इसके लिए हम भरपूर तरीके से तैयार भी हैं और हम चाहते भी हैं. तो ये तो थी कुछ अपडेट्स और अब वो टाइम, अभी तो नहीं, थोड़ी सी देर में वो टाइम भी आएगा जब हम अपना आज का जो टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करेंगे. तो आज का टॉपिक ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम क्वाइट कीन एंड क्यूरियस टू सी कि आप लोगों का किस तरह का रिस्पांस मुझे मिलने वाला है. सो नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग आई हैव सीन दैट कि वो मुझे 666 वाले नंबर पर कॉल करते रहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं उस तरह से आपको इस वाले नंबर पे रिस्पांस नहीं दे सकती. आई मीन टू से आपके मैसेजेस भी लेट हो जाते हैं. वो भी मुझे आज तो मैं थोड़ा सा मेक श्योर कि मैं मैसेजेस भी लेती रहूँ क्योंकि बहुत लोग हैं उन्होंने कहा कि हम कॉल पे नहीं आ पाते बट हम चाहते हैं कि हमारी बात भी लिसनर्स तक पहुँचे. सो आई मेक श्योर आई कीप अ गुड चेक. मैं आप लोगों के मैसेजेस भी टाइम टू टाइम टॉपिक पे हैं तो लेती रहूँगी, ठीक है. लेकिन अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं तो क्या ही बात है, ये तो सबसे अच्छी बात होगी. नंबर है 4434377. अच्छा हाँ, मैंने पूछा था ना इनसे कि मोहसिन जी से मैंने पूछा था कि आप हमें कहाँ से, किस सिटी से सुन रहे हैं सऊदी अरेबिया के. तो इन्होंने बताया दमाम खोबर से. ओहो, दमाम और खोबर से हमें सुनते हुए, वाओ दैट्स नाइस. यहाँ पे हमें मैसेज है और शहजाद अहमद जी हैं, आपको और आपके सभी सुनने वालों को अल्लाह ताला खुश रखे, लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और ढेरों दुआएं हमारी भी तरफ से आपको. हिशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग. एंड ये मैसेज मुझे है मीत का. सो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द वंडरफुल रेडियो लिसनर्स. स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड एम्ब्रेस एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी. दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. थैंक यू सो मच मीत आपके बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से मैसेज के लिए. चलिए यहाँ पे अच्छी अच्छी बात जो है वो तो जारी रहेगी और आज की जो मुद्दे की बात है वो भी जारी रहेगी अब से थोड़ी सी देर के बाद. सो अभी एक छोटा सा क्विक ब्रेक ले लेते हैं. मुमताज़ जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए. हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप सबको भी खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे. आमीन सुमामी. सही है मैडम, मैसेज चेक कर लिया करो. हाँ, ये तो आपने सही बोला मुमताज़ जी, मैसेज तो मुझे आज चेक करना ही करना है. आज मुझे जहन में रखना है कि बीच बीच में मुझे फ़ोन उठा के देखना क्योंकि इतनी कॉल आते रहते हैं, हम उसी में मतलब भूल जाते हैं ऐसे और फ़ोन की तरफ हमारा ऐसे ध्यान ही नहीं जाता. और बस मतलब वो वाला फ़ोन, आपसे वॉइस पे तो बात मतलब होती रहती कॉल पे, लेकिन हाँ मैसेजेस की तरफ उस तरह से मेरा ध्यान नहीं जाता. लेकिन हाँ, आज मैंने यहाँ पे अपने लिए एक अलार्म सेट कर रखा है बीच बीच में जो बीप होगा और मुझे बताएगा कि प्लीज़ काइंडली चेक मैसेजेस. सो दैट्स हाउ मैं आपके मैसेजेस चेक करती रहूँगी. फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आऊँगी तो टॉपिक होगा, आप होंगे, नंबर होगा 4434377.
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो FOMO एवर अगेन. सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे.

उसे छोड़ दो और पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या बड़ा डोल बहा दो, क्योंकि तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के वास्ते भेजे गए हो और तुम्हें तंगी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है और अल्फाज बुखारी के हैं। सभी किराम, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए। अगर उसे अचानक डांट कर दरमियान ही में रोक दिया जाता तो मुमकिन था कि वो घबरा जाता, नजासत मस्जिद के ज्यादा हिस्से में फैल जाती, उसे जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता था। और एक ऐसा शख्स जो अभी दीन के आदाब से नावाकिफ था, उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सख्ती का तसव्वुर पैदा हो जाता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खराबी को रोकने के लिए एक महदूद गलती को मुकम्मल होने दिया। यही हिकमत है कि सिर्फ बुराई देखकर रद्द अमल देना हिकमत नहीं, बल्कि ये देखना भी हिकमत है कि उस बुराई को किस तरीके से रोका जाए ताकि मजीद बड़ा नुकसान पैदा न हो। सहाबा इकराम जब उसकी तरफ लपके, उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊ, उसे छोड़ दो। जब वो शख्स फारिग हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, उस जगह पर एक डोल पानी बहा दो। बस मसला हल हो गया, न हंगामा, न उसे सबके सामने जलील करना, नजासत को पानी से साफ कर दिया गया और गलती करने वाले को तालीम दे दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो दावत और तरबियत का पूरा उसूल अपने अंदर समोए हुए है, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، यानी तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने वाले नहीं। यानी दीन का मिजाज आसानी है, दीन जलील करने के लिए नहीं आया। हमारी एक बड़ी कमजोरी यह है कि किसी को गलत काम करते देखते ही हम उसके बारे में फैसला कर लेते हैं कि ये बदतमीज है, ये दीन का एहतराम नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे मालूम ही ना हो, वो बच्चा हो, किसी मुख्तलिफ माहौल से आया हो, या उसे सही मसला किसी ने सिखाया ही ना हो। सामने कराम, अगर बच्चा गलती कर दे तो हमारा पहला रद्दअमल क्या होना चाहिए? चीखना, डांटना, सबके सामने शर्मिंदा करना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया वालिदैन को सिखाता है कि बच्चे की गलती को इस्लाह का मौका बनाएं, उसे खौफ ज़दा न करें बल्कि बताएं ये काम दुरुस्त नहीं और सही तरीका ये है। बच्चा डांट से वक्ती तौर पर तो रुक सकता है, लेकिन मोहब्बत से दी गई तालीम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर अगर कोई शख्स एक गलत लफ्ज़ लिख दे, कोई मसला गलत बयान कर दे, तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, नाम लेकर रुस्वा करते हैं। बाज़ औक़ात इस्लाह से ज्यादा खुशी इस बात में महसूस होती है कि दूसरे की गलती सबको दिखाई जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसके बरअक्स था। मकसद ये था कि गलती खत्म हो, ये मकसद नहीं था कि गलती करने वाला खत्म हो जाए। हाँ, यकीनन हालात मुख्तलिफ होते हैं। जो शख्स जानबूझकर फसाद करे, बार बार समझाने के बाद भी दूसरों के हुकूक पामाल करे, या ऐसा मामला हो जहाँ फौरी तौर पर नुकसान रोकना जरूरी हो, वहाँ मुनासिब सख्ती की जरूरत हो सकती है। लेकिन जहाँ जहालत और लाइल्मी हो, वहाँ असल तरीका तालीम और नरमी है। समय कराम, हो सकता है एक सख्त जुमला किसी को बरसों के लिए दीन से दूर कर दे, और हो सकता है एक नरम जुमला किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के दिल जीते, फिर उनके आमाल बदले। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी, हिकमत और शफ़क़त अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 6:50 ऑन द क्लॉक. और आज का जो हमारा

करती है और हो सकता है आने वाली जनरेशन और जो जनरेशन है उसे इल्ज़ाम दे. तो ये इल्ज़ाम देने का सिलसिला एक चीज़ एक फ्रेम के साथ आके जुड़ जाता है और वो है पंक्चुअलिटी. हर किसी को लगता है कि सामने वाला पंक्चुअल नहीं है क्योंकि पंक्चुअलिटी का यानी वक्त की पाबंदी करने की जो ये आदत है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपसे नहीं दूसरों से भी है. और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पंक्चुअलिटी इज समवेयर इट्स लाइक अ सिनोनिम. रिस्पेक्ट देना डिसिप्लिन का सिनोनिम हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबल होने का भी सिनोनिम हो सकता है. देखिए ना, जब भी कोई शख्स वक्त पर पहुंचता है तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरे के भी वक्त की वैल्यू कर रहा होता है. लेकिन आज के जो बिजी वर्ल्ड है हमारा, सो कॉल्ड हम सब बिजी हैं, उसमें पंक्चुअल रहना हमेशा आसान नहीं होता. दैट्स ट्रू, ट्रैफिक है, हम चाहते हैं पंक्चुअल नहीं हो पाते, कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और उन सारी ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर देती हैं. मतलब हम चाहते तो हैं पंक्चुअल हो बट नहीं हो पाते. तो आज मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेते हैं, क्या पंक्चुअलिटी आज भी आपके लिए उतनी ही अहम है जितने पहले थी, या आज पंक्चुअलिटी को दूसरी तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि पंक्चुअलिटी यानी वक्त की जो पाबंदी है ये एक आदत है या ये एक स्किल है या किसी भी इंसान की पर्सनालिटी है. आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया सवाल अब पंक्चुअलिटी पर, क्योंकि आपको मैंने तीन ऑप्शंस दिए हैं. हो सकता है तीनों हो, हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ एक हो, हो सकता है इन तीन के अलावा कुछ और आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो हो. सवाल आज में है पंक्चुअलिटी यानी वक्त की पाबंदी. वक्त की पाबंदी को समझना, उसकी अहमियत को समझना ये बहुत ज़रूरी है. एक तरह का फैशन भी हो गया है, मैंने देखा एक ट्रेंड सा बन गया, स्पेशली अगर सोशल गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग्स हैं तो लोग जो हैं वो लेट जाना बड़ा पसंद करते हैं. उन्हें लगता है कि उससे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस मिल रही है. आई डोंट नो व्हाट साइकोलॉजी एग्जैक्टली वर्क्स, लेकिन हाँ, उन्हें या तो ये लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ या फिर उन्हें ये लगता है कि वहाँ पर जितने लोग हैं उनके पास वक्त ही वक्त है या उतने इंपॉर्टेंट है नहीं. तो लेट आराम से पहुँचना, एंड इट हैज़ बिकम अ फैशन, इट हैज़ बिकम समथिंग लाइक यू नो मैं लेट ही आता हूँ. कुछ लोग बड़ा प्राउडली यू नो पोज कर रहे होते हैं, कहते हैं अरे मैं तो भाई लेट ही आता हूँ, आई एम दैट वे. क्यों आप ऐसे हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं चेंज कर रहे? तो भाई लेट आना जो है वो ना तो फैशन है और ना ही फैशन स्टेटमेंट है और ना ही कोई ऐसी बड़ी खूबी है जिसको बढ़ चढ़ के हाईलाइट किया जाए. हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो टाइम पे पहुंचता है वो अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो एक बड़ी बात है. कह सकता है कि आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, मैं हमेशा वक्त पे पहुंचता हूँ, मैं कभी लेट नहीं होता. अब ये जो आदत है ना वक्त पे पहुंचने की, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. अब ये भी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी क्या ये एक आदत है जो आपको लगता है कि बचपन में अगर बच्चों में इनकलकेट कर दी जाए तो उसका फ़ायदा होता है एंड देन लेटर ऑन इस आदत को बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट करके चलते रहते हैं, या फिर बचपन में तो हम पंक्चुअल होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्कूल एंड ऑल दैट, लेकिन बड़े होते होते फिर वो आदत हमारी छूट जाती है. या आपको लगता है कि पंक्चुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्किल है जिसको सीखना पड़ता है, जिसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और जिसके लिए खुद के लिए फ़ोन्स पे रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, ये है, या फिर किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी इंसान की एक पर्सनालिटी है. यू नो कई बार हम कहते हैं अरे ये तो बहुत ही पंक्चुअल है, हो सकता है उसके मुँह पर ना कहें बट हम ये तो कहते हैं ये हमेशा टाइम पर आते हैं. उसके बरक्स एक और चीज़ भी है कि कुछ लोग टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, वो तो खैर अलग ही स्टोरी है कि टाइम से पहले पहुँचना. लेकिन आज बात हो रही है टाइम पे पहुंचने की, पंक्चुअल होने की. वैसे पहुंचना तो पंक्चुअलिटी में और भी आपके डेली हैबिट रूटीन्स आते हैं जो आप करते हैं, क्या आप उसको वैसे फॉलो करते हैं, क्या आप टाइम की अहमियत को समझते हैं, क्या आप अपने आप को हर जगह हर मामले में पंक्चुअल रख पाते हैं, या फिर आपके पास भर भर के एक्सक्यूजेस होती हैं कि जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, या फिर यू नो लेम एक्सक्यूजेस, या फिर हो सकता है जेन्युइन एक्सक्यूजेस हो, मतलब ये भी कह सकते हैं. लेकिन आपका क्या टेक है? आज मेरा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है पंक्चुअलिटी. अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अगर हम पंक्चुअलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ वक्त पर पहुंचना नहीं है, ये असल में दूसरे की वक्त की भी कदर करना है.
जब हम किसी भी मीटिंग में हो, किसी क्लास में हो, किसी इंटरव्यू के लिए हो या किसी अपॉइंटमेंट के लिए वक्त पर पहुंच सकते हैं तो कहीं

0: कहीं ना कहीं हम कुछ और चीजों को उस तरह की अहमियत नहीं दे रहे होते, है ना? तो शायद हम वक्त पे नहीं पहुंचते. अभी हमें पता चले कि हमारे लिए एक जॉब ऑफर है और हमारा इंटरव्यू है और हमें पहुंचना है वहां पर 7 बजे, तो हम क्या करेंगे, 6:30 बजे पहुंचने की कोशिश करेंगे. अरे कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैफिक, हम सारा सोच के प्लान करके प्लानिंग के साथ हम अपने उस इंटरव्यू को टाइम पर ही जो है और टाइम से पहले पहुंचेंगे कि हमें किसी तरह का कोई लास्ट मिनट कोई इशू ना हो. तो मैं तो ये तो कहती हूँ, देखिए पंक्चुअलिटी के बेशुमार फायदे होते हैं. एक, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. दूसरा, आप हर तरीके से बेहतर वाली प्लानिंग भी कर पाते हैं. पर सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो आपका और हमारा होता है वो है कि लोगों का आप ट्रस्ट हासिल करते हैं. लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी निगाह से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल या फिर आपकी प्रोफेशनल इमेज जो है वो इम्प्रूव होती है. और हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ आपके देर से पहुँचने की वजह से जो आप मिस कर देते हैं उसके चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं. सो पंक्चुअल होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप मुझे बता सकते हैं. पंक्चुअलिटी आपको क्या लगता है, पंक्चुअलिटी का मतलब है वक्त की पाबंदी. आपको क्या लगता है, क्या ये एक आदत है या आपको लगता है कि ये एक स्किल है या आपको लगता है कि ये इंसान की पर्सनालिटी है, क्या है ये आपको मुझे बताना है. 666-22-107 पर या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. तो बस ये नंबर है, यहाँ पर आप आइए जुड़िए. कुछ तो मैंने खूबियाँ आपको बताई थी, कुछ आपको मुझे बताना है ज़रूर बताइए. फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कौन है मेरे साथ? सुमी, हाय सुमी, कैसी हैं आप और इतने टाइम के बाद आज आपसे मेरी बात हो रही है. आई होप सब कुछ ठीक है आपके.
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: ये मसला है तो आपसे ज्यादा कौन पंक्चुअलिटी समझ सकता है.
1: तो मैंने वही सोचा, ये टॉपिक तो हमसे रिलेट करता है बहुत ज्यादा.
0: बहुत ज्यादा, दैट्स ट्रू. टीचर्स हैं और टीचर्स को तो खैर कहीं ना कहीं खुद को एग्जाम्पलर के तौर पे भी रखना स्टूडेंट्स के सामने, सो फॉर दैट और भी ज्यादा मार्जिन लेके जाते हैं. क्या पंक्चुअल है? यू आर ऑलवेज ऑन टाइम और यू ट्राई टू रीच बिफोर टाइम?
1: मैं बिल्कुल पंक्चुअल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह.
0: हर चीज में या फिर सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा होता है कि आप पंक्चुअल हैं?
1: वैसे जब आप पंक्चुअलिटी की बात करते हैं ना तो वहाँ कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट आ जाता है.
0: हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा. क्या टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले
1: आपके पास टाइम मैनेजमेंट अगर है तो आप हर एक चीज स्मूथली जाती है आपकी. लेकिन अगर आप पर टाइम मैनेजमेंट नहीं है या पंक्चुअल नहीं हो किसी से, भाई आपको अगर ऑफिस आपको 7 बजे पहुंचना है तो आप सोचोगे ना कि मैं 7 बजे से काम स्टार्ट करूंगा तब मैं पंच आउट 2 बजे करूंगा.
0: एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा काम है. तो पंक्चुअलिटी का सीधा ताल्लुक टाइम मैनेजमेंट से और आपकी प्लानिंग से है.
1: और वो कभी कभी ना एक आपकी हैबिट बन जाती है कि भाई अगर आपको सुबह में 5 बजे उठना है तो वो थोड़े दिन के बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाते हो ना कि आपको आराम की जरूरत नहीं पड़ती है. कहीं वो फिगर होती है, कहीं वो जो है ना आपका डेडिकेशन भी शो करता है.
0: नाइस, ये बात तो है. तो आपके हिसाब से ये एक आदत है?
1: बिल्कुल,
0: ये एक आदत है. और
1: हमारे आदत में इंसान को ना खुद अपने अंदर ये डेवलप करनी पड़ती है.
0: अच्छा, ये खुद ही डेवलप करनी पड़ती है और उसके लिए अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना
1: और वो उसके लिए डिसिप्लिन. जैसे कि आप देखते हैं आर्मी ऑफिसर्स, वो कितने डिसिप्लिन, उनका हर एक चीज रूटीन फिक्स होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनका टाइम इतना सेट होता है कि चीज के लिए. या फिर आप जितने भी कामयाब बिजनेसमैन है या जो भी सो कॉल्ड कामयाब पर्सनालिटीज हैं उनको देखिए, उनका टाइम स्केड्यूल इतना टाइट और इतना फिक्स्ड होता है, इतना फिक्स होता है कि शायद उनकी कामयाबी का रीजन भी वही है. क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वी डोंट हैव इनफ टाइम, यू नो, बट उनके पास दे हैव इनफ टाइम. तो कैसे दे आर मैनेजिंग इट वेल? नो, ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने. सो थैंक यू सो मच सुमी, आई एम ग्लैड इट्स क्वाइट अ लॉन्ग दैट हम और आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, बट फाइनली आज आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा. इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू.
1: मुझे भी.
0: अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, सो आज बात हो रही है पंक्चुअलिटी की। डोंट फील एम्बैरस्ड अगर आप उस तरह से पंक्चुअल नहीं हैं, क्योंकि मैं भी उस तरह से पंक्चुअल नहीं हूँ। कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ, बट देन कुछ चीज़ों में नहीं हो पाती। एंड स्पेशली इट कम्स टू यू नो पर्सनल कमिटमेंट्स, तो उसमें उस तरह की पंक्चुअलिटी नहीं हो पाती। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं प्रोफेशनल उस पर देखूँ सिनेरियो में, तो मैं पंक्चुअल हूँ, लेकिन पर्सनल चीज़ों में क्यों उस तरह की पंक्चुअलिटी मेरे अंदर नहीं है? तो क्या किसी ना किसी तरह का कोई डर है, कोई फियर है, कुछ और बात है? तो बस आज खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का दिन है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप 4434377 पर। फिलहाल एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक ले रही हूँ और एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर होल्ड पे भी है। फॉरन हम यू गए यू आए।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:03. एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो समा मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया आपकी साथ और मेरे साथ कॉलर जुड़ गए हैं. चलिए बात कर लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं रईस जी? एंड आई एम सो सॉरी आपको मैंने होल्ड पे रखा.
1: नहीं, हमारे पास मिनट बहुत ज्यादा होता है तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा। उसके लिए कोई मसला ही नहीं है. मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसमें मतलब जैसे मंथली वो पैकेज चलता है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं होता है जैसे मतलब ये करने के लिए. तो जैसे मैं थोड़ा बीच में आपने स्किप किया था तो मैं सोचा कि मैं फिर रेडियो में क्या होता कि कॉल लग जाता है तो मैं रेडियो ऑफ कर देता हूँ फौरन.
0: अच्छा,
1: उसके बाद में मैं देखा कि मामला यार रेडियो ऑन करता हूँ क्या हुआ अभी तक, मतलब मेरा कॉल ड्रॉप हो गया क्या हो गया. फिर देखा थोड़ी देर के बाद में फिर से वापस चालू हो गया. मामला नहीं है घर कायम है. तो आप अपने पंचुअलिटी का मतलब ख्याल रख रही है, हर चीज की अहमियत दे रही है.
0: बहुत सही कहा आपने. आज का टॉपिक ही है तो मैंने कहा मैं आज तो कम से कम भरपूर
1: थोड़ा सा मतलब हर दिन आज मतलब कुछ अलग आपने ये किया हुआ है और मजा आता है सुन के. और बस थोड़ा सा डर भी लगता है कि आप उसी ना जाओ वाली बात. तो क्या नाम है, कौन सा आया वो पर कौन सा राजा बाबू करके, नहीं उसका आमिर खान का ना जाओ वाला हिस्सा.
0: आई थिंक कुछ कुछ होता है मूवी में था शायद.
1: नहीं कुछ कुछ नहीं, वो परदेसी जाना नहीं जिसमें गाना
0: अच्छा,
1: था
0: राजा हिंदुस्तानी
1: में लास्ट में यही मतलब मोमेंट होता है तुसी ना जाओ.
0: इतना अगर आप कहेंगे रईस जी मैं रुकी जाऊँ, ऐसा ना मैं वहां पे रुक जाऊँ.
1: अरे भैया नहीं,
0: फिर आप ये कहेंगे तुसी जाओ.
1: नहीं बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने तरफ से हम्बल हैं, अपने तरफ से सारे लोग सारे मेहनत कर रहे हैं, सबका कदर करना चाहिए.
0: तो आप क्या पंक्चुअल है, वक्त की पाबंदी का आपको ख्याल रहता है?
1: इस चीज में मैं बहुत ज्यादा इस मामले में मैं इतना ये हूँ कि बल्कि मेरा किसी से बल्कि बहस भी हो जाता है इस मामले में. अच्छा। चाहे घर में हो चाहे ये कि भाई हर चीज का किसी से अगर मैं वादा करता हूँ तो चाहे कोई भी मतलब करीब का हो या दूर का हो तो मैं उस पे इतना ये होके रहता हूँ ना कि मुझे अफसोस होने लग जाता है कि यार मैं अगर ये नहीं कर पाया, नहीं पूरा करा. पहली बात तो ऐसे वादे को और ऐसे उसको मैं अपने उस पर मतलब ये नहीं करता हूँ कि जो मैं ना कर पाऊँ, तकरीबन उससे बचता हूँ. इस चीज से बचता हूँ कि भाई हो सकता है कि मतलब मैं अपने टाइम का और अपने उसका अगर नहीं कर पाया तो फिर सामने वाले के अंदर मेरे मतलब अलग उसके अंदर हो जाएगा मेरे. कोई बात का वादा कर या कोई काम करना तो उससे इस चीज पे बच्चों को भी. और ये चीज जो है ना ये शुरुआत से अगर हम इसकी ये है कि अगर हम झूठ बोलने से बच्चों को रोकें या अपने आप को बचाएं तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब ये अपने आपके लाइफ में ये चीजें मतलब जो पंचुअलिटी के ऊपर जो आपने मतलब बात छेड़ा है तो ये चीज भी उसमें मतलब बहुत बड़ा एक हिस्सा बन जाएगा कि आदमी अगर झूठ बोलने से परहेज करे और कोई किसी से वादा खिलाफी करने से परहेज करे और ऐसे वादों को ना करे जो कि मतलब वो ना कर पाए जज्बात में आके और ये तरह तरह के ये करके. तो बहुत से आदमी वक्त जज्बात में आके बहुत से ऐसे वादे कर जाते हैं जो कि पूरा नहीं होता, फिर वो गलत मैसेज जाता है सामने वाले के पास, चाहे कोई अपने रिलेशन का हो, चाहे कोई अपना दूर का हो, कोई भी बंदा हो, तो उसके ऊपर गलत मतलब इन्फॉर्मेशन जाता है कि यार ये बंदा मतलब अगर इस तरीके से इतनी छोटे बातों में या इसे उसमें मेरे साथ ऐसा रहा तो फिर आगे मेरे साथ क्या कर सकता है. हालांकि उससे ज्यादा भी हो सकता है वो अपना हक अदा करे लेकिन फिर वो मजा नहीं रहता. एक मरतबा आदमी के ऊपर से जब ये हट जाता है ना तो फिर उसका कदर कीमत कम हो जाता है.
0: आपको पता है मैंने ना रईस से सोचा था लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगी तो मैं इस बात को हाईलाइट करूंगी कमिटमेंट की जो आपने एकदम स्टार्ट में ही आगे बोल दी. मैंने सोचा था कि पंक्चुअलिटी का ताल्लुक जो है वो इंसान के कमिटमेंट से है, कितना कमिटेड है हर चीज के लिए. अगर वो कमिटेड है तो वो पंक्चुअल भी होगा, उससे कहीं ना कहीं इस चीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. बट अब आपने आते एकदम स्टार्ट में ही ये बात बोल दी है तो मुझे
1: जैसे हम लोग भी मतलब इसके ऊपर जिस तरीके से आप लोग मेहनत करके आती हैं और लोगों तक अच्छा मैसेज अच्छी बातों को मतलब अपना एक वकार बनाने के मतलब उसमें रहती हैं कि लोगों के दिल में हमारे हमारी बातों से और ये मतलब कुछ मैसेज जाए और कुछ उससे लोग सीखें तो हम लोग भी ऐसे आप लोगों से ही सीखे. कोई मतलब इतने हम ये नहीं थे लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हम लोग रेडियो सुन के और जुड़ के और अपने भाइयों जितने हमारे भाई आते हैं इसमें और बड़े अच्छे अच्छे मतलब हमसे बहुत काबिल काबिल लोग हैं माशाल्लाह और आके और लोग अपने अपने बात करके तो इससे सीखने को मिलता है नाजिया मैम. ऐसा बात नहीं है तो ये सब लाइफ का हिस्सा है और आदमी को ये सब चीजों में मतलब इन्वॉल्व होके रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब नहीं यार हमसे क्या मतलब छोड़ो इतना कहाँ हमारे पास टाइम है ये सब लाइफ का. क्योंकि हमारे दीन ने मतलब एक बहुत सी छोटी सी नेकी को भी मतलब है उसको मतलब है बहुत बड़ी अहमियत दी है.
0: बिल्कुल सही.
1: तो इस चीज को मतलब हमें जाया नहीं करना चाहिए अपने वक्त का और अपने उसका. हमेशा आदमी को हम्बल होके रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब बस हाँ बस यही जिंदगी गुजार लिए ये कर लिए तो बस चलो यार जो भी मैसा. और कुछ लोगों को मतलब इस एक बचपन से जो आपने एक मतलब ये किया था शायद कि बचपन से ही अगर बच्चों को और उसको अगर उसके ऊपर आदत डाल के रखें कि आप मतलब कभी कोई भी काम को अपने टाइम से करें पढ़ाई से लेके या घर का जिम्मेदारी कोई भी चीज को मतलब अपने टाइम से उठना अपने टाइम से. बल्कि मैं अपने वाइफ को भी यही बोलता हूँ कि भाई बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदारी दे दें. आपके मान लो बच्चे स्कूल से आए तो तुमको ये टाइम चलो ठीक है इतने टाइम तक तुम आराम कर लो. आराम करने के बाद में ये जिम्मेदारी एक कुछ ना कुछ घरेलू जिम्मेदारी भी उनके ऊपर दिया जाए ताकि वो आगे चल के वो अपने लाइफ में उनके ऊपर अगर ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्कूलिंग टाइम तो नहीं रहेगा.
0: सही बात.
1: हर बंदे के ऊपर मतलब जिम्मेदारी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो उसके ऊपर फिर और दुनियावी जिम्मेदारी भी मतलब आएगा और तो वो अपने आप को अचानक मतलब वो ऐसा ना महसूस करे कि यार ये क्या मेरे मतलब जिंदगी में ऐसा. और बहुत लोगों को मैंने देखा कि जब अचानक उनके ऊपर आता है तो वो बहुत दरहम बरहम हो जाते हैं अपने आप को ये कर लेते हैं फिर वो नहीं समझ पाते कि मुझे कैसे मैनेज करना है. तो ये सब मैनेजमेंट आदमी को शुरू से माँ बाप को पहले ही मतलब बच्चों को इतना ज्यादा मतलब छूट भी नहीं देना चाहिए कि यार बच्चा पढ़ के आया है चलो उसको ये करके रहने दो. फिर वो आप अपनी जिंदगी को और अपने लिए मतलब आप बहुत ज्यादा नुकसान का ये जरिया बना रहे हैं. फिर वो बच्चा जब बड़ा हो गया बड़ा होने के बाद में फिर आपके बातों को बिल्कुल इग्नोर करेगा आपके बातों को कोई तरजीह नहीं देगा फिर वो कोई और उसको उसी हिसाब से अब आप उस हिसाब से ढाल के रखेंगे. आप हर बच्चे को कोई फितरी होते हैं कि मतलब हाँ वो हाथ बटाते हैं लेकिन किसी किसी को हमारे ही बच्चे हैं तो हर मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हर बच्चे एक एक ही मतलब ये रहे उनका अलग अलग

0: बहुत अलग अलग माइंड होता है, ये की माँ बाप के बच्चे।
1: सही बात है।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब किसी को बिना कहे वो मतलब उसमें इन्वॉल्व होके और आपके साथ में हाथ बटाते हैं और करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल उससे मतलब जान छुड़ा के अपना ये करें, तो हमारा ये कहना है कि मतलब उनके ऊपर एक बैग सख्ती ना करके उनको प्यार मोहब्बत से और एक जिम्मेदारी दे के उनको वो करवाओ कि ये काम तुम्हें ही करना है, ये तुम्हारे अलावा कोई दूसरा, ये तुम्हारा काम, तुम्हारे लायक काम जो करने लायक है वो तुम खुद करो। तो उससे क्या होता है उनके अंदर एक डेवलप आता है कि चलो ठीक है एक जिम्मेदारी आके मतलब वो समझते हैं, तो फिर आगे फ्यूचर में भी उनके लिए
1: आसान
0: कोई मसला का मतलब जरिया नहीं बनता है, वो अपनी लाइफ को मतलब ये कर लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं।
1: कोशिश
0: यही है
1: और ये होना भी चाहिए। और जैसे हमने कहा बचपन से थोड़ा सा बच्चों को हल्का सा ठीक है, हम कहते हैं कि स्कूल सिखाता है हमें पंक्चुअलिटी, ऑफिस हम बाउंड है पंक्चुअल होने के लिए, लेकिन घर तो ऐसी जगह है जहाँ हम रिलैक्स करना चाहते हैं। ठीक है आप रिलैक्स भी कीजिए, बट स्टिल आपको थोड़ा सा टाइम अपने जहन में रखना चाहिए, जैसे कहा टाइम मैनेज करना आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: तो आजकल क्या है ना, ये सोशल मीडिया का जो ये है ना, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्या मैम, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो बच्चे अपना टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड उसमें करके और अपना मतलब वक्त जाया करते हैं। वो तरबियत, असल देखो तालीम ही नहीं होता है, तरबियत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। और तरबियत का मतलब ये मैयार जो होता है वो उसके घर के, उसके अक्सर लोग आजकल लड़कियों को पढ़ने के तरफ जो ये नहीं किया करते, ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे दीन ने भी इससे नहीं रोका है, ये लोगों ने मतलब कुछ इल्जाम लगाया लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये इसके ऊपर क्योंकि लड़कों से ज्यादा मैं तरजीह दूंगा कि लड़कियों को मतलब उनको तालीम का मतलब ये दिया, क्योंकि उनको उनके ऊपर एक नस्ल और ये मतलब पूरा ये और उनके अंदर अगर इल्म रहेगा तो वो अपने बच्चों को भी पंचुअलिटी से लेके मतलब सारी हर चीज का मतलब तालीम का और मतलब जितनी भी चीज का मतलब अहमियत का हर चीज का वो कद्र करने का उनके अंदर ये तलीका जरूर सिखाएंगे और उनको ये दिया जाएगा। लेकिन भाई जब वो खुद कोरा कागज अगर रहेगा, अब भाई नसीब वाला है कि मतलब हाँ उसके माँ बाप साइलेंट हो गए उसको मतलब ये करें। और बहुत से लोग अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब अल्लाह ताला उनके बच्चों को मतलब ये उस काबिल बना देता है कि बच्चे बड़े मतलब उनके माँ बाप बड़े ये रहते हैं लेकिन फिर भी बच्चे काबिलियत से वो अपना गोल हासिल कर लेते हैं। लेकिन जरूरी है कि उनके पेरेंट्स भी आजकल बड़े बड़े कॉलेजों में भी अगर नाम लिखने के लिए आपको एक मैंने शायद आपने मूवी देखा कि नहीं, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है शायद, तो उसमें वो बच्चे को शायद इंग्लिश मीडियम की कौन सा एक मूवी है, नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नहीं, वो इरफान तो उस मूवी को मैंने देखा तो उसमें मतलब मैंने एक मैसेज देखा मतलब उस अलग ढंग से उसमें एक मैसेज गया है कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हर चीज के तरफ उसमें ये किया गया है कि मतलब एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखना भी और एक मतलब अनपढ़ भी, ये दोनों को मतलब ये किया गया है कि उसमें एक रास्ता दिखाया गया है कि कोई अच्छा नहीं है।
1: मूवीज आपने देख रखी है माशाल्लाह।
0: नहीं देखते हैं कभी कभी जो कोई ऐसी मूवी रहती है तो उससे उससे मतलब आदमी को एक सबक भी मतलब
1: सीखने के मिलता है। और जो आपने बताई ना हिंदी मीडियम में मूवी बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लोज टू रियलिटी।
0: जी जी अभी जस्ट मैंने मतलब थोड़े दिन पहले, अभी मैंने शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी मैं उसको ये वॉचिंग किया, ये मूवी पुरानी मूवी मैंने नाम लिख के सर्च किया तो वो मूवी सामने आया तो मैंने थोड़ा उसका ये देखने के बाद में मैं बोला चलो इस मूवी को देखते हैं कि इसमें क्या मतलब मैसेज दिया गया, तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया देखो वो। और लास्ट में उसने बड़ी अच्छी मतलब की मतलब जो एक पूर मतलब फैमिली से रहती उसको उसने तरजीह दे के अपने वाइफ का बात ना मान के और वो समझ लो उसको वो मौका दिया उसने। तो ये सब चीजें हमको बहुत ज्यादा मतलब समझ लो मोटिवेट करते हैं मतलब कोई कोई बात है। और हम लोग मतलब नेगेटिविटी को ले लेते हैं, अपने पॉजिटिविटी को अगर हम उठाएं तो उसमें बहुत से मूवियों में पॉजिटिविटी भी होता है, मैसेज होता है आदमी को सीखने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीजें मतलब बहुत जरूरी है बचपन से और अपने लाइफ को हम खुद भी मतलब उस पर कायम रहें। मैं अपने बात को खत्म करूंगा, बात लंबा हो जाएगा और हमारे तमाम भाइयों को भी मौका दूंगा।
1: जरूर, थैंक यू जी।
0: जितने हमारे जानने वाले हैं सबको सलाम व आदाब। हाँ अब नाम लेंगे तो मतलब किसी का छूट गया तो अच्छा नहीं है, सबको सलाम व आदाब। ठीक है ओके, सलाम वालेकुम और हमारे गांव आबादी से लेके सारे लोगों को ओके, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। बहुत ही अच्छी बात करते हैं और जैसे मैंने जैसे कहा भी कि रईस जी ने बहुत ही इनिशियली बात कर दी कमिटमेंट की, हालांकि मैंने रखा था तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये वर्ड बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि कमिटमेंट आ ही चुका है बाहर, अब इस बारे में मैं अब इसको लास्ट के लिए क्या ही बचाऊं, तो चलिए इसको इस तरह से भी मैं सिंपलीफाई कर देती क्वेश्चन को, कमिटमेंट या फिर पंक्चुअलिटी। वैसे तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब ये और आसान हो गया, कमिटमेंट या फिर पंक्चुअलिटी, या कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वैसे अगर मुझसे आप पूछें पंक्चुअलिटी की बात, तो मैं कहूंगी कि ये एक आदत भी है, ये एक स्किल भी है, और ये किसी ना किसी इंसान की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा भी है। अब आदत कैसे है? आदत तो देखिए आपने भी बताया और मैंने भी बताया कि इंसान जो है वो आदत अपनी बनाता है अपने रूटीन से, अपने डिसिप्लिन होने से, या जो भी वो धीरे धीरे अपने जो स्केड्यूल्स को जो सेट करता है उसे एक आदत बन जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका कॉम्बिनेशन है, लेट्स नॉट टॉक मच ऑन दैट, नहीं तो फिर क्या हम थोड़ा सा और भटक जाएंगे ये। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदत तो देखिए स्कूल भी हमें देता है कि आप पंक्चुअल हो, लेकिन क्या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी हम सुबह उठ पाते हैं क्या? उस तरह से हमारा जो है वो टाइम फिक्स रहता है? नहीं रहता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन हमें मैसेज दे रहा है कि आज तो छुट्टी है, आज तो आराम करना है, आज तो सोना है। वहीं पर मैं कहूँगी ये पंक्चुअलिटी की जो बात है वो एक स्किल के साथ भी जुड़ी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे हाईलाइट किया था सुमीर जी ने कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं प्लानिंग से है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट से है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी हमारी प्रायोरिटीज को सेट करने से। जब लोग अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं और पहले से प्लानिंग करते हैं, तो वो ज्यादा पंक्चुअल हो पाते हैं। अदरवाइज हम चाहते तो हैं कि हम पंक्चुअल रहें, हम ये भी चाहते हैं कि हम कमिटेड रहें, लेकिन उस तरह की प्लानिंग नहीं अगर है तो शायद हम पंक्चुअलिटी को या अपने कमिटमेंट को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ जो मैंने कहा कि पंक्चुअलिटी किसी हद तक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, कुछ लोग नेचुरली काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसीलिए वो हर काम वक्त पर करना पसंद करते हैं। अगर उस वक्त पर उनका वो काम ना हो तो वो अजीब रेस्टलेस से महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मजा आता है कि जस्ट लिव इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इसमें जीना, एंड अगर मेरा टाइम जा भी रहा है पढ़ाई का, या मेरी चीजें अगर छूट भी रही हैं तो छूट जाने दो, मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं जो लोग जिनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है जैसे मैंने कहा पंक्चुअलिटी, वो लोग रिलैक्स नेचर के होते हुए भी टाइम को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो टाइम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो हाईलाइट किया, आज भी कहीं ना कहीं इस पे बात हो रही घूम फिर के, लेकिन हाँ ये हमारी आदत के साथ जुड़ के आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और आज जब मैं पंक्चुअलिटी की बात करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है ऑनलाइन मीटिंग्स। देखिए ऑनलाइन मीटिंग्स जो है उनका आपको पता ही है एकदम फिक्स टाइम होता है, एकदम टाइट स्केड्यूल होता है, ठीक है। इन पर्सन कोई मीटिंग हो रही है तो आप 10 मिनट से 7-8 मिनट आप लेट हो गए, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर आप जो है लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो पता चला कि आपकी एंट्री नहीं हुई, और हुई तो इतना लास्ट में हुई कि मीटिंग अप हो गई, या कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आज के टाइम में हम मिस कर देते हैं। तो ये आदत जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ेगी। तो चलिए आज जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं वो है कमिटमेंट को लेकर और पंक्चुअलिटी। अब इन दोनों के बीच में से आप मुझे बताइए, वैसे तो दोनों ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों है, मुझे आप बता सकते हैं 666-2107 पर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। यहाँ पर एक मैसेज है, ये मैसेज हमें मोहसिन जी ने भेजा है दमाम से, और कहते हैं मैं तो ऐसा हूँ कि अगर किसी को टाइम दिया है तो मैं उससे पहले ही पहुंच जाता हूं, मैं वेट कर लूं लेकिन उसे वेट नहीं कराना चाहता। तो कुछ लोगों की ये बात भी होती है कि भाई हम वेट नहीं कराना चाहते, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे लतीफ जी हमारे साथ जुड़ते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह बखैर सभी को गुड मॉर्निंग कहा है। इसके साथ हमें मैसेज है, और ये मैसेज है आसिफ जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि मैडम मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से पंक्चुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिस्पेक्ट को और प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाती है। राइट, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, कहीं ना कहीं आपके रिस्पेक्ट को, आपके प्रोफेशनलिज्म को और आपकी रिलायबिलिटी की भी निशानी है कि आप कितने रिलायबल हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। जो लोग पंक्चुअल नहीं होते आपने देखा हो, अक्सर लोग कहते हैं अरे उससे मत कहो, वो कभी नहीं पहुंचेगा, वो कभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता ना, हमें यकीन ही नहीं होता कि वो बंदा टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अच्छा, जो मुझे कॉल कर रहे हैं लास्ट में नंबर है 752, उनसे मेरी रिक्वेस्ट

0: ठीक है, प्लीज़ अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं देन द नंबर इज़ 443-443-77, या फिर चलिए मैं ही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कॉल करूँ अब से थोड़ी देर में, और else you can note down my number 443-443-77. और एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: वालेकुम नाजिया.
0: वालेकुम अस्सलाम. वेरी गुड मॉर्निंग. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? शिमोन है ना मेरे साथ?
1: जी जी ना.
0: बहुत, दो तीन दिन के बाद आज आपसे बात हो रही है ना? जी. तो पहले बताइए आप कैसे हैं, सब खैरियत घर में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब सेट?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, अच्छा है सब. आई होप कि आपकी तरफ भी एक्सीलेंट है.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब खैरियत है, सब ठीक है. सो आज आपका टेक क्या रहेगा? इज इट कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी? आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है?
1: देखिए, वैसे तो दोनों एक ही बड़े पर्सपेक्टिव का दोनों ही एक हिस्सा है. लेकिन I would choose commitment over punctuality.
0: Okay.
1: तो उसका reason जो है ना कि देखिए, commitment जो है ना एक बड़ा umbrella है एक तरीके से, और punctuality जो है वो आप किस तरीके से उस commitment को demonstrate कर रहे हैं, ये उसका major. Like for instance, कि आपका commitment है कि I'll meet you at 9 o'clock, let's say. ये कमिटमेंट है आप. ये तो कमिटमेंट हो गया. माई रियली मीटिंग टू एट 9 o'clock, दिस इज द पंक्चुअलिटी.
0: तो पहले कमिटमेंट आता है, देन कम्स द पंक्चुअलिटी.
1: हाँ, तो मेरे ख्याल से ये अलग नहीं है, शायद जहाँ तक मैं आप अगेन
0: देखा. दोनों इंटरलिंक तो है, बहुत स्ट्रॉन्गली
1: नेटेड है. नहीं है, मैं 100% गलत ही हो सकता हूँ, ज्यादातर होता ही हूँ गलत.
0: नहीं नहीं, आप गलत कभी भी नहीं होते, बस हम सब का एक अलग सा पर्सपेक्टिव होता है.
1: हाँ,
0: तो we appreciate that.
1: अब जैसे कोई इंसान, अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट थिंग कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी में. कमिटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइक फॉर इंस्टेंस कि आप 10 लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर. आप उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पंक्चुअल है, राइट? तो वो आ जाते हैं, वो आपने एक टाइम डिसाइड करा या आपने कोई डेट डिसाइड करा, वो एक उस टाइम पर उस डेट पर आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. बट व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डिफिकल्ट, जब उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस काम के अंदर आपके लिए जो है ना परेशानियां बढ़ने लगती हैं उसके अंदर, सो आर दे स्टिल कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट या उस पर्टिकुलर काम के लिए?
0: Nice.
1: That is what differentiates. That is what differentiates between a committed and a not so committed individual.
0: Nice. बहुत ही अच्छा. बहुत अच्छा.
1: तो हो सकता है कि वो 5 लोग ऐसे हों उसमें से कि जो इतने पंक्चुअल ना हो. फॉर इंस्टेंस, कि भाई वो आपने टाइम सेट करा था कि 9 बजे मिलेंगे या 10 बजे मिलेंगे, हो सकता है वो 15 मिनट लेट आ गए, फॉर इंस्टेंस. But you know, when the difficulties arise, so they take the responsibility, they communicate the problems, wo koi aur tarika nikalte hain us cheez ko deliver karne ke liye, na they work around different ideas and themes taki wo project jo hai wo complete ho jaye, wo apne completion tak pahunch jaye. So in that case, their commitment to the project has more value to their punctuality to the project.
0: Very nice, beautiful.
1: तो ये मुझे लगता है, मतलब मैं ऐसा इसको सोचता हूँ. Again, like you know, I'll just be wrong.
0: मतलब आपने ये बात कही कि पंक्चुअलिटी कहीं ना कहीं बताती है कि आप वक्त को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट बताता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. ये बड़ी बात है. ट्रू. बहुत ही अच्छा कहा.
1: देखिए, जैसे इट इज नॉट एप्ट एग्जाम्पल, बट स्टिल देखिए, पहले के टाइम में आपको नहीं होता है, पहले के टाइम में आपने बड़ा सुना होगा, बहुत सुना होगा कि बड़े स्टार्स होते थे, जो मूवी स्टार्स होते थे, दे वुड कम लेट बाय आवर्स एंड आवर्स.
0: स्पेशली गोविंदा के लिए तो बहुत कहा जाता था कि वो कभी भी नहीं पहुंचते,
1: सुबह की शिफ्ट है तो दोपहर में आ रहे हैं, ठीक है. But producers will still take them, right? They will not say you are not punctual, so will not take you, will not cast you. ऐसा नहीं होता. ऐसा इसलिए नहीं होता था कि उनको पता होता था कि ये सब जो है ना कितनी भी लेट या अनपंक्चुअलिटी है ये सब जो है वो बदल जाए उस मूवी के हिट होने में.
0: तो क्या जो लोग नॉन पंक्चुअल हैं उस तरह से पंक्चुअल नहीं हैं क्या फिर भी उनकी लाइफ में कोई खास तब्दीली नहीं आती बिकॉज ऑफ देयर दिस हैबिट? कोई फर्क नहीं पड़ता या आज के टाइम में थिंग्स हैव चेंज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंड और अब फर्क पड़ता है, आपको ऐसा लगता है?
1: किसी भी चीज में ना जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी. ठीक है, तो आप सपोज करिए 10 लोग हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रोजेक्ट में 10 लोग हैं, है ना, तो अब उसमें सिर्फ 4 लोग जो है वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं. तो ये हो सकता है तब काम कर जाता जबकि शायद यू नो कि लोग ज्यादा अवेलेबल नहीं होते. लेकिन अगर लोग अवेलेबल होने शुरू हो गए जो कि कमिटेड भी हैं और पंक्चुअल भी हैं तो फर्क पड़ेगा फिर उसके ऊपर. तो बात ये है कि असल में जो ये जो सारा जो मैं जो बात बताना कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भी अगर आपको ये बात चूज करनी हो कि यू हैव टू कीप अ प्रॉमिस और यू नो यू हैव टू कीप द शेड्यूल, तो उसमें होना ये चाहिए कि यू कीप द प्रॉमिस एंड आप अपना कम्युनिकेट कर दें इफ यू इफ देयर इज अ चेंज इन योर शेड्यूल.
0: अच्छा कमिटमेंट में आपको ये नहीं लगता कि पंक्चुअलिटी भी है? कोई टास्क मेरे लिए एक डेडलाइन है और मैं उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाई सो बाद में मैं कर रही हूँ तो वो तो फिर यूजलेस हो गई या फिर उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं रहती है ना.
1: मैं यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना दोनों इंटरलिंक्ड है. अब देखिए दो लोग हैं जैसे ये बात हो रही थी कि दो लोग हैं मिसाल के तौर पे, एक इंसान जो है वो कमिटेड भी है और एक पंक्चुअल भी है. ठीक है, तो उसके लिए तो वो तो वहां तो बातें खत्म हो गई.
0: वो तो बहुत ही अच्छी बात है,
1: बहुत ही बढ़िया. अब हम ऐसे दो लोगों की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक इंसान कमिटेड है लेकिन पंक्चुअल नहीं है और दूसरा इंसान जो है वो
0: पंक्चुअल
1: है लेकिन कमिटेड नहीं है. अब यहाँ पर चूज करने की बात है ना, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? दोनों है वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर
0: सही,
1: बहुत ही बढ़िया,
0: तब तो डेफिनेटली कमिटमेंट के साथ ही बंदा जाएगा.
1: देन दैट इज व्हाट यू नो थिंक यू देन आई वुड चूज कमिटमेंट ओवर
0: कमिटमेंट.
1: आई मीन प्रोबब्ली यू नो प्रोबब्ली इफ दिस इज विद माय टीम और समबडी अराउंड मी आई विल वर्क अराउंड ऑन देयर पंक्चुअलिटी और माय पंक्चुअलिटी एज वेल. मैं कोशिश करूंगा कि हाँ भी कमिटमेंट के साथ साथ मेरे अंदर पंक्चुअलिटी भी हो जाए या मेरी टीम में जो और लोग हैं उनके साथ भी ये हो जाए, ऐसा हो जाए. बट अगर बात बिटवीन द टू होगी चूज करने की देन आई वुड गो विद द कमिटेड पर्सन रादर देन अ पंक्चुअल पर्सन.
0: बिल्कुल, यानी पंक्चुअलिटी कहीं ना कहीं कमिटमेंट का एक हिस्सा है बट कमिटमेंट उसे बहुत बड़ी चीज है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग.
1: एज आई सेड इनिशियली इट इज अ वे टू डेमोंस्ट्रेट योर कमिटमेंट.
0: ट्रू, नाइस.
1: You demonstrate your commitment through punctuality.
0: Sahi.
1: But if you're not demonstrating your commitment through punctuality, but at the same time, you are able to deliver things, work in difficult environment, you know, you're able to take responsibilities, all those things, you're able to communicate. Wo sari cheezein agar aap kar pa rahe hain, then I would choose this person over a punctual person who's not committed to all these things.
0: सही, नाइस नाइस, बहुत ही जबरदस्त. थैंक यू सो मच शिमोन कि आज आप फाइनली जुड़े हमारे साथ और इतने अच्छे थॉट के साथ जुड़े. सो थैंक यू वंस अगेन, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. हमेशा ही कुछ ना कुछ हम सबको सीखने के लिए मिलता है. सो थैंक यू,
1: प्लेजर. हैव अ गुड डे, टेक केयर
0: ना. यू टू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, अल्लाह हाफिज. वालेकुम अस्सलाम. सो आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं पंक्चुअलिटी की, कमिटमेंट की. मेरा दिल चाह रहा है एक और मैं एडजेक्टिव, एक वर्ड और ऐड कर दूं, बट पता नहीं कितना आसान रहेगा कि टफ ना हो. मैं चाहती हूँ इसको सिंपली रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे साथ शेयर करें. टुडेज़ टॉपिक इज नाउ ऑन कमिटमेंट एंड पंक्चुअलिटी. वैसे तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपको क्या लगता है ज़्यादा आपकी लाइफ में किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? डू यू बिलीव इट इज़ कमिटमेंट और यू बिलीव इट्स पंक्चुअलिटी? आप मुझे बता सकते हैं 6622107 पर मैसेज करके या फिर डायरेक्टली कॉल कीजिए 4434377 पर.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया, आपकी साथ 7:36 ऑन द क्लॉक. और मेरे साथ इस वक्त एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.

0: बिल्कुल सही कहा, वो वाकई समझेगा आज तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से, क्या हो क्या गया, जितना वक्त पे पहुंचा हुआ है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, दैट्स ट्रू। कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोस्त इंतजार कर लेगा, फैमिली वाले बुरा नहीं मानेंगे, इसीलिए पंक्चुअलिटी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन ऑफिस में तो ये हो नहीं सकता,
1: कमिटमेंट होता है वो, देखिए वो कमिटमेंट हमारे रिजल्ट की तरफ हमको लेकर जाता है। पंक्चुअलिटी पर आप रहोगे, आप आपका कमिटमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको उसका रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। इसमें डिसिप्लिन इंक्लूड हो जाता है, डिसिप्लिन तो हर इंसान को होना चाहिए,
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी
1: डिसिप्लिन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
0: बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर
1: को मैं शिमोन भाई को सुन रहा था वाला, उनकी जो मेंटालिटी है और मेरे जो अल्फाज होते वो मैं सोचता कि हम लोग दोनों एक ही नजरिए से सोचते
0: हैं।
1: Exactly, वो बिल्कुल वही उसी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे थे जैसा मैं उस वक्त वही सोच रहा था आपके इस टॉपिक का आज क्या रिप्लाई होगा, और इतने में उनका कॉल लग गया। तो मैं उनको सुन रहा था, मैंने कहा ये बिल्कुल ये भी सही कह रहे हैं, ये दोनों एक ही अम्ब्रेला नाते हैं। तो वो इसीलिए मेरा टॉपिक आपका जो क्वेश्चन भी बना वो इसी बना कि आपने क्वेश्चन को कैसे सोचा, आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है। मैं उस वक्त इंस्पिरेशन बोल नहीं पा रहा था, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से।
0: मुझे लगता है हर रोज की हमारी जो लाइफ की जो स्ट्रगल है,
1: डिस्कस करते हैं,
0: नहीं हम लोग देखते रहते हैं आपस में कि अच्छा हाँ ये चीज़ इस चीज़ को लेके, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से निकल के आते हैं कि मैं किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रही हूँ, तो या फील कि हाँ हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं उस एंगल से, बट हाँ वो कहीं ना कहीं परेशान तो है। तो जैसे मैं बताऊँ तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उस तरह से कमिटेड तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी वो काफ़ी बड़ा वाइड है वो है, लेकिन हाँ उस तरह से पंक्चुअल नहीं हूँ। व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशनल लाइफ आई एम क्वाइट पंक्चुअल। तो मुझे ये लगा कि ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सो, अगर एक आदत बन गई तो बन गई है, वो तो हर जगह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पर ये मेरे साथ क्यों होता है। तो यही एग्जैक्टली मैंने आपसे पूछा भी और यहीं से हमारा ये सवाल भी निकला। सो दैट्स हाउ, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि
1: तो आपने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि हाँ यार देखिए अभी रिलेटिव जो दोस्त होते हैं फ्रेंड्स होते हैं आप वहाँ पर इतने स्ट्रिक्टली उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो आपने इस चीज को जाना कि हाँ यार ये वजह होती है कि यार हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चल आधा घंटा आ रहा है नो प्रॉब्लम,
0: आपकी रेपुटेशन है, आपकी सैलरी स्टेक पर है,
1: अथॉरिटी लेवल पे नहीं हो पाता है, अथॉरिटी लेवल पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
0: और आजकल एक और टर्म यूज की जाती है सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, जो कॉम्बिनेशन इन दोनों चीजों का वेयर वी टॉक अबाउट, तो इसमें आपका डिसिप्लिन भी आ गया, इसमें आपका कमिटमेंट भी है, आपका पंक्चुअलिटी भी है, एंड दैट्स हाउ हम कहते हैं कि ही इज अ प्रोफेशनल बंदा या बंदी। तो ये सारी चीजें हैं,
1: और आप उनमें से एक हो, जस्ट टू अप्रिशिएट योर वर्क।
0: थैंक यू सो मच,
1: आप बिल्कुल टाइम पर आप अपने, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप एवरीडे डिफरेंट टॉपिक।
0: थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकालते हैं,
1: काफी है नहीं। जी, और इसके लिए नहीं आपका काफी एफर्ट है जहाँ तक मेरे ख्याल है, क्योंकि ऐसे टॉपिक को
0: टॉपिक तो देखिए हम सिंपली लेके आते हैं, उसे इंटरेस्टिंग आप लोग बनाते हैं, तो ये इसलिए नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम सेइंग दिस, नो, बिकॉज आई बिलीव कि जो भी टॉपिक मैं लाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे लिसनर्स इस पे आई एम श्योर बहुत ही कमाल के इनसाइट्स जो हैं वो शेयर करेंगे, और वैसे ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो मैं वाकई शुक्रगुजार ऊपर वाले
1: इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, ऐसा नहीं होता, क्या होता है मालूम है कि ये बोथ द साइड्स वर्क करता है, सिर्फ वन साइड से अगर कोई बंदा अगर अपनी कितनी भी इंटेलिजेंस से बात कर रहा हो, लेकिन अगर फ्रंट पर्सन है ना उस बात को अंडरस्टैंड समझकर उसको रिप्लाई नहीं कर पाएगा तो फिर दैट कन्वर्सेशन कैन नॉट गो ऑन। तो ये बोथ साइड्स होता है।
0: और मुझे मजा आता है कि मैं एक डिबेट के फॉर्म में लेके चलूं और थोड़ा सा ड्रैग करती रहती हूं जहां जिस तरफ जिस चीज पे ज्यादा बात होती है, तो आई ट्राई टू कीप मायसेल्फ टू द अदर साइड, कि मजा आता है। तो इसलिए एक बहुत ही मिक्स पर्सपेक्टिव हमें मिलता है लोगों का, और लोग दोनों तरफ से सोच पाते हैं, क्योंकि कई बार लोग मैंने देखा थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं, दे से कि ये यार आई एम नॉट पंक्चुअल, तो कह नहीं पाते। सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट विद myself saying ki yes main bhi punctual nahi hu, hona chahti hu, and then it makes easier for everyone to come and talk on this. To is tarah se mai koshish rehti hai ki har koi aaye baat kare aur genuinely kuch seekh ke jaye aur use implement kare apni life mein, और आप लोग सिखाते हैं।
1: आपने डिबेट का एक वर्ड बोला आपके सेंटेंस में, आप यकीन करें जब से मैंने आपका प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया मुझे लगा ये कैसे वो डिबेट, आपको पता है दोहा डिबेट नाम का एक प्रोग्राम होता था पहले जजीरा पर भी होता था और टीवी पर, तो मैंने सोचा ये आपका नाम मॉर्निंग शो के बजाय शुड बी नाज़िया डिबेट
0: समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, ये हमारी हल्की फुल्की डिबेट रहती है, मतलब मेरी कोशिश होती है कि अगर थैंक यू वंस अगेन, और सारा अच्छा खासा क्रेडिट आप सबको है, एंड यू ऑल बीन सो काइंड एंड जेनरस कि आप मुझे देते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि आप लोग की वजह से हो पाता है। सो थैंक यू सो मच, यू टू टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों बहुत ही कमाल की, और अभी तक जितने भी मेरे साथ कॉलर्स जुड़े उन्होंने बहुत ही कमाल की बात यहाँ रखी भी। हाँ, अभी कमिटमेंट को थोड़ा ज़्यादा वोट मिल रहा है, आई मीन टू से मान रहे हैं, मैं भी पूरी तरह से इस बात को एक्सीड करती हूँ कि येस कमिटमेंट इज़ ट्रूली ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ फिर भी पंक्चुअलिटी जो है वो भी अहमियत रखती है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि कमिटमेंट या पंक्चुअलिटी आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों है, ये आपको मुझे बताना है। 6622107 पर हम आपके मैसेजेस ले रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं नंबर है 4436437। यहाँ पर एक और बंदा हमारे साथ है और कहते हैं कि मैडम मैं तो कहूँगा कमिटमेंट, और जो मैंने कमिट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ओहो, क्या बात है, फिर तो आप फिर तो डेफिनेटली पंक्चुअल भी होंगे। इनका नाम हम चेक कर लेते हैं, इनका नाम है JV, ओके, चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पंक्चुअल भी होंगे। और सुबह बखैर, ये मैसेज है शिराज मलिक जी का, गुड मॉर्निंग आपको भी, और यहाँ पर हमें कॉल करने के लिए भी कोई कह रहे हैं, तो ज़रूर अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल भी करती हूँ, आपसे डेफिनेटली बात भी करूँगी। और उसके पहले यहाँ पर एक और मैसेज है, एंड दिस सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, ये मैसेज है हमें मोहम्मद जी का, और कहते हैं कि मैडम देखिए वक्त की पाबंदी जो नहीं कर पाता वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता, मेरा ये मानना है। आपका मानना बिल्कुल ठीक है, वो इंसान जो चीज़ों में पंक्चुअल नहीं है वो बहुत सारे काम कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को प्लान नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आता, आपने वैसी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई हैं, तो हर काम आपका जो है वो शिफ्ट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक आदत ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट को हिला देती है, तो मेक श्योर कि आप पहले पंक्चुअल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी से आपका कमिटमेंट भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल खैर ये एक टॉपिक ऐसा अभी तक तो वन साइडेड जा रहा है, कमिटमेंट की तरफ ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी उसी पर बात कर रहे हैं, बट आई वुड अप्रिशिएट अगर कोई आए निकल के और मुझे बताए कि क्या और प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या एटलीस्ट प्रोज क्या हो सकता है, या और पॉइंट्स क्या ऐड कर सकते हैं पंक्चुअलिटी को थोड़ा सा हैवी करने के लिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। सो फील फ्री, 4436437 इज द नंबर। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो ये डिस्कशन आपका हमारा जारी रहेगा। स्टे हुक टू FM 107, दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: That's right. Pump it up.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check. Right guys, good morning and welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:04।

0: हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम देर करते नहीं हैं, हो जाती है। ठीक है, समझ में आता है कि बहुत लोग जो हैं वो चाहते तो नहीं हैं कि वो देर करें, लेट हो, या उनको इस फ्री इस टैग उनका नाम जो है इस टैग के साथ जुड़े के तो लेट लतीफ है, हमेशा लेट आएगा, लेकिन फिर भी देर हो जाती है। अब देर हो जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि हम या तो अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट करते, या उस चीज़ को उतनी अहमियत नहीं दे रहे होते, या वाकई हमारा स्केड्यूल पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब है। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसलिए आज के दौर में और इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ऑनलाइन मीटिंग्स, अब आपको पता है कि वो मीटिंग विद इन 30-40 मिनट्स ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ऑन टाइम ही उसको अटेंड करना है, टाइम से आपको जो है वो कनेक्ट होना है, जुड़ना है, और फिर टाइम पर वो ख़त्म भी होने, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप मिस कर रहे हैं। और ये मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दौर में टाइम के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं, कुछ ऐसी फर्म्स भी हैं जहां सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अहमियत दी जाती है इस टाइम द पंक्चुअलिटी, उनका काम टाइम से ही शुरू होना है, टाइम पे ही ख़त्म होना है, टाइम ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर भी वो भी सिनेरियोज अलग हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर, तो चलिए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं समद आप? खैरियत से? और आपकी बहन कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो टाइम है, अच्छा। अभी तो अल्लाह का फजल है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जैसे ही अच्छी आप खबर जो है फटाक से हम सब के साथ शेयर कीजिएगा, और हम सब दुआएं कर रहे हैं आपकी बहन के लिए,
1: इंशाल्लाह।
0: ओके, सो आज का टॉपिक इज अबाउट कमिटमेंट या फिर पंक्चुअलिटी। वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों है?
1: सॉरी, कम अगेन प्लीज।
0: ये आज हम पूछ रहे हैं कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी, आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों है?
1: आप मतलब ना, आप कहीं ना कहीं लेके आके फंसाते हो, कल भी आपने फंसाया था। वक्त और पैसे में फंसा दिया।
0: वो कहते हैं ना कि जब उलझेंगे हम तभी तो सुलझेंगे, तो सुलझने के लिए उलझना भी तो जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन मैं फिर से कहूंगा कि मेरे लिए दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी होते हैं। किसी एक पहलू में हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर भी ये दोनों भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर टॉप पे अगर आप रखेंगे तो वो कमिटमेंट होगा,
0: कमिटमेंट है। ओके,
1: पहले नंबर पे रखेंगे तो कमिटमेंट होगा, क्योंकि कमिटमेंट के बाद ही तो सारी पंक्चुअलिटी आएगी ना आपके पास में, कि आप कमिट कर दिए ये वक्त पे पहुंचना है, तो आप फिर वो वक्त पे पहुंच के ही रहोगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट दिए तो पंक्चुअल तो बनना ही पड़ेगा आपको उस हिसाब से, वरना फिर कमिटमेंट ही क्या रहेगा।
0: बहुत सही कहा कि कमिटमेंट जब हो जाता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी आ जाती है, और सही सी बात है, अगर आप कमिटेड हैं तो आप शायद हो सकता है पंक्चुअल हो, ये बहुत बहुत पॉसिबिलिटी।
1: बड़ा वर्ड होता है मैडम, और बहुत जिम्मेदारी वाला अल्फाज है ये, ऐसे ही हर कोई नहीं कह सकता है। हाँ, पंक्चुअलिटी तो लोग जो है मठारने करने अपने काम निकालने के लिए कुछ हद तक कर ही लेंगे, लेकिन कमिटमेंट हर कोई नहीं कर पाता। कमिटमेंट मेरे हिसाब से वो कर पाता है जो गुर्दा रखता है, मतलब जिगर रखता है, जिगर वालों का काम होता है कमिटमेंट, वरना नहीं होता है।
0: आप ऑफिस में तो देखिए कमिटेड है ही ना, आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है वो डिलीवर करने ही करने हैं, एंड यू आर कमिटेड फॉर दैट। आपके पास चॉइस है, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस?
1: ऑफिशियली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली तो ऑब्वियसली हम करते ही हैं, क्योंकि हमको घर चलाना है, बाकी सब सारी चीजें इससे इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेकिन आप अगर एट दी अदर हैंड देखेंगे, जो पर्सनल लाइफ होती है, जो पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वहाँ पर कमिटमेंट निभाना बहुत मुश्किल होता है, और वो कमिटमेंट हर कोई नहीं निभाता है। कमिटमेंट टुवर्ड्स टू योर फैमिली, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्ड्स, जो आप अल्फाज बोल रहे हो कि मैं इसको निभा पाऊंगा या कर पाऊंगा या नहीं, तो ये रिलेशनशिप्स इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें बहन भाई की, माँ बाप की और बीवी की, स्पेशली वाइफ की और किड्स की, आपके टुवर्ड्स योर किड्स। तो आप फेक कमिटमेंट्स में मत करें, क्योंकि फेक कमिटमेंट्स क्या होती हैं कि दिल को तकलीफ पहुंचा जाती है। तो कमिटमेंट वही करें जो आप निभा सकते हैं, वो है। ज्यादा ऊंची ऊंची छलांगे नहीं मारे कमिटमेंट में, कि भाई वो कहते हैं ना कि जब ज्यादा खुश हो तो बड़ी बड़ी बातें मत करो, जब ज्यादा नाराज हो तो तकलीफ वाली भी बातें मत करो, बल्कि तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है, बाकी सबका अलग अलग नजरियात होते हैं।
0: नहीं, ज्यादातर लोग जो है वो कमिटमेंट के ही साइड हैं, उनका मानना है कि कमिटमेंट जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, अगर कमिटेड नहीं है तो बंदा पंक्चुअल भी नहीं हो सकता, या फिर वाइस वर्सा भी इसे ले सकते हैं। बट दे यू सेड राइट, आपके हिसाब से मुझे जो समझ में आया कि कमिटमेंट का ताल्लुक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है, जिम्मेदारी।
1: तो बिल्कुल, अब देखिए शादी एक कमिटमेंट होता है, जिम्मेदारी होती है, बच्चे कमिटमेंट होते हैं, जिम्मेदारी होती है, माँ बाप कमिटमेंट होते हैं, जिम्मेदारी होती है, बहन भाई भी कमिटमेंट होते हैं, जिम्मेदारी होती है। तो ये हम अपने घर से ही कमिटमेंट लेकर निकलते हैं, तो जब हम घर से ही सब कुछ अगर मजबूती से निकलेंगे तो फिर बाहर आसानी हो जाएगी हमें कमिटमेंट से निभाने के लिए, ये मेरा मानना है।
0: यही ज़्यादातर लोग मानते भी हैं, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हमेशा ही थोड़ी सी ज़्यादा एज मिलती है कमिटमेंट को ओवर पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी तो लोगों को लगता है कि चलो चल जाएगा, इतना उतना है तो हो ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम बहुत ही आसान उसमें लेते हैं, बट ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, पंक्चुअलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है, दैट्स ट्रू। और जैसे आपने कहा कि अगर आप नहीं निभा सकते कोई चीज़, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सो आप कमिट भी ना करें, तो ये भी एक, हाँ, बिल्कुल, एक बड़ा पॉइंट था।
1: कमिटमेंट एक ऐसी चीज है ना कि एक इंसान अपने अंदर एक उम्मीद जगा लेता है कि आपने उसको कोई एक चीज कमिट की है तो वो निर्भर हो जाता है आपके ऊपर, मतलब पूरा, मतलब कि भाई चलो बंदे ने इतना अश्योरेंस दिया है, उसके बाद में जब नहीं होता है तो जब फिर, क्योंकि अब वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं करेगा, प्लान ए प्लान बी कुछ नहीं करेगा, क्यों, आपने कमिट कर दिया है। तो इंसान अपनी जबान से पहचाना जाता है, यानी कमिटमेंट से। तो आप जो कमिट कर रहे हो तो वो एक चीज होती है कि भाई बंदे ने बोल दिया तो उसका मतलब बोल दिया, ये कह देगा तो ये कर देगा, वैसा वाला रहेंगे तो मजा भी आएगा, लोग भी पसंद करते हैं कि भाई ये है।
0: ये तो आपने सही कहा, मजा भी आएगा और अच्छा भी, और उसकी रेपुटेशन भी होती, मतलब वो लोग उसे पसंद करते हैं वाकई। और अगर कहीं कोई कमिटेड होने के साथ साथ पंक्चुअल है तो वाह, सोने पे सुहागा वाली।

0: बात हो जाती है।
1: ये तो बहुत ही एक्सीलेंट बंदा कभी कभी जो है क्या बोलते हैं अपने पंक्चुअल नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता। कमिटमेंट देखिए मेरा अपना पर्सनल
0: नहीं नहीं हो सकता है। देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि
1: एक आधा सिनेरियोस में हो सकता होगा मे बी,
0: मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे देखे एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज मैंने ऐसे देखे रोज सुबह टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल हैं, कभी लेट नहीं हुए, उनका रिकॉर्ड है कभी लेट नहीं हुए, लेकिन कहीं भी कोई जिम्मेदारी दी जा रही तो उससे बच रहे हैं। वही ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जो कभी टाइम पे नहीं आए, हमेशा आप देखिए थोड़ा सा लेट हैं आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसे वो बहुत ही सक्सेसफुली निभाते हैं, अपनी टीम
1: तो
0: को सपोर्ट करते हैं। तो
1: जो टाइम पे नहीं आ रहे हैं जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसे पता होता है कि ये लॉयंस हैं, कमिटमेंट लेने वाले लॉयंस होते हैं कि भाई ये शिकार करेगा अपनी जगह जाके बैठ जाएगा आराम से, बाकी सब आएंगे अपना काम करेंगे, वैसा वाला सीन होता
0: ये
1: है,
0: बात है।
1: मैंने स्टार्टिंग में कहा ना आपसे कि हर किसी की बात नहीं होती, गुर्दा होना पड़ता है उसके लिए, कमिटमेंट निभाना बहुत मुश्किल है,
0: मुश्किल काम है। और कमिटमेंट अगर आप निभा लेते हैं मजा आता है तो लोग जो है ना आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कमिटमेंट का जो ताल्लुक है वो ट्रस्ट से भी है, ट्रस्ट क्रिएट होता है, भाई लोग यकीन करने लगते हैं ना।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है करेक्ट था आपने, एक अलग ही मतलब एक हो जाता है कि हाँ चलो। और स्पेशली जो है हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ये सब सारी चीज में और ऑफिस में तो होता ही, और इसमें एक अलग ही किक है कमिटमेंट में, वो जो जब क्या कहते हैं जो जब इंसान कमिटमेंट में बनना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू करता है अपने आप पर, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है बंदे के अंदर में कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है। तो अपने आप को आप एनालाइज करते हुए आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर तो ये इतनी इनबिल्ट सारी क्वालिटीज अल्लाह ने रखी थी जो कि मैं सिर्फ फर्जी जो है पीछे भाग रहा हूँ इनके उनके, मैं भी कर सकता हूँ,
0: मैं ही कर सकता हूँ, कर सकते हैं सब लोग। हम खुद ही जो है ना वो अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं, हमें लगता है कि अरे हम तो नहीं कर सकते, फलाना तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने वो बना रखी है अपने, बना के रखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं विदाउट अ डाउट कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हर कोई जो है अपनी मेहनत से अपने आप को चेंज कर सकता है, दिस इज ट्रू। और हमें ट्राई करना चाहिए लाइफ में, हम ट्राई ही नहीं करते, वो डरते रहते हैं, ये बस हमें इस चीज से बाहर निकलना है अपने फियर से।
1: नहीं कुछ लोग ना क्या कहते हैं अपने फियर नहीं है, स्मार्ट होते हैं कि मैं क्यों करूं,
0: अच्छा ये भी है,
1: कर रहा है अच्छा। करने दो, हमें क्या करना है, हमको जितनी तनख्वाह मिल रही है हम उसी में खुश हैं, क्यों हम किसी का बोले, अच्छा होगा तो हम करेंगे, वो करेंगे, बुरा होगा तो तुम करेंगे, वैसा वाला तो ये भी एक चीज होती है, बट ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
0: ये तो आपका स्टैग्नेशन है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप बढ़ ही नहीं रहे, आप यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग न्यू, तो फिर आप तो वहीं पे फंसे के फंसे रह जाएंगे, आप तो कभी भी नहीं बढ़ेंगे। और आप जानते हैं सैलरी या पैसा है उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है,
1: नहीं वैसे
0: डिप्रिसिएट करते हैं
1: ऐसे लोगों के लिए कि ये ना कुएं और तालाबों में तीरने वाले लोग हैं, इनको समुद्र की लहरों का मजा नहीं आता है, तो ये
0: समुद्र की गहराई से डरते हैं। कोई बात नहीं,
1: वो भी सही है, सही है, मजा तो समंदर के तीरने का ही है।
0: अब मजा सजा में कब बदल जाए नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए,
1: है ना। अभी मिलेगी तो मजा आता है कि खुशी होती है कि तालाबों में और तालाबों में लोगों को देखकर इस चीज का एहसास होता है कि हम बाहर तो निकले।
0: ट्राई करना चाहिए लाइफ में और अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल उसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए लाइफ में। इट्स नॉट दैट कि जो हो रहा है चल रहा है हम बैठे हैं।
1: लर्निंग वाला इंसान हारता नहीं है जिंदगी में कभी भी, या कुछ बन जाता है या कुछ सीख जाता है, वो लर्निंग के लिए जो निकलता है ना बंदा वो कभी भी अपनी जिंदगी में हारता नहीं है, और जो चीज सीखा होता है ना कहीं उसे वो काम आती है,
0: बिल्कुल
1: जिंदगी के नहीं आती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त।
1: कचरा भी रिसाइकल होता है ना मैडम,
0: देख लीजिए और कितना महंगा बिकता है स्क्रैप, यू नो दैट। तो बस सारी चीजों की अहमियत है, बस हमारी सबसे ज्यादा अहमियत है, और पहली वर्थ हमें अपने आप की तो हमें ही पहचाननी है, फिर कोई जो है हमें बाहर अप्रिशिएट करेगा। सो वो अपने उस जोन से निकलना है बाहर, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँगी कि जिगरा चाहिए नहीं चाहिए, बट कमिटेड होना चाहिए लाइफ में,
1: कमिटमेंट करेंगे तो लोगों से कमिटमेंट फुलफिल कर पाएंगे। अपनी खराब आदतों को जो है कमिटमेंट देते हुए छोड़ना है, तो जैसा कि मैं एक स्मोकर था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, क्विट कर दूंगा। फिर उसके बाद में मैंने बहुत मतलब इस बारे में किया, मैं बोला नहीं छोड़ना है तो छोड़ना है। अब मैंने छोड़ दी तो अभी तक भी मैं उस चीज के उसमें नहीं जाता हूँ, शुक्र अल्लाह।
0: अरे वाह, अब तो बहुत

0: ही जबरदस्त इंसान है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस. ये बहुत मुश्किल होता है. इट्स सो डिफिकल्ट एंड आई एम ग्लैड कि आप जैसे लोग हैं जो वाकई ये सब ले पाते हैं और इसको कर रहे हैं.
1: कहूंगा कि कोशिश करें सेल्फ कमिटेड हों, बिकॉज अगर आप सेल्फ कमिटेड होंगे तभी आप बाहर वालों की कमिटमेंट्स पे फुलफिल उतर पाओगे. मेरा ये कहना है. और स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. अब ये सबके आपके चैनल के जरिए से जो है मैं भी एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि भाई छोड़ दें. बहुत अच्छी चीज है. मैं तो खुश हूँ छोड़ दिया हूँ. हाँ शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई है लेकिन कोई नहीं, अल्लाह सुबहान तआला मदद फरमा देते हैं. बुरी आदतों को छोड़ने में थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन जब छोड़ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है. तो आई एम हैप्पी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह.
0: Do you mind asking me, you are from which country?
1: India, Hyderabad.
0: Oh, you are from Hyderabad. Okay, nice. चलिए बहुत जबरदस्त.
1: आपके यहाँ भी एक हैदराबाद होता है ना?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल एक ही होता है हमारे
1: यहाँ. हमारे यहाँ भी एक ही है, मतलब है तो हैदराबाद दो से.
0: अब तो खैर
1: आपके यहाँ में हमारे यहाँ में.
0: हालांकि देखा जाए तो अब ये हैदराबाद भी तो देखिए ना, आंध्रा और तेलंगाना भी तो खैर दो स्टेट हो गए, कैपिटल खैर एक ही. हाँ ये बात तो है. बट चलिए बहुत ही अच्छा आपसे लगा बात करके हमेशा ही. एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं हमारे साथ. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए.
1: अल्लाह हाफिज.
0: और राइट, और आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है दोस्तों वो है कमिटमेंट या फिर पंक्चुअलिटी. वैसे तो दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो कमिटमेंट के साथ है. मैं ये कहूँगी कि हाँ होना भी चाहिए लेकिन हाँ पंक्चुअलिटी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब पंक्चुअलिटी की बात होती है तो उसका स्ट्रेट वे ताल्लुक हम और आप जो है वक्त की पाबंदी के साथ करते हैं. टाइम पर पहुँचना है, डेडलाइन जो है वो टाइम पे कंप्लीट करनी है, स्केड्यूल जो है वो अपना फॉलो करना है. यानी पंक्चुअलिटी का ताल्लुक होता है कब से. कब, ये ज़्यादातर कब से रिलेटेड है, मतलब कब होगा ये काम, कब होगा, मतलब कहीं ना कहीं वक्त से. वहीं जैसे आपने कहा कि कमिटमेंट, कमिटमेंट जो है उसका मतलब है आपके वादे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके गोल और आपके गोल के साथ आपकी वफादारी. मेरा मतलब है काम को पूरी मेहनत से करना, ये आपका कमिटमेंट है. मुश्किल वक्त में भी किसी का साथ दे जाना, ये आपका कमिटमेंट है. गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड रहना, ये आपका कमिटमेंट है. यानी कहीं ना कहीं कमिटमेंट का ताल्लुक है कैसे और कितनी सिंसियरिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो पंक्चुअल हैं लेकिन कमिटेड नहीं हैं एंड सो फॉर दैट उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते. वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं लेकिन वो पंक्चुअल नहीं हो पाते. तो वो भी स्ट्रगल करते हैं और दूसरे सिनेरियो में इसको रिवर्स करके देखें तो वो भी स्ट्रगल करते हैं. अब पंक्चुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कमिटमेंट की बात होती है, नहीं नहीं नहीं कमिटमेंट कम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और शायद पंक्चुअलिटी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती. ये बात बिल्कुल नहीं है. पंक्चुअलिटी जो है वो कमिटमेंट का एक बहुत ही विजिबल पार्ट है. जब आप वक्त पर पहुंचते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि मैं इस काम और इस शख्स को भरपूर इंपॉर्टेंस दे रहा हूं. लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पर पहुंच जाएं और काम को दिल से ना करें तो ऐसी पंक्चुअलिटी का भी फायदा लिमिटेड रह जाता है. तो मतलब कमिटमेंट भी चाहिए. और मैं फिर यही कहूँगी कि पंक्चुअलिटी कहती है कि मैं वक्त पर हूँ. कमिटमेंट हमें और आपको सिखाता है कि मैं वक्त पर इस जिम्मेदारी को पूरा भी करूँगा. तो इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों आपस में जुड़े हैं. कोई भी शख्स कामयाब होना चाहता है तो जैसे अहमद जी ने कहा, शिमोन ने कहा या रईस जी या और जितने लोग आए उन्होंने कमिटमेंट की बात कही या फिर टाइम मैनेजमेंट की बात कही, सुमी ने या फिर अभी जो हमारे साथ जुड़े समद, इन्होंने कहा. सबका कहना मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आती है बाहर तो उसमें स्ट्रॉन्गली दोनों चीज़ों का होना, इनकॉर्पोरेट करना, दोनों चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कमिटमेंट जो है वो बिना पंक्चुअलिटी के भी कई बार अधूरा रह जाता है. अब आप कमिटेड तो हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लेकिन आप टाइम पर जो टाइम दिया उस पर डिलीवर नहीं कर पाए. मान लीजिए आप कमिटेड रहे लास्ट में उसकी प्रेजेंटेशन थी या लास्ट में उसको डिलीवर करना था, उस टाइम पर आप नहीं कर पाए. या मान लीजिए आप बहुत कमिटेड एम्प्लॉई हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं लेकिन आज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ आपको मिलना है, आप टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचे. सोचिए आपका इंप्रेशन कैसा होगा, किस तरह का इंप्रेशन होगा. लोग ये समझेंगे अरे ये तो सिंसियर ही नहीं है. अब क्योंकि कहीं ना कहीं पंक्चुअल ना होना आपकी सिंसियरिटी को भी जज करने लगता है. तो पंक्चुअलिटी क्लॉक के साथ तो जुड़ी है लेकिन कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर के साथ, आपके क्लॉक को, आपकी सिंसियरिटी को, आपकी बहुत सारी चीज़ों को

वो भी दिखाता है. पंक्चुअलिटी एक चीज जो सबसे हाईली मैं कहूंगी इस चीज को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहीं ना कहीं पंक्चुअल इंसान जो है वो अपना एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है. ठीक है, आपके कमिटमेंट से आपकी रेपुटेशन बनती है, लेकिन ऑफ कोर्स पंक्चुअलिटी से लोग इंप्रेस होते हैं. अब हम और आप जो है वो ज़्यादातर अपना वोट जो है, या ये कहिए कि अपना जो हमारा थोड़ा साइड हम जिसकी तरफ लेंगे वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की ही तरफ होती है. लेकिन मैं कहूँगी कि कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी दोनों में किसी चीज़ को एक को पिक करना चाहे तो ये तो वाकई काफ़ी चैलेंजिंग और बड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पंक्चुअलिटी जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी के बाद ही कमिटमेंट आपके एक्शंस में नज़र आता है. पंक्चुअलिटी कई बार जो है वो दूसरे पर बिना कहे ही इंप्रेशन डाल देती है. किसी जगह आपको पहुंचना था, आप एकदम वक्त पे पहुंचे हुए हैं, आप वहाँ खड़े हैं, आपने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन लोग आपको दिली दिल अप्रिशिएट करते हैं. ये देखो कितना पंक्चुअल है, कितना अच्छा है, इसको मतलब इसको अहमियत है हमारी इस चीज़ की. ये इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी पंक्चुअलिटी दिखाती है. अब लोग कहते हैं कि देखिए पंक्चुअलिटी तो मेजर हो जाती है, लेकिन कमिटमेंट उस तरह से मेजर नहीं होता. पंक्चुअलिटी ऑफ कोर्स मेजर हो जाती है कि आपने किस मीटिंग को किस टाइम पर अटेंड किया, किस डेडलाइन को मिस किया या कंप्लीट किया, लोग आपका इंतज़ार कितनी बार करते थे, कितनी बार आप लेट पहुँचे, या क्या आप जो है आप पर टाइम सेंसिटिव टास्क जो है उसके लिए भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी से मेजर हो जाती हैं. अगर किसी वजह से मीटिंग डिले हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट लेट हो गया, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है. तो ये कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी के साथ जुड़ा है. ठीक है, आप कमिटेड थे, आपने बहुत कुछ किया, बट पंक्चुअल ना होने की वजह से कैसा इम्पैक्ट आया, बहुत ही नेगेटिव. वहीं पर कमिटमेंट को लोग कहते हैं कि उस तरह से नज़र नहीं आता, उसे मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो नंबर्स में नहीं, रेपुटेशन में ज़्यादा नज़र आता है. और ये बात सच है, इसीलिए मैं कहूँगी कि दोनों ही चीज़ों की इक्वली इम्पॉर्टेंस है. पंक्चुअलिटी आपके अंदर इफिशेंसी क्रिएट करती है, वहीं कमिटमेंट आपके अंदर रिलायबिलिटी को क्रिएट करता है. और इफिशेंट और रिलायबल होना हम सब चाहते हैं. पंक्चुअलिटी का इम्पैक्ट मिनट्स में मेजर हो सकता है, कमिटमेंट का इम्पैक्ट रिजल्ट्स में और रिश्तों में नज़र आता है. एक पंक्चुअल इंसान जो है वो वक्त बचाता है, ना सिर्फ अपना, दूसरे का भी वक्त बचाता है, और इस तरह से वो वक्त को क्रिएट कर रहा है. जब आप वक्त क्रिएट कर पाते हैं तो आप क्रिएटर कहलाते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. शायद असल कामयाबी पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट के बीच सही चॉइस करने में है, लेकिन मैं कहूँगी कि असल कामयाबी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स बनने में है. और जब हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल शख्स बनना, तो उसमें पंक्चुअलिटी पहले आएगी, फिर आपका कमिटमेंट आएगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी. तो आप अगर चाहते हैं कि लोग आपको कामयाब कहें, लोग आपको पसंद करें, तो इन सारी चीज़ों पर और सबसे पहले पंक्चुअलिटी पर काम कीजिए. बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी इस चीज़ों को अपनाइए. यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी हैं, अब इस टॉपिक को एंड भी करने वाले हैं और जल्दी जल्दी उन मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे सलाम कहा है और इनका नाम है तारिक, और ये फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं मैम बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, और शायद आप, हाँ जी अब मैं आफ्टरनून में जा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर भी जुड़िए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहिए, तो वहाँ भी आपको जुड़ना है मेरे साथ. अच्छा, यहाँ पर सलाम कहा है एंड बहुत सारी दुआएँ इन्होंने भेजी हैं. इनका नाम है गुल नफीस जी, थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत से मैसेज के लिए. अच्छा, बहुत टाइम के बाद मुबीन बुखारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सभी को सलाम कहते हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. उम्मीद कर रहे हैं मुबीन जी आप खैरियत से होंगे. आज बहुत टाइम के बाद आपका मैसेज देखा. नाजिया जी, कमिटमेंट बहुत होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे इंसान में एक जिम्मेदारी को निभाने की आदत आती है, और कमिटमेंट होना बाद में उसको पूरा करना भी ज़रूरी है. कमिटेड हो और बाद में उसे पूरा करो, ये बहुत ज़रूरी है. पंक्चुअलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट लेस देन द कमिटमेंट. यूसुफ खान जी, हाँ ये ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि पंक्चुअलिटी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पंक्चुअलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ गेम चेंजर. कई बार आप इतने कमिटेड हैं, जैसे मैंने कहा आपने उस काम को बहुत कमिटेड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया, बट जब आपको प्रेजेंट करना था उस वक्त आप पंक्चुअल नहीं हैं, या देर से पहुंचते हैं, या टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप
की

आपकी इंप्रेशन, आपके रेपुटेशन, इस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता ही पड़ता है. बिलीव मी, लोग ये फौरन ही, क्योंकि बाद की बात तो बाद में, जब आप आएंगे, जब बोलेंगे, जब कहेंगे, कहेंगे पहला क्या इंप्रेशन पड़ा. हमने एक बार फर्स्ट इंप्रेशन की भी बात की थी ना, तो पहला क्या पड़ा, पहला तो यही पड़ा, अरे ये तो लेट है. और कई बार अगर आप पंक्चुअल नहीं होते तो लोग आपको लेस कमिटेड भी समझते हैं, ये इंप्रेशन भी पड़ता है. और इस बात पर भी कभी ना कभी वक्त निकाल के थोड़ा सा गौर कीजिएगा. यहाँ पे सलाम कह रहे हैं नाजिया मैम, गेम का टाइम है, हमें फ़ोन लगाए. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब गेम हम स्टार्ट करने वाले हैं. बस बिल्कुल, अब इसको यहाँ पे हम क्लोज ही कर रहे हैं. पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट गो हैंड इन हैंड, ये बात बिल्कुल सही कही. और इनका नाम जो है वो नहीं है, पता नहीं इन्होंने अपना नाम यहाँ पर नहीं मेंशन, रिबाक है इनका नाम आई थिंक, नहीं भी आप अपना नाम बताइए. बट या इट्स ट्रू, पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट दे बोथ गो हैंड इन हैंड. अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कामयाब हों तो पंक्चुअल भी रहिए, कमिटेड भी रहिए. और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कमिटेड हूँ पंक्चुअल नहीं हूँ तो चल जाएगा, नहीं नहीं, पंक्चुअल भी होना बहुत ज़रूरी है और कमिटमेंट भी. पंक्चुअलिटी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर आती है, और कमिटमेंट भी आपकी लाइफ में आपको पुश करता है टुवर्ड्स पंक्चुअलिटी. सो जैसे हमारे लास्ट ये एक मैसेज जो मुझे दिया, भेजा है उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात की, दे बोथ गो हैंड इन हैंड. और जैसे आप सब ने कहा, अगेन कमिटमेंट थोड़ा बड़ा है और उसके ऊपर ज़्यादा ही हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा उसकी साइड ले भी रहे हैं. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंक्चुअलिटी को बिल्कुल साइड में रख दें. पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि आप कमिटेड हैं लेकिन पंक्चुअल नहीं हैं, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएं. तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लाइफ में मिस करें. तो आप अपने अंदर अगर पंक्चुअलिटी ला रहे हैं, दैट्स एक्सेलेंट, और लाने की कोशिश कीजिए, ये पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में. चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं. अब वापस आएंगे तो आज का हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज प्लीज प्लीज आप हमारे साथ जरूर जुड़िए. नंबर है 666-22-107, यहाँ पर आप मुझे हाय हेलो लिखकर भेज सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप गेम खेलना चाहते हैं. आज भी गेम हमने सिंपली रख रखा है, कुछ वॉइसेस होंगी जो मैं आपके लिए प्ले करूंगी, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा. उन वॉइसेस को आपको पहचानना है, जो जितनी मैक्सिमम पहचानेगा उतना उसका स्कोर होगा. सो गिव योरसेल्फ अ ट्राई. नंबर 443-443-77, इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. फिलहाल के लिए बढ़ रहे छोटे से ब्रेक की तरफ, और बने रहिए हमारे साथ सुनते हुए शो समर मॉर्निंग्स.

0: गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, हूँ नासिया आपके साथ 8:37 एंड हमें यहाँ पर सरफराज जी ने कहा था कि आप मुझे कॉल लगा लीजिए, तो मैं बहुत मैंने खुशी खुशी उन्हें कॉल पे लिया है। चलिए बात कर लेते हैं।
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैम, क्या हाल चाल है यार?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब खैरियत है। आप बताइए कहाँ हैं और सब ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
1: लाइफ में थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है मैम।
0: ओह
1: जी, आपकी की तबीयत सही नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं।
0: ओह
1: उनका बस। हेलो,
0: जी जी आ रही है आपकी? आ रही है
1: जी जी जी। तो लीवर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं, बस उसी में दिमाग डिस्टर्ब है थोड़ा।
0: ओहो, अच्छा अच्छा
1: जी।
0: चलिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा, परेशान ना हो इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: तो अभी तो मुझे समझ जी जी, इसीलिए आपने हाँ अच्छा अच्छा नहीं हम समझ सकते हैं। तो आप खेल पाएंगे, गेम खेलेंगे आप? क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आपने बता दें।
1: मैं गेम खेलूंगा क्योंकि इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह की मर्जी से बेहतर होगा।
0: इंशाल्लाह
1: थोड़ा जो है कि मैं सोचा बात करें, थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जी जी जी बस वही बात है।
0: नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, सबकी दुआएं साथ में, इंशाल्लाह बेहतर होगा और अच्छा होगा, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें बताइएगा भी प्लीज, है ना, हम लोग फिर पूछते भी रहेंगे आपसे और आप हमें बताइएगा भी तबीयत के बारे में
1: इंशाल्लाह।
0: चलिए तो आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ। 30 सेकेंड्स आपके पास होंगे, कुछ वॉइसेस आपको मैं प्ले करूंगी, आपको पहचाननी है। नहीं समझ में आया तो आप जल्दी से मुझे बोलिएगा पास, तो मैं दूसरी तीसरी इस तरह से आगे बढ़ती जाऊंगी, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। और आपका टाइम स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही,
2: चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है।
0: चलिए नेक्स्ट।
3: तुम चलो यार, मुझे जरूरी काम है। दूर की सोचते हो, अच्छा चलता हूँ, कल मिलूंगा।
4: अच्छा
1: पास।
5: मैं सर मानव श्रीवास्तव, ये आदित्य श्रीवास्तव।
6: आदि आदि
5: एंड योर गुड
1: नेम।
0: बिल्कुल सही।
7: डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है।
0: बिल्कुल सही।
8: क्या मतलब है, क्या तुम भी मेरी तरह चांदनी रात में चांद को देख के मुझे याद करती हो? उससे शादी का वादा नहीं किया और तुम्हारे
9: ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन, अगर मैं होता तो माल यहाँ तक पहुँचता ही नहीं।
1: अमिताभ बच्चन।
0: नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं है। वापस से सुनिए, शायद आप पहचान लें।
9: ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन, अगर मैं होता तो माल यहाँ तक पहुँचता ही नहीं।
0: कुछ समझ में आया? नहीं पहचान में आया। आपने पहचान लिए जावेद जाफरी, आपने पहचान लिया, और आपने अमिताभ बच्चन पहचाना था, राइट?
1: जी, परेश रावल।
0: एंड परेश रावल, तो वाओ, नॉट एट ऑल बैड, आपने 3 का स्कोर किया एटलीस्ट, कुछ नहीं से कुछ सही, ये तो बड़ी बात है। तो आपने कम से कम 3 वॉइसेस पहचानी, सो नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मुझे पता है आप मेरे से डिस्टर्ब भी हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपने टाइम निकाला, आप मेरे साथ जुड़े, ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। आपकी अम्मी के लिए हम सब दुआ करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा और आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। All right, so वाकई हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें इनकी अम्मी के लिए दुआ करनी है और सब करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी और इनकी अम्मी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, कौन है मेरे साथ?
10: जी मैम, मैं मकसूद अली बोल रहा हूँ।
0: मकसूद अली जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
10: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये मान

0: के चलूं कि आप गेम खेलने वाले मेरे साथ है ना मैं आपके साथ गेम खेलूंगी नहीं करूंगी नहीं गेम हम मिलके खेलेंगे ऐसे करेंगे
1: ठीक है मैम
0: तो कुछ वॉइसेस आपके लिए हैं प्ले करना मुझे और 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा आपको पहचाननी है जितना ज्यादा पहचानेंगे उतना आपका स्कोर है ठीक है
1: ठीक है
0: ना ठीक है चलो जी ऑल द वेरी बेस्ट आपको और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
2: चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की चोरी चोरी है
0: नहीं
3: तुम चलो यार मुझे एक जरूरी काम है वेरी
0: बिल्कुल सही जितेंद्र सही
4: मानव श्रीवास्तव ये आदित्य
5: श्रीवास्तव
0: बिल्कुल सही
6: डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन
0: सही
7: क्या मतलब है क्या तुम भी मेरी तरह अंधी रात में चांद को देख के मुझे
0: बिल्कुल सही क्या बात है
8: अगर मैं होता तो माल यहाँ तक
0: बिल्कुल सही
9: अरे तुम्हें कैसे पता चला उसने तो काले चश्मे पहने रखे थे हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के इसलिए मैं दिखता हम दिखते कैसे बात नहीं लगते
0: कॉमेडियन है बिल्कुल सही बताइए बताइए इनका नाम फिर से सुनिए इनके पास
9: अरे तुम्हें कैसे पता चला उसने तो काले चश्मे पहने रखे थे हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के इसलिए मैं दिखता हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं लगते
0: चलिए बात नहीं फिर भी आपने अमेज्ड उमर शरीफ की आवाज पहचानी आपने उमर शरीफ पहचाना अमिताभ बच्चन जावेद जाफरी जितेंद्र पहचाना हाँ तो इस तरह से आपका 4 का स्कोर हुआ चार अपने चार ही पहचाने ना हाँ एक के बीच में तो नहीं पहचान हाँ 4 वॉइसेस आपने पहचाने हैं ये आप नहीं पहचान पाए थे 2 लास्ट के तो चलिए खैर फिर भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया अच्छा खासा मकसूद जी आप पहचाना और उमर शरीफ को जो आपने पहचाना और जितेंद्र की जो पहचानी मैं बहुत खुश हुई मैंने वाह ऐसा तो नहीं कि टफ में वॉइसेस ले बट आपने पहचान के साबित किया नहीं उतनी टफ नहीं है थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अपना ख्याल रखिएगा जी ओके ओके जी अल्लाह हाफिज़ तो अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बताइएगा दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि हाँ 4 का स्कोर था बाकी अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं हेलो
10: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अजहर जी कैसे हैं
10: आप कैसे खैरियत से
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हूँ उम्मीद कर रही हूँ कि आपका भी दिन जो है वो बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा
10: अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआएं के लिए इंशाल्लाह मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह पाक से कि आपका आज का दिन है जब तक हमेशा जो है ना आपकी साथ रहा रहे जब तक हमेशा आपका दिन हमेशा जो है ना अल्लाह उनकी बारगाह में खूबसूरत दिनों में गुजरे अल्लाह आपको
0: आमीन और आपके लिए भी यही दुआ हमारी
10: जी और सबसे पहले एक बात ये बोलता हूँ अभी जो भाई कॉल कर रहे थे सरफराज भाई अल्लाह पाक जो है ना उनके वालदा को जो है ना सेहत और आफियत दे शिफा दे हर बीमारी हर बलाओं से जो है ना अल्लाह उनको बचाए अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर का मामला करे इंशाल्लाह रब्बुल
0: इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ कीजिएगा और परेशान है वो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे
10: अल्लाह मुकद्दर तकदीर में जो है वही होता है अपन परेशान होने से नहीं परेशानी से अच्छा ये है कि जो है ना 2 रकात सलातुल हजरत की नमाज पढ़ना है उनके हक में दुआ
0: बिल्कुल बहुत सही
10: बहुत बड़ी
0: सुकून भी मिलता है
10: बेशक बेशक बेशक इंशाल्लाह लेकिन अक्सर क्या है लोग परेशानियों में मतलब यही रास्ता छोड़ देते
0: परेशान हो जाते हैं तो समझ पे नहीं आता
10: जहाँ पे जी क्योंकि अल्लाह ताला परेशानियां देने का मकसद ही ये है कि आओ मेरे पास मेरे से मांगो मैं तुम्हारे पास जो है ना हर चीज का करम और रहम करने वाला हूँ मेरे पास आओ मेरे को सजदा करो मेरे से मांगो बोलने वाला है अभी अब जैसे कि मैं आपसे बात करते करते आपको अगर कुछ गलत बात बोल दिया यानी एकदम बैडली रूडली वेरी बैड वर्ड बोल दिया तो नाराज हो जाते आप गलती हो गई माफ नहीं करते आप लेकिन अल्लाह ताला जो ना हजारों गलतियां करने के बावजूद भी दुआ खुला है कि आओ मेरे बारगाह में माफी माफ करने वाला हूँ मैं हूँ
0: बिल्कुल सही कहा आपने ये तो है
10: आप सबके साथ खैर का मामला करें आज आए तो उसको गेम भी खेल लेंगे इंशाल्लाह
0: चलिए आज आपके समझो है वो गेम स्टार्ट करते हैं कुछ वॉइस
10: जीरो हो गया था
0: नहीं जीरो नहीं कहते हैं जीरो कुछ नहीं होता है कल आपने पार्टिसिपेट किया था आज आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ऐसे बोलिए ठीक है
10: चलिए
0: इंशाल्लाह तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
8: काम इस लड़के ने किया है
10: अजय देवगन
0: अरे बिल्कुल सही क्या बात है
9: अरे तुम्हें कैसे पता चला उसने तो काले चश्मे पहने रखे थे हम सबके चेहरे
0: बिल्कुल सही राजपाल इज द राइट आंसर
11: सॉरी मैम अरे भाई रात भर एक छोटी सी नाव में बैठकर जागता रहा
5: शाहरुख खान उनका भी नहीं है देखिए जिन बच्चों की मां बचपन में गुजर जाती है फिर वो थोड़े बिगड़ तो जाती है ना मैंने अपनी तरफ से मां और बाप दोनों का
0: बिल्कुल सही
11: सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे क्या आपके घर में चिंटू
10: है
0: बिल्कुल सही
12: घटिया अरे इतना घटिया कैसे ने शायरों की घटिया घटी कर दी ख्याल घटिया कलाम घटिया न रदीप न बदन पहले है शायर बनने
0: कौन है
10: पास पास ये उसमें है ना ये क्या नतुलाल मुझे नाम याद नहीं
0: नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि टाइम पास टाइम अप हो गया यहाँ पर आपने अजय से ही पहचाना राजपाल से ही पहचाना कादिर खान से ही पहचाना जॉनी लीवर आपने से ही पहचाना इस तरह से हाँ देखिए क्या बात है आज आपने चार का स्कोर किया सारे के सारे नए थे सारे नए ही यहाँ पे मैंने ऑडियो प्ले किए थे और आपने पहचाना अजय देवगन को आपने पहचाना ये बड़ी बात है क्योंकि उसको थोड़ा सा लोग कंफ्यूज पहचान नहीं पा रहे थे उस तरह से बट आपने पहचाना बहुत अच्छा खेला देखिए ये होता है फर्क कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है अरे हम तो ये भी कर सकते हैं हम जब ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हम क्या क्या कर सकते हैं तो ये
10: मैं बोला आज चलो आज नाजिया जी के सामने थोड़ा बहुत हमारी हिम्मत तो दिखाएंगे बोल के हम आगे बढ़े आज
0: बहुत अच्छा किया माशाल्लाह
10: लेकिन ये सबसे पहले आपकी हिम्मत थी यानी आप हमारे को जो ना पुश करेंगे जाओ उस पार्टिसिपेट करो आज हम मैदान में उतरे अल्हम्दुलिल्लाह जीत हासिल हुई हमारी इसमें आपका भी हिस्सा है इसमें
0: नहीं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल एकदम कल से आज का आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आपने किया और आपने ट्राई किया ये देखिए खेल मकसद नहीं है मकसद क्या है कि हम अपने फियर से बाहर निकलें हम जिन चीज़ों से डरते हैं घबराते हैं उनको उन चीज़ों से बाहर आएं खुद को चैलेंज करें लाइफ में ये यहाँ पे हार जीत कोई मायने नहीं रखती लेकिन लाइफ के किसी मोड़ में कभी ना कभी जब आप झिझक रहे हो परेशान हो और फिर आपको ये याद आ जाए कि नहीं मुझे एक बार ट्राई तो करना है वहाँ मेरी कामयाबी है वो मैं कहूँगी कि मैं जीती हूँ वहाँ पर तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हम सब इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करें और प्रिपेयर करें यही हमारा मकसद है सो थैंक यू वंस अगेन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और आपके हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया अपना ख्याल
10: रखिए
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाह हाफिज़ ऑलराइट अभी तक का हाईएस्ट मैं कहूँगी 4 ही चल रहा है तो देखते हैं कि कोई 4 से ज़्यादा आज स्कोर कर पाता है कि नहीं एंड वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर हेलो यूसुफ जी फाइनली आज आप आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप बताइए कैसे हैं आप तो आपका आपके साथ गेम स्टार्ट करें
13: जी
0: ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट और आपका टाइम स्टार्ट होता है
13: आप
12: घटिया अरे इतना घटिया कैसे ने शायरों की घटिया
0: बिल्कुल सही
14: सॉरी मैम अरे भाई रात भर एक छोटी सी नाव में बैठ कर
15: जानती हो अंजलि जब तो मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे
0: सही
16: कान खोल कर सुन ले अब उस मूर्ति का रखवाला बिरजू है
0: सुनील
17: झुंड में तो सुअर आते हैं शेर अकेला ही आता
18: है
0: राइट आंसर
19: अजी दुश्मनों के हाथ से दवा पी पी कर ही तो अच्छे हुए हैं आप
16: झूठ
19: अपने घर वालों से पूछ लो
0: यहाँ पे टाइम भी पास होता हुआ तो आपने ओम प्रकाश पहचाना सुनील शेट्टी सुनील दत्त रजनीकांत 1, 2, 3 and 4 आज कुछ खास है
13: वो लास्ट वॉइस थोड़ा प्ले कर सकते हैं वो जो हीरोइन तनुजा तो नहीं थी
0: नहीं तनुजा नहीं थी
13: जस्ट सुनना चाहता और वो शाहरुख खान ही है वो जो
0: नहीं
13: नाव में जो
0: बात नहीं वो नाव में शाहरुख खान नहीं है वो नहीं है वो
13: देवदास फिल्म का है वो
0: ना
13: जाता है
0: हाँ फिर सुनिए वो
13: जी जी
0: अब वो मैं कल यूज कर लूंगी ना
14: सॉरी मैम अरे भाई रात भर एक छोटी सी नाव में बैठ कर जाता रहा और तुम एक चाय के लिए सिर्फ एक चाय
13: नहीं शाहरुख नहीं समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके
0: चलिए ट्राई करिएगा कल फिर मैं बताऊंगी ये साउथ के एक्टर हैं उनकी वॉइस है कोई बात नहीं फिर भी एक साउथ के एक्टर हैं उनकी वॉइस है ये शाहरुख खान से मिलती जुलती कह सकते हैं हम लेकिन ये उनकी वॉइस है उन्होंने बकायदा यहाँ पे मिमिक की है
13: लास्ट वाला था ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का वो शायद मतलब पुरानी एकदम बेहद

0: पहचान नहीं पहचान पाए थे वो,
1: और फर्स्ट वाइज थी वो क्या शशि कपूर की थी, वो नहीं पहचान पाए थे।
0: हाँ वो फर्स्ट वाइज नहीं पहचान पाए थे। तो चलिए भाई आज के हमारे विनर मकसूद जी हैं, थैंक यू सो मच। ये होती है बात कि भाई आए और बताए भी कि नहीं मैं विनर नहीं हूँ, अकेले ये विनर है। थैंक यू सो मच। हो सकता है कि मेरे काउंट करने में सुनने में वो हुई, मुझे लगा था कि देवगन ने उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा पता नहीं शायद उन्होंने नहीं बताया, पर थैंक यू।
1: नहीं नहीं,
0: तो इस तरह से आज के तो विनर 5 के स्कोर के साथ मकसूद जी ही हैं। क्या बात है, जबरदस्त। कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नए चैंपियंस भी हमें मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि फिर और जो चैंपियंस हैं वो ट्राई ना करें, तो आप कल भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू वंस अगेन, यू टू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, सो आज का तो कोटा यहाँ पर पूरा होता है और आज के हमारे इस गेम के चैंपियन निकले हैं मकसूद जी, जो कि बहुत ही काइंड थे और उन्होंने कहा नहीं हाँ ठीक है चलिए, फोर हुआ तो फोर ही सही, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने करेक्ट किया। और किसी और ने भी मुझे यहाँ पर बताया कि मकसूद भाई ने अजय देवगन ऐड नहीं किया था। लो मोहम्मद जी तो ये बोल रहे हैं, अजीब सा कंफ्यूजन हो रहा है। जसविंदर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड यहाँ पे मैसेज हमें है पीएस का, थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगता है मैम आपको सुन के, थैंक यू आपकी आवाज़, थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इनका खान है नाम, थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और यहाँ पर हमें मैसेज है वजाहत जी का गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड थैंक यू सो मच। वेल इसी के साथ अब वक्त आपसे इजाज़त लेने का इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल आपकी और मेरी मुलाकात होगी सुबह 6 बजे इसी शो में जिसका नाम है समा मॉर्निंग्स। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

सती सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया गया। खलीज टाउन कौंसिल की आला कमेटी ने कल कौंसिल की सुप्रीम कौंसिल के 19वें मुशावरती इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए इजलास मुनक्किद किया। और मस्जिद अक्सा के खतीब ने अरब और इस्लामी ममालिक से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा और तमाम मुकद्दस मकामात के तहफ्फुज़ के साथ अल-कुद्स और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में औकाफ की इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए अपनी कोशिशें मुत्तहिद करें। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समाप्त कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: यूक्रेनी सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस को बहर अस्वद के जरिए जरी मसनूआत ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए जंगबंदी की तजवीज़ दी थी, ताहम मॉस्को ने उसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो अपनी तनसीबात पर होने वाले हमलों के बाद जमानतें चाहता है। हालिया हफ्तों के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और दोनों जानिब से बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमलों का तबादला जारी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब जंग बंदी और मुजाकरात की बहाली के लिए अमरीका की क्यादत में जारी सफारती कोशिशों को मुश्किलात का सामना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी जंग के दौरान मुल्क में इलेक्शंस कराने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा करना इंतहाई ख़तरनाक होगा। साबिक यूक्रेनी वजीर दिफा मिखाइलो फेदरूव की जानिब से इंतखाबात कराने के मुतालबे पर रद्दअमल देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह की जंग के दौरान इलेक्शंस खुद एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे इंतखाबात सुनामी की तरह होंगे जो यूक्रेन को तकसीम कर देंगे। सामईन, खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइंस विद सरवर मिर्जा।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मशारे प्रॉपर्टीज़ ने दुनिया भर में मशहूर बिजनेस मैगजीन इनकॉर्पोरेटेड अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस तआवुन के तहत मशारे डाउनटाउन दोहा में बिजनेस और इनोवेशन से मुतालिक मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस कदम का मकसद कतर को खित्ते में एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और बिजनेस नेटवर्किंग के एक अहम मरकज के तौर पर मजबूत बनाना है। कतर चैम्बर ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डे के मौके पर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट टू एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट के उनवान से एक डायलॉग सेशन का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम यंग एंटरप्रेन्योर्स सेंटर के तआवुन से मुनक्किद हुआ, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स माहिरीन और कतर के एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम की हिमायत करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेशन के दौरान कारोबारी अफराद को दरपेश अहम चैलेंजों और नए मौकों पर तफसीली बात करने का मौका मिला। अदर स्टॉक एक्सचेंज ने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के लिए रैंडमाइज्ड अनक्रॉसिंग मैकेनिज्म या बेतरतीब ऑर्डर मैचिंग का तरीक़ेकार नाफिज करने का ऐलान किया है। QSE के मुताबिक ये कदम मार्केट को ज्यादा मुनज्जम, शफाफ और मुनसफाना बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इदारे ने कहा है कि ये कदम बैनुल अक्वामी बेहतरीन रवायात और मार्केट इंटीग्रिटी से मुतालिक IOSCO के उसूलों के मुताबिक है, जिससे कीमतों के शफाफ तायुन को फरोग मिलेगा। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 5.73 पॉइंट्स या 0.06% के इजाफे के साथ 9688.3 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 14,805 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 32 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 5 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइजेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
3: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में अलविदा और अलगराफा ने 2026-2027 कतर स्टार्स लीग के सेकंड डिवीजन का अपना पहला मैच लुसेल स्टेडियम में 1-1 गोल्स के ड्रॉ के साथ खत्म किया। कतरी स्काई ड्राइवर सोले अल अबीदी ने स्लोवाकिया में 48th CISM वर्ल्ड मिलिट्री पैराशूटिंग चैंपियनशिप के सीनियर इंडिविजुअल एक्यूरेसी लैंडिंग कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता। कतर की अंडर 23 वुमेन्स 3 बास्केटबॉल टीम सिंगापुर में फीबा बाय 3 यूथ नेशंस लीग 2026 एशिया वेस्ट पैसिफिक के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने में नाकाम रही।

0: कतर की अंडर 19 हैंडबॉल टीम ने 11th एशियन मेंस यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में अपना परफेक्ट रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए इस इतवार को ईरान को 22 के मुकाबले में 24 पॉइंट से हरा दिया। ये ग्रुप बी में कतर की लगातार तीसरी जीत थी। और कोलंबो में जारी दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट्स के नुकसान पर 389 रन्स बना लिए हैं। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज़ हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज़ हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुबारकबाद का तहनियती पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कल कतर के दौराए जर्मनी की वफाकी वज़ारत दिफा के रियासती सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हल पर तबादला ख्याल किया गया। खलीज टाउन कौंसिल की आला कमेटी ने कल कौंसिल की सुप्रीम कौंसिल के 19वें मुशावरती इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए इजलास मुनक्किद किया। मस्जिद अक्सा के खतीब ने अरब और इस्लामी ममालिक से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा और तमाम मुकद्दस मकामात के तहफ्फुज के साथ अलकुद्स और फलस्तीन के दीगर इलाकों में औकाफ की इमलाक के तहफ्फुज के लिए अपनी कोशिशें मुत्तहिद करें। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन नूर और न्यूज स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। तो रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सुन्नत के हवाले से कि गलती करने वाले को फौरन जलील या रुस्वा करने के बजाय नरमी, हिकमत और आसानी के साथ किस तरह इसलाह की जा सकती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया, लोग उसकी तरफ बढ़े ताकि उसे डांटे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो और पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या बड़ा डोल बहा दो, क्योंकि तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के वास्ते भेजे गए हो और तुम्हें तंगी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है और अल्फाज बुखारी के हैं। सबरिकराम, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए। अगर उसे अचानक डांट कर दरमियान ही में रोक दिया जाता तो मुमकिन था कि वो घबरा जाता, नजासत मस्जिद के ज्यादा हिस्से में फैल जाती, उसे जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता था। और एक ऐसा शख्स जो अभी दीन के आदाब से नावाकिफ था, उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सख्ती का तसव्वुर पैदा हो जाता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खराबी को रोकने के लिए एक महदूद गलती को मुकम्मल होने दिया। यही हिकमत है कि सिर्फ बुराई देखकर रद्दअमल देना हिकमत नहीं, बल्कि ये देखना भी हिकमत है कि उस बुराई को किस तरीके से रोका जाए ताकि मजीद बड़ा नुकसान पैदा न हो। सहाबा इकराम जब उसकी तरफ लपके, उसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊ, उसे छोड़ दो। जब वो शख्स फारिग हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, जगह पर एक डोल पानी बहा दो। बस मसला हल हो गया, न हंगामा, न उसे सबके सामने जलील करना, नजासत को पानी से साफ कर दिया गया और गलती करने वाले को तालीम दे दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो दावत और तरबियत का पूरा उसूल अपने अंदर समोए हुए है, फइन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलम तुबअथु मुअस्सिरीन, यानी तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने वाले नहीं। यानी दीन का मिजाज आसानी है, दीन जलील करने के लिए नहीं आया। हमारी एक बड़ी कमजोरी यह है कि किसी को गलत काम करते देखते ही हम उसके बारे में फैसला कर लेते हैं कि ये बदतमीज है, ये दीन का एहतराम नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे मालूम ही ना हो, वो बच्चा हो, किसी मुख्तलिफ माहौल से आया हो या उसे सही मसला किसी ने सिखाया ही ना हो। समय क्रम अगर बच्चा गलती कर दे तो हमारा पहला रद्दअमल क्या होना चाहिए? चीखना, डांटना, सबके सामने शर्मिंदा करना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया वालिदैन को सिखाता है कि बच्चे की गलती को इसलाह का मौका बनाएं, उसे खौफ ज़दा न करें बल्कि बताएं ये काम दुरुस्त नहीं और सही तरीका ये है। बच्चा डांट से वक्ती तौर पर तो रुक सकता है, लेकिन

0: मोहब्बत से दी गई तालीम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर अगर कोई शख्स एक गलत लफ्ज़ लिख दे, कोई मसला गलत बयान कर दे, तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, नाम लेकर रुस्वा करते हैं। बाज़ औक़ात इस्लाह से ज्यादा खुशी इस बात में महसूस होती है कि दूसरे की गलती सबको दिखाई जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसके बरअक्स था। मकसद ये था कि गलती खत्म हो, ये मकसद नहीं था कि गलती करने वाला खत्म हो जाए। हाँ, यकीनन हालात मुख्तलिफ होते हैं। जो शख्स जानबूझकर फसाद करे, बार बार समझाने के बाद भी दूसरों के हुकूक पामाल करे, या ऐसा मामला हो जहाँ फौरी तौर पर नुकसान रोकना जरूरी हो, वहाँ मुनासिब सख्ती की जरूरत हो सकती है। लेकिन जहाँ जहालत और लाइल्मी हो, वहाँ असल तरीका तालीम और नरमी है। समझने कराम, हो सकता है एक सख्त जुमला किसी को बरसों के लिए दीन से दूर कर दे, और हो सकता है एक नरम जुमला किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के दिल जीते, फिर उनके आमाल बदले। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी, हिकमत और शफ़क़त अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती, बल्कि हमारे ईमान की खुशी बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर चेस एसोसिएशन और कतर की आर्बिटर सारा अल मोहनदी। पहले तो आपको बता दूं कि आर्बिटर होता क्या है। आर्बिटर जो होता है कि जैसे कि फुटबॉल में रेफरी है, क्रिकेट में अंपायर्स हैं, वैसे ही चेस में यानी शतरंज के खेलों में आर्बिटर की ज़रूरत होती है। और आर्बिटर जो है बेसिकली वो अंपायर का ही रोल अदा करते हैं। और यहाँ पर सारा अल मोहनदी एक नुमाया किरदार है जिन्होंने कतर चेस एसोसिएशन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आर्बिटर के नोबल बूते पर बहुत नाम कमाया है। कतर चेस एसोसिएशन ने हाल ही में ऐलान किया है कि सारा अल मोहनदी को फीडे की इंटरनेशनल आर्बिटर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और ये एक अहम कामयाबी है जो कतर में स्पोर्ट्स रेफरिंग स्किल्स की तरक्की को जाहिर करती है। सारा को इंटरनेशनल आर्बिटर का टाइटल उनकी सालों की मेहनत और लगन का नतीजा मिला है। उन्होंने कई मकामी अरबी और बैन अल-अक़वामी चेस टूर्नामेंट्स में आर्बिटर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके अहम इवेंट्स में 2023 कतर मास्टर्स ओपन, 2024 वर्ल्ड चेस ओलंपियड जो बुदापेस्ट हंगरी के शहर बुदापेस्ट में हुआ था, 2025 का एशियन मेंस और वीमेंस इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो यूएई के अल ऐन शहर में मुनक्किद हुई, और 2025 वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स टीम चेस चैंपियनशिप जो लंदन में हुई। इनमें ये सारे टूर्नामेंट शामिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में सारा और भी इम्प्रूव करेंगी और कतर का नाम रोशन करेगी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे इंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता एपिसोड में भी हमने एनजाइटी की बात की, आज हम बात करेंगे कि ये जो एनजाइटी है, बेचैनी है, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। मगर सबसे अच्छी खबर ये है कि मुनासिब इलाज और अच्छी आदत के जरिए बेचैनी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। रोज़ाना की जो आदतें हैं वो हमें तब्दील करनी है, और जैसे कि गहरी और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की एक्सरसाइज कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी कीजिए या कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। मुनासिब और पूरी नींद आप ज़रूर लीजिए। बैलेंस्ड डाइट का बहुत अहम किरदार है। चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर वालों और दोस्तों से बात कीजिए। नमाज, दुआ, जिक्र और मुस्बत सोच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कीजिए ताकि दबाव कम महसूस हो, और अगर ज़्यादा बेचैनी हो तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, माहिर नफ्सियात से आप कंसल्ट कीजिए, और इसी तरह से जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, CBT, अगर वो उसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर आप वो लीजिए। ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात भी आप लीजिए, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा बिल्कुल शुरू ना कीजिए। और अगर आपके घर में कोई बेचैनी का शिकार हो तो उसकी बात सुकून से सुनिए, उस पर तनकीद ना कीजिए। इसे डॉक्टर से रजू करने की तरकीब दीजिए। सब्र और मोहब्बत से उसका साथ दीजिए। लिसनर्स, याद रखिए कि जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है। अगर आप या आपके किसी अजीज को बेचैनी महसूस हो रही है तो खामोश ना रहिए, बर वक्त मदद हासिल करें। मुनासिब इलाज, अच्छी आदत और अहले खाना की हमायत से एंजाइटी पर काबू पाया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी और जहनी सेहत अता फरमाए। आमीन।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Hello and welcome to the show Kolkata Business 360. I'm your host, your dost, Nazia. Well, दोस्तों आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में हम एक बहुत ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ऐसे कहा जाए तो आप जो हैं वो गल्फ लाइट इलेक्ट्रिकल कंपनी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MD हैं, मैनेज डायरेक्टर हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें एक बागी की हैसियत से जानते हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त के कलाम से भी नवाजा जाता है, और मैं कहूंगी पर्टिकुलरली एक ऐसा इंसान जिसका हार्ट एकदम सोने का है, मैन विद अ गोल्डन हार्ट, एक बहुत ही कमाल के सोशल वर्कर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन। वी आर ग्लैड एंड एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर अस टू बी इन टू द ऑफिस ऑफ गल्फ लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स एंड एन ऑनर टू कनेक्ट विद द MD ऑफ Gulf Light Electrical Engineering, Mr. Sanaullah Abdul Rahman. We would love to welcome you on this episode of the Business 360 and of course on FM 107. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaise hain aap?
4: Alaikum assalam wa rahmatullah. I'm very fine.

0: Allah ka karam hai and thanks for this opportunity for interview and I'm really happy to see you Intikhab sahab yourself.
1: Sir, bahut shukriya, jazakallah. Hum jante hain ki aap bahut masroof hain, despite of that aapne hame waqt diya, truly means a lot to us. Jaise maine shuruaat ki ki aap khud apne aap ko nawazte hain ki main baaghi raha, meri zindagi ki shuruaat jo hai wo us note pe hui jahan main khud bhi nahi karna chahta tha. To hum sabhi ko, I think meri audience ko sabko ek dilchaspi hai khaas aapki zaati zindagi ko janna chahenge hum. To apni zaati zindagi ke bare mein bataiye, apni childhood days ke bare mein bataiye, aur kya hamesha se aapne socha tha ki aap jo hai wo businessman hi banenge?
0: Well, I born in average family, hand to mouth, but very royal. As my parents, my grandparents, and uncle, aunties, all very fine people, religious, moderate religious, and not fanatic at all. So I was very happy in my family. They pampered me because I was the only son. And uska result ye ho gaya ki main bigad gaya. Pampered bachche aksar bigad jate hain. जिद्दी हो जाते हैं. सो बट जो एक चीज मुझे जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरे अंदर थी, जो मेरी वालदा करती थी, कि यू आर वेरी वेरी वेरी इंटेलिजेंट और पढ़ाई पे ध्यान दो, शरारते और इस किस्म के चीजों से दूर रहो. सो आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी रही और इम्पेशियंस ही बहुत रही. सबसे गंदी आदत रही मेरी, जो बहुत ही सेंसिटिव रहा मैं, तो इनजस्टिस मुझे अच्छा नहीं लगता था. सिंस आई वाज लाइक 9-10 इयर्स उस जमाने से, या तो वो आया तो स्कूल में ही, जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, वो टर्निंग पॉइंट था मेरा. तो जस्ट आई यूज्ड टू सी दैट आवर टीचर वाज नॉट जस्टिफाइंग विद चिल्ड्रन, विद स्टूडेंट्स. ही वाज फेवरिंग टू बिग रिच पीपल, रिच चिल्ड्रन. In terms of work and all treatment, in all aspects. So I become very rebellious about this subject. And I was disobedient with teacher all the time. And one day I did like very sarcastic language and he became wild and he beated me like a dog. All my backside, my arm was, you know, like slashes with the bit. जो बेत का लकड़ी होता है, मतलब स्टिक.
1: तो उस टाइम अलाउड इस संस्था के मार लो? उस
0: टाइम में तो चलता था ये. आई एम नाउ 72-60 इयर्स बैक. एंड व्हेन आई वेंट होम, सो ऑल द इट वाज ब्लीडिंग एंड ऑल. सो माय ग्रैंड मदर वाज वेरी वेरी केयरफुल अबाउट मी एंड शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी. शर्ट निकाला भाई, लेट अस गो फॉर थॉट फॉर शावर एंड ऑल. एंड व्हेन शी सी इट वाज ब्लीडिंग, शी वाज शॉक. Who did this? How come? This is his teacher. On this spot, my mother and grandmother, we went to him and she has taught him a very nice lesson and came back. Doctor came, 15 days advised doctor like this, padhe raho. Wo 15 din mein sirf ek hi cheez soch raha tha, main kya karun main. I could not sleep. Said, why? Then I got, I think, curiosity of, I cured like in 15-20 days. I asked my mother, I says, why people are treating us like this? This is poverty. This is normal. Every poor man or woman, they are facing this subject. There's no justice, I swear. And those days, I was little, 10 years.
1: Very young.
0: So I said, there is a solution. She says, go for best station. She says, what do you mean? Okay. उस जमाने में इतने स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, 10 साल के बच्चे भी डम थे. एटलीस्ट आज भी फोर्थ में तू, तेरे को 20 स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा.
1: कितना पढ़ूंगा?
0: अल्लाह से डरो यार, बेटे मेरे पास फुर्सत नहीं अभी. तो बोले इसलिए कि आप इतनी ज्यादा तालीम, उतने सिविलाइज हो जाओगे, उतनी इज्जत मिलेगी, उतने आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी एंड यू कैन स्पेंड गुड लाइफ. बिकॉज शी वॉज डॉटर ऑफ ए बिग जमींदार, वेरी एजुकेटेड, वेरी सिंसियर बट वेरी स्ट्रॉन्ग. I say, so money is the ultimate. Yes, it's nothing. But chori chakari ka nahi. With due respect for yourself, you have to go for the education.
1: That's the only choice.
0: Believe me. Mm-hmm. Next day, I was with my cousin. I said, I would like to start business.
1: Strongly. How old were you at that time?
0: 10.
1: Just 10.
0: 10 years. Fourth standard. And he was mad because very zidhi.

0: ये नया क्या है ड्रामा भाई? ओके कम ऑन भाई, मेरे को चाहिए भाई, आई नीड मनी. ओके सो वी हैड नो मनी, वी यूज टू टेक पॉकेट मनी फॉर आना मेरे भाई पैसा, दैट्स ऑल. He brought me back to mother. He says, see, new drama now. What we have to do this boy? Ke itna paisa chahiye, kya business karega? Telling me, this is very important.
1: Yeah.
0: He said, we'll bring from town ice cream and what you call bakery product. We need 15 rupees. Like koi aaj 15 million puchega.
1: But at least you had this vision at that time ki main ye kar sakta hoon.
0: Yeah. So my mother was very passionate. She was knowing that ye aadmi
1: kuch to kare,
0: aadha ghuma hua rehta hai iska, kuch bola hai to wahi karega. So bole theek hai, this is 15 rupees. Mera jo cousin tha Muhammad, uska naam tha, and he did it. He start and he says, see, karna koi sharam nahi hai, you are from good family, but be careful, don't make cheating and all, or steal something and abuse people, don't do this, respect yourself. 1 month I earned 3 rupees net.
1: That time at the age of 10.
0: Yeah. And I hand over to my mother. She started crying. Upar wale kamale ye bacha. Wo din tha.
1: 15 mein ek
0: thi. Roz wo laake mein sell karta tha. Aur sare dost hai na, sab ladkiyan ladke. They used to find from that. I understood what is value of money and work. You have to work hard. Gradually she start to teach me. जैसे ग्रो करते जाते हो आप, मैच्योरिटी आते हैं. एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सिखाई मुझे, डोंट बिकम बॉस ऑफ फूल्स, डोंट बिकम बॉस ऑफ फूल्स, बी फ्रेंड और इंशाल्लाह स्लेवरी विद इंटेलेक्चुअल्स, विद इंटेलिजेंट. और स्कूल में जब तक हो टॉपर से दोस्ती रखो. सो इस तरह की जो चीज थी तो अचीवमेंट के लिए बहुत जरूरी था. सो बॉम्बे में मैंने 2 साल डिप्लोमा का रिवाइंडिंग एंड कंट्रोल्स का किया हुआ है. ओके और रात दिन में काम करता था. यहाँ पे आके शुरुआत की और मेरे ड्रीम था कि आई विल स्टार्ट माय ओन वर्कशॉप
1: जी.
0: सो बाद में
1: या
0: उसके बाद लॉक लग गया. मेरे चाचा यहाँ पे थे, सगे चाचा, जिस बड़ा किया था मेरे अब्बा हुजूर ने, बहुत छोटे थे उनसे. माय आंटी वाज कजिन and he was my dacha. My mother told, ये बिगड़ा बच्चा है, इसको लेके जाओ और रूंगा कुछ सिखा लो. तो ब्रिटिश एम्बेसी वगैरह से मैंने शॉर्ट टर्म किए हुए कोर्सेस, इंजीनियर पार्शियली होती थी, तो उसमें 8 साल निकल गए मेरे. बट आई लर्न लॉट, स्टार्टेड वर्किंग विद अल नासर, मिडमैक, BICC. ओके देन पार्ट टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पर प्रॉपर बिजनेस 98 में शुरू किया हमने. ठीक है, उसके बाद 1000 में बेटियां आ गई. सीमा इज लाइक माय राइट हैंड, शी इज वेरी प्रोफेशनल और बॉम्बे से पढ़ के आई थी, बिकॉज एज एवरीबॉडी नोज दैट माय वाइफ वाज विद चिल्ड्रन विद माय पेरेंट्स, दे वर सिक, तो बड़ी कुर्बानी दी थी मुझसे ज्यादा दिए और बच्चों को पढ़ाया. वहाँ पे हायर एजुकेशन पूरा करके फिर मास्टर्स वगैरह यहाँ पे करा दिए मैंने, उन लोगों को काम सीख गए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इन द शॉर्ट. उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा नहीं हम लोगों ने, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा तेज तरार है, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मास्टर्स की है, स्पेशलाइजेशन लिए हमने. फिर उसको जर्मन भेज दिया, इटली गई, शी ट्रैवल लॉट टू बिकम ए प्रोफेशनल. यहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, उनके नीचे काम किया, सीमा और सबिया दोनों ने काम किया, कैप्टन चेंज कर दिया ना उनकी, स्पेशलिस्ट में बना दिया लाइटिंग में उनको. बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए हमने, ह्यूज. सो MEP है हम लोगों की एंड ट्रेडिंग है, पावर ट्रेडिंग, लाइटिंग ट्रेडिंग, देन वर्कशॉप इंजीनियरिंग, जो ये बता रहा हूँ ये असली मेरा काम है. इससे लेकिन हमारी इतनी मोटी folia, you can go in our website, you can see we extended, you got more than 40 agencies.
1: Nice.
0: And we work with

0: Nose, tongue.
1: Yes.
0: Everything. Hands, feet, your organs. You eat, you enjoy. You drink, you enjoy. You meet your parents. You love them, they love you. It's unbelievable. If you the life, if you think about our life, Ashraful Makhlukat, inshallah you don't have $1 million, 1 million rupees even. Okay? If you are healthy, you are more than trillionaire.
1: बिल्कुल सही, बहुत सही कहा
0: सर,
1: बिल्कुल सही सर. जैसे हम यहाँ देखते हैं कतर का एक तो मार्केट ऐसा है कि बहुत डाइवर्स नेशनलिटी है, प्लस अगर कतरी कल्चर को ध्यान में रखा जाए तो आपके बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि लोकल कम्युनिटी या लोकल कल्चर ट्रेडिशंस को भी ध्यान में रखें. वन सेकेंडली, आपके जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है, सो व्हाट मेक्स योर कंपनी स्टैंड आउट इन दिस
0: फील्ड? देयर आर कॉम्पिटिटर्स and competition is not easy. Okay, after World Cup especially in Doha, the market is slow down this couple of years to 3 years, you can say. But whoever is having good customers, good clients, okay, so we sustain. Little bit graph came down, but hard work gives you back. You must be sleepless. Kehte hain na, dream देखना है तो जागते हुए देखे, और आपकी बेचैनी आपको अलाउ नहीं करेगी. तो ग्राफ कम से कम ऐसे जा रहा है तो कम से कम फॉर्म तो रहे. तो आपको 10 जॉब 10 प्रोजेक्ट की जगह 20 25 प्रोजेक्ट 30 प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा. तो वो कंपाइल करके आपको प्रॉफिट जो मार्जिन है कम होती है, तो सेम वो मेंटेन हो जाएगा जो पहला है. जो ग्राफ जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्राफ है उसको आप मेंटेन कर सकते हो. तो आपको 3 times ज्यादा टगल करना है.
1: 3 times
0: इन दिस डेज स्पेशली दिस 3 years आफ्टर द वर्ल्ड कप.
1: ट्रू बैक टू बैक कुछ ऐसे हालात भी बनते चले गए कि इट हैज बिकम
0: लॉट ऑफ कंपनीज क्लोज डाउन. और कुछ बहुत सारे कंपनीज हैं जो बराबर अच्छा काम कर रहे हैं. And people are surviving nicely. Depend है आपके ऊपर. या आप हार के आप बैठ जाओ घर पे कि यार अभी तो नहीं होगा यार, छोड़ दो. So you are finished. एक वही कह रहा हूँ कि जो बेचैनी होती है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ बागी होना चाहिए हर आदमी ने. आपके अंदर वो बेचैनी होना चाहिए यार, वो आई शुड मैं डिफिट ले लूँ और बैठ जाऊँ घर पे. वो तो डिपेंड है ना, हर आदमी जो भी बैठा है जहाँ भी बैठा है वो उस काबिल का होता है. मैं बड़े लोगों के नाम नहीं लूंगा अभी, मगर बड़े बिजनेसमैन बने हुए जो मल्टी बिलियनर्स, सैकड़ों बिलियन के ट्रिलियनर्स बने बैठे हैं अमेरिकन्स, आप उनकी मिसाल लो तो आप सोच नहीं सकते हैं. कॉलेज ड्रॉप है, हाई स्कूल ड्रॉप लोग हैं. हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, आदमी अपने. तो देर नाइट वो लोग काम करते हैं. दे हायर लॉट ऑफ साइंटिस्ट, एजुकेटेड इंजीनियर्स, व्हाटएवर, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जिस लाइन में भी जो है, दे आर कलेक्टिंग द बेस्ट ब्रेन एंड दे एक्सपैंड देमसेल्फ. वो अलग, तो वो कम से कम उनसे इंस्पायर तो होना चाहिए कि लोग जो बसे अभी तक बचे हुए हैं, हाउ दे सर्वाइव एंड दे एक्सपैंड. सो इन जनरल उनकी क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या होती है, उनकी फिटनेस कैसी होती है, नॉलेजेबल और कलेक्शन ऑफ पीपल what they're surrounded by, those are very important.
1: Kehte na sir, a person is known by its company, the company he keeps. To kaise aapke saath log rehte hain?
0: Mere dream bade nahi the. Mere bade log bahut Doha mein bahut the, jinko heart attack aa gaya, koi ko kya ho falij ho gaya, koi ko kya ho gaya. So very simple, ek hi cheez jo dimag mein chalti hai mere, I love, ek main music aadmi hu. शायरी पसंद है बट बोल नहीं सकता मैं. शायरी अच्छी होती है, एक दो अशार में बहुत कुछ शायर बोल जाता है. और जिंदगी के बारे में एक ही चीज सीखा मैंने बहुत सारे लोगों को से, कि जो मेरी साइज क्या ब्रेन और मेरी बॉडी कितना लोड ले सकती है, मुझे उतना ही करके जिंदा रह के एंजॉय करना है लाइफ. बिलीव मी, आई कैन मेक

0: 10 टाइम बिगर साइज ऑफ दिस कंपनी बट उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा फॉर व्हाट
1: आई थिंक यू एंजॉय डूइंग दिस बिजनेस इज योर पैशन
0: बट आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह आई एम थैंकफुल टू अल्लाह आई वेयर आई वाज एंड हाउ अल्लाह हेल्प मी वो इज जुमन तशा तो जुमन तशा तो उसमें मेरी माँ का बड़ा हाथ रहा है यानी चाबुक से मार के उसने सुधार दिन मिले जिंदगी में
1: मुझे लगता है सर आपकी जिंदगी में आपकी उस टीचर का भी रोल बहुत अहम रहा जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जमीर को झंझोर दिया एंड यू वर लाइक लाइंग ऑन द बेड फॉर 15 डेज
0: टीचर का वो एक सर्कमस्टेंसेस थे बिकॉज़ ही वाज बैड इन माय ओपिनियन ही वाज अ ब्रूटल एंड बहुत ही इनजस्टिस था उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाउ वी टेक कि आपने मुझ पे जुल्म किया आपको मारपीट कर रही है मुझे क्या मिलेगा जेल में जाके बैठ जाऊंगा मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि व्हाई पीपल आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस व्हाट इज लैकिंग वो लैकिंग ढूंढ के निकाल के उसके ऊपर काम करना चाहिए करेक्ट सबों के साथ ऐसा नहीं होता इट्स नॉट नेसेसरी कि काफी लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं मेरे आई विल नॉट से कि उन लोगों ने अचीवमेंट नहीं किया दे लव दैट लाइफ बोले भाई सैलरी आ रही है आई एम रिलैक्स बीवी बच्चे हैं और इंजॉय कर रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं ज्यादा कि रिलैक्स बैठ जाऊं मैं बिकॉज मुझे पता है कि
1: मुझे काम करना
0: पैसे की वैल्यू क्या होती है कि मेरे जनरेशन को भी वही सिखाता हूं मैं डोंट बिकम आराम पसंद नहीं बनो
1: शायद ये एक फंडा भी है कामयाबी का
0: आराम पसंद क्या करोगे आप एक्सरसाइज आज भी करता हूं मैं स्विमिंग घर में करता हूं घर में ही है मेरे जिम भी घर में है मेरी वाइफ भी मैं भी और जो कहा मैंने कि जो गिफ्ट है अल्लाह का सबसे बड़ा वो है जिंदगी अपनी अगर हम लोग ना शुक्र और गैर जिम्मेदार होंगे अगर हम अपनी जिंदगी को खुद ही खराब कर लो कि इतना खा रहे हैं ऑयल खा रहे हैं मीट खा रहे पता नहीं जो जो नुकसानदार चीजें हैं सो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन और दुआ ही विल से गेट लॉस्ट आपको अकले सलीम दिया था मैंने और उसके लिए किताब दी थी मैंने अपने किताब में लिखा है 33% खाए 33% पानी 33% खाली रखें आप आपको बीमारी बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तो देर आर मेनी थिंग्स और दीन इज टीचिंग अस ओके और आप पढ़े लिखे आज तो आज की दुनिया में काम नहीं है आपको एक क्लिक करो आपको हर चीज का सोल्यूशन है सो वो खुद के हाथ में है वेरी सिंपल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिजास्टर ओके और प्रॉस्पेरिटी और एंड योर सक्सेस Yourself, you are responsible. Allah has given you brain.
1: Yeah.
0: And you can learn through those people who are success. Your friends, your circle, in our country here, around the world, there are billions of people. They are the examples. So this life is very easy. We make it easy or we make it complicated. This is what I learn. And we can't blame anybody for the disaster. We are responsible. This is what many time I did mistake and I've been punished. I lost lot of money in terms of business, and that was errors. Okay, and we believe in straightforward business and in market the best customers. They love us. They are best and very, very strong companies. Belongs to semi-government, government, and private as well. Because we don't play. As I told you, I'm like a military man. I punish people if they do little bit mistakes or some stupidity. And somebody call me. They are all my friends, clients, consultants, and say, so what happened? Why you did this? Your people are not professionals. Same day I sack people. I can't, you can't, you know, tolerate this type of nonsense. And you'll put yourself in the trouble. Business is like a naked sword on your head, 24 hours. When you are not mistaking, you are scared. You enjoy life. Mistakes will punish you like a hell.
1: That's a big lesson, I think, to all my viewers who also are keen in, you know, exploring their selves into business. As you mentioned, it's not. There's no gunjaish of one mistake.
0: You must conscious about yourself. Precaution mein rakhein aur

0: monitoring and control your people, monitoring the market, and there are many factors, you know, not easy. A lot of people, they think business is easy.
1: No.
0: It is not easy.
1: Really?
0: Wo moti chamri chahiye uske liye. Okay, kuch bhi ho gaya. My wife all the time bole, yaar tum hamare rishtedar hai na, yahan pe bole aisa kaam ugara ho gaya itna bada, tum relax baithe ho yaar. So Allah create karta hai har aadmi ko उस काम के लिए, वही काम उसको मिल जाता है. जो चिकन हार्टेड आदमी होते हैं वो मर जाते हैं बेचारे, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते. दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू नो. आप रेडियो पे बैठ गए, आपको आता है, यू नो, यू आर कैपेबल टू डू दैट. हो सकता है आपकी बहन या भाई होंगे, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है. वो इंजीनियर से या कुछ और है, डॉक्टर जो भी है. हर एक आदमी को अल्लाह ने नवाजा होता है कि भाई एक्स वाई जेड इस डेजिग्नेशन के लिए फिट है. मार खाते खाते ऊपर आ जाता है. इजी किसी को कुछ नहीं,
1: किसी को नहीं. और सबसे टफ और चैलेंजिंग बात सर ये है कि हम लोग अपनी एबिलिटीज पहचान ही नहीं पाते. लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है. आई सीन पीपल स्ट्रगलिंग, दे डोंट नो कि हमारे अंदर क्या खूबी है. They end up doing this, then they start this, then they want to do this.
0: जो चीज what I क्योंकि हमने बहुत रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू किए.
1: Yes, yes.
0: तो उसमें 1.3 million नुकसान हो गया रियाल. तो जो मेरा काम ही नहीं है, okay? छोटी बातें कर रहा हूँ. और भी कुछ स्टार्ट किए थे हमने, जो गुजराती में कुछ ऐसी डायलॉग है, जाने का हम तो जाने बीजा करे सो गोता खाए. इसका मतलब है जिसका काम जो है उसी को strongly expand करते हैं. You must be skilled.
1: Yeah.
0: You must know what you are doing.
1: Sure.
0: Other people will make your life miserable. They will cheat you. Okay? और sign करते रहोगे checks. कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या result आ रहा है. You will never know. Within couple of years, you will get bankrupt. बहुत सारे लोग हैं. तो मैं risk नहीं लेता ज़्यादा, क्योंकि I love to live. इंसान वाली ज़िंदगी चाहिए मुझे. मशीन वाली लाइफ में बना सकता था, बट मैं बहुत सीखता हूँ लोगों से. अब देखता हूँ अंजाम क्या क्या हो गए लोगों के. तो जो जो टिक गए, जो बड़े बड़े बन गए, वो टिक गए. उस उतनी स्ट्रेंथ उनकी बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर है.
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड शेयरिंग अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स विद अस. वी कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और इतनी मोटिवेशनल बात, इतनी प्रैक्टिकल बात हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की. जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू.
0: आई होप दे लाइक इट. कभी कभी मैं थोड़ी सी हर्ष लैंग्वेज हो जाती है. सॉफ्ट लैंग्वेज मुझे आती नहीं है. मेरी बातें आपको अच्छी लगी है और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी लगी है. आई लव एवरी ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ. एवरी ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ आई लव. आई वुड लव सी द प्रॉस्पेरिटी ऑन द अर्थ. That's all. Every human being should enjoy life.
1: Enjoy.
0: And they do the best of the best out of themselves. Jio aur jine do.
1: Wow, jio jine do. Thank you once again. Isi ke saath, dosto, waqt hai aap se ijazat lene ka is waade ke saath. Inshallah, aapki hamari mulaqat next episode mein ek naye guest ke saath hogi. Well, tab tak ke liye apna bahut zyada khayal rakhiye. Khush rahiye and sunte rahiye FM 107. Dil se desi.
2: प्रोग्राम कतर बिजनेस
3: 360
2: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: आरिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@mmc.qa.
5: आप सुन रहे हैं FM 107.
6: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: रोशनी। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और

0: हिस्सा बने प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से दिल। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर, ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 दिल से देसी।
2: हां जी वेलकम अहलन व
4: सहलन,
2: खुश आमदीद, स्वागत हम एंड आ गया लीजिए साहब मंडे और आ गए हम दोनों आप लोगों के लिए लेकर आपका अपना शो जिसका नाम है सन एंड साउंड। कैसे हैं आप लोग और कैसा कर रहे हैं आप लोग साउंड, ये भी हमारे साथ आप बताइएगा भाई आज जरूर। क्या खासम खास है, क्या नई ताजे हैं? सबसे पहले तो सफा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से?
4: वालेकुम अस्सलाम अल्लाह वबरकातुहू। देखो सरवर भाई ने मेरा माइक ऑन किया था, इतनी देर से मैं तभी खामोश बैठी थी।
2: बहुत देर तक खामोश बैठी थी, होती स्टूडियो में तो खामोशी सुनाई देती।
4: सरवर भाई ऐसी बातें ऑन एयर नहीं करते, ऑनर नहीं करते ऐसी बातें। सरवर भाई देखो आप आज मेरी बातों में पर्दा डाल दो, कल अल्लाह ताला आपकी बातों के पर्दा डालेगा। आज मैं हसीन लग रही हूँ ना?
2: नहीं आप तो हमेशा ही लगती हैं, कहने वाली बात नहीं, बट थोड़ा लाल ज्यादा हो रही है आपको देख के, मुझे टमाटर ज्यादा याद आ रहा है आज। खैरियत तो है,
4: ब्लश ऑन ज्यादा लग गया क्या?
2: या गर्मियों में ज्यादा देर खड़ी होके आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है।
4: देखिए मुद्दे ऐसे चल रहे होते हैं जिंदगी में कि जिनके ऊपर बात होती है तो लाल टमाटर हो ही जाते हैं, समझ जाएं बस। सर्वर भाई ये जो है ना, ये बातें हम ऑफ एयर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी जो है हम अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनको सलाम करते हैं और खुश आमदीद करते हैं अपने इस शो में। भाई हमारा और आपका साथ रहेगा, मैं भी अभी 2 बजे तक बोलने वाली थी लेकिन 1 बजे तक साथ रहेगा आज। पता है क्या
2: ज्यादा दिल होता है ना साथ रहने का,
4: जब जो है ना जब खुशी ज्यादा हो रही होती है ना किसी दिन, तो ऐसा होता है कि दिल करता है कि बस ज्यादा साथ रहे, और जिस दिन थोड़ा सा डल होता है उस दिन कहते हैं नहीं 1 बजे तक ही है, 1 बजे तक है, 1 बजे तक है, उस दिन याद रहता है।
2: चलिए फिर अच्छा है कि आज सफा चाहती है कि भाई ज्यादा साथ रहे, तो ज्यादा साथ निभाने के लिए आप लोगों को साथ रहना भी जरूरी है। और वो कैसे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग, हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमें कॉल

0: करने के साथ साथ और वो कैसे
1: भाई आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर द नंबर इन उर्दू इज 666 666 3 6 2 2 और 107 उर्दू को डबल में क्या कहेंगे
0: हाँ ये अच्छा अच्छा है हाँ ये अच्छा सवाल है वैसे कहते होंगे
1: जरूर कुछ ना कुछ डबल में क्या कहेंगे उर्दू में डबल को क्या कहेंगे दो गुना नहीं दो गुना नंबर में तो नहीं आएगा ना या थ्री
0: सवाल अच्छा आ गया देन मतलब
1: ट्रिपल सिक्स कहते हैं ना तो ट्रिपल सिक्स को उर्दू में क्या कहेंगे
0: चलिए भाई देखते हैं कि जैसे कल
1: कोई है
0: सिंधी सिंधी बातें सुन के खलील भाई एकदम से तशरीफ ले आए थे तो आज शायद
1: उर्दू की सुनकर
0: कोई और तशरीफ ले आए और साथ ही में आप हमारे साथ कॉल करके भी जोड़ सकते हैं कॉल करने का नंबर है 4434377 तो भाई खास बहुत सारी चीजें हैं आज और मुद्दा भी है हमारे पास गेम भी है हमारे पास आप लोगों से बातचीत करने के लिए अपडेट भी है हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर ट्रैफिक के हवाले से भी अपडेट करेंगे
1: आपको वेदर सारी के हवाले से भी तो हम करते ही रहेंगे क्या कहते हैं पहले वेदर शेदर का हो जाए
0: वेदर शेदर का हो जाता बिल्कुल चलिए देखिए वेदर ये हुआ शेदर का
2: वेदर का हाल 107 के नाल
1: भाई वेदर फेदर का जो है वो सिस्टम ऐसा कुछ चल रहा है कि आज की जो माशाल्लाह से गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी तो बेहतर ही है सरो भाई 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है और आज की गर्मी जो है वो थोड़ी सी जाने वाली है ऊपर की तरफ यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस आज मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा और शाम के टाइम थोड़ा सा एक दो टेम्परेचर नीचे कल से थोड़ा नीचे होगा यानी कि शाम के टाइम 32 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने का टेम्परेचर इम्कान है और फील्स लाइक 44 हो गया है 53-50 से फील्स लाइक 44 हो गया तो कहीं तो कुछ चेंज हो रहा है भाई कहीं तो
0: वो
1: कुछ चेंज
0: क्यों हो रहा है आइए ये भी जान लेते हैं और कतर कैलेंडर हाउस के मुताबिक जो हमें जानकारी दी गई है उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा वो ये कि साहब QCH यानी कतर कैलेंडर हाउस ने ऐलान किया है कि 24 अगस्त यानी कि आज से सोहेल भाई आ चुके हैं भाई मार्केट में याद है आप लोगों को या नहीं खैर मैं बता दूं क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छी तरह पिछले साल भी मैं सोहेल की आमद के बारे में बता रहा था एग्जैक्टली सोहेल का मौसम जो है सोहेल सितारे का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है सोहेल अब मान पे आ गया है जिसके आने से क्या होता है भाई अरब जजीरे में सोहेल सितारे के तुलू के साथ साथ क्या मुताबकत है वो भी मैं बता देता हूँ या क्या मुताबकत ये रखता है ये मौसम सबसे पहले ये जानिए कि 53 दिन रहता है 53 डेज ये जारी रहेगा और इसके दौरान गर्मी की शिद्दत में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी अये हाय हाय हाय सुहेल भाई तो खास तौर पर जो रात के औकात हैं जैसा कि सफा ने बताया अभी कि गर्मियां ज्यादा बेहतर होने लगेंगी मतलब बेहतर से मतलब अच्छी उस तरफ अच्छी नहीं हमारी तरफ अच्छी समझ रहे हैं आप तो शाम में अब मौसम ऐसा हो जाएगा कि आप बालकनी में गॉग्स में अपने क्या कहते हैं पा में मैदानों में और बैकयार्ड में हर जगह आप जाकर बैठकर अब चाय पी सकते हैं इंशाल्लाह ताला तो कतर कैलेंडर हाउस के मुताबिक समंदरी पानी के दर्जाए हरारत में भी कमी आने के साथ साथ मौसम में तब्दीली महसूस होना अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आज शाम से और भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा जितना कल आपने महसूस किया सोहेल का मौसम जो है वो चार मराहिल पर मुश्तमिल होता है और वो है तरफा जबहा जुबरा और सरफा तो ये चार जो मौसम हैं या चार जो तबकात हैं ये पूरे 53 दिन तक पेश आते रहते हैं और ये मौसम कतर और खलीजी ममालिक में गर्मी के धीरे धीरे खात्मे और कहना चाहिए कि खुशगवार मौसम की आमद की निशानी है भाई यह समझा जाता है तो भैया मौसम का हाल अहवाल कुछ ऐसा रहने वाला है और साथ ही में याद रखिए कि सोहेल आ तो गए हैं इनका आगाज हो तो गया है साथ ही साथ मौसम में ये नरमी भी लाएंगे थोड़ा आसानी भी होगी मौसम में लेकिन गर्मी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है सफा इसलिए पानी छानी पीते रहना है धूप से जो भी बचने के लिए करना है वो भी करना है अपनी सेहत का ख्याल रखना है बच्चों बुजुर्गों सबका ख्याल रखना है स्कूल खुलने वाले हैं इसलिए हमने इतनी तमहीद बांधी है तो बच्चों से मुतालिक जैसा कि हम हमेशा समझाते आए हैं भाई उनके लिए जो भी उनके अम्ब्रेलाज हैं छतरियां वगैरह हैं उनके हैट्स हैं उनके कपड़े हैं
1: पानी की बोतलें भाई मैं तो कहती हूँ देखें एक होता है अम्मा बना एक और चीज मेरी नजर में आई मैंने सोचा इसको डिस्कस करेंगे पानी की बॉटल्स बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जो हमें प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं बच्चों की, नॉर्मली अच्छे अच्छे शेप्स में होती हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उसके ऊपर बने होते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है, उन पानी की बॉटल्स में ना पानी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वो प्लास्टिक की होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सर भाई वो जो फ्लास्क नहीं होते, फ्लास्क स्टील के जो फ्लास्क होते हैं, वैक्यूम फ्लास्क,
0: एग्जैक्टली वो भी अच्छी चीज है। आप खुद जानते हैं कि क्या सही रहेगा। उसमें जरूरी बस एक ये है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, क्लियर नहीं दिखता है पानी, तो क्लियर दिखने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे कुछ भी पी जाते
1: हैं,
0: तो उनको थोड़ा सा सिखाएं जो सुन्नत तरीका भी है, पानी को पहले देखें और फिर इंशाल्लाह ताला पिए। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जो एक्सपोजर है, जो हीट एक्सपोजर है, वो होता कैसे है, वो जब होता है जब वो एकदम स्कूल से ठंडी बस में जाते हैं और ठंडी बस से फिर गर्मी में बाहर निकल के घर की तरफ जा रहे होते हैं, उस वक्त जो उनको जकड़ लेती है, पकड़ लेती है,
1: वो एकदम से हम कहते हैं टेम्परेचर चेंज, रैपिड टेम्परेचर चेंज।
0: तो ये इससे बचने के लिए, इस एक्सपोजर से बचने के लिए, इस टेम्परेचर से बचने के लिए पानी जो है जरूर पीना है। मतलब जब वो क्लास से बस की तरफ जा रहे हों और पी के चले, और बस से जब घर की तरफ जा रहे हों तो पानी जरूर पी लें भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बात और जो अब बात निकल रही है, लगे हाथों हम काफी दिनों से बताना समझाना चाहते हैं, जुमे की नमाज में इंशाल्लाह ताला जब आपकी हाजिरी हो, जाहिर बात है बच्चे भी साथ में जाना चाहते हैं, ख्वातीन भी जाना चाहती हैं, घर की फैमिली भी जाना चाहती है, उस वक्त भाई बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप खुदा ना खास्ता लेट हो गए और फिर गर्मी में बच्चों को लेके इट्स डेंजरस, बट अदायगी भी करनी है, नमाज अदा भी करनी है, वो फर्ज भी अदा करना है। तो एक तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि भाई जल्दी निकल जाएं घर से, है ना, अभी से ही
1: लोग क्या करते हैं, सबको बता दें खुदा शुरू होने से पहले जाना चाहिए आपको,
0: एग्जैक्टली उसमें फिर वो लंबी बात हो जाएगी, सबको हम इंशाल्लाह ताला ये शेयर भी करते रहेंगे, आपको खुद मालूम है आप हम सब समझदार हैं। तो मुसल्ले वगैरह जितने भी हैं, जानमाजें, चटाई जो भी है, आप एक गाड़ी के अंदर स्पेयर रखें और इंशाल्लाह वक्त पे पहुंचे। तो भाई ये कुछ मालूम मौसम के हवाले से हमें लगता है बहुत ज्यादा अपडेट हो गई, बस इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको अपना लें और इस पे अमल कर लें तो इंशाल्लाह हम सबके लिए
1: जिंदगी आसान हो जाएंगी
0: इंशाल्लाह ताला। तो चलिए साहब प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, इंशाल्लाह ताला आप लोग की कॉल्स वगैरह भी लेना शुरू करेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापसी के बाद मैसेजेस आपके आ रहे हैं, यूसुफ भाई दिख रहे हैं, फरहत दिख रहे हैं मुझे, और दो मैसेज विदाउट नेम है, ये भी हमें काम करना है, सफा नाम जो है वो सेव करना शुरू करना है,
1: आज से हम जो है ना वो नामालूम अफराद बोलेंगे सबको,
0: नहीं नहीं एक्चुअली हमें सेव करना चाहिए, और जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं और जितने भी लोग शिरकत करते हैं, इससे पहले के नाम तुम्हें देख रहे हैं सफा, वो ज्यादातर मैंने ही सेव करे हैं, तो सामने आसानी हो जाती ना कि भाई उनका मैसेज आया, हैं तो सब अपने ही। आखिर क्या कहते हैं भाई, मौसम बेहतरीन बनाया जाए, किस तरीके के गाने चाह रही हैं सफा आप?
1: मुझे तो आज पता नहीं क्यों, जबकि मैं गाने इतने ज्यादा सुनती नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो चला हुआ गाना, तू ही तू, सतरंगी
0: सतरंगी, तो आगे सतरंगी भी कर देंगे फिलहाल तो।

0: जरा वाइब्स को हाई करते हुए भाई। मंडे है, खासम खास दिन। मंडे में कहते हैं सबका वेट बढ़ जाता है, ये एक स्टडी में पढ़ रहा था
1: मुझे।
0: मैंने कहा मंडे क्या करेगा मेरा।
1: मुझे आज ही कॉम्प्लीमेंट मिला है, आप कम लग रही हैं।
0: एंड देन माशूका,

तो भाई कुछ अपकमिंग ट्रैक्स आप लोगों के लिए एंजॉय कीजिए। मैं और सफा यूं गए और यूं वापस आई, ऐड क्यों चल गया सफा, जाते जाते यहाँ से चलो आई वाह। तो साहब सिद्धार्थ बसरूर, बसरूर तो नहीं है ये, और प्रकृति कक्कर, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक सर और सफा आपके साथ सन एंड साउंड दिल से ही।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशियां अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप।
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107। दिल से देश।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी वेलकम बैक हेलन व सेलन खुशामदी स्वागतम एंड बिल्कुल सफा और सरवर का साथ आपके साथ और एफएम 107
2: हाय हाय हाय क्या है बात साथ, क्या हम है साथ, बात क्या, साथ
1: अच्छा सफा ये बताओ कि तुम फैमिली में कौन से नंबर की बच्ची हो।
2: मैं वो बच्चा हूँ
1: या बच्चे हो बेटा हो बेटी हो
2: ये इसके ऊपर तो मेरे अब्बा भी कंफ्यूज हैं। खैर
1: ये बात की बात है
2: ये बात की बात
1: चलो नंबर कौन सा है बताओ।
2: देखिए मैं वो बच्चा हूँ जो ये जो हमारी पाँव की छोटी उंगली होती है ना बिल्कुल इसी की तरह हूँ मैं लारिस की तरह उसको छोड़ दिया था वो होती है वो
1: लास्ट वन तुम लास्ट
2: नहीं नहीं नहीं समझने की कोशिश करें तो तीसरे नंबर का बच्चा होता है ना उसके साथ पाँव की छोटी उंगली वाला सलूक किया जाता है कि वो होती तो है लेकिन वो नजर किसी को नहीं आती और ठुड्डे बहुत खाती है।
1: मगर एक बात बता दूं अगर ठुड्डी ना तो जहन का असर होता है वैसा पूरा घर हिल जाता है। ये देखिए पॉजिटिव बातें उस पर अगर चोट लगती है पूरा जिसे फिर जाता नहीं
2: जाता
1: है इंसान। तो सपोर्ट में सब आते ही होंगे तो इसमें तुम्हारा तीसरा नंबर है।
2: मैं वो बच्चा हूँ जो अम्मा अब्बा काउंट नहीं करते तीसरा बच्चा
1: है तो तीसरा नंबर सफा
2: हाँ ये तीसरे नंबर का बच्चा
1: है। ठीक है ये तो पता चला ये तीसरे नंबर पे है तो ये बताओ मुझे कि तीसरे नंबर पे अब आपने खैर बताई दिया तारीफ तो आपने खुद ही कर दी ये तो मेरे आगे के सवाल थे तो सफा के बारे में तो आपने सुन ही लिया। तो भैया आज का मुद्दा भी यही लेकर आए हैं हम लोग कि आप अपने घर के कौन से नंबर के बच्चे हैं या बच्ची हैं और उसके वजह से आपको क्या क्या चीजें पेश आई है। जैसे सफा की बातों वैसी आ रही है मुझे तो जैसे इन्होंने मैंने आपको तो तीसरी उंगली और छोटी उंगली और सारी उंगलियों
2: में मिला दिया। आजकल रील्स पे बहुत चल रहा है और मुझे बहुत रिलेटिव लगती है रील्स जो आप अभी सोशल मीडिया खोलें ना वो रील्स देखें कि कौन से नंबर का बच्चा कैसे जो पहला बच्चा होता है ना वो बड़ा शरीफ ज्यादा और भाई वो ऐसा लगता है शाहकार कुदरत का शाहकार।
1: तो ये बताओ कि हम जो है नंबर दो मतलब नंबर दो आप समझ रही है बात की शुरुआत वही हो रही है नंबर दो हो तुम हमारा क्या
2: फिर भी काउंट में आते हो ना
1: नंबर दो यार शुरुआत यही से हो रही है। चलिए देखते हैं इनका क्या नंबर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जनाब।
1: हाला हाला बिल्कुल ठीक है हम शोएब भाई हैं हमारे साथ।
3: जी बिल्कुल
1: आहा क्या बात है
2: शोएब भाई जरा एनर्जी लो क्यों लग रही नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या अपने लिए खुद वैसे तो आप खुद ही बनाते हैं लेकिन आज क्या बेगम का किया नाश्ता
1: ज्यादा बनवा लिया घर वालों ने ज्यादा बनवा लिया।
3: सच में आज मैंने नाश्ता नहीं किया आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था और मैं बस
1: ऐसे ही मतलब लेट तो ऑफिस जाने के लिए थे या नाश्ता बनाने में लेट हो गए थे
3: दोनों
1: और बिना नाश्ता बनाए घर से बाहर ज्यादा तो नहीं मिली होगी जाने के लिए तो फिर नाश्ता बनाया ही होगा।
3: मैडम का आज ऑफ था मैडम के बिल्कुल खास इंस्ट्रक्शन थे कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे नहीं चाहिए।
1: यही तो कह रहा हूँ आपने पहले ट्रे ली होगी बैटी बनाई होगी और सारी चीजों में आप लेट भी हो रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ जल्दी जल्दी मतलब जो खिदमत हो सकती थी। देखो कुछ आदमी होते हैं ना कि उनका फैसला बाद में होगा कुछ ऐसे होते हैं शुभ भाई जो पता है कि भाई जन्नत में जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब ये तो दुआ है यार इंशाल्लाह ताला सभी को जाना
2: जिनके वालों को दूध का ग्लास तक गर्म करना नहीं आता अपने लिए
1: ये भी है। अरे भाई तो ये बताइए शुभ भाई कौन से नंबर के बच्चे हैं
3: पहले है जनाब
2: बस तभी इतने सुघड़ है ना तभी तो इतने सुघड़ है।
1: अच्छा जान सकते हैं कि और कितने नंबर हैं साथ में आप फर्स्ट हैं तो
3: मेरे तीन और हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह
3: एक बहन है और दो
1: तो जिम्मेदारी डबल भी रही आपकी। तो भाई क्या क्या कहते हैं मतलब फायदा है पहले नंबर पे और क्या कोई नुकसान भी नुकसान तो नहीं कहेंगे मगर इम्तिहान कितने हैं
3: नुकसान है ही नहीं भाई साहब मैं ये कहता हूँ कि फायदा है इंसान को मैच्योर बन जाता है उस एज में जिस एज में
1: यार ये आदमी कमाल है यार सफा यार पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता आ रहा है शादी के बाद में मगर पॉजिटिव नोट्स और वाइब्स सब नहीं होते
3: मैं कसम से मैं अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सच में मैं उनके जी तो मेरी एज 33 इयर्स ओल्ड है यकीन मानो मेरे अंदर आज भी एक बच्चा जिंदा है
2: छुपा कर बैठा हुआ है
3: बिल्कुल भी नहीं छुपा के नहीं बैठा, जब मेरा मन करता है मैं डांस करता हूँ, जब मेरा जो भी मेरा मन है ना मैं वो करता हूँ
1: यार। एक्चुअली यही हकीकत है शुभ भाई, जो इतनी हम मजे की बातें कर रहे हैं आपसे और इतना मजाक हंसी हो जाता है, ये चीज दर्शाती है, इस बात को दिखाती है कि आप कितने अच्छे हैं नेचर वाइज।
2: मतलब एक एक एक होता है ओवर मैच्योर ना होना, एक होता है मैच्योर होना, एक कुछ लोग ना वो गले सड़े फ्रूट की तरह हो जाते हैं। मैच्योरिटी का मतलब वो ये समझते हैं कि आपको बस मुंह पे संजीदगी रखनी है, आपने किसी से मजाक नहीं करना, आपने दुख दो लोगों को दर्द देने कुछ लोग मैच्योरिटी का मतलब ये समझते हैं।
3: पता मेरी वाइफ मुझे बोलती है, पता मैंने आपसे शादी क्यों की, मैंने अच्छा चलो बताओ क्या क्या रीजन है कि आप मुझे बहुत ज्यादा मैच्योर लगे इसलिए मैंने आपसे शादी की, मैंने अच्छा मैंने इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। नहीं और रीजन भी थे लेकिन सबसे अच्छा आज ही रीजन है, मतलब प्यार मोहब्बत वो सब अभी वो तो है ही लेकिन मैच्योर अब बहुत ज्यादा हो इसलिए बस आपसे शादी की।
2: समझदार मैं ये बात मानती हूँ कि जो पहला बच्चा होता है ना घर का वो मैच्योर इन द सेंस वो माँ बाप के साथ ही बड़ा हो रहा होता है, तो उसके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो सीख चुका होता है उस उम्र में, जिसमें बाकी के बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी बहन को देखा है ना वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है बड़ी बहन को, और उस संजीदगी के साथ माँ के साथ इतना अटैच देखा है कि मैं कहती थी अरे मैं किस दुनिया में रहती हूँ भाई और ये किस दुनिया में रहते हैं।
1: वाह,
2: तो
3: बिल्कुल देश है। अभी मेरा छोटा भाई है ना, सबसे छोटा ना, उसकी एज भी काफी कम है अभी, 19-20 साल की एज है, मतलब वो सबके सबके लिए मतलब एक वो था कि ये एक टॉय है, हम लोग जैसे कि
2: वो बड़ा नहीं होता है,
3: टेडी बियर है, वो कभी आज तक 20 साल की, जबकि वो आज भी बड़ा नहीं हुआ।
2: हमारे साथ भी
1: कभी छोटा वो ऐसा छोटा रहता है कि कभी बड़ा ही नहीं होता,
2: ये हमारे साथ भी ऐसा ही मामला है।
3: मम्मा ने उसको कभी डांट ही नहीं दिया कि भाई जैसे कभी वो कोई गलती करता था हम लोग उसको डांट दिया करते थे, नहीं नहीं मेरा सबसे छोटा बेटा है।
1: मगर बड़े वाले जो भाई लूट मचाते ना, मतलब दूसरे के आने से पहले पहले वो बहुत जबरदस्त, सारे सारे गिफ्ट, सारी ईदियां, सारे तोहफे।
2: अच्छा, मजे की बात ये सरवर भाई, जो पहला बच्चा होता है ना उसके जितना प्यार
1: वो एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूं,
2: किसी बच्चे को फिर नहीं मिलता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो,
1: और वो बढ़ता चला जाता है ना फिर। देखिए ये तो एक हुआ ना, अब शुएब भाई के साथ पहले जो है ये तो पहले जो था दोनों मगा पूरा फुल फुल था एकदम, है ना।
2: तबाही तब आती है जब आप खानदान के पहले बच्चे हो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए साहब शुएब भाई, बड़ा ही अच्छा लगा ये जान के भी, और काफी फायदे आपने बताए, और नुकसान तो हम नहीं कहेंगे, नुकसान किसी को नहीं होते एक्चुअली, बट इम्तिहान
2: नहीं। शुएब भाई मैं आपकी मिसाल देती हूँ, मैं अपने मियाँ को कहती हूँ देखो ऐसे भी मियाँ हैं जो खाने बना बना के देते हैं बेगमों को, देखो।
1: वाह क्या बात है।
3: नहीं तो मैम मैं उसके लिए एक्सपेरिमेंटल भी हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है। कल रात उसने, मतलब अब ब्यूटिशियन है वो, तो कल रात बैठ गई है ना, चलो आ जाओ तुम्हारे वो कुछ
1: मेकअप कर दिया, चालबाज वाला तो नहीं कर दिया, चालबाज में जैसे श्रीदेवी ने कर दिया था उनका एक्ट्रेस को
3: बोलिए। नहीं जैसे कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है ना, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होगा, पहले कस्टमर्स को लगाने से पहले वो चलो आ जाओ आप जरा आधा घंटा,
1: तो लैब रेड तो नहीं कहेंगे, मेकअप रेड हुए
2: रेड
1: और रेड हो जाती है, रेड नहीं कह रहा मैं, मेकअप रेड।
2: चलिए
1: भाई बहुत बढ़िया है भाई, शुएब भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बड़ी अच्छी बात है आपकी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पूरी फैमिली को अच्छा रखे, यही हमारी दुआ है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
2: मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए भाई। नहीं ऐसा होना चाहिए इंसान की लाइफ में, ऐसा होना चाहिए। देखिए आपको जब कहा जाता है ना कि आपका ये वो है बेटर हाफ है, तो बेटर हाफ को इतना तो होना चाहिए फन, इतना फन तो होना चाहिए।
1: चलिए
2: तो
1: देख लेते हैं कि ये कितने बेटर हैं और कितने हाफ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: अजी वालेकुम अस्सलाम।
1: हाला हाला कैसे हैं?
4: बढ़िया बढ़िया भाई, अब बताओ आप कैसे हैं?
1: ओ यार डोंट टेल मी यार।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: जाओ, नहीं बता रही, जाओ नहीं बता रहे।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: डोंट टेल मी, आप वापस आ गए छुट्टी से, ऐसा कैसे किया आपने? मतलब
4: जी अरे भाई तुम्हारी यादों के चक्कर में वापस आना पड़ा, आप भी तो गए थे छुट्टी, आप भी तो वापस आ गए भाई।
1: हाँ, साथ ही साथ।
2: अरे भाई देखो दोनों बातें की चले, मुझे तो बता दो कि कौन है
1: भाई, बताइए कौन बोल रहा है।
4: नहीं
2: नहीं नहीं बता रहा, जाओ नहीं बता रहा, क्या कर लूंगी, नहीं बता रहा।
1: इनको बता दिया, अपना नाम बता दिया इनको, सफा को।
4: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। बेन कैसे, क्या हाल
2: चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहम्मद आसिफ भाई, मैं हम भी खड़े हैं राहों में।
1: आसिफ भाई बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बात है, और बॉम्बे से ताल्लुक

0: इनका मैं आपको बता दूं, अब इतना तो
1: आमची मुंबई
0: आईवा। तो आसिफ भाई कैसी रही छुट्टी सबसे पहले तो?
2: बहुत बहुत जबरदस्त भाई छुट्टी भाई, बहुत जबरदस्त।
0: घर पे सब खैरियत है, सब लोग ठीक हैं, वालदेन अच्छे हैं,
2: बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी सब खैरियत, वापस आने के बाद ज्वाइन वगैरह कर लिया सब ऑल ओपोर्ट?
2: जी जी, मैं तो 25 को वापस आ गया था भाई।
0: हाँ ओके ओके ओके,
1: चलिए भाई। वैसे एक बात है, जब हम छुट्टी से वापस आते हैं ना, तो छुट्टी हम तो वापस आ जाते हैं, दिल और दिमाग कहीं और रहता है अगले 6 महीने तक।
0: ऐसे ही है,
2: छह महीने तक, बिल्कुल सही।
0: इतने दिन में दूसरी छुट्टी आ जाती
2: है।
0: चलिए साहब, तो आसिफ भाई ये बताइए जल्दी से कि घर में कौन सा नंबर है आपका?
2: भाई दूसरे नंबर का हो।
0: दूसरा नंबर?
1: दो नंबर ही,
0: दो नंबर ही मेरी तरह। जबी ऐसी बातें कर रहे हो?
2: दो नंबर का, दो नंबर ही चलता है।
0: अच्छा, और कितने टोटल आप लोग घर में कितने हैं? माशाल्लाह
2: 5 जने भाई।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नंबर 2, चलिए तो नंबर 2 होने के नाते क्या है घर पे,
1: फायदा और नुकसान बताएं जरा, गिनाना शुरू करें।
0: कौन से कोने पे रखा गया आपको फर्नीचर के साथ?
2: भाई पलंग के उस कोने पे रखते हैं लोग, के मतलब आंखों के इशारा से अपने इशारों पे चला दे मुझे।
1: अरे में चलाते कौन, जो बड़े भाई बहन है वो, या जो छोटे वाले जो अम्मा अब्बा है?
2: अरे हमारी जो बड़ी, हमारे जो बड़े बड़ी बहन है वो, और हमारी मम्मी।
0: अच्छा, पहले
2: इशारों पर ना चाहती हम।
0: पहले आपकी बहन है जो सबसे बड़ी है?
2: जी जी, सबसे बड़ी बहन है हमारी।
0: घर पे बड़ी बहन और अम्मा की हुकूमत, क्या बात है भैया।
2: अम्मा की हुकूमत है भाई, घर में उसकी हुकूमत चलती है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ करो फिर भी हम इशारों पर नाचते
1: हैं।
2: ये नंबर एक अच्छा गेम निकाले भाई,
1: तो उसके उसकी मर्जी से, वो जबकि हमारे साथ रहती नहीं है, पता नहीं कितने टाइम से हमने देखा नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर, अगर आप तो कोई फर्नीचर का कलर या किसी की शादी में जा रहे हो ना, तो वो उसकी मर्जी के बगैर कपड़े तक ना पहने,
0: पूरे घर, पूरे घर वाले एक से पहने हुए। दिल है या नहीं है?
2: सरवर भाई अभी जब मैं गया था छुट्टी, तो मतलब मैं गया था अपने अपने काम के लिए, मगर मेरा काम तो हो नहीं पाया। तो मेरे, हाँ मेरा काम तो हो नहीं पाया, तो मेरे छोटे वाले भाई का काम निपटा दिया हम लोग ने।
0: फिर ये तय किया होगा, चलो यार अगली छुट्टी कर लूंगा।
2: हाँ वो तो हो गया, बाद में हमारी बहन जब आई, मतलब घर पे आई, मतलब वो दूर रहती है, घर पे आई मेरे।
0: हाँ।
2: घर पे आने के बाद उसका हुकुम इतना चलता है कि
0: मजाक तो अपनी जगह, ये चीज दिखाती है कि माशाल्लाह से कितना ज्यादा फैमिली में प्यार है। और वाकई जिस फैमिली में
1: उनसे
0: अम्मा और बड़ी बहन को इज्जत दी जाती है, तो वो माहौल हमेशा अच्छा ही होता है। उम्मीद करते हैं कि फैमिली अच्छी रहे और सब खुश और खुर्रम रहे। और कुछ शेयर करना चाहते हैं जी?
2: सरवर भाई मेरा काम नहीं हो पाया,
0: इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी, अगली छुट्टी में करा लेना, कोई बात नहीं आसिफ भाई, ठीक है। चलिए साहब आसिफ भाई, क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना है अब इंशाल्लाह।
1: आसिफ भाई एक टिप देती जा रही हूँ, बस शॉर्ट टिप। बड़ी जो बहन है ना, उसको तोहफे तहाइफ देना शुरू करें, थोड़ा उसको जरा अपनी साइड पे लेकर आने की कोशिश करें।
0: इसलिए देते ही होंगे,
2: अब लूट लेती है बहन वो,
1: भाई अब डबल देना ना, अपना काम करवाना है कि नहीं करवाना, डबल देना डबल।
0: चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा आसिफ भाई आपसे बात करके, इंशाल्लाह ताला बात होती रहेगी और इंशाल्लाह ताला आगे हमसे कनेक्टेड रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट देन, चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे। आखिर तुम्हें आना है,
1: जाओ नहीं आती क्या कर लोगे?
0: उदित पाजी ने भी बड़ा अच्छा गाया था ये गाना, और जाहिर है अमित तो अपने आप में अच्छे गाने ला ही रहे हैं। तो फिलहाल आखिर तुम्हें आना है, एंजॉय कीजिए अमित मिश्रा की आवाज में। सन एंड साउंड पे इस वक्त सरवर और सफा आपके साथ, कहीं भी मत जाइएगा, बस इस गाने के बाद अजान, छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं इंशाल्लाह, और चर्चा जो है वो जारी रहेगी।
1: सुनते रहे 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: अन सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
2: की। Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: वेलकम बैक साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है कितने 11:44 ऑन द क्लॉक और हमारा आपका साथ रहेगा 1 बजे तक। तो साथियों फिलहाल तो सरवर भाई और मैं, सरवर भाई को मैंने म्यूट बटन किया, म्यूट दबा दिया है, मैंने कहा चुप करके बैठो, मुझे कुछ बात करने की बहुत अशद जरूरत पड़ रही है। मैंने देर से कुछ नहीं बात की। सर भाई म्यूट पर थे आप?
5: हाँ बिल्कुल, मैं म्यूट पे नहीं था यार, और
4: म्यूट पर थे सर भाई। अच्छा चलो इससे पहले कि ये बात करना शुरू करें, मैं जरा आप लोगों को ना कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, तो सिर्फ ही गप्पे मारते हैं, अच्छी अच्छी बातें मैं बताती हूँ, मेरे पर फोकस करें।
5: ओके ओके सुन लेते चलिए।
4: अच्छा भाई आज की अच्छी बात ये, मतलब ये कि आज का अगर मैं फन ट्रिविया आपके साथ शेयर करूँ तो क्या आपको पता है कि स्पाइसी फूड समर में भी फायदेमंद ही होता है, गर्मियों में, पता है आप? वैसे मुझे पता सर भाई आपके लिए तो खाना हर दफा ही वो फायदेमंद होता है।
5: नहीं मगर मैं समझ क्यों कह रही हैं आप ये।
4: अच्छा मसला पता क्या है?
5: उससे
4: एग्जैक्टली
5: स्वेट ज्यादा होता है गलमन है।
4: तेज मिर्च से ना, तेज मिर्च मसाले वाली चीजें होती हैं, उससे यही होता है कि ट्रिगर कर जाती है वो हमें, तो उससे क्या होता है हम लोग पसीने पसीने होना शुरू हो जाते हैं, ना आता है जाहिर बात है स्किन पर ना हमारी ये होता है, पसीना आता है, तो उसकी वजह से हमें नेचुरली कूलिंग सिस्टम हमारा बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है।
5: इट्स नॉट अबाउट फूड ओनली, मतलब स्वेटनेस जो है गर्मियों में वो अल्लाह ने किसी वजह से ही रखी है।
4: और एक और चीज सर भाई, एक और बात ये है कि अपना
5: दुआ उड़ता हुआ दिखा मुझे, मैंने कहा खैरियत है, बार बागला
4: मेरी कॉफी पे नजर रखी हुई है इन्होंने,
5: नहीं मैंने कहा शायद बार बागला है।
4: अच्छा मामला पता है क्या है कि नेचुरली जब हम तेज स्पाइसी फूड खाते हैं ना, तो ये जो स्पाइसी फूड है ना, आपको पता है हमारे ब्रेन को क्या इंडिकेशन देता है?
5: क्या
4: ये इंडिकेशन देता है? कि आग लगी है कहीं पर। हाँ जैसे फायर,
5: जैसे मेरे ब्रेन ने अभी दिया।
4: हाँ तो ये इंडिकेशन ना बॉडी फिर क्या करती है, खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला किसी को भी हादसों से बचाए,
5: आमीन,
4: जब फायर या कह लें कि आग वाला मामला होता है ना, किसी के साथ आग लग जाती है, तो बॉडी अपने आप को कूल करने के लिए फौरन से क्या करना शुरू करती है, स्वेट करना शुरू करती है। स्वेटिंग से

0: लगता है कि नेचुरली हमें मदद मिलती है कूल होने में. इस प्रोसेस की वजह से आप कह लेंगे कुछ गर्म और ट्रॉपिकल कंट्रीज जो होती है ना वहाँ पे सर्दियों के अलावा भी, सर्दियों के अलावा वहाँ पर स्पाइसी खाना खाया जाता है. गर्मियों में भी स्पाइसी खाना खाया जाता है. हम तो देसी लोग हैं भाई, हम तो हमें तो ना चलेगा.
1: मतलब 12 महीने 24
0: दिन हम तो वो लोग हैं जो अल्लाह माफ करे हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होंगे तो कहेंगे चस नहीं आई, खाने में मजा नहीं है, मसाला नहीं है.
1: एग्जैक्टली. तो खैर हाँ, मतलब बड़े सगीर की बात करें अगर एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें,
0: लेकिन एक हकीकत बात ये भी है कि ज्यादा स्पाइसी फूड ना, देखो मेहरबानी करो, उम्र होती है स्पाइसी फूड खाने की और कुछ मॉडरेशन के साथ खाया जाता है.
1: इससे मुझे याद आया आजकल जो जेन ज़ी का मामला है, मैं ही हूँ
0: फिक्के बतोड़े खाने खाते हैं उबले
1: हुए. नहीं, इट्स नॉट अबाउट उबले हुए, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जा रहे हैं मुझे वो याद आए. वो तो ठीक है कि स्पाइसी फूड जो नहीं प्रेफर कर रहे, बट जो कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट एक दो तरीके की जो नूडल्स आ रही है जिसके अंदर सिर्फ यू रिमेम्बर, मैं नाम नहीं ले सकता यार. हाँ. मतलब कम ऑन, अगर हमें कोई
0: पीले काले रंगों वाली
1: तो शायद हमें वो कुछ और ही समझेगा कि ये ऐसी बात
0: है. टू टाइम्स चैलेंज नहीं, अगर हम रामेन या हमें कहते हैं ना कोरियन फूड खाते हैं ना, तो कोरियन फूड, चाइनीज फूड, इनके अंदर स्पाइस बहुत ज्यादा है.
1: उनके पेट के लिए अच्छा है वो, क्योंकि अल्लाह ने उस तरफ वालों को वैसे ही बनाया हुआ है.
0: अच्छा, मजे की बात है आजकल कुछ बड़े खतरनाक किस्म के चैलेंजेस निकले हुए भाई. मैं रील्स में देख रही थी, अब सोशल मीडिया हम सबको ऐसे ही तो कनेक्ट करता है. सोशल मीडिया का फायदा उठाओ ना, फिर अगर उठाना है तो सही वाला फायदा उठाओ. हम लोग रील्स में ऐसे ही तो कनेक्ट होते हैं कि कौन सी चीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेंड भी निकला है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो स्पाइसी चैलेंज और ये वो, उसको करके लोग हॉस्पिटल पहुंचे. दैट इज रॉन्ग. तभी तो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो खाने में हो.
1: भाई मेरे सामने हैं, तुम्हारी इस बात से याद आ रहा है मुझे कि वाकई मेरे सामने कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर इस तरीके का मसला चल रहा है.
0: भाई वो जो जैसे आप वो रामेन और नूडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा पैकेट मिलता है. मैंने एक दफा कोशिश की, मैंने कहा ये मसला,
1: भाई मैंने तो एक बार
0: पूरा सैशे डाल दिया और फिर उसके बाद में जाकर समझ में आई, भाई आप एक से दो ड्रॉप से ज्यादा का स्पाइस इसका मैनेज ही नहीं कर सकते.
1: और बच्चे नहीं मान रहे आजकल, जेन ज़ी जो है वो सब इसके ऊपर आमादा है, तो भाई प्लीज ख्याल कीजिए. चलिए हम ज्यादा भावुक हो गए और अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब. तो उम्मीद करते हैं कि भाई अपना अपना खाने का सब एहतराम और एहतियात दोनों चीजें करेंगे. तो कहते हैं सर, ओके एमबीबी से शुरुआत करते हैं. सर ओ मैडम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप
0: और तमाम लिसनर को
1: गुड मॉर्निंग कतर. ओके टाटा बाय बाय. गए अच्छा नमाज गए थे, हमने मैसेज अब पढ़ा, गए हुए होंगे ऑब्वियसली. इस वक्त ज्यादातर लोग जमात में भी होते हैं.
0: मुझे ना सर भाई, मुझे ये मुबीन भाई जैसे ना लोग बहुत पसंद है, पता है क्यों? अपनी बात कहकर चले जाएंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या सुना क्या
1: मोहब्बत,
0: मजाक. बड़े सादा से लोग होते हैं ये.
1: कहते हैं हाँ सरवर सफा जी, बुढ़ाऊ है ना, याददाश्त कमजोर है, किसी बात पे कहोगे शायद आप मुझे टीज कर रही होंगी. बाल यहाँ पे लिख गए हैं और इंशाल्लाह
0: नहीं बताएं सरवर भाई, आपको बुढ़ा कहा है कि मुझे कहा है
1: यार, पता नहीं समझ में नहीं आया, जब आएंगे जब पूछ लेंगे. अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड सफा सफदर, कैसे हैं आप दोनों? मेरी फैमिली में थर्ड नंबर है. चलिए ये मुद्दे पे आ गए. इमरान खान का है तीसरा नंबर.
0: ये हमारे मैं आपको समझ सकती हूँ भाई, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है.
1: कौन तीसरा, कौन फिल्म इन्हीं के ऊपर आई थी? ओके इमरान, तो इसके क्या फवायद और क्या नुकसान आपने उठाए ये भी तो मेरे साथ शेयर कीजिए. ओके बस एक मैसेज और फिर कॉल की तरफ बढ़ेंगे. कहते हैं मैं अपने घर का दूसरे नंबर का हूँ भाई और मेरी हालत खराब रहती है, मेरे घर वाले मुझे अपने इशारों पे न चाहते हैं. आसिफ भाई होंगे मुझे लग रहा है. यस दिस इज आसिफ. ओके एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस शामिल करेंगे. तो भाई आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने जो भी आपके इस वक्त मसाइल हैं वो तो मतलब हमारे साथ शेयर कीजिएगा.
0: हाँ
1: वही आ रहा हूँ. आप अपने एहसास हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और वो ये कि आपका, आपकी फैमिली में कौन सा नंबर है, मतलब कौन से नंबर के बच्चे हैं आप, ये आप हमारे साथ शेयर कीजिए. और इसके क्या फायदे हैं और क्या इम्तिहान है ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर आपको बताइए 443-443-7743-77. मैसेज करने के लिए 666-22-107-66-22-107. हाय
2: अस्सलाम
1: वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबशर मुबीन बात कर रहा हूँ सरवर भाई.
1: ओह मुबशर मुबीन, लॉन्ग टाइम, ये काफी दिनों बाद आपसे मेरे ख्याल में बात हो रही है.
0: मुझसे हुई थी बीच में
2: आपसे वेकेशन पे जाने से पहले ही बात हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी आई.
1: यस यस, कैसे हैं मुबशर भाई?

0: उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुबशर मेरे तायजाद भाई का नाम है जो कराची में होता है और उसका दूसरा नंबर है, आपका नंबर कौन सा है?
1: मेरा भी दूसरा नंबर है।
0: ओह गुड, तो आप भी पाकिस्तान?
1: जी मैं पाकिस्तान।
0: अरे डोंट टेल मी यार के कराची से हो।
1: नहीं मैं चकवाल से हूँ।
0: और बज गए भाई साहब, कराची के बाद गुलशन इकबाल पे जाता फिर ब्लॉक पे जाता और ओके सो मुबशर भाई क्या कहते हैं दूसरा दो नंबर होने के साथ साथ आपके और क्या इम्तिहानात हुए घर के अंदर?
1: मेरे इम्तिहानात तो शायद कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बस बाकी की तरह हम भी पूरी कर रहे हैं। और बाकी तो अभी वो पहले भी एक भाई बता रहे थे उनकी बड़ी बहन है, हमारी भी बड़ी बहन है, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली मुझे एक चीज पता चली हमारे घर में कि मेरी बहन कहीं पे गई भी थी और उन्होंने उनसे यही सवाल किया कि भाई आप घर में बड़े हो या आप छोटे हो। तो उसने यही बोला है कि भाई मेरा भाई मेरे से बड़ा है, हालांकि दूसरा नंबर में आता वो मेरे से बड़ी है। तो मुझे ये खैर मुझे बाहर से पता चली है बात, लेकिन मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई आप घर तो में
0: राइट राइट वेरी गुड गुड मैसेज।
2: अच्छा भाई ने इज्जत, बहन ने इज्जत रखने के लिए भाई को बोला मेरा भाई बड़ा है।
0: मसला ये है कि शायद नहीं, मुझे पूरी इस बात की तवक्का है कि ये अपनी बहन के साथ एक एल्डर ब्रदर की तरह ही डील करते होंगे, और भाई कितने भी छोटे हों वो बहन के बड़े ही हो जाते हैं।
2: अच्छा ये पता नहीं क्या साइंस है इसके पीछे कि ये जो बहन भाई होते हैं ना खास तौर पे, वो ये जो बॉन्ड है ना कि बड़ी पहले नंबर पे बहन हो और सेकंड नंबर पे छोटा भाई हो, इनकी बॉन्डिंग अजीब होती है भाई, बहुत आउट क्लास होती है इनकी बॉन्डिंग। मेरे बड़े भाई बहन जो हैं वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे का साया हो, जबकि वो दुनिया के तीसरे, दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हुए। मैं कहती मैं कहाँ हूँ भाई मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो दोनों माशाल्लाह से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका लाइफ को डील करने का तरीकेकार, उनका एक दूसरे के लिए बैकअप ही अलग होता है भाई।
0: तो मैं असल में उनको मुब्बी कहता हूँ, जो मेरे भाईजन का मैंने जिक्र किया तो वही निकलने वाला था, मैंने मुब्बी ये बताइए तो मुबशर भाई इसके फायदे तो बताइए, ये तो आपने बता दिया कि बॉन्ड कितना अच्छा है बहन के साथ और आपको अच्छा भी लगा ये जान के, इसके फायदे कभी हुए हैं?
1: फायदे तो जितना मैंने आपको ये चीज बताई कि भाई आपको ना वो पूरे घर के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है कि भाई हाँ भाई आप बड़े हैं। मेरे वालिद साहब तो अल्लाह जन्नत में जगह दे, फौत हो गए काफी टाइम हो गया उनको, तो फिर इस वजह से वो पूरे घर की जो अथॉरिटी है वो पूरी मिलेगी।
2: अच्छा ये भाइयों में बड़े है ना, हाँ तो जिम्मेदारी हो। अरे ये चीज तो ये
0: भाइयों में बड़े हैं और अब घर के भी बड़े हैं ऑब्वियसली।
2: हाँ जो बड़ा भाई होता है फिर वो बड़ा भाई, जैसे मेरे अब्बा कहते हैं ना, कहते हैं भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है।
0: चलिए यार ये तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगा।

0: कौन से नंबर पर हैं?
1: मैं बताएं, दो नंबर,
0: दो नंबर है दो और आप लोग माशाल्लाह कितने हैं?
1: कहीं भी मिला सकते हैं आप नंबर दो के,
0: कितनों में से दूसरे नंबर पर है?
1: अब क्या बताऊं मैं तीन में अच्छा, मेरे मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है, तो देखिए मुझे इस तरीके से
0: सैंडविच बन गया, हाँ,
1: पिचकाया गया है, फिर भी नहीं पिचका मैं
0: मैंने रेजिलियंस
1: फूल के निकला हूँ मैं बाहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और जनाब, खैरियत से हैं आप?
1: ओ जेज, जेज बी, लॉन्ग टाइम यार, कैसे हैं भाई?
2: ये लॉन्ग टाइम नहीं, आपके लिए लॉन्ग टाइम भाई, हम तो यही हैं।
1: ये बात तो सही है यार, ये बात तो सही है। जाज़ेब हैं हमारे साथ और उम्मीद करता हूं
0: अहमद जाज़ेब
1: खैरियत से होंगे इंशाल्लाह।
0: जाज़ेब भाई आप कहां से
2: हैं? अहमद साहब आ गए
0: ये दुगल साहब है, दुगल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जाज़ेब भाई?
2: दुगल साहब तो आपके बराबर में बैठे हैं
0: अच्छा तो हमें गजनी बना दें फिर
1: तो एक दुगल एक गजनी, क्या बात है?
0: क्या
1: एक घंटे अल्लाह जोड़ी
2: नहीं है, दारा सिंह वाली पर्सनैलिटी है
1: यार। जैज ये बताइए कि घर में कौन सा नंबर है आपका?
2: मैं भाई तीसरे नंबर पे हूँ।
1: ओ चलो, कोई तो मिला पहले दूसरे से, तीसरे पे कहानी आई।
0: हाँ।
1: एक और थे तीसरे वाले, तो तीसरे अच्छा नहीं, और इन टोटल
2: आपके साथ आ गए ना भाई, आपकी तीसरे पे हम
1: नहीं, मैं दूसरे पे हूँ, दूसरे में दो नंबर की कहानी
2: यार ये गजनी वाले डायलॉग मारो अभी खुद आपने मुझसे जिक्र

0: हम पांच भाई बहन हैं।
1: तो पांच में तीसरा नंबर तो बीच में हुए
2: जी। हाँ हाँ
1: हाँ, है बिल्कुल ठीक है, ठीक बीच में। दो इधर दो इधर, बाकी मेरे पीछे आओ जस भाई। तो कितनी सुनी जा रही थी घर पे भाई, या कितनी सुनी जा रही है एक्चुअली?
0: आप कौन कहाँ सुने भाई, सब अपने अपने उसमें हो गए।
2: अब उम्र ना रही सुनने सुनाने वाली।
0: सुना दे,
1: अब सुना दी जाती है। ये भी बड़प्पन है।
0: चले गए अब जो है ना, सुन लो बैठ के आराम से तसल्ली से।
1: ये भी बड़प्पन है आपका वैसे। अच्छा तो चलिए, बड़े वालों ने तो आपको जैसे भी ट्रीट किया, आपने अपने छोटे से दो वालों को कैसे ट्रीट किया ये बताइए।
0: मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ना आज भी अच्छे से ट्रीट करता हूँ। अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज की उनको चाहत है, तो उनके साथ हूँ हर वक्त।
1: वाह,
2: तो भाई हमारा
0: पीछे नहीं हटता।
1: वाह,
2: तीसरे नंबर वालों का ये होता है।
0: मैं तो बड़े वालों के साथ भी पीछे नहीं हटता। मैं तो बड़े
1: वालों माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: तो क्या चलो चलो करना है तो चलो कर।
2: जहाँ से भाई मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि मैं भी तीसरे नंबर वाली बच्ची हूँ, तो मुझे पता है जो तीसरे नंबर वाले थे, हमारे दिल बड़े नरम होते हैं, हम बड़े क्या कहते हैं, बहुत काइंड लोग।
1: बट गए भैया, टोकन बट गए जबरदस्ती के।
0: नहीं नहीं, जबरदस्ती की नहीं, ये बात हकीकत है। मैंने इसको भी देखा सुना है, तीसरे नंबर पे होते हैं भाई, वाकई में बहुत नरम दिल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल करने वाले होते हैं।
1: तो भैया आज से मैं जाके लिखवा लेता हूँ घर वालों से, मेरा लिखो भैया तीसरा नंबर, मुझे नहीं मालूम। मुझे अच्छा बनना मुझे अच्छा बनना
0: बाद में क्या होगा, क्या अच्छा होता भाई, मेरा लास्ट नंबर होता।
1: हाँ नहीं यार, ये बात तो मैं मानता हूँ। आखिरी वाला जो है, मतलब सबसे छोटा
2: वही
1: जो
2: वो भाई, वो लाडला, वो खिलौना होता है घर
1: सभी का ऑब्वियसली, और जितना भी बड़ा हो जाए।
0: भाई साहब हमारे लास्ट वाले हैं ना, वो कह रहे हैं मुझे, हमें जो है ना बाहर भेजो, हमें बाहर जाना, रशिया से भिजवाओ।
1: यहाँ पढ़ाई करनी है, वहाँ पढ़ाई करनी है,
2: और सारी डिमांडें पूरी होती है उनकी।
0: मत जाओ, बोले कि नहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है तैयारी करो, करते हैं इंशाल्लाह।
1: वाह वाह, क्या बात है भाई, अल्लाह ताला ऐसा भाई सभी को दे, और मतलब बना दे अल्लाह ताला।
2: अच्छा मजे की बात ये होती है कि छोटों तक आते आते ना माशाल्लाह बड़े भाई बहन इतने स्टेबल हो जाते हैं कि वो छोटे के लिए फिर चीजों को पुश करते हैं कि नहीं ये कह रहा है,
1: एटलीस्ट सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ,
2: उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है।
0: वो बात ठीक है आपकी, भाइयों के लिए तो अच्छा होता है ना कि उनकी जरूरत में हर चीज में शामिल होते हैं, मगर जब बिजी होती है ना तो उनकी नजरों में ना विलन बन
2: जाओ। अच्छा मैं तभी कहती हूँ कि आदमी जो है ना वो कुछ इस तरीके से पिसते हैं कि उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। आदमी एक तरफ बेगमें होती हैं, एक तरफ घर वाले होते हैं, बस अजीब और गरीब
1: आदमी इतना पिस्ता पिस्ता के बेचारा पिस्ता ही हो जाता, पिस्तों की शक्ल निकल लेती है उसकी, हरा हो जाता भाई पिस पिस के।
0: पिस्ता पिस्ता भी, वो पिस्ता का शब्द भी परेशान हो गया कि भाई मैं कौन सा वर्ड ढूंढूं अपने लिए।
2: नहीं तभी तो
0: उधर से
2: तभी जहाजे भाई, तभी तो जो शादीशुदा आदमी होते हैं वो दूर से नजर आते हैं कि ये शादीशुदा है।
1: जन्नती
0: सबकी सुनते रहे ना, अभी ना अगर हमारी मैडम कुछ कहती है ना, बोलती है ना कि ऐसा वैसा, मैं सुनता रहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
2: अच्छा ये यूनिवर्सल टैलेंट है आदमियों का,
1: आप सही कह रहे
2: हैं। सर इलाके बैल की तरह ही हूँ। हाँ हाँ
1: सही कह रही है। चलिए साहब ये बड़ी अच्छी बात रही,
0: उधर की भी सुन लेते हैं, इधर की भी सुन लेते हैं, करनी वही जो अपने मन की।
2: ये चीज मतलब ये यूनिवर्सल टैलेंट है, हमें क्यों शिकायत हो रही है अपने वालों से, ये तो यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल टैलेंट मिला।
1: चलिए साहब तो काफी चीजों का खुलासा हो गया आज इसी बात के रहते रहते। थैंक यू सो मच जैस हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फैमिली हमेशा खैरियत से रहे। जी और कुछ कहना चाहते हैं
0: भाई?
1: मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता हो गया और इस बीच शायद आप कनेक्टेड नहीं थे या किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए इस वक्त में।
0: नहीं
1: भाई जरा गर्मी वगैरह भी है तो ख्याल भी रखें इंशाल्लाह अपना, और दुआ यही है यार कि फैमिली अच्छी रहे आपकी, आप भी खुश रहें। अब आगे कनेक्ट होते रहिए, इस टाइम पे थोड़ा वक्त निकाला करिए हमारे लिए। ऑलराइट देन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंड फॉर नाउ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सबके 12:12:02।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: फिलहाल बात खसारे तक आ गई है। अब्दुल हन्नान और समर जाफरी भी यही कह रहे हैं।
3: One of my favorite tracks।
2: चलिए साहब, तो सफा का ये पसंदीदा गाना आप लोग भी इंजॉय कीजिए। दोपहर के इस वक्त में आवाज तो आपकी, सन अपनी जगह। सुन रही है FM 107, दिल से
3: देसी।

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं। ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे।

0: बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक एलन वसेलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम। बिल्कुल इस वक्त दिल से देसी पे हम बात कर रहे हैं आज देसी फैमिलीज की, जिसमें आपका नंबर क्या है ये अभी तक हमें पता चला और क्या क्या उसके फायदे और नुकसान नहीं आजमाइशें क्या क्या नहीं ये भी हमें जानने के लिए मिली।
3: शुगर कोट करके क्यों बात कर रहे हो, खुलकर बात करो ना। अच्छा, आप तीसरे नंबर वाले हो नहीं है, आपको पता नहीं है।
0: अच्छा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, महविश मैडम का प्रोग्राम कब होता है जी? ओके, अखलाक है हमारे साथ। अखलाक, क्या बात है, महविश मैडम का प्रोग्राम दोपहर में होता है? अगर मैं
3: महविश मैडम सही हूँ तो इस वक्त छुट्टी पर हैं और सितंबर से महविश मैडम का प्रोग्राम
0: नहीं, अभी तक मॉर्निंग में थी वो नादिया के साथ, अब वो छुट्टी पे हैं फिलहाल और इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद अब सितंबर में जो नए प्रोग्राम होंगे उनमें वो किस वक्त कहाँ होंगी ये भी आपको बता दें। वो सुबह 10 बजे होंगी और उनके साथ जो होंगी
3: वो होंगी सरप्राइज है।
0: चलिए, इसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वेब एड्रेस पे जा सकते हैं urduradio.qa, या फिर जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं वहां पर आके जस्ट लिखिए FM 107, आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, उसके अंदर आपको तमाम मालूमात जो स्टेशन से मुतालिक है वो इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगी। कुछ मैसेजेस, उसके बाद कॉल, आप सबकी कॉल यहां पर आ रही है बराबर मुझे मालूम है। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड सर मैम, मेरा भी जो है कि दूसरा ही नंबर है, एक बहन बड़ी है एक बहन छोटी है, वो सेम लाइक मी, बीच में मैं हूँ, मैं दोनों तरफ से दबाया जाता हूँ, बड़ी वाली बहन हुक्म देती है, छोटी वाली बहन की इमोशनल करके काम करवाती है। क्या बात है यार। सरफराज आलम, और यहाँ पर माशाल्लाह क्यूटी को लिए मैं सरफराज भाई,
3: माशाल्लाह मैंने सरफराज से पहले ये कहा था,
0: नाइस वन,
3: कि इनकी माशाल्लाह जितना प्यारी सी बच्ची,
0: उम्र दराज करे। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, कैसे हैं सर आप, क्या हुआ सुनाने के लिए तरसते हैं?
3: आपको सुनने के लिए
0: सर,
3: सुनाने के लिए
0: मतलब जो लिखा हुआ यार,
3: बस वो समझ जाए ना, डीकोड करें ना।
0: दो सिस्टर बड़ी हैं सर और एक भाई छोटा है और एक सिस्टर छोटा है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं घर में सबका लाडला बेटा हूँ और मैं सर घर से भाग के आया था कतर।
3: अरे भाई,
0: नहीं पढ़ना चाहिए था क्या मुझे? अरबाज यार, अरबाज कोई चीज ऐसी है जो तुम्हारे साथ नहीं हो रही, एक सफा के साथ सब चीज हो रही है और अरबाज के साथ सारी चीजें हो रही, पेश आ रही है।
3: हम तीसरे नंबर वाले हैं तभी।
0: अच्छा साहब, चलिए बढ़ते हैं आगे और कहते हैं सलाम अलैकुम अस्सलाम, दिलबर अली हैं हमारे साथ। दिलबर दिलबर दिलबर गाना लगा दूंगा अगर अभी आपने ज्यादा मैसेज नहीं किए तो। हाय, मैं 8 नंबर पर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह
3: माशाल्लाह,
0: अली भाई हमारे साथ, अली भाई 8वें नंबर पर हैं, तो माशाल्लाह कितने टोटल हैं ये भी हमारे साथ शेयर करिए और क्या क्या उसके फायदे आपको अभी तक हुए हैं ये भी। तो भाई अब एक कॉल फिर मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा नंबर उठाऊं, 236 या 5012, जल्दी बताओ।
3: 1234567890
0: ये कौन सा बता दिया, चलो लाइन 1 पे उठा लेते। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
0: अहलन वसहलन,
3: कौन है हमारे साथ?
4: जी मोहम्मद अहसन बात कर रहा हूं।
3: एहसन भाई कैसे हैं?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है,
3: देखें बिल्कुल वैसे के वैसे जैसा सरव भाई ने दिमाग खागा के कर दिया है। अच्छा भाई ये बताएं कि आप कौन से नंबर वाले बच्चे हैं?
4: मैं जी लास्ट वाला हूँ।
3: माशाल्लाह, ये तो बताना पड़ेगा ना फिर, अब लास्ट वाला बोला है फिर ये भी बताएं कि कितने भाई बहन है आपके माशाल्लाह से।
4: हम माशाल्लाह 9 भाई और 1 बहन है, सबसे बड़ी बहन उसके बाद 9 भाई।
3: अच्छा, तो फिर आप सबसे एंड वाले, और बहनों के आप मेरे ख्याल से बहनों के दूसरे भाई हैं, ठीक, दो भाई हैं?
4: नहीं नहीं, एक बहन है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद 9 भाई हैं हम।
3: अच्छा ओके, मैं उल्टा सुन रही थी। तो भाई ये भाइयों के
5: सबसे छोटे
3: भाई हैं, तो ये तो भाई वो फुटबॉल की तरह पिसते होंगे।
4: जी जी ऐसे ही है, मगर ये है कि प्यार भी मिलता है लाड़
3: का। वो एक अलग चीज है, लेकिन भाइयों का जो रफ हैंडलिंग का तरीका होता है ना भाई, मेरे माशाल्लाह से 4 भाई हैं और मैं अपने भाइयों की यूं समझ ले, मैं हूं तो वैसे तीसरे नंबर पर, लेकिन मैं अपने भाई के लिए जो नमूना मुझे उसने बनाया है ना, फुटबॉल की जगह मैं होती थी उसके पांवों में, तो मुझे पता है भाई कैसे रफ हैंडल करते हैं।
4: जी ऐसी है, मगर ये है कि मुझे एक बहन का इतना प्यार मिला नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ी है, उनके बच्चे भी मुझसे बड़े
3: हैं। अरे बहनों के बच्चे भी बड़े?
4: उनके जो बच्चे हैं उनकी शादियां भी हो गई है, मगर मेरी नहीं हुई।
3: ये कौन से वाले मामू हैं भाई के मामू अभी तक कतार में खड़े हुए हैं?
4: जी मैं लास्ट में हूँ और इंशाल्लाह ये दिसंबर में जा रहा हूँ पाकिस्तान शादी के लिए।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर ये मसला तो नहीं होगा कि हमारे मामू के अभी तक शादी नहीं हुई।
4: जी ऐसे ही है,
3: सही।
4: मेरे तो जो भाभी हैं उनकी जो मेरे भतीजे हैं वो मुझे मजाक करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम स्कूल जाएंगे तो जब आपकी शादी होगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे चाचू की शादी है।
3: अच्छा, ये हकीकत बात है, क्योंकि मेरे जो सबसे छोटे मामू हैं उनका भी कुछ ऐसा ही रहा है मामला, कि मेरी वालदा, मतलब हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग अपनी फर्स्ट सेकंड ईयर में थे और सेकंड ईयर भी हमने पास कर लिया था, तब भी हमारे मामू की शादी नहीं हुई थी। तो हमने कहा भाई, हमें लोग मजाक उड़ाते, कहते थे ये तुम्हारे मामू हैं या तुम्हारे दोस्त हैं, ये बिल्कुल वो वाला डिफरेंस लगता था उनका। तो मैं समझ
4: सकती हूँ, वो काफी सालों से बोल रही थी, मैं खुद ही नहीं था कह रहा, जहाँ पे करना चाह रहा था उधर से थोड़ा सा रेट था और अब अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिल गई है।
3: चल अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई क्या तो बात कर दी आपने, इंतजार का फल मीठा होता है, हमें खुशी दे दी आपने बात।
5: क्या बात है, क्या
3: मैंने सोचा अभी मुझे दुख आएगा, कहेंगे जहाँ करनी थी वहाँ तो बात नहीं हुई, ये मैंने कहा हाय अभी दुख आएगा, लेकिन आपने अच्छी बात कर दी बोलकर के अल्हम्दुलिल्लाह, वेट मुनासिब तरीके से कर लिया और फिर घर वाले मान गए।
5: क्या बात है भाई। तो एहसन भाई चलिए अब थोड़ा सा गेम शेम की तरफ भी बढ़ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात करी आपने। उल्टी गिनती खेल रहे हैं हम और आपने उल्टी गिनती 10 नंबर जाना है, आपको स्लॉट दूंगा मैं और फिर इंशाल्लाह आप जितने टाइम में भी करेंगे देखेंगे दूसरे हजरात जो हैं कितने टाइम में करेंगे, ठीक है, समझ आए ना मेरी बात, अगर मैं समझा पाया तो रेडी है?
4: जी जी रेडी।
5: Alright then, मैं अपनी घड़ी भी
3: रेडी,
5: कल 6 सेकंड का था जो हमेशा का रहा है अभी तक का, 6 से नीचे शायद कभी किसी ने नहीं किया। एक कोई मैडम थी मुझे याद आ रहा, राबिया और समथिंग, शायद उनका 5 सेकंड एंड सम पीको सेकंड था, याद नहीं। तो एनी हाउ, सो एसन भाई 555 से 545 जाना है,
4: 555
5: जाना है,
4: 554, 553,
5: नहीं नहीं 555 भी गिनना है एंड 545 भी गिनना होगा,
4: मतलब कि गिनती 545।
3: अच्छा पहले ये कन्फ्यूजन दूर करें कि आप इंग्लिश में बोलेंगे कि उर्दू में?
4: जी जी मैं उर्दू में बात,
3: उर्दू में बोल।
5: हाँ तो फिर उसी में बात करते हैं, तो 555 भी कहना है और 545 भी कहना है, मतलब इसके बीच में जो है वो तो कहने ही है, जल्दी से जल्दी समझ में आ गई बात?
4: ठीक है जी, 555, 554, 553।
5: अरे मैं घड़ी रेडी कर लूं।

0: और जैसे मैं कहूंगा कि अब तो शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आपका टाइम शुरू हो गया अब।
1: 555, 553, 552, 551, 558, 549, 548, 549.
2: Very good!
0: क्योंकि क्योंकि क्योंकि क्योंकि 500 भी कहना है और नंबर भी कहना है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें आपने 8 सेकंड में कर दिया भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, 8 सेकंड बहुत अच्छा स्कोर है एसन भाई। एंड देखते हैं कि आगे जो भी हमारे साथ चैंपियन जुड़ेंगे वो क्या करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातें करी आपने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: एक बात है
0: जी,
2: जो सबसे छोटा होता है ना, उसको प्यार भी बहुत ज्यादा मिलता है, और फिर वो सबके लिए एक्सपेरिमेंट बोर्ड भी बहुत बड़ा होता है। हर कोई अपनी अपने हिसाब से ना उसको ट्रीट कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट बोर्ड भी होता है।
0: तो आपने ऐसा किया है अपने छोटे के साथ? जबी, तो ये है इकबाल।
2: मुझे मुझे बहन का बड़ा शौक था, अपनी बहन का। अब अल्लाह ताला ने दे दिया भाई, तो मैंने तो उसको फ्रॉकें भी बनाई है।
0: क्या नाम है?
2: उसामा। शादी हो गई माशाल्लाह
0: भैया।
2: तो अभी
0: तो उसामा बदला नहीं लेगा, तुम समझ नहीं रही। डैड एंड डैड एंड डैड एंड, अब कोई और बदला लेगा उसामा का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कौन है हमारे साथ?
3: मैं मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ।
0: इब्राहिम भाई, क्या बात है, कैसे हैं इब्राहिम भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा इब्राहिम भाई, आपका नाम सुनकर ना मुझे हो रहा है कि बड़ा इंस्टेंट हो गया ये नाम। मैंने बहुत बहुत टाइम बाद सुना है ये नाम, और मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है नाम की भाई, हमारे दीनी लिहाज से भी। तो मैंने बहुत टाइम बाद सुना भाई ये नाम, अच्छा लगा। अच्छा
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलिए साहब, तो क्या कहते हैं, रेडी है गेम के लिए?
3: गेम के लिए तो रेडी है।
0: अच्छा,
3: और गेम खत्म होने के बाद मैंने को एक बात भी पूछना है फिर आप लोगों से।
0: पहले पूछ ली
2: ना, पहले पूछ ले। मैं प्रेशर, अंडर प्रेशर।
0: हाँ ये तो गेम हमारे साथ हो जाएगा वरना।
2: प्रेशर कुकर
3: गेम खेल ले।
0: अरे यार, ये तो आप गेम हमारे साथ करे, बता दो इब्राहिम भाई क्या बात हो गई। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं निकलूंगा सफा।
2: वो जुर्म भी याद आ रहे हैं जो अभी तक किए नहीं है।
0: क्या हो गया? हंस रहे यार माशाल्लाह। हाँ, ये हसीन भी मुझे अमरीशपुरी वाली हसी। और वो भाई साहब, अबे बिल्कुल वैसी हसी अमरीशपुरी जैसी, कहाँ से लाए?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हंसते होना चाहिए।
0: माशाल्लाह, नहीं अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता रखे। मगर फिर भी बता तो दीजिए क्या पूछने वाले थे। हमारी तो कहानी में अटक गई। यार चलिए, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी हंसता रखे। तो चलिए गेम शुरू कर लेते हैं, बाद में हंसी हंसी खेलते रहेंगे। ओके, तो इब्राहिम भाई आपने 534 से 524 जाना है पीछे, ठीक है?
3: कितना? 534 से है?
0: हाँ, 34 से 24। ओके, रेडी हैं?
3: जी जी।
0: आपका टाइम शुरू हो गया अब।
3: 524, 535, 535, 535, 539, 539, 539, 542, 542, 542, 542, 542, 542, 542, 542, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524, 524
0: रिकॉर्ड तोड़े थे, आपने 8 सेकंड में किया भाई, मतलब आपने भी 8 सेकंड में किया।
2: लेनी चाहिए थी,
0: वो जो रुक गए ना, वरना आप 7 पे आ जाते यार। वेल डन, वेल प्लेड इब्राहिम भाई, अच्छा खेले यार, अच्छा खेले। अब एक बार हंस के दिखा दिया मेरे पूरी की तरह।
3: एक बात हो
0: हसरा जी बताइए। नहीं हसरा,
3: तो मैंने ये बात पूछना था कि लास्ट टाइम पे वो रेडियो में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वो फुटबॉल से वहाँ टीम का, अगर आपको याद है मॉर्निंग टाइम नाजिया के साथ।
0: ओके, आपका प्राइस
3: 500 रियाल।
0: क्या करोगे 500 रियाल?
3: तो आपका प्राइस बोल के मुझे
0: यार, ये तो अब यार बड़ा प्यारा आदमी है यार, इसके बैठना पड़ेगा इनके साथ तो मुझे यार।
2: वेरी गुड हो गया,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे। इब्राहिम भाई, वो प्राइजेस का मामला ऐसा है कि काफी लोगों को मिल गए हैं, काफी लोगों के मिलना रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसी अपडेट आ जाएगी आपको बुला लिया जाएगा। और

0: तरह के, अगर आपको कोई फोन कॉल मैसेज कुछ भी आया तो उस पर आप एक बार और कनेक्ट करके मालूम कर लें, ठीक है?
1: जी, मैंने एक दो बार उसको मैसेज किया, वो आगे से वो मैसेज सीन के तो दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आते उसकी तरफ से कि
2: वो असल में मैंने पहले ये बात कही थी कि रिप्लाई इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको भी आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा ना, तो वो लोगों को गलत तो इन्फॉर्मेशन देने से रहे तो वो खुद भी चुप है इसीलिए,
0: क्योंकि वो इदारा ही दूसरा है, डिपार्टमेंट ही दूसरा है जहाँ से
2: भी वो रिप्लाई का वेट कर रहे हैं लोगों से।
1: चलो फिर हम हंसते ही थे,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं हंसते रहिए और इंशाल्लाह आएगा जरूर, क्योंकि जाहिर बात है
2: भाई ऐसा बंदा ना मुझे बड़ा, मुझे इब्राहिम भाई मुझे माशाल्लाह आपसे
0: इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, इसी तरह आप हंसते रहे यार, मजा आ गया बात करके इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू
2: करें इब्राहिम भाई, कॉल किया करें,
0: हाँ जुड़ा करें हमारे साथ।
1: फिर आगे सर्वर में बोलेगा
2: माशाल्लाह तारा नजर बच्चे।
0: ओके ओके ओके बाय,
2: चलो कॉल काटो, चलो चलो
0: ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला खुश रखे आपको और इसी तरह आप हंसते रहे, मजा आ गया भाई बात करके माशाल्लाह से भाई, भाई से इब्राहिम भाई से, सब क्या कहती है ब्रेक या
2: हाँ। वैसे एक बात है, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हाँ, कहूंगी
0: बिल्कुल,
2: कि कितना अच्छा लगता है ना किसी और को मुस्कुराते हुए, खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है exactly, और एकदम से आपके दिमाग में जो प्रेशर चल रहा होता है एकदम से,
0: दैट इज व्हाई हमें जो भी परेशानी में हम हो सफा, हमें मुस्कुराते ही रहना चाहिए, जैसे आप मुस्कुराती रहती हैं यार, ऐसी बात नहीं है, आप तो इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। ओके, एक चैंपियन और उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। हेलो,
3: अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं?
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं हसनैन बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ।
2: सही, हसनैन भाई कहाँ से? पाकिस्तान से?
3: जी मैं सफा जो है लाड़काना से।
2: अरे लाड़काना से हैं? यस भाई, हमारा ये सारा हमारा एरिया है। अच्छा लाड़काना की गर्मी भाई, ओए होए, अच्छा आपको कतर आके ज्यादा गर्मी तो महसूस हुई नहीं होगी, लाड़काना की गर्मी इज लाड़काना की गर्मी,
3: लाड़काना की गर्मी भी है लेकिन कतर उससे ऊपर की चीज
2: है। अच्छा मुझे ऐसा लगता था, सही क्या क्या क्या,
3: क्योंकि लाड़काना में ना रात को आपको पता है दिन में ठीक है ठीक है गर्मियाँ होती है, लेकिन रात में ना ऐसी ठंडी हवाएं आ जाती है, दिन की गर्मी आदमी भूल जाता है।
0: तो इज इट अ हिल स्टेशन और समथिंग?
2: नहीं नहीं, हिल स्टेशन नहीं है, पूरा शहर है भाई।
0: अच्छा,
2: हमारा लाड़काना पूरा अच्छा खासा शहर है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ
0: है।
2: नहीं, सिंध में हमारा जो प्रोविंस है ना सिंध, उसी के अंदर आता है, हम लोग इसे इंटीरियर सिंध कहते हैं।
0: ओके ओके ओके ओके ओके, क्या बात है यार,
2: इट्स अ सिटी, इट्स अ वेरी वेल नोन सिटी। हाँ ये और बात है कि इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि दिन के टाइम तबाही गर्मी होती है लेकिन शाम के टाइम मौसम अच्छा हो जाता है।
0: ऐसा हिल स्टेशन पे होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि शायद पहाड़ी इलाका है।
2: वो पहाड़ी इलाका नहीं है, वो बाकायदा।
0: तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, शाम में तो डेली बारबेक्यू हो सकता है फिर। हसनैन भाई, शाम में तो डेली बारबेक्यू हो सकता है फिर, कोई मसला ही नहीं है। तो एक काम, हाँ है ना, तो एक काम करें, उस रवायत को यहाँ पे जारी रखते हैं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए,
2: आपका खर्चा करवा रहे, आप कहें ना भाई गोश्त वोश्त आप लेकर आ जाना, बना हम लेंगे
0: गोश्त, मैं ऐसा लेके आऊंगा कि पूछिए मत, चर्बी और गोश्त पूरा का पूरा मैं लेके आऊंगा, आप क्या बात कर रहे
2: हैं,
0: मैं खुद आऊंगा ना।
3: कर रहा था काफी टाइम से, आज मैंने 27 कॉल की है या 28 कॉल थी, आज तो कॉल मिला के
0: जहाँ चाहे वहाँ रहा है,
3: कॉल पे कॉल करता रहना
0: हसनैन भाई, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, और एक दिल से दिल की राह है जो आपको हमसे कनेक्ट कर गई है इस वक्त, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। गेम खेलने के लिए रेडी है?
3: जी जनाब, रेडी रेडी तो नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो
0: हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। सो आपने 89 को उर्दू में क्या कहते हैं मालूम है आपको?
3: 89 को,
0: हाँ
3: 89 को
0: 99
3: कहते हैं।
0: 99 तो एक पक्की बात है, मतलब उर्दू में
3: यस 99 उसके बाद
0: चलिए 89। और 79 को क्या कहते हैं?
3: 79 को 87।
0: अच्छा चलिए ठीक है, ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं।
3: 79 को 79 कहते हैं।
0: ओके चलिए, तो आपने, हम 89 भी कहते हैं 89 को, और तो चलिए अब हाँ मैं इसको नवासी पोती सारी रिश्तेदारी गिना देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आपने 589 से 579 जाना है।
3: मुझे आपने थोड़ा मुश्किल में
0: इसलिए मैंने इसलिए पहले रिश्तेदारियां और सारे नाम मालूम कर लिए ना आपसे, तो इट्स इजी यार, मुश्किल थोड़ी है, बदल दूंगा।
3: अच्छा
2: अच्छा इंग्लिश में कर लें, इंग्लिश में अगर आपको।
0: नहीं बदल देते हैं यार, चलिए
3: ट्राई करते हैं।
0: ये बात हुई ना चैंपियन की, 589 से 579
2: क्या ही हो रहा है, मेरे तो सर के पास जहाज घूम कर जा रहा है।
0: हसरत भाई रेडी है?
3: जी जी हाँ, 500
2: मेरी तो रूह काम गई।
0: कहा से मैं ही कर दूं? चलो यार बदल देता हूँ, भाई को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। तो चलिए साहब 577 से वापस 10 चले जाइए 567, अब तो ठीक है।
3: ओके अभी
0: ये ठीक है
3: जी हाँ, 577 पे ओके,
0: इसमें आराम है ना। हाँ ठीक है चलिए, मतलब 577 से 567
3: सफा बहन को पता है हमारी उर्दू को, ये 89 ये थोड़ा करके भी हमें मुश्किल में
0: चलिए ठीक है। तो
3: हमें 4-5 अभी बेसिकली मैं बलोच हूँ, मुझे बलोची फिर इंग्लिश फिर उर्दू फिर सिंधी फिर अरबी, मतलब काफी लैंग्वेजेस में थोड़ा थोड़ा टच में, तो परफेक्ट किसी लैंग्वेज में नहीं हो पाते।
0: नहीं आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी लैंग्वेज भी बोलते हैं आप, तो कोई मसला नहीं। ठीक है तो आइए शुरू करते हैं, आप रेडी हैं?
3: जी जी हाँ जनाब मैं रेडी।
0: चलिए सब, तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 579।
0: दो रह गए, ये कब लौटाएंगे?
3: 579, 575,
2: ये कब लौटाएंगे?
3: दो रह गया था,
0: दो रह गए थे, वो कौन देगा, मेरे पास तो वैसे ही नहीं है। मैं तो दो की बात कर रहा था, जो दो रियाल रह गए थे खाली। आप 69 पे रुक गए, 67 तक जाना था। अरे सॉरी की कोई बात ही नहीं, बड़े भाई
2: कल फिर से, कल फिर से।
0: हाँ आप आए खिले, आप अपने आप में चैंपियन है यार हसनैन भाई, क्या बात कर रहे हैं आप।
3: नहीं
0: बहुत शुक्रिया, इन शाह आगे भी करते रहिए और जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है?
3: इंशाल्लाह
0: ओके ओके हसनैन भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
3: बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा मैं एक बात बताऊं
0: जी,
2: इन्होंने जो अपना शहर बताया ना, सिटी बताई जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इनकी उर्दू इतनी साफ है।
0: हाँ ये तो बहुत अच्छी बोल रहे थे, मैं वही कह रहा
2: हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी उर्दू बड़ी अच्छी थी, और इनका लबो लहजा भी ऐसा नहीं लग रहा था, वो तो माशाल्लाह गुड गुड भाई। और इन्होंने इतनी मजे से उर्दू की गिनती भी गिनती, मैं ये भी आपको बता दूं कि उर्दू, क्योंकि ये जिस एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो इंटीरियर सिंध है।
0: क्या बात है यार, तो अपने आप में चैंपियन
2: बोली जाती,
0: अपने आप में चैंपियन है, दो रख लिए अपने पास, तो क्या हुआ बाकी इन्होंने 8 तो अदा करे, 8 तो अदा करे। ऑलराइट देन, तो चलिए साहब बढ़ते हैं जरा माहौल को थोड़ा।
2: मेरा गाना ना चलाया।
0: अच्छा कुछ था क्या?
2: सतरंगी।
0: ओहो अभी चलेगा सफा, इसके बाद क्या बात कर रही हैं आप?
2: ऋतिक रोशन, हाय हाय हाय।
0: The important thing is कि लकी अली है। आई वाह। तो फिलहाल दोपहर के इस टाइम पे एंजॉय कीजिए लकी अली की आवाज में और रामिया की आवाज में गाना, ना तुम जानो ना हम।
2: वाकई में ना तुम जानो ना हम।
0: सन एंड साउंड पे इस वक्त सफा और सरवर आपके साथ हैं, ओनली ऑन FM 107, दिल से
2: देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: बिल्कुल मिलती जुलती आवाज है सफा से।
5: सरवर भाई बाकी सब छोड़ो, मोहब्बत के साथ रंगे इस गाने में स्टेजेस।
4: तो इतना तो समझ ही गए होंगे आपके गाना क्यों सुना रहा हूं मैं आपको। भाई सफा की पसंद का गाना, मुझे घर भी जाना है। अब वाकई गाना आपने बहुत खूबसूरत है सुनने का, हमने कवाली कर दिया
5: है
4: और कविता साथ निभाती। फिलहाल एंजॉय कीजिए सॉन्ग, बस गाना सुनते ही वापस आ रहे हैं दिल से देसी।

0: भाई गाना इतना अच्छा है अपने आप में, मगर मुझे ये नहीं पता था सफा पे हाल आ जाएंगे इस वक्त बैठी हुई स्टूडियो में। सफा जो है काबू में नहीं है अपने। What a beautiful song. सोनू निगम एंड कविता।
1: नहीं सिर्फ इनको कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, मैंने कहा ना
0: हमें भी जाता
1: शाहरुख खान
0: हमने भी तो लगाया
1: रहमान की कंपोजिशन। ओ माय
0: यार हमने भी तो लगाया यार। मुझे जाता है पूरा। वेलकम बैक एलन व सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागत हम बिल्कुल इस वक्त सफा और सरवर आपके साथ हैं, जहां आपकी आवाज जो है इस वक्त गूंज रही है सन एंड साउंड में, और यहां
1: हमारी आवाज गूंज रही है हमारी
0: हाँ, बिल्कुल हमारी और आपकी मिलकर एक साथ
1: हाँ ना, तो हम
0: एक बड़ा अच्छा मैसेज है यहां पर और पूरा मतलब लेटर है वो पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कौन है हमारे साथ?
1: दिल से लिखा गया है सर, भाई दिल से
0: नहीं, खान साहब हैं कोई, और बड़ा अच्छा डीपी भी लगा रखी है, देखो कहाँ बैठे हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे।
1: खान साहब आपने वो तस्वीर लगाई जो हम ख्वाबों में देखते हैं।
0: कौन से खान है ये नहीं बताया। ओके कहते हैं घर में हमारा 6 नंबर है, अच्छा छठे नंबर पर है यानी छठा नंबर, लेकिन मजे की बात ये है कि गलती कोई भी करे सजा का नंबर हमेशा हमारा ही लगता था। मैं अगर कोई गलती कर देता था तो असल अदालत रात के दस्तरखान पर लगती थी। अब्बा आ जाते होंगे एक्चुअली। सब खाना खाते थे और साथ मेरे केस की समात भी चलती थी। अम्मी अब्बू बड़े बहन और भाई सब बारी बारी अपना फैसला सुनाते, और कभी फैसला डांट पर खत्म होता तो कभी थोड़ी बहुत मार पिटाई भी।
1: हाथ साफ हो जाते थे ना,
0: फ्री मिल जाती थी। बड़ा अच्छा लिखा यार। अब तो फोन की घंटी बजे तो लगता है कि शायद फिर कोई पुराना केस खुल गया है।
1: अच्छा लिखा यार, नाइस वन। इनकी बातें सुनकर मुझे जो मुझसे छोटा वाला भाई है ना, एग्जैक्टली वो चौथे नंबर का एग्जैक्टली उसके साथ ही होता था। मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलती की होगी, नहीं,
0: घूम फिर कर
1: वो जो उससे छोटा वाला है ना वो भी कोई हरकत करता था ना तो बात घूम फिर कर चौथे नंबर वाले के ऊपर आती थी, पता नहीं क्यों।
0: कहते मैं सबसे लास्ट हूँ और घर से नाराज होकर आया, पहली सैलरी सेंड की और मेरा भाई बोला कि आप नाराज हो 1 साल। अच्छा
1: और नाराज हो 1 साल।
0: दिलवर है हमारे साथ, क्या बात है यार, बड़े बड़े हीरो हैं।
1: नाराजगी में पैसे भेज जा रहे हैं तो भाई 1 साल और नाराज रहो।
0: कहते प्लीज अटेंड कॉल, बिल्कुल मैं कॉल लूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ही हो, ये मैसेजेस भी जरूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, सफारी कैसे हो? उम्मीद है सफारी, वाकई सफारी लिखा हुआ है, देखो
1: सफा जी लिखा होगा ना, ये जो
0: ना। ओके कहते हैं उम्मीद है कि आज का सवाल, मैंने सुना कि आप कितने नंबर पर हैं, तो भाई बहन उसी टाइम से मैं कॉल मिला रहा हूँ लेकिन नंबर भी आ रहा है, अब तक कॉल नहीं मिल रही, 10 भाई बहन में से 8 नंबर पर हूँ। चलो यार मोहम्मद रैन है हमारे साथ, लेट्स सी अब ये कौन है, किसका नंबर लगा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सबर भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ, खलील भाई?
2: जी जी खलील प्राचार।
0: तो ये क्या किया आपने, गए नहीं आप? हमने तो कल अलविदा कह के भेजा था आपको।
1: हमारी
2: नहीं, मेरी रात की फ्लाइट है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी जा सकता हूँ एयरपोर्ट।
1: हम होते तो अभी तक जा भी चुके होते थे।
0: मैं तो समझा कि शायद कल आप निकल गए होंगे बाई रोड और समथिंग, ये तो अभी आपने सरप्राइज कर दिया यार।
2: फ्लाइट

0: वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा फ्लाइट है रात की, चलिए यार, वेरी नाइस।
1: अदी सफा हाने गालाए पई लड़का ने लाए, पर लड़का ने लाए
0: ओ जी एक ते दो ते ट्रे, यहां तो यही याद कर पाए बस।
2: एक ट्रे
1: पूछा नहीं कि वहां की चीज कौन सी मशहूर है। ये
2: लड़काना का हमें तो अचार अच्छा लगता है भाई, मैं तो आपको सही से बता रही हूँ।
0: अजी हाँ, काय का अचार?
1: नहीं सफा बहन, आपको बताऊं, लड़काना अमरूद मशहूर है और शिकारपुर का अचार मशहूर है।
2: अरे हाँ, मैं शायद कंफ्यूज हो गई हूँ, एक मिनट, सॉरी, मैं शायद कंफ्यूज हो गई, शिकारपुरी अचार।
0: आप क्या मशहूर है?
1: लाड़काना के अमरूद।
0: अमरूद हो, हो जबरदस्त फल है यार।
2: और शिकारपुर मुझे याद है, हम लोग जब छोटे थे तो मामू को स्पेशली मेरी अम्मा भेजा करती थी शिकारपुरी अचार के लिए।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो नाम शिकारपुर और बन रहा है अचार, बाकी मतलब ये समझ में नहीं आ रही मेरे बात को।
2: अच्छा शिकारपुर मुख्तलिफ चीजों के अचार बनते हैं भाई।
1: और गर्मी की अभी बात हो रही थी तो गर्मी सुई की बहुत मशहूर है।
0: सुई मतलब बाकायदा ये शहर का नाम है, मीन्स निडल।
1: अच्छा सुई प्लांट है वहाँ हमारा, ऑयल एंड गैस का, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑयल एंड गैस से है पाकिस्तान में, तो
0: यार
1: मैं जानता
0: यार, नॉलेज में इजाफा हो रहा है
1: जो है ना, सुई प्लांट है, सुई प्लांट पाकिस्तान में सही। जो गैस निकलती है उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं वो लोग करते हैं।
2: सही,
0: वाह।
2: अच्छा
0: क्या बात,
2: ये चीज मेरी नॉलेज में आ जाई कि अच्छा इसीलिए से सुई गैस कहते हैं। ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके।
1: सुई में एक दो प्लांट है, एक पीपीएल का है, एक सुई सौथर्न गैस कंपनी का है जो कि अब प्राइवेट हो चुका है।
2: सही,
0: चलिए साहब बड़े अच्छी बात, और अच्छा हुआ कि आप आज भी तशरीफ लाए और आपसे कनेक्ट हो गई कॉल।
2: आपने तो यादें ताजा कर दी,
1: नॉलेज में थोड़ा इजाफा।
0: वेरी गुड, हमारी नॉलेज में, मेरी भी नॉलेज में इजाफा किया आपने, तो बहुत ही बढ़िया भाई। खलील भाई गेम खेलने के लिए रेडी?
1: नहीं नहीं,
0: ऐसा ना
1: करना, गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा जरा दो मिनट ठहर के, दो मिनट बाद।
0: अरे दो तीस सेकंड में क्या, आठ सेकंड में गेम हो जाएगा, बहुत ही आसान है।
2: गेम हो
0: जाएगा आठ सेकंड में।
1: इंग्लिश होगी, इंग्लिश होगी,
2: ठीक है ठीक है।
0: हाँ जो कोई बात नहीं, 547 से 537 वापस जाना है।
2: आप अभी स्पेनिश बोलते हैं सर भाई, स्पेनिश
1: में
0: 537 10 वापस जाना है बस।
2: स्पेनिश बोलना शुरू करते
1: 537
0: बुला देते ना किसी को।
1: अच्छा आप रेडी वो लीजिएगा, क्योंकि कल भी मैं इसी उसमें रह गया पीछे के, आपने रेडी नहीं।
0: चलिए तो 1 2 3 गेट सेट रेडी।
1: अस्सलाम वालेकुम, गेट अपना 547 546 545 544 543 542 541 540 539
0: 5:38, 5:37, 5:36 हो गया, हो गया, यहीं तक जाना, यहीं तक भाई, यहीं रोक दिए, आगे मत ले जाइए रिक्शा।
2: डबले डबले डबले।
1: चले
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 13 सेकंड में किया और खेला यार, अच्छी क्या बात है। देखिए 13 सेकंड लिए मैंने आपसे, आप 2 मिनट कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई, अपना ख्याल रखिए, खैरियत से जाइए, और कल जो वादे किए थे हमसे वो सारे याद रखिएगा।
1: खैरियत से लेके जाए, खैरियत
0: आमीन इंशाल्लाह
1: ताला। आपके लिए भी बहुत दुआ करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा।
0: अहलन वसहलन, जरूर दुआ करिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम,
1: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़।
2: अरे भाई अब इन्होंने मुझे लाड़काना का अचार याद दिला दिया, अब मैं क्या करूं
0: यार, और मुझे लगने लगी इस चक्कर में ये गलत बात
2: है। लाड़काना वालों का अचार अगर आप खा ले ना, तो भाई आप जिस चीज का अचार बोले, मुझे तो वो प्याज वाला अचार।
0: तो यार मंगा दो यार, कोई है भाई लाड़काना वाले जो थे, क्या नाम था भाई का, हसनैन क्या नाम था, मैं नाम भूल गया,
2: खलील भाई
0: या इब्राहिम भाई या हसन भाई,
2: खलील भाई थे।
0: अच्छा चलिए बहरहाल तो वो आएंगे, नहीं खलील भाई तो अभी जुड़े हमारे साथ, उससे पहले कौन जुड़ा था हमारे साथ जिन्होंने याद दिलाया था,
2: एहसान भाई थे मेरे ख्याल से,
0: मेरे ख्याल में एहसान भाई, एहसान बहरहाल भाई अचार चाहिए भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रजा में राजी हैं।
0: माशाल्लाह भाई,
3: अहलन आप बताएं आप लोग कैसे हैं, आप दोनों? नहीं, जी मैं हुसैन बात कर रहा
0: हूँ।
2: हुसैन भाई, अच्छा भाई हुसैन भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
2: देखिए अगर आप हमसे हालचाल पूछने वाले हैं तो सिर्फ सरव भाई से पूछिएगा, मुझसे ना पूछिएगा। सरव भाई के साथ बैठकर बंदे का क्या हाल हो सकता है
0: यार,
2: सफा क्या बंदा जो ना, अल्लाह माफ करे, सर्द खाने में ऐसा लगता है पड़े हुए।
3: अभी थोड़ी देर पहले अभी एक कॉलर ने कॉल किया था, मोहम्मद शायद उनका नाम था भाई का।

0: ऐसा वो इतने मस्त कॉलर थे, इतना हंसा, इतनी हंसी आई कसम,
1: वो मेरे साथ आके हमेशा हंसते हैं,
0: बंदा हंसा रहा था।
1: कहते हैं हाँ, कहते हैं मतलब मुझे हंसी में हराना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। तो ये है
2: माशाल्लाह कितना कितने हंसमुख, मतलब उनकी हंसी भी ऐसी थी मोगेम्बोटी कि बंदे को खुद सुन के हंसी आ रही थी।
1: बिल्कुल
0: उसमें बस यही बोलना था, दिल जले दिल जले।
1: हाँ, और अमरीश पुरी वाली हंसी थी भाई साहब, बहुत ही करीब उसके। तो चलिए भाई हुसैन भाई, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाइए। बिल्कुल ठीक है,
0: गेम खेलने के लिए की गेम हो जाएगा जी, बिल्कुल रेडी
2: गेम हो जाएगा। जिंदगी में ऑलरेडी गेम
1: बहुत खतरनाक खेलते हैं ये, उल्टी गिनती बहुत ही चैंपियन रहे हैं, मुझे पता है। जब तो माशाल्लाह से रेडी हैं पूरे तरीके से। चलिए तो 598 से 588 वापस जाते हैं। हाँ,
0: 98 से 88,
1: हाँ 98 to 88।
0: ओके
1: सीख हो गया, मैंने सही बोला ना वैसे। हाँ,
2: उर्दू की गिनती गिनते हुए मेरी शक्ल देख रहे क्या तो जोक मारा।
1: नहीं नहीं समझ गए, सही बोला है। तो हुसैन भाई रेडी?
0: जी रेडी।
1: चलिए तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
0: 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588।
1: वेरी गुड।
2: अरे भाई सांस तक ना लिया
1: यार,
2: भाई
1: आज सारे चैंपियन एक साथ खड़े हैं यार। 8 सेकंड में ही किया है हुसैन भाई ने, जो के रिकॉर्ड है आज का। दो हमारे जो चैंपियन है वो ऑलरेडी 8 सेकंड में कर चुके हैं, तो पहले नंबर पे ही हैं आप।
2: पहले नंबर पे तीन कुर्सियां लगानी पड़ेंगी।
1: अहसन भाई, मोहम्मद इब्राहिम एंड नाउ हुसैन भाई, क्या बात है यार। और देखा तुमने क्या जबरदस्त एकदम, तो काफी मैंने ईटे रोड़े डाले इसके अंदर, मगर फिर भी भाई ने सही वक्त में टटटटटटट कर दिया। बेहतरीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ा मजा आया। अच्छा ये बताइए, घर में आपका कौन सा नंबर है जाते जाते?
0: जी मैं घर में सेकंड नंबर पे हूँ भाई जान।
1: नंबर दो? क्या नंबर दो
2: का?
1: मैं दो नंबर का हूँ यार। तो चलिए
0: दो नंबर पे हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे मसले मसाइल मुकदमे चले मेरे ऊपर घर वालों के, लेकिन मैंने पापा को अपने अंडर कर लिया, क्योंकि जब मैं
1: बस तो फिर क्या, फिर तो हमने सारे मुकदमे जीत लिए, जब अब्बा को अपने साथ कर लिया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है
0: भाई। जब मुझे पता है कि मैं मार खाने वाला हूँ, तो जैसे ही पापा घर पे आते थे, आइए मैं पैर दा देता हूँ, गले लग जाता हूँ,
2: भाई भाई ने डीकोड कर लिया लाइफ को,
1: कैसे कैसे बच के निकलना है। वेरी गुड, तो कह चलो अभी पैर दोबारा कल मारूंगा।
0: क्यों मार रही है उसको, हमेशा देखते है की तुम मझले बेटे को ही मारती रहती हो, सर्वर भाई।
1: और ये इतना शरीफ मेरे पैर दबा रहा है, मुझे पूछ रहा है
2: हाय हाय हाय हाय मेरा बच्चा।
1: अच्छा फिर तो आप जान पूछ के कोहराम मचाते होंगे घर में, कब आएंगे तो मैं तो सेट कर ही लूंगा।
0: जी जी हाँ, मैं तैयारी में रहता हूँ कि अब्बा आने का टाइम हो गया, मैं एकदम शरीफ बन जाता हूँ।
2: अरे भाई बहुत ही शातिर।
1: ओह माय गॉड।
0: लेकिन एक चीज है सरवर भाई, उससे मुझे लेकिन आज भी मैं अपने अब्बा को गले लगा पाता हूँ, अच्छे से बात कर पाता हूँ, ऐसे बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अब्बा से बात करना, मेरे दो और दो भाई हैं, लेकिन वो लोग नहीं बात कर पाते हैं, मतलब सही से होता है ना एक।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, एहतराम है हमारे यहाँ, हमारे मुल्कों का एहतराम है और एक डर है, सभ्यता है, तरीका है। तो भारल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मैं आपसे बात कर गया, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए हुसैन भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो भाई अब चलते चलते कुछ मैसेजेस और उसके साथ साथ आपसे इजाजत। कहते हैं मुझे लगता है सर भैया की शादी नहीं हुई इसलिए इतना हंस रहे हैं।
2: नहीं, या शादी हो गई है, उसके ट्रॉमा से गुजर चुके हैं इसलिए हंस रहे हैं।
1: ये कहा

0: डी कोड कर पाएंगे चलते चलते। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, मैडम कैसे हैं आप? हमारा नंबर घर में पहला है। हमारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मान लेते हैं। मोहम्मद कलीम वाकरा से। क्या बात है यार, तो पहले हैं तो बातें मानी जानी भी चाहिए।
1: जब कोई बोलता है ना पहले नंबर का, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो गाना आता है, छोटा डॉन।
0: अस्सलाम वालेकुम, आवर फेवरेट लिटिल चैंप मिस्टर सरवर भाई।
1: लिटिल चैंप, ओ माय गॉड, अब क्या रुलाओगे?
0: कहते हैं एंड मिस एंजल मैडम सफा, बोथ ऑफ डूइंग गुड जॉब। कौन है, इतनी तारीफ कर दी हमारी? मकसूद भाई, मकसूद भाई
1: पैसे दिए थे आपने?
0: हाँ वही, मैंने ज्यादा दे दिए, लगा ज्यादा दे दिए। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कॉल कीजिए प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। इंशाल्लाह नसीम भाई कल बात होगी, अब वक्त हो गया। मुमताज हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, सफा मैम कैसे हैं आप दोनों? हम पांच भाई हैं, लेकिन मैं सेंटर में हूँ, लेकिन मैं हर तरफ से बच जाता था। बड़े भाई भी पिटाई खाए थे, छोटे भाई भी पिटाई खाए थे, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे कभी नहीं मारा। बीच में थे ना तो बच जाते थे, उधर से शुरू करते थे तो वो पिट जाते थे, इधर से शुरू करते थे तो वो दूसरे पिट जाते थे। 92 मिस कॉल्स किया इब्राहिम ने। ओहो सॉरी। जसविंदर शाजी, हाँ जी साडा भी सलाम हैगा, क्या बात है। ओके देन, अब वक्त हो गया कि आपसे इजाजत ले लें। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
1: मुझे ऐसा लगा जैसे अभी वो वाला गाना आ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला।
0: जश्न बहारा के साथ छोड़े जा रहे हैं, जावेद अली के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको। और इसी नोट पे भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और तफरी का सिलसिला जो है वो कायम रहेगा।
1: सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

107. दिल से देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम और बहुत सा प्यारा सा वेलकम हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो कतर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हमें सुन रहे हैं। भाई आप ट्यून इन हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। साथियों, कभी एक वक्त था जब स्टेडियम की रोशनी, क्राउड का शोर और जीत की खुशी ज्यादातर मर्दों के नाम होती थी। एक ऐसा दौर जहां किसी लड़की का बैट उठाना, फील्ड में उतरना या पोडियम का ख्वाब देखना अजीब समझा जाता था। लेकिन अब कहानी बदल रही है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ। भाई आज दुनिया भर में एक नई लहर उभर कर सामने आ रही है जो कि है वुमेन इन स्पोर्ट्स की लहर, जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि सोच को भी बदल कर रख देती है। साथियों, वेलकम है आप सभी का वुमेन इन स्पोर्ट्स में, एक ऐसा शो जो सेलिब्रेट करता है हिम्मत को, जज्बे को और उन कहानियों को जो रुकना नहीं जानती। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और इस सफर में मैं आपको ले चलूंगी उन लोगों की कहानियां सुनाने जिन्होंने ना सिर्फ खेल जीता बल्कि जिंदगी के रूल्स भी बदल कर रख दिए। ये शो सिर्फ मैचेस और टूर्नामेंट्स के बारे में नहीं है, ये शो है उन ख्वाबों का जो छोटी सी गली से शुरू हुए और इंटरनेशनल स्टेडियम तक पहुंच गए। ये शो है उन लड़कियों का जो हर उस कमेंट जो कि था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है को अब देखो मैं क्या करती हूँ मैं बदल देती हैं। आज के दौर में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं है साथियों, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, एक ऐसी जगह जहाँ टैलेंट को पहचान मिलती है, जहाँ मेहनत को इज्जत मिलती है और जहाँ एक लड़की की जीत पूरी की पूरी कम्युनिटी की जीत बन जाती है। जब एक लड़की अपने स्कूल, अपने शहर या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है ना, तो भाई वो सिर्फ मेडल नहीं जीत रही होती, वो सोच बदल रही होती है, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रही होती है लोगों की सोच में। जरा सोचिए, जब एक छोटी सी बच्ची टीवी पर या अपने स्कूल के ग्राउंड में किसी फीमेल एथलीट को जीतते हुए देखती है ना, तो उसके दिल में क्या जज्बा आता होगा। एक छोटी सी आवाज कहती होगी, अगर वो कर सकती है तो मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूंगी और क्या पता मैं भी इसकी तरह हूँ। और यहीं से शुरू होता है एक नया सफर, विमेन इन स्पोर्ट्स। साथियों, विमेन इन स्पोर्ट्स इसी चेंज की कहानी है। इस शो में हम ये जानेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स लड़कियों को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और फियरलेस भी बनाता है। हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो उन्हें फेस करने पड़े, कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी सपोर्ट की कमी और कभी सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर के ख्यालात। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं क्योंकि उनके पास एक गोल था और उस गोल के आगे हर रुकावट छोटी लगने लगी थी। भाई इस शो का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फैमिली और कम्युनिटी का रोल। पहले जहां लड़कियों को खेलने पर भी सवालात उठाए जाते थे, आज वही फैमिलीज उनके लिए चीयर कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं। जब एक बेटी टूर्नामेंट जीतती है ना, तो वो सिर्फ अपनी जीत नहीं कैलकुलेट कर रही होती, वो उसके घर वालों का फखर बन जाती है, उसकी कम्युनिटी का गुरूर बन जाती है। ये वो लम्हात होते हैं जब थ्योरी रियलिटी में तब्दील होती है, जब जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता बल्कि एक जीती जागती मिसाल बन जाता है। तो साथियों, चलिए मेरे साथ यानी सफा के साथ आप सुनेंगे उन कहानियों को जो दिल को छू जाती हैं, उस मेहनत को जो अक्सर नजर नहीं आती, सुबह के जल्दी उठने से लेकर रात तक प्रैक्टिस करना, इंजरी से लेकर कमबैक तक, हर एथलीट के पीछे एक कहानी होती है साथियों जो दूसरों को इंस्पायर करती है। ये शो उन हीरोज के लिए है जो हेडलाइंस में हो या ना हो लेकिन अपनी जिंदगी में चैंपियंस होते हैं। ये शो उन लड़कियों

है जो अभी सिर्फ ख्वाब देख रही हैं, ताकि वो कल उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर सकें। विमेन इन स्पोर्ट्स एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कहती है कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। ये एक मूवमेंट है जो हर उस लड़की को मोटिवेट करती है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सोच और सोसाइटी दोनों को जीत लेती है। तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग सफर के लिए, जहाँ हर एपिसोड एक नई कहानी लाएगा और हर कहानी एक नई उम्मीद जगाएगी और हर उम्मीद एक नई दुनिया की तरफ लेकर जाएगी। ये है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहाँ हर लड़की की जीत सबकी जीत है। और मैं हूँ सफा आपके साथ हर कदम पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी एथलीट की कहानी जो सिर्फ टेनिस कोर्ट पर अपनी पावरफुल सर्व्स और अनप्रिडिक्टेबल विक्ट्रीज के लिए मशहूर नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने अपनी आवाज, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी हिम्मत से स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई कन्वर्सेशन शुरू कर दी। आज की हमारी स्पॉटलाइट है एक ऐसी चैंपियन पर जिसने बहुत कम उम्र में टेनिस की दुनिया पर अपना नाम लिख दिया। एक ऐसी एथलीट जिसने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, दुनिया की नंबर वन प्लेयर बनी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी दिखाया कि एक एथलीट सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स नाम नहीं होती। ना ना ना ना, एक एथलीट एक इंसान भी होती है जिसके इमोशंस होते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं और पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं। भाई, आज हम बात करने लगे हैं नायोमी ओसाका की। साथियों, टेनिस की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी गेम की वजह से नहीं याद रखे जाते, बल्कि इसलिए भी याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्पोर्ट से बाहर निकलकर भी लोगों को इंस्पायर किया। और नायोमी ओसाका उन्हीं एथलीट्स में से एक हैं। उनकी कहानी एक यूनिक मिक्स है कल्चर्स का, ड्रीम्स का, हार्डवर्क का और डिटर्मिनेशन का। एक जापानीज मदर और हाइटियन फादर की बेटी, अमेरिका में परवरिश पाने वाली नायोमी ने अपनी जिंदगी के सफर में मल्टीपल आइडेंटिटीज को एम्ब्रेस किया और फिर टेनिस कोर्ट पर दुनिया को अपने टैलेंट से जवाब भी दिया। लेकिन हर चैंपियन नायोमी ओसाका की कहानी भी सीधा सक्सेस से शुरू नहीं होती। नो, हर मेडल और हर ट्रॉफी के पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं और ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक एथलीट की पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख देते हैं। नायोमी ओसाका की पैदाइश 16 अक्टूबर 1997 को ओसाका, जापान में हुई। अच्छा, उनका नाम भी उनके बर्थ प्लेस ओसाका सिटी की वजह से ही रखा गया। उनके वालिद लियोनार्ड फ्रांसोइस हाइती से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी वालदा तमाकी ओसाका जापानीज थी। नायोमी और उनकी बड़ी बहन मारी बचपन से ही दो मुख्तलिफ कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, जब नायोमी छोटी थी, उनकी फैमिली जापान से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्लोरिडा में गुजारा। अच्छा, फ्लोरिडा का एनवायरनमेंट टेनिस के लिए बहुत बेहतरीन था और यहाँ से नायोमी की प्रोफेशनल जर्नी की बुनियाद मजबूत हुई। साथियों, नायोमी ओसाका का टेनिस का सफर एक इंटरेस्टिंग कहानी, मैं कहूंगी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रखता है। उनके फादर लियोनार्ड ने उन्हें टेनिस की तरफ मोटिवेट किया जब उन्होंने ये देखा कि सरीना और वीनस विलियम के फादर रिचर्ड विलियम्स ने अपनी बेटियों को टेनिस में दुनिया के टॉप लेवल तक पहुंचा दिया। तो भाई, उन्हें भी अपनी बेटियों के लिए इसी तरह का विजन दिखाई देने लगा और उनके दिल में भी चाह हुई कि उनकी बेटियां भी ऐसी टॉप लेवल तक पहुंचें। तो भाई, लियोनार्ड ने नायोमी और मारी को बहुत छोटी सी उम्र से टेनिस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उन्होंने उनकी टेक्निक्स, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस पर फोकस किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन फैमिली सपोर्ट ने नायोमी को अपने ड्रीम्स के पीछे लगातार मेहनत करने का हौसला दिया। अच्छा, नायोमी ये पर्सनालिटी भी शुरू से यूनिक थी ना, वो बहुत टैलेंटेड थी लेकिन नेचुरली शाय और क्वाइट सी रहने वाली बच्ची थी। अच्छा, कोर्ट पर वो अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा अपने गेम के जरिए बात करती थी, लेकिन जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, दुनिया ने ये देखा कि इस खामोश सी पर्सनालिटी के पीछे कितनी पावर और डिटर्मिनेशन छुपी हुई है। अच्छा, प्रोफेशनल टेनिस में एंट्री लेना किसी भी एथलीट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हर टूर्नामेंट में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं,

प्रेशर होता है और हर पॉइंट के लिए फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो भाई नायोमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पावरफुल सर्व थी। अच्छा, उनकी स्पीड, एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल और कोर्ट पर कॉन्फिडेंस ने टेनिस एक्सपर्ट्स को बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन नायोमी का असली ब्रेक थ्रू तब आया जब दुनिया ने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर पहचाना। यानी कि 2018 का साल था नायोमी ओसाका के करियर का टर्निंग पॉइंट। यूएस ओपन 2018, एक यंग जापानीज प्लेयर फाइनल तक पहुंच चुकी थी। सामने थी टेनिस की लेजेंड सेरेना विलियम्स। अच्छा, ये मैच सिर्फ एक चैंपियनशिप मैच नहीं था, नो, ये टेनिस हिस्ट्री का एक यादगार मोमेंट बन गया भाई। देखिए, नायोमी ने इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेला और सेरेना विलियम्स को हरा कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। वो किसी भी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली जापानीज प्लेयर बन गई। सोचिए, एक यंग एथलीट जो दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस स्टार में से एक का सामना कर रही थी और फिर उसी स्टेज पर चैंपियन बनकर उभरती है। वाह भाई वाह, ये मोमेंट नायोमी के लिए ही नहीं बल्कि जापान और एशिया के टेनिस फैंस के लिए भी बहुत हिस्टोरिक था। लेकिन नायोमी की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि उनकी सक्सेस सिर्फ टेनिस तक नहीं रुकी, वो एक ऐसी जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव बनी जो अपनी आइडेंटिटी को प्राउडली एक्सेप्ट करती है। उन्होंने अपने जापानीज और हाइटियन बैकग्राउंड को सेलिब्रेट किया और दुनिया को ये दिखाया कि मल्टीपल कल्चर्स का हिस्सा होना एक स्ट्रेंथ हो सकता है। अच्छा साथियों, आज के जमाने में ना एथलीट्स सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज नहीं रहे, वो रोल मॉडल्स बन चुकी हैं। उनकी बातें, उनके डिसीजंस और उनकी स्ट्रगल्स आप कह लें कि इट रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल। नायोमी ओसाका ने भी अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस के लिए किया। उन्होंने मेंटल हेल्थ, प्रेशर और एथलीट वेलबींग जैसे टॉपिक्स पर बात की जो पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में अक्सर इग्नोर कर दिए जाते थे। अच्छा, ये बहुत हिम्मत की बात थी क्योंकि जिस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता, आप प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर उसके बारे में बात करें, तो ये बहुत हिम्मत की बात थी क्योंकि अक्सर एथलीट से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा स्ट्रांग नजर आए, हमेशा कॉन्फिडेंट हो और कभी भी अपनी वीक शो ना करें। लेकिन नायोमी ने ये मैसेज दिया कि भाई, स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपके इमोशंस नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को समझें और अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। अच्छा, आज नायोमी ओसाका सिर्फ एक आप कह रहे हैं कि टेनिस चैंपियन नहीं है, वो एक इंस्पायरेशन है उन तमाम यंग गर्ल्स के लिए जो अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहती हैं। वो एक मिसाल है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस पर कामयाब हो सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ दूसरों को बीट करने का नाम नहीं है, सक्सेस अपने आप को समझने, अपनी जर्नी एक्सेप्ट करने और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का नाम है। आप देख, एक ग्रेट एथलीट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसका टैलेंट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका डिसिप्लिन या फिर प्रेशर के वक्त खुद को कंट्रोल में रखना। हमें अपनी राय जरूर भेजें। आप हमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं @FM107 कतर के जरिए। कहीं मत जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं नायोमी ओसाका की पूरी कहानी। हम जानेंगे कि किस तरह एक शाय सी बच्ची जापान से निकलकर टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल हो गई, किस तरह उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते और किस तरह उन्होंने स्पोर्ट्स को सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि चेंज के प्लेटफॉर्म में बदल कर रख दिया। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107।

0: सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो साथियों, आज की स्टोरी ऑफ वीक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एथलीट की जिसने बहुत कम उम्र में टेनिस की दुनिया में अपनी जगह बनाई और फिर सिर्फ अपने गेम से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी से भी, अपनी हिम्मत से भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया। ये कहानी है नायोमी ओसाका की, एक ऐसी लड़की की कहानी जो जापान के एक शहर में पैदा हुई, अमेरिका में बड़ी हुई और मुख्तलिफ कल्चर्स को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया और फिर टेनिस कोर्ट पर दुनिया की सबसे पावरफुल प्लेयर्स में शुमार हुई। साथियों, जब हम किसी चैंपियन को ट्रॉफी उठाते हुए देखते हैं ना, तो अक्सर हमें सिर्फ उनकी कामयाबी और वो फाइनल मोमेंट्स नजर आते हैं, हमें वो सालों की मेहनत नजर नहीं आती जो उस ट्रॉफी के पीछे हुई होती है, हमें वो सैक्रिफाइसेस नजर नहीं आते जो एक एथलीट और मैं कह लूं कि उनकी फैमिली करती है। नायोमी की कहानी भी इसी मेहनत, प्लानिंग और यकीन की कहानी है। देखिए, नायोमी ओसाका की पैदाइश, जैसा कि मैंने बताया, 16 अक्टूबर 1997 को ओसाका जापान में हुई। उनकी फैमिली बाद में यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई और नायोमी ने अपना बचपन फ्लोरिडा में गुजारा। फ्लोरिडा का जाहिर बात है कल्चर अच्छा था, टेनिस के मामले में फैसिलिटीज अच्छी थी, तो उनके लिए बहुत अहम साबित हुई ये जगह। यहीं से उनका प्रोफेशनल करियर भी टेनिस में शुरू हुआ। अच्छा, उनके फादर ने नायोमी और उनकी बहन मारी को टेनिस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस तक महदूद नहीं था, इसमें बहुत डिसिप्लिन, पेशेंस और फैमिली कमिटमेंट शामिल था। नायोमी ने बहुत छोटी सी उम्र में टेनिस रैकेट पकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी शुरू से ही थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी रिजर्व्ड सी थी वो। वो कोर्ट पर बाहर ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन कोर्ट पर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग से नज़र आता था। उनकी खासियत थी कि वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अल्फाज में नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए एक्सप्रेस किया करती थी। टीनेज ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते नायोमी ने ये डिसाइड किया कि वो प्रोफेशनल टेनिस में करियर बनाएंगी। उन्होंने जूनियर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता टेनिस एक्सपर्ट्स की नज़र उन पर जमती चली गई। 2013 में नायोमी ओसाका ऑफिशियली प्रोफेशनल टेनिस सर्किट का हिस्सा बन गई थी। लेकिन शुरुआत के दौर में उन्हें भी हर यंग एथलीट की तरह चैलेंज का सामना करना पड़ा था। प्रोफेशनल टेनिस का लेवल बहुत हाई होता है साथियों, हर टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं और हर मैच में प्रेशर होता है, लेकिन नायोमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पावरफुल गेम थी। उनके सर्व्स टेनिस की दुनिया में बहुत मशहूर हुए। उनकी स्पीड, एग्रेसिव स्टाइल और पावरफुल ग्राउंड स्ट्रोक्स ने उन्हें दूसरी प्लेयर से अलग बनाया। अच्छा, वो ऐसी प्लेयर थी जो मैच के प्रेशर में भी एनर्जी और फोकस मेंटेन रख सकती थी। फिर आया दौर 2016 का। 2016 में नायोमी ने टेनिस वर्ल्ड में ज्यादा अटेंशन हासिल करना शुरू कर दी। उन्हें WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अच्छा, एक्सपर्ट्स को अंदाजा होने लगा था कि ये यंग प्लेयर फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम बना सकती है। फिर आया 2018 में। ये साल नायोमी ओसाका की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। US ओपन 2018, एक यंग जापानीज प्लेयर दुनिया की सबसे बड़ी स्टेजेस में से एक पर खड़ी हुई थी और सामने थी सरीना विलियम्स। सरीना विलियम्स का नाम हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल एथलीट में शुमार होता है, ये ध्यान में रखें। उनके सामने फाइनल खेलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो प्रेशर ही अलग होता है, लेकिन नायोमी ने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ मैच खेला। उनकी पावरफुल सर्व्स, काम एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन ने सबको इंप्रेस कर दिया। यानी कि नायोमी ने सरीना विलियम्स को हरा कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया और ये मोमेंट बहुत इमोशनल था भाई। लेकिन नायोमी के ये एक ड्रीम कम ट्रू था, वो किसी भी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली जापानीज प्लेयर बन गई थी। जापान में उनकी कामयाबी को बहुत सेलिब्रेट किया गया था और वो एक नेशनल इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन इस हिस्टोरिक फाइनल का एक और इमोशनल पहलू भी था। मैच के बाद नायोमी ने सरीना विलियम्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी शो की। उनकी पर्सनालिटी ने और ह्यूमिलिटी ने भी लोगों का दिल जीत लिया। अच्छा, ये मोमेंट ना हमें ये दिखाता है कि एक ट्रू चैंपियन सिर्फ जीतने से नहीं बनता, एक चैंपियन अपने एटीट्यूड और रिस्पेक्ट से भी पहचाना जाता है। फिर आया ईयर 2019। अच्छा, 2019 में नायोमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी था। अच्छा, इस विक्ट्री के बाद वो ऑफिशियल रैंकिंग

में दुनिया की नंबर वन फीमेल टेनिस प्लेयर बन गई। वो एशिया से आने वाली पहली प्लेयर थी जो WTA सिंगल्स रैंकिंग्स में नंबर वन पोजीशन पर पहुंची। जरा सोचिए, एक यंग एथलीट जो बचपन टेनिस खेलना शुरू करती है, कुछ ही सालों में दुनिया की टॉप रैंक्ड प्लेयर बन जाती है। ओ भाई, ये अचीवमेंट सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती भाई, नहीं मैं तो नहीं मानती, इसके पीछे सालों की डेडिकेशंस और सैक्रिफाइसेस होते हैं। नयोमी का प्लेइंग स्टाइल भी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। वो एग्रेसिव प्लेयर थी, उनके पावरफुल शॉट्स ओपोनेंट्स के लिए मुश्किल क्रिएट कर देते थे, लेकिन उनका मेंटल गेम भी उनकी सक्सेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। टेनिस सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं होता साथी, ये एक मेंटल बैटल होती है। एक प्लेयर को हर पॉइंट के बाद अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, एक गलती के बाद दोबारा फोकस हासिल करना होता है। नयोमी ने इस एस्पेक्ट में भी बहुत ग्रोथ दिखाई। लेकिन साथियों, नयोमी की स्टोरी सिर्फ टेनिस विक्ट्रीज की स्टोरी नहीं है, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक और इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू की, जो कि थी मेंटल हेल्थ के बारे में। 2021 में फ्रेंच ओपन के दौरान नयोमी ने मीडिया कमिटमेंट्स के हवाले से अपने कंसर्न्स शेयर किए और बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी मेंटल वेलबींग पर असर डाल रही हैं। इसके बाद उनका डिसीजन दुनिया भर में डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अच्छा, कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने अलग ओपिनियंस भी दिए। लेकिन एक बात जरूरी भाई, एथलीट्स की मेंटल हेल्थ पर दुनिया भर में सीरियस कन्वर्सेशंस शुरू हो गई। नयोमी ने ये मैसेज दिया कि एथलीट भी इंसान होते हैं, उन पर भी प्रेशर होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, और अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल ट्रेनिंग। ये उनकी लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। साथियों, नयोमी ओसाका ने टेनिस कोर्ट पर ट्रॉफीज जीती हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज जीती, वो थी उनकी आवाज। वो यंग एथलीट्स के लिए इंस्पायरेशन बनी, जो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी के साथ भी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। अच्छा, नयोमी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी या आपका सफर आपकी कामयाबी तक लिमिटेड नहीं होता। आप खामोश हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और फिर भी पावरफुल हो सकते हैं। आप डिफरेंट कल्चर्स का हिस्सा हो सकते हैं और फिर भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कैरी करते हैं। आप चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और फिर भी ये कर सकती है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की पावर है। नयोमी ओसाका की इंटरनेशनल सक्सेस ने बहुत सी यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया, खासतौर पर उन लोगों को जो मल्टीपल कल्चर्स और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी आइडेंटिटी खुद एक मैसेज है। वो जापानीज भी हैं, हाइटियन हेरिटेज भी रखती हैं और अमेरिका में ग्रो अप भी हुई हैं। उनका सफर बताता है कि डिफरेंट कल्चर्स का कॉम्बिनेशन वीकनेस नहीं होता बल्कि खूबसूरत स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो भाई, आज का कतर जैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये मैसेज और भी मीनिंगफुल है। देखिए, कतर में दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नेशनैलिटीज, कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ काम करते हैं और रहते भी हैं। इस एनवायरमेंट में यंग एथलीट्स के लिए इंटरनेशनल रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर ने भी पिछले कुछ सालों में विमेंस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। कतर में विमेन एथलीट्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग और दूसरे तीसरे स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, जब यंग गर्ल्स नयोमी जैसी एथलीट को देखती हैं ना, तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्पोर्ट्स एक सीरियस करियर भी हो सकता है। स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्पोर्ट्स लीडरशिप भी सिखाता है साथियों। लीडरशिप का मतलब सिर्फ टीम को कमांड करना नहीं होता, नो। लीडरशिप का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को समझना और पोजीशन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना। देखिए, नयोमी ने अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म को इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस के लिए यूज किया। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि एथलीट्स की वेलबींग और मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। ये एक नया पर्सपेक्टिव था। पहले अक्सर एथलीट्स ये सोचा करते थे कि भाई, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा स्ट्रांग नजर आए, लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स ने हमें ये सिखाया है कि स्ट्रेंथ का मतलब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं होता। मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का ही हिस्सा होती है और ये मैसेज यंग एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर एथलीट अपने माइंड का ख्याल ना रखें

0: हेल्थ का ख्याल ना रखें तो वो ज्यादा बैलेंस्ड और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और खूबसूरत लेसन होता है रिस्पेक्ट। एक ग्रेट एथलीट सिर्फ इसलिए ग्रेट नहीं होता कि वो जीत जाता है, ट्रॉफीज हाथ में उठा लेता है। ग्रेट एथलीट वो होता है जो अपने ओपोनेंट्स, अपने कोचेस और अपने फैंस को रिस्पेक्ट करता है। नायोमी ने अपने करियर में कई ऐसे मोमेंट्स दिखाए जिन्हें आप कह सकते हैं कि भाई वो ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट उनके अंदर नजर आती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि कंपटीशन और रिस्पेक्ट साथ साथ चल सकते हैं। आप अपने ओपोनेंट्स को हरा कर भी फिर भी उनकी इज्जत कर सकते हैं और यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है। दोस्तों, अगर हम नायोमी ओसाका की जर्नी से कुछ बातें सीखते हैं ना, तो उनमें से एक ये है कि सक्सेस सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सक्सेस अपने आप को डिस्कवर करने का सफर भी होता है। स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, डिसिप्लिन देता है, हेल्थ अवेयरनेस देता है, लीडरशिप स्किल्स देता है और सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेना चाहिए। नायोमी ओसाका की कहानी हमें बताती है कि एथलीट की आवाज भी उसकी अचीवमेंट का हिस्सा होती है। एक रैकेट हाथ में लेकर शुरू होने वाला सफर कभी कभी दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है और शायद यही स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक प्लेयर कोर्ट पर सिर्फ गेम नहीं खेल रही होती, वो एक मैसेज दे रही होती है, एक उम्मीद दे रही होती है और एक नई जनरेशन के लिए रास्ता बना रही होती है। तो हमारे लिसनर्स, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपके नजदीक स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या ला सकता है? कॉन्फिडेंस में, डिसिप्लिन में, लीडरशिप में या अपने ख्वाबों को फॉलो करने के हौसला देने में? अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा ऑन द नंबर 666-22-107 या चाहे तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मैसेज कर सकते हैं @FM107 कतर के जरिए। तो साथियों, आज का ये एपिसोड अपने खत्म को पहुंचता है। जाने से पहले बस इतना याद रखिएगा कि हर कामयाब इंसान की कहानी के पीछे एक ऐसा वक्त जरूर होता है जब चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, जब रास्ता क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंसान एक कदम आगे बढ़ता रहता है। नायोमी ओसाका की जर्नी हमें ये मैसेज देती है कि आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहीं से अपना सफर शुरू कीजिए, क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटी सी कोशिश से शुरू होती है। जिंदगी में चैलेंजेस जरूर आएंगे साथियों, कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कभी रिजल्ट्स आपकी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन असली कामयाबी ये है कि आप अपने पैशन को जिंदा रखें और अपने आप पर यकीन ना खोएं। हर यंग गर्ल जो किसी ड्रीम को फॉलो करना चाहती है, उसके लिए एक मैसेज है मेरे पास। आपकी आवाज इम्पोर्टेंट है, आपके गोल्स इम्पोर्टेंट है, आपकी मेहनत आपकी पहचान बन सकती है। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ मेडल हासिल करना नहीं होती, जीत ये होती है कि आप डर के बावजूद भी कोशिश करते रहें। कभी कभी तो जीत ये भी होती है कि आप गिरने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाएं, और कभी जीत ये भी होती है कि आप अपने सफर पर फखर करना सीख लें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लिसनर्स को जिन्होंने आज का विमेन इन स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, इस खास एपिसोड में हमारा साथ दिया। आपके मैसेज और फीडबैक्स हमें मोटिवेट करते हैं साथियों। हम आपके लिए दुनिया भर की इंस्पायरिंग एथलीट्स की कहानियां लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी फीमेल एथलीट की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और डिटर्मिनेशन से स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया। तब तक के लिए याद रखिए, ख्वाब देखना पहला कदम, लेकिन उन ख्वाबों के लिए लगातार मेहनत करना असल कामयाबी है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107 कतर। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए। और ये याद रखिए कि जो अपना ख्याल नहीं रखता, वो दूसरों का ख्याल क्या ही रखेगा। मेरी तरफ से साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30, यानी ये वक्त हो चला है।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: हाँ जी जनाब, तो क्या हाल चाल है? हाँ, तो ये इंडिकेशन ये होता है भाई, 3-2-1 बोलते ही मतलब समझ जाओ कि अब चैलेंज शुरू होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। हाँ, एस्केप रूम का यही रूल है कि आपको हर घड़ी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि नहीं? वैसे तो बताओ, कैसे जा रहे हैं आपके समर डेज? क्या हालचाल है? कैसा फील कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? बताओ बताओ, अपने दिल की बात भी मुझसे शेयर कर सकते हो। FM 107 पर मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और एस्केप रूम हमारे ज़िमखाज़म खास शो में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वैसे इस वक्त ये नंबर नोट कीजिए, 666-22-107, 666-22-107, क्योंकि इस नंबर के जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है। अच्छा ये बताओ, आज कहाँ कैद होने वाले हो? क्या लगता है, क्या हो सकता है? कभी आपने बारिश में तेज बारिश तूफान इसका सामना किया है? तो बस समझ लीजिए, आज वो बारिश वो तूफान 10 गुना ज्यादा होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो कैसे एस्केप करोगे? चलो देखते हैं आज के शो में आपका दिमाग कितना तेज चलता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से फिलहाल एक छोटे सा म्यूजिकल ब्रेक हम लेने वाले हैं, उसके बाद आज की सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और कहना है दिल से देसी, स्टे ट्यून्ड।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी,
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
3: Yes, and now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी A4 अमिता। तो आज का मंजर काफी खौफनाक है, मतलब ऐसा कि हम कांप जाएं। जी हाँ, आप तैयार हैं हमारे आज के चैलेंज के लिए, सारे एस्केप रूम के हमारे एडवेंचर पार्टनर्स? हाँ चले, तो क्या है आज हमारे एस्केप रूम की शान और किस चीज़ का सामना आज हमें करना पड़ सकता है? वैसे मैं कहूँगी, जिस चीज़ का सामना हम करवाने वाले हैं आपको, उसके पहले कोई भी चीज़, अगर आप कार में हैं या घर के आसपास कहीं हैं, तो कोई चीज़ आप मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि हम एक भारी भरकम रीइंफोर्स्ड आर्मर्ड वैन के अंदर हैं। ओके, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त एक खौफनाक नाइटमेयर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। वैन की मजबूत खिड़कियों के बाहर देखो, देखो जरा क्या देखने को मिल रहा है। 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने हर तरफ धूल और मलबे का एक वायलेंट वॉर्टेक्स बना दिया है। मतलब आज हम एक तूफान के बीच फंस गए हैं। पेड़ों की टहनियां और छतों के टाइल्स खिलौनों की तरह हवा में उड़ रही हैं। वैन इतनी जोर से हिल रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी हड्डियां भी कांप रही हैं, वो कपकपी हमको महसूस हो रही है। लेकिन ठहरो, सामने देखो, वो अंधेरा शांत हो रहा है, वो छट रहा है। यस, चीखती हुई हवाओं का शोर थम रहा है, सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया है। ऊपर आसमान एकदम गहरा और अजीब सा नीला है। हम तूफान के सेंटर में पहुंच गए हैं, पर अभी आप अपनी गाड़ी के अंदर जो बैठे हो, बेल्ट मत खोलना, ठीक है? हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट है, इससे पहले तूफान की पिछली दीवार हमें फिर से अपनी गिरफ्त में ले ले। यहां से जिंदा निकलने के लिए हमें अपने दिमाग का रीसेट बटन ढूंढना होगा। वेल, यहाँ के नज़ारे की बात ही बड़ी शानदार है, मतलब एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ इस तूफान का खूबसूरत नज़ारा। ऊपर देखिए, बादल हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम की दीवारों की तरह खड़े हैं। मेट्रोलॉजिस्ट इसे स्टेडियम इफेक्ट कहते हैं। ये ज़मीन की सबसे परसुकून जगह है, जो दुनिया की सबसे वायलेंट चीज़ से घिरी हुई है। हमारा ब्रेन भी कभी कभी ना इस तूफान जैसा हो जाता है, जब स्ट्रेस और डेडलाइंस हमें 150 की स्पीड पर घुमा देती है कि नहीं? आई एम वेरी श्योर आप अग्री करते होंगे। लेकिन याद रखिए, हर तूफान, हर साइक्लोन के बीच में एक सेंटर होता है जो हिलता नहीं है। तो अब क्लू नंबर 1 हमारे लिए आ चुका है। इस महातबाही के बीच मैं तूफान का वो हिस्सा हूं जिसका नाम आपके चेहरे के एक अंग या आपके चेहरे के एक पार्ट पर रखा गया है, जो कि शांत है, गोल है और सब कुछ देख सकता है। बताओ, ये हमारे चेहरे का कौन सा पार्ट है? 666-221

07666221107 हमारा नंबर है, इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजो। एक बार क्लू नंबर वन मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। देखिए हम जनाब एक बहुत बड़ी स्टॉर्म के बीच, एक साइक्लोन के बीच आ गए हैं और सेंटर में पहुँच गए जहाँ पर सब कुछ शांत है। और अब क्लू ये है कि इस महातबाही के बीच मैं तूफान का वो हिस्सा हूँ जिसका नाम आपके चेहरे के एक अंग या यूं कहें पार्ट पर रखा गया है। तो हमारे चेहरे का वो कौन सा पार्ट है जो बड़ा शांत है, गोल है और सब कुछ देख सकता है? तो थिंक एंड 666221107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दीजिए और देखते हैं कि ये क्लू नंबर वन, ये पहला पड़ाव आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। और अभी सोनू निगम की आवाज में ये बहुत ही शानदार गाना जो कि आपकी एनर्जी को बिल्कुल बरकरार रखेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त

चारों तरफ है, लेकिन हम तूफान के सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं। अब क्लू नंबर वन हमारे लिए आया कि इस महातबाही के बीच मैं तूफान का वो हिस्सा हूँ जिसका नाम आपके चेहरे के एक अंग या एक पार्ट पर रखा गया है, फेस का एक पार्ट। कौन सा है जो बड़ा शांत होता है, गोल होता है और सब कुछ देख सकता है? जाहिर सी बात है सही जवाब है हमारी आंखें, आईज। सो जोरदार तालियां हमारे उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए जरा इनके नाम देखें। सो शफक है, रूहान, अफसल है, और भी हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब देने की हमें कोशिश की है। मतीउल्ला है, फातिमा है, हुसैन साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ खान है, और दिलबाग सिंह है। वेरी गुड, जवाब नहीं आप सबका, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और पहले पड़ाव को पार किया। अब जो घड़ी है, वक्त बीता जा रहा है और अब कुछ मिनट हमारे पास और रह गए हैं। अब जिस वैन के अंदर है उसका जो जीपीएस है वो भी ना फ्लिकर कर रहा है। इस पर लिखा है बैलेंस द प्रेशर। ओके, एक साइक्लोन के सेंटर में एयर प्रेशर बहुत कम होता है। बचने के लिए हमें उस प्रेशर को अपनी सांसों से मैच करना होगा, ठीक है? जब आप हाई स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। कंट्रोल के लिए, कंट्रोल पाने के लिए खुद को धीमा करना पड़ता है कि नहीं? तो आइए जरा क्लू नंबर टू की तरफ रुख करते हैं कि जब दुनिया बहुत तेज भाग रही होती है तो मैं वो चीज हूं जिसे काबू में रखकर आप शांत रह सकते हैं। आप मुझे दिन में तकरीबन 20,000 बार करते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते। अच्छा, कौन सी चीज है जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है? बहुत सिंपल जवाब है, सोचिए। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। एंड आई नो वेरी मच कि आप बिल्कुल सही जवाब ही हमको देंगे, ठीक है? जब सिचुएशन स्ट्रेस में होती है तो अक्सर क्या कहते हैं लोग, सारे जो बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, कहते हैं कि अपने आप को थामो, अपने आप को शांत करो। कैसे, किस चीज के जरिए? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको जवाब पता है। जब दुनिया बहुत तेज भाग रही हो तो मैं वो वर्ड हूं, मैं वो शब्द हूं जिसे काबू में रख कर आप शांत रह सकते हैं। आप मुझे दिन में तकरीबन 20,000 बार करते हैं, क्या करते हैं? सोचे हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। वो चीज जो हमारे अंदर है उसके बारे में सोचे, जवाब दे। और अभी के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आपकी तरफ आ रहा है, कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे बजने वाले हैं, या यूं कहें तो बज गए हैं 2:02। ये वो वक्त है जब दो दो अलाइंड है, और इस वक्त हम विश करेंगे कि हम आज एस्केप रूम के इस तूफानी सिचुएशन से एस्केप कर पाए।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
3: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम की सिचुएशन भाई, आज बड़ी कमाल की सिचुएशन में हम फंसे हैं। मतलब एक बड़ा ही गहरा तूफान है, चारों तरफ तेज हवाएं हैं, इतनी तेज कि हमारी हड्डियां तक कांप रही हैं। इस तूफान के सेंटर में हम पहुंच गए हैं। हमें हमारी वैन की खिड़की से दिख रहा है, मजबूत खिड़की के बाहर दिख रहा है कि तूफान हमारे चारों तरफ है, लेकिन क्योंकि हम सेंटर में है तो थोड़ा सा शांत है, यानी कि शांति है। और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 क्लूज सॉल्व करने होंगे। पहले क्लू का हमने सही जवाब दे दिया है, आंख, आईज, हमारी आंखें, ये सही जवाब था। दूसरा क्लू ये था कि जब दुनिया बहुत तेज भाग रही होती है तो मैं वो चीज हूँ जिसे काबू में रखकर आप शांत रह सकते हैं। ठीक है, आप मुझे दिन में तकरीबन 20,000 बार करते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते, तो सही जवाब क्या है? कुछ लोगों ने लिखा है हार्ट बीट, कुछ ने लिखा है दिल की धड़कन, कुछ ने लिखा है ब्रेथ, कुछ ने लिखा है सांसें। तो जिन्होंने भी लिखा है ब्रेथ और लिखा है सांसें, क्या बताऊं मैं आपको, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। कमाल कर दिया आपने भाई। ये वही चीज़ है, मतलब अक्सर कहा जाता है ना कि जब आप परेशान होते हो कि अपनी सांसों को थामो, गहरी सांसें लो ताकि सब कुछ रिलैक्स्ड हो सके। हाँ, तो ये चीज़ है हमारी सांसें। अब कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब देने की हमें कोशिश कर डाली, आइए ज़रा देखें। तो यहाँ पर है, अच्छा कुछ लोगों ने ऑक्सीजन भी लिखा है। चलें, सही जवाब मैंने आपको बताया है, सही जवाब हमें फातिमा ने दिया है, अहमद मुल्ला ने दिया है, मोहम्मद ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, हुसैन साहब ने भी हमको बिल्कुल सही जवाब दिया है, शफक अफजल, अनवर रूहान ने भी हमें सही जवाब दिया है। गुड जॉब गाइस, आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। अब जब हमने जवाब सही दिया तो तूफान की बैक वॉल, काले बादलों का एक पहाड़ हमारी तरफ तेजी से भेज रही है। उफ, ये जो बादलों का पहाड़ है हमारी तरफ तेजी से बढ़ते आ रहा है। उफ, अब हमें कैसे भी करके जो हमारी गाड़ी बंद हो गई उसे शुरू करना पड़ेगा, उसे चालू करना पड़ेगा। तो इंजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम आखिरी एग्जिट की नहीं देते। ये चाबी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि आपके मन की एक कहते हैं ना, एक स्टेट है। ठीक है, सो क्लू नंबर 3 क्या है, आइए जरा देखते हैं कि अब हम इस आखिरी पड़ाव को कैसे पार कर सकते हैं। मैं वो हूँ, ठीक है, मैं वो वर्ड हूँ या मैं वो चीज़ हूँ जो तूफान के मरकज में बसता है। मैं वो हूँ जो आप तब महसूस करते हैं जब हवा थम जाती है और जहन साफ हो जाता है। मैं बिल्कुल खामोश और अनमूविंग होने की ताकत रखता हूँ। मैं क्या हूँ,

मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, क्या हो सकता है इन तीनों में से, हलचल, ठहराव, बदलाव. ठीक है, हलचल, ठहराव, बदलाव, इन तीनों में से क्या सही जवाब होगा, सोचें. क्लू नंबर 3, मैं वो चीज़ हूँ जो तूफान के मरकज में बसता है. मैं वो हूँ जो आप तब महसूस करते हैं जब हवा थम जाती है और जहन साफ हो जाता है. मैं बिल्कुल खामोश और अचल हूँ. क्या हूँ मैं, हलचल, ठहराव या बदलाव? ओके, सोचें और सही जवाब दें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. और अभी के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आपकी राहों में आ रहा है. उफ, ये गाना न जाने मतलब मेरी प्लेलिस्ट में कितने ही बार बज जाता है, तब भी मैं बोर नहीं होती. आई एम श्योर यू गोना लव इट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और क्या कहना आज के हमारे एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की। मतलब बड़ी मोहब्बत से हम अपने घर के लिए निकले थे लेकिन सोचा नहीं था कि हम एक बहुत ही मैसिव साइक्लोन में फंस जाएंगे। अब ये तेज़ तूफान हमारे चारों तरफ था और इस तूफान के एकदम से हम बीच में आ गए। तो जब हम सेंटर में पहुंचे तो सब कुछ एकदम से शांत हुआ लेकिन अभी भी हम फ्री नहीं हुए क्योंकि हमारे चारों तरफ ये तेज़ हवाएं हैं एंड वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। तो हमें तीन पड़ाव पार करने थे, तीन क्लूज सॉल्व करने थे। पहला क्लू हमने सॉल्व कर लिया, सही जवाब था आंखें, आईज। दूसरा क्लू भी हमने सॉल्व किया, सही जवाब था सांस, या यूं कहें सांसें। अब तीसरा क्लू ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम जिस वैन के अंदर हैं हम देख सकते हैं कि हमारी वैन के पीछे तूफान की बैक वॉल काले बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारी तरफ भेज रही है और वो हमें हिट करने ही वाला है। लेकिन अफसोस ये है कि इंजन हमारा जो है ना वैन का वो स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये तब स्टार्ट होगा जब इसे एक एग्जिट की मिलेगी। अब ये चाबी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि हमारे मन की एक स्टेट है, ठीक है। अब ये स्टेट क्या है, आइए क्लू नंबर 3 की तरफ गौर फरमाते हैं। मैं वो चीज़ हूँ जो तूफान के मरकज में बसता है। मैं वो हूँ जो आप तब महसूस करते हैं जब हवा थम जाती है और जहन साफ हो जाता है। मैं बिल्कुल खामोश ऐसी एक चीज़ हूँ, अनमूविंग। मेरे अंदर एक ताकत है। मैं क्या हूँ, कम ऑन। मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए, पहला था हलचल, दूसरा था ठहराव, तीसरा था बदलाव। तो बताएं कि इन तीनों में से क्या सही जवाब हो सकता है। 666-22-107 666-22-107 ये हमारा नंबर है, इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दीजिए और आज इस बड़े भारी तूफान से एस्केप कीजिए, ठीक है। सो क्लू नंबर 3 एक बार आखिरी बार आपके लिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि मैं वो चीज हूं जो तूफान के मरकज में बसता है। मैं वो हूँ जो आप तब महसूस करते हैं जब हवा थम जाती है और जहन साफ हो जाता है। मैं बिल्कुल खामोश और अचल, अनमूविंग होने की ताकत रखता हूँ। मैं क्या हूँ, हलचल, ठहराव या बदलाव? सोचें जरा क्या सही जवाब होगा क्योंकि हमारे लिसनर्स तीनों ही चीजें लिख रहे हैं। भाई तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो हलचल होगी, या तो ठहराव होगा, या तो बदलाव होगा। सोचें और सही जवाब भेजें 666-22-107 पर। और अभी इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जी को हम बरकरार रखें इस म्यूजिकल ब्रेक के जरिए। सो एंजॉय द सॉन्ग स्टेडियम टू एफएम।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. बिल्कुल हमारे एस्केप रूम का आखिरी पड़ाव चल रहा है और आज एक तूफान के बीच हम कैद हो गए, लेकिन तूफान के सेंटर में पहुंचे तो सब कुछ शांत है और वहां से निकलने के लिए तीन सवालों के सही जवाब देने थे, यानी कि तीन क्लूज को सॉल्व करना था. पहले क्लू का हमने सही जवाब दिया, दैट वाज आईज. ओके, दूसरे क्लू का हमने सही जवाब दिया, वो था सांसें. और तीसरा क्लू यहीं पर आकर हम अटके हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी गाड़ी के पीछे जो तूफान है वो अब एक बहुत बड़ा काले बादलों का पहाड़ हमारी तरफ भेज रहा है. और अफसोस ये है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है. अब कैसे स्टार्ट होगी? एग्जिट की उसे हमें देनी होगी. एग्जिट की क्या है? ये वो चीज़ है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे मन की एक स्टेट है. ठीक है, सो क्लू नंबर थ्री, मैं वो चीज़ हूँ जो तूफान के मरकज में बसता है. मैं वो हूँ जो आप तब महसूस करते हैं जब हवा थम जाती है, जहन साफ हो जाता है, बिल्कुल खामोशी छा जाती है. तो ये क्या हो सकता है? मैंने आपको ऑप्शन दिया, हलचल, ठहराव, बदलाव. तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिसनर्स हमें भेज रहे हैं, लेकिन सही जवाब, लेट मी टेल यू, इट्स ठहराव, यानी कि स्टिलनेस. और जब ये होता है तब सब कुछ अच्छा होता है, सुकून में हो जाता है. जिन्होंने सही जवाब दिया, जोरदार तालियां उनके लिए. आइए जरा उनके नाम फटाफट ले लेते हैं. सो मोहम्मद है, रूहान अफसल शफक और मोहम्मद यूसुफ खान है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है. सादत अफरीदी ने सही जवाब दिया है. खलील ने भी हमें सही जवाब दिया है. और भी कोई है क्या जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है? आइए देखें, फातिमा ने भी हमको सही जवाब दिया है, अफजल ने सही जवाब दिया है. सो गुड जॉब, आप सब ने सही जवाब देकर एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि आप सब क्या हो, स्टॉर्म चेजर्स. और जब आपने सही जवाब दिया और ये जो एग्जिट की थी इसका नाम लिया, तो फिर बस आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई और आप तूफान को चीरते हुए सीधा बाहर निकल गए. क्या बात है, कंग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू. और इसी के साथ आज के हमारे लकी विनर का नाम ऐलान करना बनता है. आज के हमारे लकी विनर कौन है, जरा इनका नाम देख लिया जाए. ये जनाब है कोई और नहीं, इनका नाम है अफजल. कंग्रेचुलेशंस, मुबारका, कमाल किया आपने. बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे, है ना. सो इसी तरह से हमारा जो एस्केप रूम है इसकी शान बढ़ जाती है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं. तो ज़रूर बने रहे हमारे साथ और हर दिन दोपहर 1:30 बजे से नए चैलेंज के साथ अमिता हाजिर हो जाएगी. फिलहाल के लिए वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा. आप क्या करेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना FM 107, उस पर जुड़ जाइए, अमिता भी वहीं मिल जाएगी. और जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. तो कहीं नहीं जाना है, कहाँ रहना है, यहीं पर. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

मौसम आते ही हमारी डेली लाइफ में एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या है वो? कूलिंग भाई, कूलिंग, एयर कंडीशनर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स और भाई ऐसे दूसरे तीसरे अप्लायंसेस जो घर को कंफर्टेबल बनाते हैं। खास तौर पर कतर जैसी गर्मी का मौसम, ओए होए होए होए होए, इस मुल्क में एसी हमारी जरूरत बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि समर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है भाई? और क्या हम कंफर्ट को मेंटेन करते हुए एनर्जी भी सेव कर सकते हैं? भाई मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट हैबिट्स के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो भाई आज के इको स्विच में हम बात करते हैं सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इन समर, यानी के गर्मियों में एनर्जी को स्मार्ट तरीके से दिमाग लगा के इस्तेमाल करना। लेकिन पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए साथियों, मामला पता है क्या है? समर के महीनों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से कुछ वजूहात मैं आपको बता देती हूँ जो कि बड़ी कॉमन है। एयर कंडीशनिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कूलिंग अप्लायंसेस का कंटिन्यूसली चलते रहना, डोर्स और विंडोज जो होती हैं उनसे ठंडी हवा का बाहर निकल जाना, अननेसेसरी लाइट्स और डिवाइसेस का ऑन रहना। अच्छा, कभी कभी हम एसी को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रख लेते हैं, मतलब कभी किसी का टेम्परेचर 16 पर होता है, कभी 18 पर होता है, इस पे सेट कर देते हैं और कमरे से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। हम कूलिंग चलती रहती है, हमें बस ये होता है कि हाँ, हमारे दिल को तसल्ली होती है कि हाँ एसी चल रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर ये चीज डालती है। लेकिन कुछ सिंपल हैबिट्स हम अपना घर कंफर्टेबल भी बना सकते हैं और एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सिंपल इको सॉल्यूशन ये है साथियों, कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि समर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम सिंपल टिप्स क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि एसी को मेहरबानी करके स्मार्टली यूज करें। देखें, एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रखने के बजाय कंफर्टेबल सेटिंग चूज करें। एसी ने वैसे भी तो कूलिंग करनी है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। रेगुलर एसी मेंटेनेंस और फिल्टर्स जो हैं उनकी सफाई किया करें। एसी को अफेक्टिव तरीके से चलाने में ये चीजें मत करती हैं। आपका अगर फिल्टर एसी का भरा पड़ा होगा कचरे से, तो आप उसका टेम्परेचर कितना भी रख लें, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि डोर्स और विंडोज सही से सील रखें। जब एसी चल रहा होता है तो अपने खिड़की दरवाजों को प्रॉपरली बंद रखें, इससे ठंडी हवा बाहर नहीं जाती और एसी का ज्यादा जो है वो इस्तेमाल भी इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। अच्छा, तीसरी चीज है नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं। देखिए, दिन के वक्त ना जहां मुमकिन हो नेचुरल लाइट का यूज करें। मुझे तो याद नहीं पड़ता भाई दिन के टाइम मेरे घर में मैं कोई एक बत्ती भी जलाती हूं, क्योंकि माशाल्लाह से दिन की रोशनी इतनी तेज होती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास अच्छी खासी विंडो हैं तो आप उन्हें उनकी बजाय लाइट्स ऑन करें। इट्स वेरी अननेसेसरी, इससे अननेसेसरी लाइट्स ऑन रखने की जरूरत कम हो सकती है। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चूज करें ना। जब नया अप्लायंस खरीदें तो एनर्जी एफिशिएंट मोड्स को कंसीडर करें। ये लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने में मदद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनयूज्ड डिवाइसेस को बंद करें। ये मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि आपका टीवी, चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे तीसरे जो डिवाइसेस होते हैं ना, जो यूज में नहीं होते, उन्हें स्विच ऑफ कर दें प्रॉपरली। छोटी छोटी एनर्जी सेविंग्स मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क करती हैं साथियों। अच्छा, अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए ना साथियों, तो अगर एक फैमिली समर में एसी को स्मार्ट टेम्परेचर पर रखे, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करे, कर्टन्स का यूज करके आप कह लें कि वो जो धूप होती है ना गरम गरम, उसका अंदर आना कम कर दे और अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करे, तो वो अपनी डेली लाइफ की एनर्जी यूज को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फैमिलीज समर रूटीन बना लेती हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक ना वो घर में नेचुरल वेंटिलेशन का फायदा उठाते रहते हैं। दिन के पीक आवर्स में वो कूलिंग को स्मार्टली मैनेज करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचाती हैं बल्कि रिस्पॉन्सिबल लाइफ को भी प्रमोट करती हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज से एक वीक के लिए, मतलब अगले आने वाले हफ्ते के लिए, आप अपने घर में एक एनर्जी सेविंग हैबिट ट्राई जरूर करें। चाहे एसी को स्मार्ट यूज करना हो, उसका टेम्परेचर 22-24 पे रखें, अननेसेसरी लाइट्स बंद करना हो या अप्लायंसेस को प्रॉपरली स्विच ऑफ करना हो। और हाँ, हमें जरूर बताएं समर में आपके घर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की वजह से यूज होती है, एसी, फ्रिज, लाइट्स या कोई और अप्लायंस। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनर्जी बचाना सिर्फ बिल कम करना

0: नहीं होता बल्कि फ्यूचर की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना भी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हक हमारे घर वालों का होता है। अक्सर हम बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन घर वालों के साथ नरमी भूल जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने घर के लोगों के साथ मोहब्बत, सब्र और इज्जत का रवैया रखें। छोटी छोटी बातें जैसे प्यार से बात करना, हेल्प करना और उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना रिश्तों को मजबूत बनाता है। घर का माहौल अगर प्यार और सुकून भरा हो तो पूरी जिंदगी बेहतर लगती है। आज का अमल ये है कि अपने घर के किसी फर्द के लिए कुछ छोटा सा काम करें या उनसे प्यार से बात करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
4: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरह से हमारी मदद करती है। देखिए, आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई इम्पोर्टेंट सर्विसेज असल में हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से ही मिल रही हैं। सैटेलाइट एक एडवांस मशीन होती है जो अर्थ के ग्रिड ऑर्बिट में घूमती है और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स भेजती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी अहम हो चुकी है कि अगर सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें तो दुनिया की बहुत सी सर्विसेज मुतासिर हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल है GPS नेविगेशन का। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, नई लोकेशंस का रास्ता देखते ढूंढते हैं, तो GPS सैटेलाइट हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करती है। इससे ड्राइवर्स, डिलीवरी सर्विसेज, टैक्सी ऐप, ट्रैवलर्स को बड़ी आसानी होती है। अगर GPS ना हो तो नए शहरों में सफ़र करना नामुमकिन हो जाए। जहाँ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इंटरनेशनल फोन कॉल्स हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा सैटेलाइट्स के जरिए होता है, खास तौर पर रिमोट एरियाज में जहाँ केबल्स या फिर मोबाइल टावर्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ सैटेलाइट इंटरनेट लोगों को दुनिया से कनेक्ट करता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग भी सैटेलाइट की मदद से होती है। सैटेलाइट अर्थ की तस्वीरें और एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करता है जिससे साइंटिस्ट मौसम की फ्यूचर कंडीशंस का अंदाज़ा लगाते हैं, और इसी वजह से हमें पहले से पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, स्ट्रॉम आने की जो है वो चांसेस हैं या नहीं, टेम्परेचर कितना होगा वगैरह। ये इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को, एयरलाइंस को और गवर्नमेंट्स के लिए या और गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए बड़ी वैल्यूबल होती है। एग्रीकल्चर में भी सैटेलाइट जो है वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। फार्मर्स सैटेलाइट की मदद से अपनी जमीन की कंडीशन मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि किस एरिया को ज्यादा पानी की जरूरत है और किस जगह क्रॉप्स की ग्रोथ कम हो रही है। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट्स इंसानों की जान बचाने में मदद करते हैं। जब अर्थक्वेक आए, फ्लड हो या कोई और मसला आता है तो सैटेलाइट्स अफेक्टेड एरियाज की रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। रेस्क्यू टीम्स इन इमेजेस की मदद से जल्दी प्लानिंग करती हैं और लोगों तक मदद पहुंचाती हैं। वहीं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी सैटेलाइट सिस्टम से बहुत फायदा होता है। बहुत से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और टाइमिंग सिस्टम सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए एक्यूरेटली किए जाते हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली वर्क करते हैं। आजकल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉरेस्ट, ओशंस, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करती हैं। साइंटिस्ट पोल्यूशन लेवल्स और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को स्पेस से देख सकते हैं और बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं। जी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का एक रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिमोट एरिया में ऑनलाइन लर्निंग, टेलीमेडिसिन सर्विस सैटेलाइट कनेक्टिविटी की वजह से ही मुमकिन हो रही है. इससे लोगों को बेहतर एजुकेशन और मेडिकल एडवाइस हासिल करने में मदद मिलती है. दोस्तों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पेस में नहीं घूमती हुई एक मशीन है, बल्कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ

0: आसान है GPS से लेकर इंटरनेट वेदर फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर बैंकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट तक हर जगह सैटेलाइट्स हमारी मदद कर रहे हैं आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी और सैटेलाइट्स हमारी जिंदगी को ज्यादा स्मार्ट सेफ और कनेक्टेड बनाएंगे इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट्स खामोशी से स्पेस में रहकर हर रोज हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे हमारी माँ या हमारे वालिद साहब जो भी खामोश रहकर बहुत सारे काम यूं ही कर जाते हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है या कई बार पता ही नहीं चलता और शायद हम शुक्रगुजार भी नहीं हो पाते तो चलिए आज अल्लाह ताला की दी हुई तमाम बेशुमार नेमतों का शुक्रिया भी अदा करें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की हैं और हम हमेशा ही शिकायतें करते रहते हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सोचें और अपनी शिकायतों पर कहीं फुल स्टॉप या फिर कॉमा तो लगाई लें चलिए इसी थॉट के साथ अब मैं आपसे तो इजाज़त लूँगी इंशाल्लाह नए फिलर में एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे तब तक के लिए नासिया और शकीब अहमद हम दोनों के इजाजत दीजिए देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: It happens.
1: Yeah, actually, whenever I want to call my father, I'm like, bro, papa.
2: It's so true. मतलब I never remember कि मैंने कभी अपने father को yo, bro, papa. मतलब and they're like, one way it's good. Also, at least they don't have that fear.
0: Uh-huh.
2: But I think that's a kind of a big generation gap as well. मतलब हमारे अंदर कभी वो even till today means. If my father is sitting right in front of me, I barely see in his eyes.
0: हाँ, correct.
2: हमारे बच्चे तो बोले, yo bro, what's up? Like that.
0: वैसे नंदी, आपने कभी कोशिश करी है काव्यों को कुछ दिखाने की अपने एरा से some probably movies or some cartoons or anything? Have you tried to influence her in a way?
2: बहुत बहुत
1: कोशिश.
2: No, but I still watch like, you know, Hindi movies. And, like, I can watch. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा convince करके जब ऐसी कुछ मूवीज हैं कि हाँ उसमें कई बार लाइक मिस्टर इंडिया वंस अपॉन अ टाइम आई वाज ट्राइंग टू मींस फॉर सर कि बेटा मिस्टर इंडिया देखो यू विल लाइक तो पहले तो मतलब शी वाज लाइक नो नो नो आई डोंट वांट टू वॉच व्हाट काइंड ऑफ मूवी इट इज स्लोली शी स्टार्टेड लाइकिंग तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो इट्स जस्ट अ जनरेशन गैप कि प्रॉब्ली ये अभी हमारे लेवल के जो मूवीज थे या जो सीरियल थे उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इजी अवेलेबल टू देम
0: और हर सेकंड नया कुछ आ रहा है
2: हर कुछ नया आ रहा है आई थिंक यू माइट आल्सो बी कोरिलेटेड हमारे टाइम पे हम संडे का वेट करते थे चित्रहार देखने के लिए हमारे पसंद के गाने हमें
0: सड़कें खाली होती थी
2: और संडे का इंतजार होता था मूवी देखने के लिए ये बच्चों को तो जो भी देखना है इंस्टेंटली यूट्यूब में अवेलेबल है मतलब हमारे लिए द बिगेस्ट गजेट वाज सलोरा टीवी होता था जिसमें शटर होता था
0: रे,
2: वो बड़ा बॉक्स शटर खोलते थे बंद करते थे उसके चैनल होते थे वी कुड नॉट थिंक मोर देन 10 और 12 चैनल्स मतलब वो टाइम से हम अभी ये
0: और वो भी प्रॉपर सिग्नल अगर आ जाए तो
2: प्रॉपर सिग्नल आ जाए और ये बच्चे तो मुझे लगता है शायद वो कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे उसको कि कभी ऐसा भी जमाना था कि बॉक्स जैसा टीवी होता था
0: कभी देखा कभी तुमने हैव यू सीन दोस बॉक्स वाले टीवी
1: नॉट रियली बट आई वांट टू से समथिंग टू पापा लाइक पास इज अ पास नाउ यू हैव लाइक
0: कुछ दिखाई है मतलब कुछ VCR तो बिल्कुल भी नहीं Have you any idea? Like, do you know what VCR was? अच्छा ओके है ना ये बड़ा मुश्किल है
2: यार तो अभी दिखाना भी मुश्किल है
0: बहुत मुश्किल है यार ना बट यू शुड एक्चुअली सी मतलब अगर आज के जमाने में काफी ये एडवाइस नहीं जस्ट ब्रो वाली एडवाइस है इफ यू एवर गेट टू सी अ VCR ना इट वाज कूल बैक देन इट वाज रियली रियली कूल यू नो द साउंड ऑफ द कैसेट गोइंग इनसाइड द VCR प्लेयर वाज रियली रियली कूल लाइक इफ इट स्टिल एग्जिस्ट ना आज की तारीख में तो हिट हो जाता थोड़ा ट्विंकल करके एग्री करते हैं नरेंद्र जी
1: या बड़ा iPhone 17 इज कूल है
0: हां डिमांड आ गई है क्या
2: डिमांड आ गई है डिमांड आ गई है
0: अच्छा आ चुकी है वाह अरे नरेंद्र जी
2: मतलब हां मैं बताया ना ये बच्चे हमसे एक कदम नहीं दो कदम नहीं सौ कदम आगे हैं
0: तो कैसे मतलब गैजेट से दूर रखते हैं टाइम सेट है क्या हाउ डू यू टैकल दिस
2: एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट कभी टू बी ट्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम अवे फ्रॉम द गैजेट द रीजन बिहाइंड अभी इनका स्कूल पैटर्न देख लें आप जितना असाइनमेंट है सारा कुछ आपका गैजेट्स में आता है They have to open and they have the reason. Papa, I have to see क्या assignment आया, क्या homework आया. इनकी अगर online classes हैं, वो भी एक gazettes पे होनी है. तो एक घंटे की class है, उसके बाद you are busy somewhere else. Class finish ही, बच्चों ने तुरंत YouTube खोल लिया.
1: But the thing is, now you have like ChatGPT, Gemini, so like you need electronics to study now.
2: Yeah.
1: Like
0: हार मान ली पापा ने. You don't have to convince. वो पहले ही हार मान चुके हैं इस बात में.
2: मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि असल में हम चाहें भी इनको डिस्कनेक्ट करना तो मतलब आई विल बी रियली हैप्पी टू फाइंड आउट दोज वेज कहते हैं कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें बट हम भी शायद थोड़े से उसमें इंक्लाइंड हो गए कि हम भी आधे घंटे टाइम बिताने के बाद ना हमारे भी याद
1: Like papa's friend is
0: why
1: pilot.
0: Not ships then? I mean, you can travel through ships as well, no? Why do you need to become a pilot?
1: Because I like the clouds.
2: मतलब यू मीन टू से यू आर आस्किंग कि इसका पायलट की तरह नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये नेचुरली आया है बिकॉज अभी शी इज नॉट दैट ओल्ड.
0: हाँ,
2: बट मुझे लगता है कि ये एक इन्फ्लुएंस
0: है, रुझान उस तरफ आता ना. हाँ,
2: हाँ कि गजेट्स के थ्रू ये देखते हैं उस तरीके के वीडियोस. शी इज वेरी गुड इन डांसिंग, तो मतलब व्हेनेवर शी फाइंड आउट न्यू प्लेस शी ट्राई टू टेक दैट एज अ बैकग्राउंड और अपने वीडियोस बनाना एंड ऑल. तो आई थिंक दैट हैज केम नेचुरली.
0: अच्छा,
2: और उसका मुझे लगता है कि एक पर्सनली मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक बेनिफिट भी है कि बच्चे जो उन्हें पसंद है, जो उनकी हॉबी है, उसमें उनको एक मीडियम मिल रहा है जहाँ वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज भी ले
0: खुद ही जान सकते हैं.
2: बिकॉज अभी मुझसे अगर वो पायलट के बारे में डिटेल पूछेगी तो प्रॉब्ली आई मे नॉट बी एबल टू टेल हिम दैट मच ऑफ डिटेल. बट वो इन्फॉर्मेशन सेक्टर आज की डेट पे इजिली एक्सेसिबल है, तो वो एक बेनिफिट भी मुझे लगता है कई
0: बार.
2: तो इसीलिए इंक्लिनेशन बस ये होता है कि अति सर्वत्र वर्जित है जो हम बोलते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ना देखें, उसको कंट्रोल करें. उस पे एक स्ट्रगल है, बाकी तो उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी बहुत है.
0: तो हर चीज का होता है.
2: आई थिंक शी इज.
0: आर यू सोशल मीडिया पे?
2: नो, आई एम वेरी लो.
1: वेल, पापा'स नॉट. आई एम ऑन इंस्टाग्राम queen.kavya2000.
0: क्या बात, इज शी रियली एक्टिव? आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया?
1: यस आई एम.
0: ओके, अच्छा, मम्मी एक्टिव है? मम्मी शी इज इश्योर
2: मी मोर देन मी, बट
0: मोर देन यू,
2: लेस देन हर.
0: अच्छा, ऐसा समवेयर इन बिटवीन. दोनों को ऐड किया, मम्मी पापा को प्रोफाइल?
1: या.
0: अच्छा, वर यू लाइक स्टार्टिंग में लाइक स्केयर्ड लिटिल, थोड़ी एंक्शियस कि शुड आई ऐड देम और नॉट? लाइक
1: नो, नॉट रियली एक्चुअली,
0: देयर आर किड्स. हां,
1: बिकॉज़ लाइक द थिंग इज आई एम नॉट इवन सपोज्ड टू हैव इंस्टाग्राम.
0: हां, एब्सोल्युटली, लाइक सेल्फ अवेयरनेस. चलो,
1: या, सो जस्ट लाइक आई जस्ट ऐडेड माय पेरेंट्स.
0: बट डू दे कमेंट?
1: या.
0: आपके साथ हुआ? हमारे प्रोफेशन में तो फोर्सफुली यूज करना पड़ जाता है, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट. अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो वेस्ट, हम लोग पहले कहते थे कि यू नो वेस्टर्नाइज हो रही है चीजें हैं. अभी एक स्लीप ओवर का कल्चर आया, कभी काव्य की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि स्लीप ओवर्स के लिए कभी? हैव यू
1: या रिसेंटली आई जस्ट आस्क मम्मा फॉर अ स्लीप ओवर
0: एंड देन व्हाट हैपेंड
1: एंड देन शी इज लाइक नो.
0: ओके, ये रिक्वेस्ट अब तक नहीं पहुंची है?
2: नहीं, मुझ तक पहुंचती है, लेकिन स्पेशली स्लीप ओवर का जो एरिया है, जो अथॉरिटी है, दैट्स लाइज विद हर मम्मा.
0: अच्छा,
2: तो वही डिसाइड करती है कि स्लीप ओवर करना है नहीं करना है. बिकॉज मैं बताया कि वो गुड कॉप के चक्कर में कई बार होता है कि नहीं भाई, स्टडीज छोड़ के स्लीप ओवर करने जाना है. तो एटलीस्ट शी कंट्रोल्स दैट कि यू हैव फिनिश दिस, देन ओनली यू आर अलाउड टू स्लीप ओवर. सो डिसिप्लिन साइड शी टेक्स केयर वेल. तो मैं उन सब मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता
0: हूं.
2: यस यस यस.
0: तो काव्य कुछ कंडीशंस रखी थी मम्मी ने या स्ट्रेट? नो
1: नो, शी सेड दैट यू कैन गो टू स्लीप ओवर लाइक विद योर क्लोज फ्रेंड्स, द वंस दैट वी नो, बट नॉट जस्ट लाइक स्कूल फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. एंड आई कांट जस्ट गो टू एनीवनस हाउस विदाउट नोइंग.
0: ऑब्वियसली, या, दैट्स लाइक द सेम फर्स्ट थिंग. बट लाइक डिड शी कंप्लीटली डिनाइड योर रिक्वेस्ट या फिर कुछ कंडीशंस रखी हैं? नो, यू कैन गो आफ्टर यू डू दिस.
1: No, she said that you can go after we get to know her parents well, you know, like, she said it like that.
0: Okay.
1: But she, yeah, she said
0: that. So, कोई घर पे आना जाना होता है बच्चों का काफी दूसरे?
2: Yes, yes, yes. जो close friends हैं, definitely. उनका she goes for sleepover, वो आते हैं sleepover. वो चलता रहता है.
0: चलता रहता है.
2: ठीक है. उसमें क्या है थोड़ा, they also, because कई कतर में जैसे कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं बाहर ज्यादा कुछ जा नहीं सकते. तो आई थिंक दैट इज अ गुड टाइम आउट कि स्लीप ओवर कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ. तो दैट्स अ गुड टाइम आउट फॉर देम. सो
0: एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है. मैंने आपसे पहले भी बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा, स्पेशली फादर्स, यू नो, आप वैसे सोशल है? आर यू एंटी सोशल और सोशल?
2: यस,
0: सोशल इनफ. कई बार होता है बच्चों की वजह से आपको दोस्ती करनी पड़ती है. ऐसा हुआ है आपके साथ भी? आप क्या करें, मतलब खड़े में बात तो करनी पड़ेगी.
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो हुआ है. लेकिन आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल. हाँ, और मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है.
0: अच्छा, ओके, फिर ठीक है.
2: बिकॉज वो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है.
0: हाँ, बहुत लोगों से प्रॉब्लम होती है.
2: इनफैक्ट आई लाइक इट, मीटिंग न्यू पीपल. आपको आपको दूसरे पेरेंट्स के चैलेंज सुनने में आते हैं और जब आप दूसरे के साथ भी सुनते हैं कि वो भी इस यही चैलेंज फेस कर रहे हैं, देन यू फील लाइक हमारे साथ ही बस प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ. तो सॉल्यूशन कब आए, व्हेन द सॉल्यूशन विल कम, ग्लोबली एक्सेप्टेंस होगा.
0: पहले पहले लगता है कि सॉल्यूशन का कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, हो सकता है नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, बट देयर आर पेरेंट्स हु रियली रियली स्केयर्ड, यू नो, यार अब कैसे दोस्ती, मतलब मैं ऐसे कैसे दोस्ती कर लूं, ये सामने आ गए तो बात तो करनी पड़ेगी.
2: टच वुड ऑन दैट फ्रंट, आई एम क्वाइट सेफ. मुझे मतलब नेचुरली आई लाइक मीटिंग पीपल.
0: ओके नाइस.
2: और दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है. हां
0: ओके ओके. बट डू यू कुक, कुछ खाना वगैरह बनाते हो
2: कभी कभी?
1: जैसे
0: अच्छा रियली?
1: यस.
0: तो अरे क्या बात है, अभी सारे
2: किसी किसी दिन मतलब ऐसा मूड हो गया तो यस ऑफ कोर्स, उस दिन फिर अंदर का कुक जागता है एंड दैट डे आई डेफिनेटली ट्राई समथिंग.
0: वेरी नाइस. कब क्या क्या पसंद है तुम्हें वैसे खाने में?
1: मी, इफ आई से ऑनेस्टली, आई लव बर्गर.
0: अच्छा.
1: एंड फ्राइज.
0: घर की तरफ आओ ना, बाहर का खा लिया तुमने, घर पे क्या पसंद है? कुछ घर का बनाया पसंद है? घर का डोसा ही पसंद है.
1: इडली.
0: इडली. और कुछ मम्मी कुछ स्पेशल बनाती है जो हो सकता है कि तुमने?
1: आलू पराठा.
0: आलू पराठा, क्या बात है. आलू पराठा तो हम सबके
2: यस खून में बसा हुआ है.
0: खून में बसा हुआ है वो तो होना
2: स्पेशली दिल्ली वालों के तो खून में आलू पराठा बसा हुआ है.
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107.
0: अच्छा कभी पीटीएम जब होती है स्कूल में, आर यू लाइक ऑफन स्केर्ड?
1: या आई एम वेरी स्केर्ड.
0: अच्छा.
1: आई एम सुपर नर्वस.
0: डू यू हैव अ मेमोरी यू लाइक टू शेयर? पीटीएम में कभी कुछ हुआ है?
1: या आई एक्चुअली डू, बिकॉज़ आई रिमेंबर इन ग्रेड 2, आई इन ग्रेड 2 फ्रॉम द केजी 1 केजी 2 ग्रेड 1 आई नेवर गॉट एनी कंप्लेंट्स. ग्रेड 2 ग्रेड 2 आई थिंक वाज टर्म 1 टाइम एंड माय फादर ही वाज टॉकिंग विद माय टीचर.
0: ओके.
1: माय टीचर, she complains so much about me. she talks too much. She doesn't pay attention. She doesn't do her homework. She doesn't write.
0: Kya baat hai.
1: I got so annoyed. I'm like,
0: chup ho jao,
1: yeah, exactly.
0: To aap samne the, aapke aapke zehen mein kya chal raha tha ekdam se jab aaya hoga ye dhakka?
2: Ha, bala us samay to kisi bhi parents ko ajeeb hi lagega ki sunne mein aa raha aapka bachcha homework nahi kar raha hai. But yes, I think PTM is really eye-opener that as a parents, कहाँ आप lag कर रहे हैं, कहाँ आपको improve करना है, कहाँ आपको ध्यान देना है. Because if I look for my childhood, पढ़ना किसी को पसंद नहीं था.
0: और my time पे PTM से होता था कि माँ बाप खुद बोल के आते थे, पीटते रहना.
2: हाँ, पीटते रहना. Direct instruction रहती थी, पीटते रहना. और मतलब घर पे तो बता ही नहीं सकते थे कि पिटाई हुई है, बताएंगे तो ऊपर से दो और पड़ती थी. तो बट आई थिंक धीरे धीरे एजुकेशन इवॉल्व हो रही है. yeah. बच्चों को yeah. एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है. आई थिंक टीचर से नहीं डर रहे हैं बच्चे, ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है. आई फील सो. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर फ्यू ऑफ माई टीचर्स, अभी भी नाम याद आता है तो उनकी उनकी छड़ी याद आती है और उनका पीटना याद, पढ़ाना तो उनका याद ही नहीं है. yeah. सिर्फ याद ये है कि वो पीटते बहुत ज्यादा थे. मतलब वो
0: पनिशमेंट जीरो.
2: या दैट वाज डिफरेंट टाइम. तो अभी ये पीटीएम का ये डेफिनेटली बेनिफिट है.
0: बेनिफिट तो है, अभी थोड़ा चेंज हो गया ना.
2: एज अ पेरेंट आपको कहां बच्चों को ध्यान देना है, कहां क्या सपोर्ट देना है, थोड़ा सा
0: पेरेंट्स मोर ओपनली डिस्कस्ड राइट. पहले थोड़ा सा था कि साइड में चले बात करते
2: हैं. राइट.
0: काफी क्लास में पनिशमेंट्स मिलती है, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट्स डू पीपल गेट राइट नाउ? मैं जानना चाहता हूं.
1: ओके, सो बेसिकली इन साइंस पीरियड वी हैव दिस सुपर स्ट्रिक्ट टीचर.
0: ओके.
1: इफ यू टॉक you'll get sent out of the class.
0: Achha, this is the minimum.
1: No, if you don't do notes, coordinator.
0: Okay.
1: If you talk back or like be like, no, I don't want to do this, headmaster. And one kid actually went to the headmaster. Like the whole class got so scared. Like we just started doing something. We opened our books and
0: Content creator.
1: He's like super worldwide.
0: Yeah, I know.
1: And then I just watch Darman. He tells he makes the Darman stories.
0: Yeah.
1: I just watch that.
0: And there are many similar channels OC line pe chal rahe hain, magar wo Darman ke channels aur wo actors bhi repeat hote hain, you kind of connect with them.
1: Yeah. You know their name and like you know them.
0: Ah, okay. So content to bahut badhiya chal raha hai inka. आपने बैठ के देखा है कुछ इनके साथ?
2: मैं कभी कभी डॉरमैन, आई थिंक डॉरमैन आई सॉ.
0: डॉरमैन, डॉरमैन, वो भी इंडियन अमेरिकन, इंडियन कैनेडियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
1: इट्स या अमेरिकन इंडियन
0: कैनेडियन.
2: सो उसका दो तीन वीडियो मैंने देखे हैं, उसके थोड़ा इमोशनल वीडियोस होते हैं,
0: सीख देने वाले होते हैं.
2: हां, एम्पैथी, सिंपैथी.
1: पापा, यू वॉच लाइक वन वीडियो एंड दैट यू हैवंट कंप्लीटेड इट एंड देन द ओनली थिंग यू वॉच इज क्रिकेट एंड सम
2: Actually, you know, that's also another struggle. Nowadays, it's very hard to watch TV. Even coming back after home, agar main kuch dekhna chahta hoon, these kids doesn't give me remote.
1: No, so, because he takes his phone to the bathroom, he's listening some random.
0: To kahan jayega kaamya aadmi?
1: Exactly.
2: Haan, bahar ka TV leke baithe hue, to abhi kahan बाथरूम में ही देखने को टाइम मिल रहा है तो वहीं पर मोबाइल पे देख रहा
0: हूँ. आपका क्या आइडिया रहता है कि यू नो कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि बेडरूम में टीवी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन?
2: नहीं, बेडरूम में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बेडरूम में टीवी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट एक ही रूम में टीवी है तो सारे लोग बैठ के वहाँ, कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि कोई कॉमन ऐसा मूवी लगा रहे हैं जो हम सारे बैठ के देख रहे हैं, तो एटलीस्ट दैट ऑल्सो गिव्स अस अ चांस टू सिट टुगेदर. अदरवाइज एवरीवन गोस सेपरेटली वॉचिंग देयर गैजेट्स, दैट्स ऑल्सो नॉट.
0: तो ये कॉमनली जो कॉमनैलिटी है आप लोगों के बीच में, कौन सी चीज एक साथ बैठ के देखी जा सकती है? What do you watch?
1: That's kind of difficult to answer because we have nothing in common.
0: But have you watched anything together? Like,
1: yeah, we actually have Mr. India.
2: Mr. India.
1: But my brother, he
2: Spider-Man.
1: Like, yeah, Spider-Man.
2: Oh, ek recent movie thi, yes. Spider-Man, that we all watched together.
0: Ah, okay.
2: Yeah, uske alawa to, matlab, like, I watch watching sports. वो कभी अगर लाइव मैच आ रहा है तो दैट टाइम आई गेट नो नाउ टुडे इज माय टर्न आई एम नॉट लला
1: द थिंग इज वी डिवाइडेड इनटू लाइक ग्रुप्स.
0: अच्छा, ओके.
1: माय ब्रदर एंड माय फादर विल वॉच क्रिकेट स्पोर्ट्स.
0: इज ही एल्डर टू यू?
1: माय ब्रदर, नो, ही इज यंगर, वन ईयर यंगर.
0: वन ईयर यंगर, ओके.
1: एंड देन मी एंड माय मॉम विल वॉच लाइक something like Big Boss or something.
0: तो division ये तो proper है. आपके जो characteristics हैं वो कितनी हैं काव्या में? क्या characteristics आप notice करते हैं?
2: काव्या actually काव्या is soft girl actually I would say. और कई बार वो समझाने पे समझ जाती. She is not that adamant or rude. My son, अगर वो football आ रहा है तो he will not let me change channel. वो adamant है. नहीं नहीं पापा, मुझे यही देखना है. वो चीजें हैं उसमें. और उसके अलावा काव्या एंड मी आर क्वाइट इजी गोइंग.
0: अच्छा, हाँ, वो चीज नोटिस करी है आपने. बट आज के पेरेंट्स को, लाइक योर फेलो पेरेंट्स, ये टर्म नया मुझे पैदा करना पड़ेगा. तो क्या उनको क्या एडवाइस रहती है आपकी? आप देखते होंगे डेली उनको डील करते हैं बच्चों से, आपके खुद के दोस्तों के कितने सारे माशाल्लाह. व्हाट इज योर आउटलुक एंड आल्सो योर इनसाइट एंड आल्सो योर एडवाइस?
2: या मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मतलब बच्चों को शायद हम पुश तो किसी चीज के लिए नहीं कर सकते. उनकी जो हॉबीज हैं, अगर वो खुद से जो भी कुछ कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज टाइम ऑफ देयर नर्चरिंग. वो उनको हर चीज कराएं, मुझे लग रहा है ये टाइम पे. लेट्स सी हाउ दे ग्रो. क्या पता किस चीज में उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाए कि उनकी हॉबी ही उनका पैशन बन जाए और वही उनके लिए ब्रेड एंड बटर भी बन जाए. उससे बड़े क्या हो सकता है कि आपकी हॉबी आपके लिए आपका ब्रेड एंड बटर हो जाए. तो उसमें तो आप एक्सेल कर ही जाएंगे. तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा कुछ कर भी सकते हैं इनके लिए. जब थिंग्स एज गोइंग, लेट इट गो. एक अच्छे एटिकेट्स के साथ बच्चे बड़े हो जाएं, आई थिंक दैट विल बी अवर गुड पेरेंटिंग.
0: राइट, एब्सोल्युटली. अच्छा काव्या, सोशल मीडिया पे क्योंकि तुम हुआ, डू यू प्लान टू बी समबडी ऑन सोशल मीडिया समडे? लाइक समबडी?
1: या, आई डांस. यस, एक्चुअली लाइक आई डांस, राइट? सो आई जस्ट वांट टू लाइक आई जस्ट वांट पीपल टू सी माय डांसिंग.
0: ओके.
1: आई जस्ट वांट टू शो माय डांसिंग बिकॉज़ लाइक इट डांसिंग मेक्स मी हैप्पी. सो आई जस्ट वांट पीपल टू लुक एट.
0: डू यू हैव अ म्यूजिक जॉनर दैट यू फॉलो डांस करते वक्त, या फिर तुम किसी भी तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग पे ही डांस करना पसंद है?
1: या, समटाइम्स माय फेवरेट सॉन्ग और लाइक द सॉन्ग्स दैट आई लाइक दैट आर सूटेबल, लाइक यू नो आई कैन मेक स्टेप्स आउट ऑफ, देन आई जस्ट स्टार्ट डांसिंग, यू नो.
0: अच्छा, वैसा.
1: समटाइम्स आई फ्रीस्टाइल एंड यू नो.
0: नाइस, ओके. अगर काव्या समवेयर डाउन द लाइन इन फ्यूचर, इफ शी स्टार्ट्स अर्निंग, लेट्स से सोशल मीडिया से इसकी सारा बढ़िया चल जाता है, वुड यू हैव अ रिग्रेट और नो? क्योंकि हो सकता है कि शी विल ब्लो अप समडे अभी इन्हीं सालों में अभी पढ़ाई करते करते शी माइट ब्लो अप सो देन व्हाट वुड बी योर opinion or
2: no no I won't have a regret means yeah. anything whichever she likes and sees yeah. excellent
0: so you would that, actually
2: yeah, yeah I'll yeah. I'll definitely support mm-hmm. like usko dance kafi pasand hai aur wo dance class ke liye khud se motivate hoke bolti papa mera class hai abhi mera class hai
0: so nice which is great
2: I support it 100% I support it and, not only me matlab main aur meri wife dono hi shikha dono

0: हम दोनों ही सपोर्ट करते हैं उसको कि मतलब जो इसको खुद से करने का दिल कर रहा है लेट हर डू और Yeah, as you rightly said, we never know. Actually, ऐसा thought process नहीं है कि वो social media पे या किसी में ऐसा excel.
1: हाँ, वो thought होके होता भी नहीं है.
0: वो naturally जो भी कुछ हो रहा होगा होगा. Overall thought process ये है कि जो उसको अच्छा लग रहा है, मन से जो कर रही है, करने देते हैं उसको. And let's see क्या होता है आगे.
1: हाँ, nice. वैसे वो बात तो है. I can totally understand. और आप आपका बहुत ही easy going मुझे लग भी रहा है. तो इससे काव्य कोई फायदा है. But काव्य, do you know this? अभी तुम्हें realize हो रहा है interview से पहले, because he's quite chilled.
2: Yeah.
1: Have you compared him to other people like ke dekha hoga tumne?
2: Yeah, I actually have.
1: Because he's quite chill. I think he's bahut cool.
2: My dad is very calm.
1: Yeah, he's a very
2: he's
1: cool
2: a
1: dad.
2: Calm guy.
1: Yeah, yeah. To achhi baat hai. Tumhara to ye bahut benefit hai. And I think you have a cool dad.
2: Yeah.
1: You can look up to and
2: sometimes he makes jokes, but then sometimes it's also kind of cringe.
1: Of course. Unka pura haq hai cringe jokes karne ka. Banta hai aapko, banta hai.
2: But then also he's very funny.
1: Of course. I'll see that because aap jitne chill hai, itna bachchon ko support karne ye bahut badi baat hai.
2: Cool as a cucumber.
1: Oye, hoye, hoye. Aaj to tareefe mil gayi aapko bahut sari. Kavya ko bhi sorry bolna pada hai aapko?
2: Yes.
1: Okay. Acha Kavya, tumhari khud ki generation ko kuch kehna chahte ho? Do you have a message to your peers?
2: Yeah, I actually do.
1: Kya?
2: So, everybody, whoever is Gen Alpha, right?
1: Yes.
2: Gen Alpha. Just be yourself and tell your parents that give me an iPhone 17 and be yourself.
1: Be yourself. But do you express your feelings on stories and all? Wahan pe dalte ho stories pe?
2: Not really.
1: Not really?
2: No.
1: Don't do that. That is cringe, okay?
2: Yeah, that is very cringe.
0: ये जो word use करते हैं ना, Gen Alpha, ये तो मुझे आज नहीं समझ में आ रहा है कि Gen Alpha.
1: देखिए, इनसे पहले वाले Gen Z हैं.
2: Generation Alpha, generation.
1: इनसे पहले वाले Gen Z हैं. ये हैं Gen Alpha. है ना, और उनसे पहले भी बहुत सारी जनरेशन आ जाती है, मिलेनियल्स हैं, काफी कुछ है. तो वो ट्री आपको समझ के बैठ के समझना
0: पड़ेगा. व्हेन दिस वाज डिस्कवर्ड, हम तो अपने स्टडी में कर
2: राइट नाउ जेन बीटा इज गोइंग ऑन.
1: हां, अब तो बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट है अभी जो मामला. बट क्योंकि हम आखिर तक पहुंच चुके हैं भाई, आप सबसे पहले जानना चाहूंगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आप स्टूडियो में आए आज?
0: बहुत अच्छा, मतलब इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड
1: लाइकवाइज सर.
0: या मींस excellent experience actually. This is first time I'm in any studio.
1: अरे फिर तो बहुत अच्छा
0: था. मतलब एक professional meetings तो अलग होती है, मगर एक casual talk और एक calm environment में वहाँ जहाँ कोई disturb नहीं कर रहा है आपको in between and a candid talk. Of course, it was wonderful. And thanks for inviting us for
1: my pleasure.
0: This wonderful.
1: And आपको देखिए मुझे पता भी लगता है कि बहुत ही मेहनती और chilled इंसान हैं आप और बड़ा proud feel होता है इस लोगों को देखके.
0: Thank you so much.
1: I wish you really all the best. And Kavya, how was your experience?
2: It was really good. And like, yeah, I enjoyed it. And like, thank you for inviting me and my dad.
1: Of course. And I'm really happy that
2: I had a great time. Yeah, it was very fun.
1: Likewise. But thank you so much to both of you. And इसी तरह से बस जितना भी लोगों ने सुना है आपके ओपिनियंस बने होंगे, तो WhatsApp 666-22-107 है, 666-22-107 सोशल मीडिया हैंडल्स FM107. खतर काव्य, तुम भी बता दो अपना.
2: Okay sir, queen.kavya2014 on Instagram, follow me now.
1: Now do that. And obvious signing off. अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलामा.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: FM 107. Time check. Time check.
1: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल हो रहे हैं 4:01 और क्या है हाल चाल मंडे दिन। उम्मीद है कि सब कुछ भला होगा और आज का दिन भी आपका लाजवाब बनाने के लिए मैं यहां हाजिर हूं इस खास शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने प्ले होते हैं। और आज है मंडे का दिन, आज की थीम लेकर मैं आ गया हूँ भाई साहब।

रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से तैसी। आज की थीम के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा जिसका तुम्हें था इंतजार। वेल, आज है आतिफ असलम का थीम। बिल्कुल, एक बार फिर से हम वापस आ गए आतिफ असलम के गाने लेकर। इसकी वजह भी है कि यार आतिफ असलम के जो फैन रहे हैं वो लाजवाब रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने आतिफ असलम को यहाँ पर प्ले किया था, उनके गाने प्ले किए थे, और ये बड़ा लाजमी है उनके एक बार गाने फिर से यहाँ पर प्ले किए जाएँ, क्योंकि उस दिन कई ऐसे गाने थे जो प्ले नहीं हो पाए थे। और आज मैं कोशिश करूँगा उनके वो गाने प्ले करने के जो उस दिन नहीं प्ले हो पाए, ठीक है, और उन लोगों की रिक्वेस्ट लेने की कोशिश करूंगा जिनकी रिक्वेस्ट उस दिन हम नहीं ले पाए थे। तो शुरू करते हैं आज का ये शो। फिलहाल हमारे स्टूडियो में 4:03 हो रहा है, आपके रिक्वेस्ट आनी चाहिए 6622107 पे। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। और कुछ भी हो जाए भाई, मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिल दिया गल्ला प्ले करने को नहीं कहेगा, वरना आज मेरा जो है हाथ उठ जाएगा और फिर मोबाइल को उठाएगा और मोबाइल से आपको अपन ब्लॉक करेंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, कोई भी दिल दिया गल्ला अगर कहीं मेरा दिमाग ख़राब हो जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जल्दी से ये देखो, एक ने लिख भी लिया भाई दिल दिया गल्ला प्लीज पे, मैं नहीं प्ले करूंगा, बता रहा हूँ आसिफ भाई। अभी आपको एफएम 107 का ये जो व्हाट्सएप वाला नंबर है ना 6622107, इस पे जो भी फोटो लगी होगी वो फोटो दिखाई देना बंद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये कोई नहीं कहेगा दिल दिया गल्ला, मैं बता, बस हो गया भाई, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, दोबारा मत कह रहा। ये गाना सुन सुन के मेरे ना कान जो है पक गए, ठीक है, और हमारे स्टूडियो में चीजें हैंग करने लग गई इस गाने को सुनने के बाद। हमारा मोबाइल हैंग कर जाता, कहता भैया इतना सुना दिया, बस करो यार, दिल दिया गल्ला मत करो, बहुत ज्यादा गल्ला हो गई तुम्हारे दिल की मुझे और नहीं सुनना है। जल्दी से आते हैं मैसेज की तरफ और वो गाने प्ले करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी प्ले नहीं हुए पिछले हफ्ते, ठीक है। सबसे पहले सलाम है शाम भाई का, वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ भाई ने कहा है सलाम, और कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मुमताज़ साहब, आप बताएं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आबिद कहते हैं 13 होने लगा हूँ। हाँ, उस दिन ये गाना प्ले नहीं हुआ था तो अपन ये गाना प्ले करेंगे, और हो सकता है मेरे जहन में ना भी हो, लेकिन अगर अच्छा गाना हुआ तो मैं प्ले कर सकता हूँ। तेरे संग यारा इश्क तेरे संग यारा, हाँ रुस्तम का उस दिन गाना ये प्ले नहीं हुआ था, रमेश भाई ने कहा था दूसरा गाना अपन ये प्ले करेंगे। रफ्ता रफ्ता एंड मैं अगर, इन दोनों में से कोई एक गाना प्ले करेंगे, बाकी मुझे देखना पड़ेगा शेख इरफान साहब की ये रिक्वेस्ट। सो तीन रिक्वेस्ट तो हमारे साथ पड़ी है, सो इनमें से मुझे लगता है शेख इरफान की बहुत देर से रिक्वेस्ट प्ले भी नहीं हुई है। रफ्ता रफ्ता किस मूवी का है, अगर ये पता चल जाता शेख साहब तो मज़ा आ जाता। बाकी एक रफ्ता रफ्ता पाकिस्तानी पॉप है 2021 का, वो हमारे पास आतिफ असलम का है। उसके अलावा मैं थोड़ा और गहराई से सर्च रिसर्च कर लेता हूँ, और रफ्ता रफ्ता हमारे पास इकलौता यही पड़ा है आतिफ असलम की आवाज़ में, ठीक है। फिर मैं अगर कहूँ हाँ ये भी अच्छा गाना यार, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं अगर कहूँ लिख देते तो शायद आसान हो जाएगा। आ गया, 2007 शांति ओम मूवी का ट्रैक है, लेकिन इसे गाया सुनने का मौसिया घोषाल ने, आई एम सॉरी बाबू ये गाना प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता तो अपन प्ले कर ही देंगे। फिर उसके बाद रमेश भाई ने कहा था तेरे संग यारा, तो ये गाना भी देख लेता हूँ। हाँ, ये गाना भी रुस्तम मूवी का ट्रैक है आतिफ असलम की आवाज़ में, तो चलिए शुरू करते हैं इसी गाने से। और बाकी शेख इरफान साहब भी अभी कुछ लिख रहे थे, मैं अगर सितारों से, रफ्ता रफ्ता सनम, ये रफ्ता रफ्ता सनम वही वाला गाना है या नहीं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा शेख साहब। बाकी आतिफ असलम का सबसे पहला जो गाना आ रहा है वो है तेरे संग यारा, एंड दिस रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्टेड बाय रमेश गुरंग भाई, ये लो।

क्या बात है आतिफ असलम की आवाज में रफ्तार रफ्तार सनम प्ले हो गया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, क्या है हाल चाल। 4:20 हमारे स्टूडियो घड़ी में, और जिन भाई था उनकी रिक्वेस्ट अपन प्ले कर चुके हैं। वेल बाकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो दिल है, लोगों का जो दिल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक गाना अगर प्ले हो गया है तो दूसरों को भी मौका दे दो यार। बाकी अपने पास 3 और गाने यहाँ पर तैयार रखे हैं मैंने। एक भाई है अब्दुल, उन्होंने कहा है गाना प्ले कर दो कुछ इस तरह। अब्दुल भाई, कुछ इस तरह जो गाना है ये प्यारा है आतिफ असलम की आवाज़ में, तो आप थोड़ा लेट कर दे, लेकिन प्ले होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं प्ले होगा, लेकिन तीसरे नंबर पे सबसे पहले आ रहा है गाना देखते देखते, एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली रिक्वेस्टेड बाय यूसुफ भाई, और पत्ती गुल मीटर चालू का ये एक और सॉन्ग है जो मुमताज़ भाई ने भी रिक्वेस्ट किया। तो दोनों देखते देखते ये गाना सुनना चाह रहे हैं, यूसुफ और मुमताज़। तो ये दो गाना, ये दो लोगों का गाना यहाँ पर प्ले करेंगे, फिर उसके बाद कुछ इस तरह ये गाना भी अपन प्ले करेंगे और अब्दुल भाई की रिक्वेस्ट पे। फिर एक मैसेज था, मैंने उसे टाइप किया तो पता चला ये आतिफ असलम का गाना नहीं है। वो मैसेज था कौन सा, जो भेजी थी दुआ भाई आतिफ असलम, नहीं यार जो भेजी थी दुआ ये आतिफ असलम का गाना नहीं है, ये किसी और का गाना है। सनमपुरी की आवाज़ में हमारे पास ये गाना रखा हुआ है। एक भाई ने पूछा थीम क्या है आज, आतिफ असलम के गाने दोबारा हम सुनना है, पिछले हफ्ते भी हमने सुना था और आज भी जैदी भाई हम आतिफ असलम का ही गाना सुनना चाह रहे हैं। आफरीन आफरीन ये भी नहीं है भाई, ये नहीं है। मुबशर भाई ने कहा है आफरीन आफरीन, लेकिन आतिफ असलम का नहीं है, राहत साहब का। फिर उसके बाद मुबीन भाई ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, खैर मंगता मैं तेरी, अरे ये गाना भी है क्या, खैर मंगता, ये भी राहत का, नित खैर मंगा है यार, खैर मंगता ये आतिफ असलम का एक गाना था। ओके हाँ, इंडियन पॉप 2023 का एक ट्रैक है खैर मंगता, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर आपका गाना तैयार रखा हुआ है मैंने, ये गाना अपन आपके लिए प्ले करेंगे। फिर एक और है।

2016 का भी ट्रैक है। 2016 में आतिफ असलम ने अ फ्लाइंग जट मूवी का ट्रैक गाया था, सेम खैर मंगदा। सो इसका मतलब है कि 2023 में दोबारा गाया गया था। अब ये डिसाइड करिए कि 2023 वाला या 2016 वाला, लेकिन जब हम प्ले करेंगे तो हम देख ही लेंगे कौन सा अच्छा वाला है, वही प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले देखते देखते जो मुमताज और यूसुफ भाई ने रिक्वेस्ट किया है वो गाना आ रहा है आपके लिए। एक भाई और हैं, उन्होंने बड़ी अजीब डिमांड करी थी, मैं हंस बैठा। उन्होंने कहा था सलाम फजील भाई, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कोड़ा मार दो भाई। अरे ये कैसी डिमांड है यार। ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं लोगों के। सलाम अलैकुम।

क्या बात है, आतिफ असलम की आवाज में खैर मंगदा मैं तेरी। ये गाना सुना आपने FM 107 पे और आतिफ असलम की गाने यार दिन बना जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो जरूर था, लेकिन अगला जो गाना आ रहा है वो बड़ा ही तेज तर्रार और लाजवाब आ रहा है। संग बाय आतिफ असलम, ज्योतिका और जोई बारुआ ने ये गाना गाया है। गाने का नाम है ओ मेरी लैला। ये गाना रिक्वेस्ट किया है आसिफ भाई ने और बहुत ही उम्दा ये गाना है। उसके बाद माहिया वे सोनिया माहिया वे ये गाना रिक्वेस्ट किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गाना कोई है भी, लेकिन जब ये गाना सामने आया तो पता चला अच्छा ठीक है ये भी कोई गाना है। तो ये यासीन भाई की रिक्वेस्ट पे गाना तो प्ले हो गया खैर मंगदा। माहिया वे सोनिया ये वाला तो मेरे को अभी भी नहीं पता भाई ये गाना है कौन सा। लेकिन ये गाना किसने रिक्वेस्ट किया है मैं उसको ढूंढ लूँ भाई, कहीं तो निकल गए हैं वो, अभी मैं ढूंढ के देता हूँ इनको, कहीं तो देखा था मैंने भी। बहुत तेजी से गायब हो जाता है कोई, कहीं तो सेव किया हुआ था। ये एक मैसेज है फजील भाई आपके लिए एक शेर हो जाए। भाई शेर पे बाद में सुनेंगे, अभी

जो है बाकी के गाने अपन सर्च रिसर्च कर लें। वंस अपॉन अ टाइम का एक गाना कह रहे हैं, सोनू निगम की आवाज़ में नहीं चला सकते भाई, आज की थीम है। खलील भाई का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम। भाई वो गाना माहिया वे सोनिया माहिया, ये कौन था जिसने रिक्वेस्ट करी थी भाई? कोई है, किसने रिक्वेस्ट करी थी? प्लीज़ आया, दिलबर भाई का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। वो बंदा कहाँ गया ये माहिया वाला, लेकिन दिख तो नहीं रहा। प्लीज़ दिख जाओ भाई, अभी तो तुम यहीं थे, इतनी तेज़ी से कहाँ गायब हो गए? नहीं मिल रहा। खैर, एक और गाने की रिक्वेस्ट आ रही है और ये गाना अपन प्ले नहीं कर सकते, जैसे कि उस्मान भाई ने एक रिक्वेस्ट की है, वो गाना अपन नहीं प्ले कर सकते। और साथ में कौन है ये भाई, उस्मान भाई के अलावा एक और सेम गाना रिक्वेस्ट किया था, तो खादिर अब्दुल हादी भाई, मैं वो रिक्वेस्ट जो आपने गाना कहा वो प्ले नहीं कर सकते। कभी कभार क्या होता है ना, कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं या कोई लाइनें ऐसी होती हैं जिस वजह से गाना नहीं प्ले कर सकते, तो ये माजरत के साथ। लेकिन फिलहाल आसिफ भाई की रिक्वेस्ट पे ओ मेरी लैला ये पहला गाना आ रहा है, और माहिया वे जो भी रिक्वेस्ट किया भाई उसका नाम नहीं मिल रहा, कहीं शायद चले गए, वो गाना भी आएगा लेकिन इस गाने के बाद। एंजॉय करें और वापस जब आएंगे तो हम गेम खेलेंगे कॉल्ड पहचान कौन।

FM 107 पे हाल हबीबी इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो में। और अब वक्त आ गया है आपके बेहतरीन से गाने को या कहें इस गेम को प्ले करने का, जहां पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको 666-22107 पे अपने टैलेंट का मुजाहरा करना है। आतिफ असलम के कितने बड़े फैन है आपको ये बताना है, आतिफ असलम के सारे गाने आप सुनते हैं आपको ये बताना है, प्ले लिस्ट में आपने क्या उनके ये गाने जो मैं प्ले करने वाला हूं वो रखे हैं या नहीं।

कितने बड़े फैन है ये भी हमें पता चल जाएगा। होता यह है पहचान कौन में कि मैं यहाँ पर तीन गाने प्ले करता हूँ वन बाय वन और ये सारे गाने बीच से लिरिक्स कहीं से लेकर प्ले कर देता हूँ और आपको गेस करना होता है गाने का नाम। बड़ा सिंपल सा ये गेम है लेकिन टफ बनाना मेरा काम है। कभी कभार मैं ऐसे लाइन कराता हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो लेकिन गाना बहुत पॉपुलर होता है ना, उसके हुक लाइन बेहद पॉपुलर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जरा आपकी नॉलेज गानों में क्या है या आप क्या गानों के हर एक लिरिक्स पर खास ख्याल रखते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहला जो पहचान कौन का गाना आ रहा है आज वो है ये।

हाँ जी वेल मुझे लगता है कि चिन्मई की जो ये आवाज है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसमें आतिफ असलम है। कुछ देर में अगर ये लिरिक्स आपने सुनी हो तो आपको तो पता ही चल जाएगा, लेकिन कुछ देर में असली जो गाना है वो मैं, या कहें हुक, वो भी मैं प्ले कर दूंगा। वेल सबसे पहला जो जवाब आया है आज वो है आसिफ भाई का। क्या बात है आसिफ भाई, पहली रैंक पे पहुंच गए हैं आप, बाकी के दो गाने सबसे जल्दी और सबसे पहले अगर आपने जवाब दे दिया तो आज आपकी रैंक हो जाएगी। लेकिन आज दूसरे नंबर पे फलक एसआर के हैं, फिर तीसरे नंबर पे हैं आज आसिफ आलम। ओके बिल्कुल सही जवाब के साथ, ये तीनों सही जवाब देखे शुरुआत कर चुके हैं गेम का, और फलक दूसरे वाले इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है, फिर मुबशर भाई ने भी बिल्कुल सही बताया, शहजाद ने सही बताया है, यूसुफ भाई ने सही बताया है, फिर उसके बाद बिलाल साहब ने भी सही खेल का मुजाहरा करा। क्या बात है यार, आतिफ असलम के गहरे वाले फ़ैन हैं। दिलबर अली ने भी सही बताया है, और नाम तो एग्जैक्ट नहीं लिखा है लेकिन ठीक है, लिरिक्स आपने सही पकड़ ली है। आपने नाम नहीं बताया भाई, नाम लिख देते तो सही होता। दो तीन जगह मैं देख पा रहा हूँ सलमान खान लिखा है आपने ऊपर, तो बिल्कुल सही है। ये काशिफ भाई आपने जो नाम लिखा ये तो शायद लाइन भी नहीं है। हिशाम साहब ने बिल्कुल सही बताया है, फिर उसके बाद नाम नहीं लिखा है लेकिन अली, हाँ अली ने हरियाणा से जो किया है उन्होंने भी सही बताया है। एंड देन अब्दुल रहमान मोहम्मद भी प्लेलिस्ट में ऐड करके रखे हुए हैं इस गाने को, मुझे लगता है बिल्कुल सही जवाब। जीशान ने भी सही जवाब बताया है, और फिर मुबीन भाई दिल दिया अलग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ब्लॉक करता हूँ, रुक जाओ अभी। लेकिन आप सब ने, एक या दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90 से 95% 98% लोगों ने सही जवाब दिया है। गाने का नाम है मैं रंग।

हाँ जी, तो देखा ये गाना जो है मैं रंग शरबतों का है आसिफ भाई, तू रंग शरबतों का नहीं है। लेकिन वेल प्लेड, अभी तो बहुत गेम बाकी है। दूसरे नंबर के गाने पे आते, इसे भी आतिफ असलम ने गाया, बहुत ही फेमस गाना है, बट कई बार लिरिक्स जो है बीच की वो छूट जाती है। इट्स ओके, पहचानिए और बताइए कि आप कितने बड़े फैन हैं आतिफ असलम के।

हाँ जी, बस इसके आगे मैं प्ले नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है ना मुझे खुद को इजाजत नहीं है। वो कोड़े वाले भैया जो है वो तेल की डिबिया निकाल लेते हैं। गाने का नाम बताना है और सबसे पहला नाम मुझे लगता है पहली रैंकिंग में चेंजेस आ गए हैं। आसिफ आलम जो तीसरे नंबर पे थे वो पहले नंबर पे आ गए हैं। फिर एक मैसेज सलाम का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, नाम आपने लिखा तो नहीं है, मुझे प्रोफाइल चेक करनी पड़ती है सबकी। फैसल इनका नाम है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे एकदम चेंज हो गया, फलक एसआर के अभी भी दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन पहले नंबर पे आसिफ भाई आ गए। चले ठीक है, चेंजेस तो हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरे जो थे वो पता नहीं, अभी तक तो आए नहीं जवाब, लेकिन जीशान ने भी सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। तो अगर देखा जाए जीशान के दो सही जवाब हो गए, अब तीसरे नंबर पे आ गए जीशान भाई, पहले नंबर पे आसिफ,

दूसरे पे फलक एसआर के, तीसरे पे जीशान, थोड़ा सा ले गया चौथा, अगर रैंक होता तो आसिफ एक बार को ले जाते, ये दूसरे वाले आसिफ है, फिर आसिफ आलम, ओके ये आसिफ आलम पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पे आसिफ के किसी, लेकिन चौथा रैंक है नहीं भाई, सॉरी। उसके अलावा फलक ने, दूसरे वाले फलक है, सही जवाब है भाई, इतने नाम रिपीट हो रहे हैं। यूसुफ भाई ने कहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही जवाब है, और साथ ही मोहम्मद का, बिलाल का भी सही जवाब है, हिशाम ने भी सही जवाब दिया है, इब्रार ने भी सही जवाब दिया है, फिर मैं इसको मानूं कि ना मानूं, लेकिन ठीक है, अली हरियाणा वाले जो, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, खालिद साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद आतिफ असलम का ये गाना बताते हुए, आई गेस इनका नाम जीशान ही है क्या, ये दूसरे वाले जीशान है, जेड शान लिखा हुआ है, मैं तो जीशान ही समझूंगा। खुर्रम साहब ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, और एक गलत जवाब आया है शहजाद का, शहजाद भाई क्या हो गया, कैसे गलत हो सकता है यार। गनी साहब ने सही पहचाना या नहीं पहचाना, सलाम वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, अब तो आदत ही है मुझको, ये गाना बिल्कुल सही पहचाना है आपने, नाम है गनी साहब।

बस करो यार, बहुत चीजें याद आ जाती हैं यार। ये गाना तब आया था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और भाई पीठ पे बस्ता लेकर लंबी लंबी दूरी तय करके पैदल ना, ये गाना सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। और वो तार वाला एयरफोन था भाई साहब, एयरप्लग कह लो, एयरफोन कह लो, कुछ भी कह लो भाई, लेकिन जो मज़ा आता था। अभी तक ये गाना ना सर में चढ़ता है।

और ऐसा भी नहीं कि बहुत तकलीफ में रह रहे हो, लेकिन ये गाना कि अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, सुनने में मजा आता था। तीसरा गाना पहचानने की कोशिश करिए, पहचान कौन किस गेम में।

0: उफ, चेहरे पे मेरा पहरा होगा भाई साहब।
1: किसी खूबसूरत के लिए गाना लिखा है और गाया है आतिफ असलम ने, गाने का नाम बताइए। और मुझे लगता है कि वापस से आसिफ के केसी भाई आ गए नंबर एक पे। बहुत ही उम्दा, क्या खेल का मुजाहरा किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया है? फलक दूसरे नंबर पे। बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि तीनों इन्होंने सही जवाब दिए। अगर दो सही जवाब होते ना तो फलक भाई मुझे लगता है कि चौथे या पांचवें नंबर पे होता, लेकिन ये दूसरे वाले फलक है, फलक एसआर के वाले नहीं है, ये फलक भाई है। भयंकर चेंज हो गया है और तीसरे नंबर पे फलक एसआर के आए, तो हमारे पास रैंकिंग तो आ गई है ना। गाना जो सबसे पहले पहचाना है वो आसिफ के केसी ने पहचाना है और उनकी पहली रैंकिंग है। फिर दूसरे नंबर पे कौन था? फलक, और फलक एसआर के जो है तीसरे नंबर पे आ गया। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए बाकी लोगों को देखते हैं। यूसुफ भाई ने कह रहे हैं ये मुश्किल हो गया मेरे लिए। अरे नहीं यार, मैं नहीं मानता, इतना तो आसान है यार। लेकिन हिरू साहब ने गलत बताया है जवाब। फिर एक और सही जवाब है ज़ीशान शरीफ का, बिल्कुल सही जवाब है। इब्रार साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ज़ीशान साहब कह रहे हैं ओ मेरे खुदा, नहीं यार ये गाना है एक्चुअली में कुछ और। एक बार फिर से प्ले करता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए।

हाँ जी, गाने का नाम बताइए, नंबर है 666-22107, 666-22107, जल्दी करिए। और वक्त जो है बड़ा मुख्तसर सा हमारे पास बचा हुआ है, तो ये गाना कौन सा है आपको बताना है। और बहुत ही फेमस गाना है भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये आपने सुना ही होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। हिशाम भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया है और कहा ये सॉन्ग प्ले कर दो, बहुत प्यारा सॉन्ग है। बिल्कुल मेरा भी बहुत ही फेवरेट ये सॉन्ग है, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड

0: मर मिटेंगे हम आतिफ असलम का ये सॉन्ग
1: आभी जा सनम यूं ना कर सितम।
0: तो भाई क्योंकि आसिफ भाई ने कहा है कि इस सॉन्ग को प्ले कर दो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और पहले रैंकिंग वाला ये शख्स अगर आपसे रिक्वेस्ट करे इस सॉन्ग को प्ले करने को तो ये आपका फर्ज है कि आप इस गाने को प्ले करें। तो दोस्तों पहचान कौन में आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला, पहली रैंकिंग लेकर गए आसिफ और दूसरे पे थे फलक और तीसरे पे फलक एसआर के। एंजॉय करें इस शाम को और इस बेहतरीन गाने के साथ आपको छोड़ कर जा रहा हूं। गाना है आभी जा सनम बाय आतिफ असलम। एंजॉय करें और मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: और इसी के साथ 5:01 पे FM 107 के मैदान में उतर रहे हैं एक धुरंधर बल्लेबाज। बातों की बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आप सबके बीच आ रहे हैं दोहा वाले कबीर। देखते हैं कि स्कोर ये 2 घंटे की बैटिंग में कितना भरेगा। सारे दर्शकों ने अपने व्हाट्सएप फोन निकाल लिए हैं, मतलब फोन निकाल लिया करेक्शन, व्हाट्सएप करने के लिए तैयार। 666-22107 नंबर। और ये पहली गेंद और इसी के साथ बॉलर बहुत जोश-जोश में बॉल लहराते हुए और इसी के साथ और ये अब स्टेडियम के बाहर है मेरी गाड़ी।

शाबाश। चैन उसे कहना के कबीर हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। भाई साहब हमारा नाम है दुहौला कबीर, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, बहनों सबको बहुत सारा प्यार, सलाम, दुआएं, याद किया नहीं किया वो हिसाब किताब तो मैं ले ही लूंगा भाई। रजिस्टर में सबका नाम लिखा जाएगा जो आज मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है? भूल तक होनी भाई, मैं बाकी मैं मैसेज तो पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब मैसेज पढ़ूंगा आपके, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, आज ना आपको वीकेंड वाली कहानी मिलने वाली है, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसी कहानी है भाई, ऐसी कहानी है ना, मैंने ऐसी कहानी आज तक नहीं सुनाई होगी। पता क्या होगा ये कहानी सुनाने के बाद? दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके मन में आएंगे बहुत सारे सवाल भाई, बहुत सारे सवाल, और होगा ये कि उन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि वो देने लायक नहीं होंगे मैं ये चीज समझा नहीं सकता, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। दूसरी चीज ये होगी कि ऐसी कहानी है भाई, ऐसी कहानी आप ना रात भर या तो इंटरनेट पर ढूंढोगे, सर्च करोगे, बढ़िया मिल भी जाएगी, पढ़ाई करोगे इसकी, या आपके जहन में बैठ जाएगी और आप किसी ना किसी को सुनाओगे जरूर कि भाई नू कह रहा था वो रेडियो पे ऐसा करके वैसा हो गया। ये कहानी ऐसी है भाई, मैं इसको रोकने वाला था, मैंने कहा नहीं इसे थर्सडे को सुनाएंगे, बहुत बढ़िया लग रही है कैंट एकदम, फिर मैं कहा नहीं, वाई टू वेस्ट टाइम, जब है भाई है, जब है कहानी तो सुनाएंगे। तो आज आपको बहुत मजा आने वाले हैं, आज की कहानी तो मिस करने वाली है ये नहीं भाई साहब। हैदर भाई वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, मिल गए छुट्टी, छुट्टी मिल गई भाई को, बहुत बहुत मुबारक हो। लिखते हैं कबीर भाई, क्लाइंट का बहाना चल गया आज मेरा, भाई हाई फाइव भाई को। और इनका यूसुफ भाई लिखते हैं, हमने याद किया आपको कबीर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच। इसरार अंसारी साहब लिखते हैं, फुल एनर्जी, मजा आ गया मेरा भाई, थैंक यू सो मच। उनका अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है कबीर भाई? अली भाई फ्रॉम हरियाणा, सीधा मेरा भाई हरियाणा थे मेरा भाई, बहुत सारा प्यार। और इनके बाद मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो कबीर, वेलकम एंड सेंड मी यस्टरडे स्टोरी। लो जी डाकी डाक लाया। और एक मैसेज है मुबशिर साहब का, लिखते हैं गाड़ी का क्या बना बच, नहीं वो स्टेडियम के बाहर बॉल गिर गई, सीटी टूट गई, अब क्या करें। सईद हमजा भाई लिखते हैं, क्या हाल है आपके, शुक्रिया स्टोरीज का भी, केम बैक फ्रॉम अ रोड ट्रिप टू सऊदी अरेबिया, ड्रोव अराउंड 5400 किलोमीटर्स इन 16 डेज, और आपकी स्टोरीज इन्जॉय करते रहे रस्तों पर, क्या आप ही जी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम कबीर ब्रो, व्हाट्सअप में बढ़िया मेरी जान, आप बताइए कैसे हैं, आसिफ भाई क्या हाल है, और फिर गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम। ये हीरू भाई के अलावा किन्होंने मैसेज किया है, इनका भी नाम ज़रा पढ़ते हैं, ये हैं दीपेंद्र जी, आपने ना ये इतने 200 साल हो गए मुझे देखते हुए, आपकी डीपी मेरी तरह चेंज ही नहीं होती। और आसिफ भाई लिखते हैं, आओ आओ मौलाना खारी साहब हाजिरी लगा दो आज आज का सबक अभी सिखाते बेटे, आधा करो चार्जर से पिटाई होगी आज ईशान साहब वालेकुम अस्सलाम, कभी मौलाना साहब ने पीटा चार्जर से? हमारी यहाँ पीटते थे भाई बढ़िया वाला खलील भाई वालेकुम सलाम, क्या है आज? और ढोल भाई, ढोल कुछ देर में बजाएंगे, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई हाजिरी लगाते हैं, वालेकुम अस्सलाम फलक भाई, क्या हाल है भाई के? और मलिक वगास साहब लिखते हैं, गुड इवनिंग अस्सलाम, स्टोरीज के बारे में यही कहूँगा कि कहानी कहाँ से लाते हो उतनी ज़बरदस्त स्टोरीज, वाकई क्या है सच्चा सोना ही होती हैं। कल वाली स्टोरी की वीडियो भी देखी, बंदा किस हालत में देखने वाला था, लेकिन वाकई उसका सर्वाइवल बेहतरीन था, थैंक यू। और मैसेज है, आज तक एक वीडियो चल रही थी टिकटॉक पर, कतर से ओमान जा रहे वाटरफॉल के लिए, कुछ इन्फो है क्या भाई? मैंने नहीं देखी ये वीडियो, ये क्या क्या देखते फिर रहे हो मैंने नहीं देखी, ये कौन सी वीडियो है ये? और एक मैसेज है, ट्रिप वाले को भी बोलें कि 20 नहीं 25 दिन में 10 किलोमीटर चलाते हैं। लो शोएब भाई कंपटीशन थोड़ी हो रहा भाई एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक, वेलकम बैक तो आपका होना चाहिए, आप गायब है सफ़ीर भाई, हम तो यहीं हैं। और इफ्तिखार भट्टी साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यार भाई को। एंड देन अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, और कौन सा मैसेज, स्टोरी की तारीफें, वेस भाई वालेकुम अस्सलाम, मार्केटिंग ज्वाइन कर लें, मैं अगर मार्केटिंग ज्वाइन कर लूँगा ना भाई, ब्रांड को ज़्यादा हिट हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम इब्रार भाई, ओके सो ओके हाय कबीर, देर इज़ अ वे टू लिसन योर स्टोरीज ऑफलाइन, यस आई डू सेंड स्टोरीज, निखिल भाई मैं ऐसे भेजता रहूँगा आपको, आज से आपको सारी स्टोरीज मिल जाएंगी और जल्दी कहीं और भी मिलेंगी। ओके ढोल मैं अभी आके बजाऊँगा, अच्छा मेरी बात सुनो आज की जो कहानी है ये, डोंट इवन थिंक अबाउट मिसिंग इट। जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें, पहली चीज़ ये होगी कि आज की कहानी सुन के आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल जो आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं बस खुद ही सॉल्व करने में लग जाएंगे, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप मुझसे पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा नहीं, वो शायद व्हाट्सएप पर दे दूँ तो दे दूँ, बट

0: आएंगे जरूर सवाल मन में। और ये कहानी शायद इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी रही, एटलीस्ट टॉप थ्री में तो रहेगी आज की कहानी। सो इतनी सॉलिड कहानी, इतना बेच रहा हूं भाई, इतना तो मैं अगर मैं दुकान खोल के बेच लू ना सामान, तो मैं 2-3 बीघा जमीन तो ले लूंगा भाई। इतना मैंने कभी नहीं बेची कहानी, बेची होगी ज्यादा बेच रहा हूँ, क्योंकि आई एम एक्साइटेड टू टेल यू आज की स्टोरी। मगर 11 मिनट 2 सेकंड के बाद सब कुछ आएगा। सैयद फिरोज भाई ने मैसेज किया है, हेयर कट कराने के लिए आप इमरान हाशमी मूवी रिलीज होने का वेट कर रहे थे। आपने तो लुक भी नहीं दिखा सैयद फिरोज भाई अभी तक। नहीं भाई, वेट नहीं कर रहा था, इत्तफाकन बस हुआ ऐसा कि मैंने करा लिया चेंज। बट ओके, 11 मिनट 2 सेकंड, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। 666-22107 नंबर है और आपने कहीं जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा भाई साहब, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

आज की तारीख में इस जगह को थाईलैंड कहते हैं, लेकिन 1811 में इस जगह को सायम कहते थे. ओके, तो लेट्स कॉल इट सायम ओनली. यहां पर एक मां ने बच्चों को जन्म दिया. मां का नाम नॉक, NOC वाला नॉक, और बाप जो थे वो एक चाइनीज फिशरमैन थे जिनका नाम था TI. तो TI और नॉक. एंड जो बच्चे पैदा हुए उनको डिलीवर करते हुए माँ ने तो कहा कि यू नो आई डिडंट फील एनीथिंग डिफरेंट, उन्हें कुछ अलग नहीं महसूस हुआ. लेकिन जो नर्सिस थी वहां पर वो बहुत बहुत बुरी तरह से शॉक्ड थी. उनकी तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, बिकॉज एट दैट टाइम किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, अगर सुना भी था तो देखा नहीं था. बच्चे जो थे वो ट्विंस थे. अब आप कहेंगे ट्विंस में क्या हैरानी है, इसमें क्या बड़ी बात होगी, मगर ये जो ट्विंस थे ये आपस में जुड़े हुए थे. इनके बीच में एक पूरा एक बैंड जैसा था, यूं समझ लीजिए कि दोनों पेट से थोड़ा सा ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक बैंड ऑफ फ्लैश से, मतलब गोश्त का पूरा एक हिस्सा, और जुड़े हुए थे. और जब ये पैदा हुए तो पूरे हॉस्पिटल में आसपास हलचल मच गई. और इनकी जो पोजीशन थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश के वक्त के दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे, मगर वो जो इनके बीच का बैंड था जो इन्हें जोड़े रखे हुए था वो मुड़ा हुआ था, विच वॉज वेरी डेंजरस. मगर एक नर्स ने अपना दिमाग लगाया और उसने धीरे धीरे धीरे धीरे, बाय द वे इट टुक एक घंटे से ऊपर वक्त लगा उन्हें, लेकिन उन्होंने उस बैंड को ठीक कर दिया ताकि वो मुड़े ना. और अब दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ थे, सुकून से एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे. नॉक जो मदर थी, मां होने के नाते ऑब्वियसली उन्हें शॉक तो था, बिकॉज दोनों के दोनों जुड़े हुए पैदा हुए विद अ स्मॉल बैंड, और ये जो हिस्सा है दोनों के बीच का जो दोनों को जुड़े रखे हुए था ये इतना छोटा था जैसे एक बच्चे का हाथ, उस लेंथ के बराबर मान लीजिए, सो नॉट दैट मच. पर जो मदर थी नॉक वो ये मानती थी कि वो दोनों को नॉर्मल लाइफ दे पाएंगी, दैट इज वॉट शी बिलीव्ड. किसी भी माँ की तरह कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई था, वो अपने बच्चों से बे इंतहा मोहब्बत करती थी चाहे जैसे भी वो पैदा हुए. मगर जैसे जैसे बड़े हुए कुछ चीजें उनके साथ बदलती रही. बाय द वे बच्चों के नाम थे चैंग और एंग, याद करना आसान रहेगा आपके लिए. सो जैसे मैंने कहा माँ होने के नाते वॉज नॉट दैट सरप्राइज या डर गई, उनके खुद के बच्चे हैं. उन्होंने बच्चों को एक्सरसाइज सिखाई और वो एक्सरसाइज करके दोनों बच्चों के बीच में जो था, जो जुड़ा हुआ पार्ट था वो थोड़ा और हल्का होता गया. तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो थे लेकिन वो थोड़ा खिंच गया, और रिजल्ट ये रहा कि दोनों के दोनों अब एक दूसरे के साइड बाई साइड टल सकते थे. आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको, मैं कोशिश करता हूं दोबारा एग्जांपल देने की. सो जब वो पैदा हुए थे तो वो एक दूसरे के साइड बाय साइड चल नहीं सकते थे, मगर जब एक्सरसाइज करी इन्होंने तो दोनों के बीच का जो बैंड था जो दोनों को जोड़े हुए था वो पूरा फ्लैश का पीस वो थोड़ा खिंच गया, और अब दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के चल सकते थे. तो ये उनके लिए थोड़ी आसानी हो गई. नाउ इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर देम. अब वो खेल पा रहे थे, काफी एनर्जेटिक थे, एंड बहुत एंडलेसली इधर उधर बच्चों से उनकी दोस्ती भी हो पा रही थी. ऑब्वियसली उनके दोस्त जो थे वो बड़े अलग किस्म के दोस्त थे. कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके साथ होते थे, कुछ लोग उनसे जेन्युइनली मोहब्बत करते थे, कुछ लोग हैरान होते थे कि यार ये कैसे, ये तो कुदरत का अलग ही करिश्मा है. सो इसलिए वो दोस्त बन गए थे, मगर नॉनदलेस एवरीबडी वॉज प्लेइंग अराउंड विद देम, और दोनों बड़े खुश थे चैंग और एंग. सो चैंग और एंग का बचपना कैसा भी रहा हो, बड़े होते होते सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था. मगर फिर 1819 ये साल आया, एंड 1819 में कुछ हुआ. 1819 में स्मॉल पॉक्स फैला पूरी कम्युनिटी में, और जब स्मॉल पॉक्स फैला तो दोनों बच्चों को भी हो गया, और दोनों बच्चों के साथ साथ इनके बाप वो चाइनीज फिशरमैन जिनका नाम TI था उनको भी हुआ. अब ये बच्चे, ये दोनों के दोनों, पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा मेहरबानी थी कि दोनों के दोनों बच गए, मगर इनके जो फादर थे TI वो सरवाइव नहीं कर पाए स्मॉल पॉक्स को. और महज जब ये 8 साल की उम्र के थे दोनों.

चैंग और एंग, इनके फादर इस दुनिया से चल बसे। तो क्योंकि वो एक लौते थे जो कमाई करते थे घर वालों के लिए, तो अब कोई बचा नहीं था, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गया था, घर में सिर्फ एक माँ रह गई थी, नौक, और उनके ये जुड़े हुए ट्विंस, ये बच्चे जो महज 8 साल के थे। अभी दोनों बचपन से थोड़े समझदार थे, इनको भेज दिया गया कोको बीन ऑयल इंडस्ट्री में, जहां पर ये बेचारे काम कर रहे थे। आज की तारीख में इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ये चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मजबूरी थी और ज्यादा लॉज नहीं थे, तो दोनों काम करने लगे। एंड इनफैक्ट इन्होंने बहुत सालों तक वहां पर काम किया, और जब कुछ वक्त बीत गया और ये यहां पर काफी पले बड़े, चैंग और एंग ने डिसाइड किया कि वो अब ये नौकरी छोड़ के अपनी माँ के पास खेती बाड़ी में मदद करेंगे। इनफैक्ट मदद करेंगे कि वो बत्तखों को रेस कर सकें, बत्तखे जो है उन्हें बत्तखों खिलाना पिलाना, उनके अंडों को ट्रेडिंग करना। तो ये दोनों बेसिकली माँ के साथ एक मर्चेंट का रोल कर रहे थे, मगर जिंदगी अभी ठीक ठाक चल रही थी। यू नो ऑलरेडी सबकी नजर थी इन दोनों पे कि यार एक अलग ही बच्चे हैं भाई, दोनों जुड़े हुए। जस्ट इमेजिन वो साल जब किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, शायद अभी आप बिल्कुल हैरान भी ना हो इस बात को लेके। ऑब्वियसली आपको शॉक लगेगा कि यार दोनों, बताओ दोनों जुड़े हुए पैदा हुए, बट एट दैट टाइम वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आधे लोगों को पता भी नहीं था, देयर वाज नो इंटरनेट नथिंग। और फिर सब कुछ बदला 1824 में, जब ये साल आया तो ये दोनों के दोनों, सूरज डूब रहा था और एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे, अब यूज्ड टू हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा तैरा जाए, पानी में उतरा जाए। और ये बस वहीं पे थोड़ा सा पानी में इधर उधर, जहां तक ये जा सकते थे वहां तक जा रहे थे। मगर यहां पे एक बंदा था और ये स्कॉटिश मर्चेंट था, और वो अपनी फिशिंग बोट में था, फिशिंग कर रहा था। इसका नाम था रॉबर्ट हंटर। रॉबर्ट की नजर जो थी फिशिंग करते करते इन दोनों पे पड़ी, और वो बुरी तरह से डर गया, बने हुए ये क्या है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, उसे लगा कि कोई ये कैसा जानवर है, बिकॉज सूरज भी डर रहा था, ही कुडंट सी देम प्रॉपरली अंडर वाटर, दोनों एकदम जुड़े हुए, तो ये डर गया थोड़ा सा। बट ही रियलाइज्ड कि नहीं, ये कोई अलग सी कोई चीज नहीं, ये इंसान ही है। बस हैरत अंगेज बात यह है कि दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ, और उसकी आंखों में जो ये खौफ था उन दोनों को देख के, ये खौफ बदल गया डॉलर्स में। अब उसे डॉलर्स नजर आ रहे थे कि मैं इन दोनों से कमाई कर सकता हूं, ये दोनों मेरे लॉटरी का टिकट बन सकते हैं। और उसने बिना वक्त जाया किए अपने फिशिंग रॉड को बोट पे छोड़ा, उतरा और चैंग और एंग के पास गया उनसे बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है उसे कन्विंस करने में 10 सेकंड भी नहीं लगे, क्योंकि उसने अपनी बात सीधा एक फ्लो में कह दी, वो समझ गया इन लोगों को पैसे की कमी है। उसने कहा मेरे साथ काम करो, माला माल कर दूंगा। मगर इन दोनों की मां, चैंग और एंग की मां यानी कि नॉक, वो राजी नहीं थी, वो अपने बच्चों को ऐसे किसी के पास नहीं छोड़ सकती थी, ना जाने देना चाहती थी। उन्हें मंजूर था फाइनेंशियल ट्रबल, कमाई नहीं हो रही है या हो रही है, इट्स ओके, मगर वो बच्चों को अपने कलेजे से दूर नहीं कर सकती। मगर फिर रॉबर्ट ने इन बच्चों के सामने एक ऑफर दिया, उन्होंने बोला कि तुम तीनों मिलके मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी बोला कि नॉक यानी इन दोनों बच्चों की मां, इसको हर महीने $500 मिलेंगे, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 1800s की बात हो रही है। तो $500 इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट, ज्यादा भी नहीं है मगर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही है। इसको मना नहीं कर सकती थी नॉक, उन्होंने कहा ओके, और तीनों ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और डील डन हो गई। अब सायम, ये जो जगह है पूरी, इस जगह का जो किंग था, उसे इन ट्विंस के बारे में पता लगा, क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल रही थी। और जब पता लगा तो उसने कहा नहीं, ये मेरे मुल्क को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मगर रॉबर्ट जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था वो बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था और बहुत कनेक्शन थे उसके, और उसने अपने अमेरिकी कैप्टन साथी एबल कॉफिन के साथ मिलकर किंग से बात करने का फैसला किया। दोनों इस कोशिश में लगे रहे, लगातार खत लिखे, लगातार हाजिरी दी, 5 साल लगे
लेकिन रॉबर्ट और एबल कामयाब हुए। उन्होंने किंग को कन्विंस कर लिया और फिर आया साल 1829। 1 अप्रैल की तारीख थी। चैंग और एंग अब 17 साल के हो चुके थे और फाइनली क्योंकि अब इजाजत मिल चुकी थी तो चैंग और एंग अभी एक बड़े से जहाज में थे। ये ट्रेडिंग वेसल था और बोस्टन मैसाच्यूसेट्स की तरफ ये जहाज जा रहा था। ये ट्रिप कोई छोटी ट्रिप नहीं थी, ये ट्रिप थी 138 दिनों की, यानी 138 डेज जहाज का सफर बोस्टन तक। बहुत लंबी ट्रिप। मगर ट्विंस जो हैं वो बोर ना हो जाएं इसलिए रॉबर्ट और एबल ने एक प्लान बनाया कि इन दोनों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं और दोनों को काफी बढ़िया क्लासेस दी 138 डेज की। और फिर आया अगस्त का महीना, 16th of August 1829। ये ट्विंस फाइनली जहाज से उतरे बोस्टन में। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही जहाज से उतरे इन्होंने देखा सामने मीडिया वालों की लाइन लगी हुई है। लोग पागल हो गए, जैसे ना जाने वो क्या देखने वाले हैं। हर तरफ इनके बारे में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी। रॉबर्ट और एबल जानते थे कि ऐसा होगा क्योंकि यही उनकी कमाई का जरिया भी है। उन्होंने एक बंदे को हायर किया और ये मैनेजर बनने वाला था। इसका नाम था जेम्स डब्ल्यू हेल। प्लान ये था कि जेम्स जो है वो ये जो ट्विंस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं चैंग और एंग, इनकी एग्जीबिशन कराएगा, पब्लिक को दिखाएगा और इनको देखने के लिए 25 सेंट देने होंगे लोगों को। अब यूं समझ लीजिए कि चैंग और एंग क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं और दुनिया ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है एटलीस्ट उस जगह पे, तो लोग 25 सेंट देने को तैयार हैं। एक एग्जीबिशन लगी है, वो अंदर सिर्फ खड़े हुए हैं और लोग 25 सेंट देकर देखने के लिए आ रहे हैं कि ट्विंस आपस में जुड़े हुए कैसे लगते हैं। इन दोनों ने सिर्फ एक शर्त रखी कि हमें सायमीज यूथ बोलो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जेम्स जो मैनेजर था उसने इनकी ड्राइंग जो ट्विंस ने खुद भी बनाई और इनके ऊपर भी बनाई गई, उन ड्राइंग्स तक को नहीं बख्शा, उनको भी बेचा। बोला ऑडियंस को कि एज अ सोविनियर आप इन्हें खरीद सकते हैं और लोग खरीद रहे थे। धड़ल्ले से वो ड्राइंग्स बिक रही थी जो इन ट्विंस की थी या ट्विंस के ऊपर बनी थी। इनका ये शो, इनके एग्जीबिशन बड़ा होता गया, रेट बढ़ते गए, 25 से 50 सेंट हो गए एंड यहां पे रेट को रोक दिया गया। काफी दबा के कमाई हुई, मगर शर्त ये थी कि इन ट्विंस को जो भी पहनाया जाएगा इन्हें पहनना पड़ेगा। कभी इनके बालों को बांध दिया, कभी पोनी बना दी, कभी बन बना दिया, कभी इनको पायरेट से कपड़े पहना दिए, कभी कुछ पहना दिए, कभी कुछ पहना दिया। और इनकी ड्यूटी सेट थी, इन्हें हफ्ते में 6 दिन और हर रोज 4 घंटे एग्जीबिशन का हिस्सा बनना है, जहां पब्लिक आएगी 50 सेंट देगी और इनको देखेगी। पूरा का पूरा यूएस, कई शहरों में इनके चर्चे और इनको शोकेस किया गया। और फिर इन दोनों ट्विंस को थोड़ा जोश आया, जब ये कमाने लगे तो उन्होंने कहा क्यों ना हम और भी करतब दिखाएं। तो ये एक्रोबेट्स दिखाने लगे, इन दोनों में कंबाइंड पावर कितनी है वो उसका मुजाहरा करने लगे। इन दोनों हिट हो गए, चैंग और एंग इतने बड़े हिट हो गए कि सब उनकी बातें करने लगे। रिजल्ट ये आया कि मेडिकल कम्युनिटी और जितने भी साइंस से जुड़े हुए लोग थे उनकी नजर इन पे पड़ी। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स इन दोनों भाइयों को देखने के लिए आए, वो जानना चाहते थे कि ये क्या चीज है यार। वो जब भी देखते आते वो पागल हो जाते, बिकॉज उस जमाने में जुड़े हुए बच्चों का पैदा होना ऐसा था कि वो ज्यादा जी नहीं पाएंगे, दे विल इवेंचुअली डाई सैडली। मगर ये दोनों खा पी रहे हैं, बढ़िया बड़े भी हो रहे हैं एंड ये सब बड़ा हैरत अंगेज था, किसी मेरिकल से कम नहीं था, एक मेडिकल मिस्ट्री थी उनके लिए। एंग जो था दोनों भाइयों में, एंग की हाइट थी 5 फुट 2 इंच और चैंग जो से जुड़ा हुआ था उल्टे हाथ की तरफ

चैंग जो था वो आधा इंच एक इंच का फर्क होगा हाइट में, और वो इसलिए हील वाले जूते भी पहनता था ताकि दोनों की हाइट सेम लगे। चैंग और एंग को प्रॉफिट्स ही मिलते थे इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा इन्हें भी मिलेगा। पर एबल थोड़ा अलग बुद्धि का बंदा था। उसने कॉन्फ्रेंस में जाके बोला कि मैं और रॉबर्ट हंटर हम दोनों इनके मालिक हैं, हम जो कहेंगे वही इन्हें करना पड़ेगा। और इन दोनों ने मिलके सोने की मुर्गियों को, क्योंकि उनकी नजर में सोने की मुर्गियां हैं, उनको और भी जगह बेचना शुरू किया। जैसे कि मेडिकल फील्ड में उन्होंने कहा कि आप आइए, इनकी बॉडिली ऑटोनॉमी को पढ़िए, इनके बारे में जानिए, और उससे भी पैसा बनाया। चैंग और एंग बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे, उनके शोज अब अमेरिका के बाहर भी होने लगे, ओवरसीज भी होने लगे। इनफैक्ट साल 1830 में वो ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटिश डॉक्टर्स उनसे मिलने के लिए आए। यहां भी ये कामयाब रहे, और यहां के बाद 1831 में ये ट्विंस चैंग और एंग बहुत मोटी कमाई करके यूएस पहुंचे वापस। अब इस वक्त क्या था कि ये दोनों चैंग और एंग पैसे वाले हो चुके थे, उम्र भी इनकी हो रही थी, और बिजनेस के बारे में समझ गए थे कि भाई ये बिजनेस मॉडल है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है। अब ये दोनों बाकी दुनिया से अलग होना चाहते थे क्योंकि एक दूसरे से तो चिपके हुए हैं। तो चैंग और एंग जो थे अब भाग जाना चाहते थे, मगर जो बंदा याद है इन्हें मिला था और इन्हें देख के डर गया था, रॉबर्ट, उसने हाथ पीछे खींच लिए और जो पूरा बिजनेस था इन दोनों के जरिए कमाई का वो एबल कॉफिन को बेच के चला गया वो, और यही शुरुआत थी बर्बादी की। गर्मियों का महीना था, दर्जनों के हिसाब से लोग वहां पहुंचे चैंग और एंग के पास। चैंग और एंग को पता नहीं क्या हुआ, उन्हें लगा कि शायद सामने खड़े हुए लोग जो हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, एंड कुछ शायद मूड खराब था, लेकिन एक गन वहां पे रखी हुई थी और दोनों भाइयों में से एक ने बंदूक उठाई और उसका बट जो था वो सामने वाले बंदे के सर पे मारा। कैसे मजाक उड़ा रहा है, कैसा सरा है। सामने जो बंदा था उसका नाम था एलब्रिज नाम के इस बंदे ने पत्थर उठा के मारना शुरू किया जो दोनों में से एक ट्विन्स के लगा। चैंग और एंग उन्होंने गोली चलाने की कोशिश करी लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गोली चली नहीं और बंदूक अटक गई। मगर रिजल्ट ये आया कि बाकी लोग जो जेन्युइनली देखने के लिए आए थे वो बहुत डर चुके थे और मीडिया ने इसकी कवरेज करी। मगर कवरेज में भी उन्होंने चैंग और एंग को शरीफ बताया, उन्होंने एलब्रिज को गलत बताया कि ये मजाक उड़ा रहा था और ये गलत है। मगर एलब्रिज अलग किस्म का आदमी था, उसने एक खत लिखा। खत में उसने लिखा लेटर टू पब्लिक, यानी पूरी पब्लिक के लिए, और उसमें उसने जो छापा वो काफी अखबारों ने छापा, और उसने ये लिखा कि शुरुआत ट्विंस ने करी थी, मैंने नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि ट्विंस थोड़े से बदनाम होने लगे, उनका जो मैनेजर था वो भाग गया कि मैं नहीं मैनेज कर सकता। मगर इनको संभालने के लिए फिर एक हैरिस नाम का इन्हें बंदा मिला जिसने इन्हें थामने की कोशिश करी। फिर एक जगह ये लोग परफॉर्म कर रहे थे और अभी ऐसा था कि चंद लोग, एक पूरा ग्रुप है जो नफरत करता है चैंग और एंग से, और एक ग्रुप है जो अभी भी इनके साथ है। तो परफॉर्मेंस चल रही थी अलबामा में और वहां पे एक फिजिशियन आया, वहां पे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा मैं आप दोनों को जरा टेस्ट करना चाहता हूं, आप दोनों को जांचना चाहता हूं साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए, और दोनों ने मना कर दिया। अब जो ये मना करना था उस डॉक्टर ने दिल पे ले लिया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगा कि चोर हो तुम दोनों, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम दोनों। और उसने पब्लिक को जब भड़काया तो लोगों ने एक पढ़े लिखे डॉक्टर पे ज्यादा ही भरोसा करके पत्थरबाजी शुरू कर दी, बहक गई पब्लिक और आधे लोगों ने पत्थर उठा के स्टेज पे उन्हें जो भी मिला वो फेंकना शुरू कर दिया। ये दोनों भागे वहां से और उन्हें उल्टा गुड बिहेवियर बॉन्ड लॉ के हिसाब से पे करना पड़ा। अब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं,
पब्लिक अभी भी हैरान है कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि दोनों की उम्र भी बढ़ रही है, खा पी भी रहे हैं, इनके शरीर पे भी लग रही है, ये अलग किस्म के ट्विंस हैं। और एबल कॉफिन वो एक एक आखिरी बूंद तक इनसे पैसा निकालना चाहता था, मगर मसला ये था कि वो ट्रैवल बहुत करता था। उसने इन ट्विंस की जिम्मेदारी, एंग और चैंग की जिम्मेदारी अपनी बीवी के जिम्मे छोड़ दी, जिसका नाम था सूजन। और सूजन थी देहा बदतमीज, वो निगलेक्ट करती थी दोनों को। और ये दोनों जाते थे और कहते थे कि मैम $3 एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो हमारे जो घोड़े हैं उनको खाना खिलाना है, वो मना कर देती थी। दोनों के मैनेजर्स चार्ल्स ने भी कई मरतबा खत लिखे, सूजन प्लीज इन्हें दे दें दे दें, $3 ही तो हैं, पर कोई फायदा नहीं होगा। चैंग और एंग एबल से कहना चाहते थे कि भाई हम आपके पार्टनर हैं, नौकर नहीं है, पर उन्हें ट्रीट वैसा ही किया जाता था। इनफैक्ट उनको कहीं ले जाया जाता तो नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। और अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था, उन्हें समझ में आ रहा था कि वो अब भाग जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो 21 साल के होने वाले थे और उन्हें पता था कि ये वो उम्र है जहां पे वो अडल्टहुड में एंटर कर जाएंगे और उस वक्त के हिसाब से दे कैन गेट अ जॉब और प्रोबेबली डू समथिंग एल्स। उन्होंने फैसला किया, हम जैसे 21 साल के होंगे हम इससे बोलेंगे हमें आजाद होना है, हमें कोई गार्जियनशिप नहीं चाहिए, लॉ के हिसाब से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये प्लान था उनका, दे वर जस्ट वेटिंग कि हम जल्दी से 21 साल के हो जाए और फिर हम बोल देंगे। मगर हुआ ये कि 1831 में पूरे एशिया में घूमने के लिए एबल कॉफिन निकल गया। वो आने वाला तो जनवरी में था पर आया ही नहीं, और मई का महीना आ गया और मई में बर्थडे था, तो ये दोनों के दोनों हो गए 21 साल के। उन्होंने कहा ये तो आया ही नहीं, हमें बात करनी थी। वेट करते रहे करते रहे, जून आ गया नहीं आया, तो चैंग और एंग ने फैसला किया कि भाई बहुत हो गया, अब हम यहां से भाग रहे हैं। वो भाग गए जून के महीने में, और जुलाई में 1832 में कॉफिन जब घर आया, एबल कॉफिन, तो उसने देखा दोनों तो भाग चुके हैं। उसे तो एहसास हुआ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी छिन गई उससे। वो बौखला गया, पागल हो गया, उनके मैनेजर को ढूंढा, कहां गए वो दोनों, क्यों बहकाया उनको, कहां गए वो। वो इतना पागल हो चुका था कि वो न्यूयॉर्क तक गया उन्हें ढूंढने के लिए। उसने बंदों को हायर किया और ढूंढ निकाला। उसने देखा कि चैंग और एंग जो हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, और उसने फैसला किया कि अब इन्हें रज के सुनाऊंगा। हालांकि यहां पे अगर एबल इनसे तमीज से प्यार से बात कर लेता तो बात बन जाती, मगर इसने जाके खरी खोटी जो उन्हें सुनाई है, चैंग और एंग ने फौरन इसके मुंह पे मना कर दिया और सामने से निकल गए। फाइनली पूरा का पूरा कंट्रोल अपनी जिंदगी का इन दोनों के हाथ में था। सालों बाद अभी दोनों खुद का शो करना चाहते थे। इन्हें पता था कि दुनिया ने अभी तक एटलीस्ट इनके एरिया में इनके जैसा ट्विंस नहीं देखे जो जुड़े हुए हो आपस में और बड़े भी हुए हो। अब इन्हें अंग्रेजी भी आती थी और इन्होंने अपना एक क्रू, अपनी एक टीम बनाई और अंग्रेजी में अंग्रेजों के बीच जाके बात करके शो करते थे, डांस करते थे, एक्रोबैट करते थे, एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी। साइमिस ट्विंस, इनका शो देखने के लिए लोग दीवाने थे। और अब कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। अभी तक आप समझ चुके हैं कि ये ट्विंस आपस में जुड़े हुए, एंग और चैंग, इनकी पूरी की पूरी बॉडी अलग अलग है। इट्स जस्ट दैट के पेट के बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा साइड में एक पूरा, एक यूं समझ लीजिए एक बैंड ऑफ फ्लैश है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि इनके हाथ में था बिजनेस, तो इन्होंने एक प्यारा सा छोटा सा घर लिया, और इस घर के पड़ोस में यीट्स फैमिली रहती थी, एक फैमिली जिनका खुद का फार्म वार्म था। ये भी उनके फार्म में मदद करने लगे। हुआ ये कि यीट्स फैमिली की दो लड़कियां थीं और इन दोनों को हो गया प्यार, पर मुश्किल ये थी ना, जस्ट इमेजिन उन ट्विंस के बारे में जरा सोचिए कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि यार हम शादी कैसे करेंगे,
जो दो लड़कियां थीं उस फैमिली की, इनकी पड़ोस में, उनका नाम था सारा और एडलेड। सारा जो थी

सिंपल सी, कम बात करने वाली, और एडलेड जो थी वो यंग और ज़्यादा एनर्जेटिक, और दोनों जो थे वो एडलेड के पीछे पागल हो गए। मगर क्या था कि ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों एक से शादी करें। मतलब ऑब्वियसली दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों एक से शादी करेंगे। तो ठीक है, एक ने कहा ठीक है, मैं सारा से कर लेता हूँ और तू एडलेट से कर लेना। ये सपने बुन रहे थे क्योंकि इन्हें पता नहीं था ये हकीकत हो भी सकती है नहीं। अगर मैं आपसे भी कहूँ, डू यू थिंक कि दोनों जुड़े हुए ट्विंस कभी सोचें शादी करने का, एंड इट इज पॉसिबल? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन होगी कि सामने वाला अपनी बेटियों का हाथ इनके हाथ में दे देगा, राइट? तो चैंग और एंग ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। तो चैंग ने फैसला करा कि वो एडिलेड से शादी करेगा और सारा एंग से शादी कर लेगी। नियत तो कर ली, मोहब्बत भी हो गई, मगर सामने था खतरा खड़ा। मीडिया वाले अब इंसल्ट कर रहे थे, पूरा शहर इनके पीछे पड़ गया था, इनके खिड़कियों के शीशों को तोड़ रहे थे पत्थर मार के, और येट्स फैमिली जो पड़ोस में थी उनको तो धमकी आ रही थी कि आपके खेत को चला देंगे, दुनिया खिलाफ खड़ी है। लेकिन ये दोनों नहीं माने, और उन दोनों लड़कियों को भी इन दोनों से मोहब्बत हो गई थी। अभी तक पता नहीं है कि कैसे रहना है, मगर मोहब्बत हो गई है। फिर आया साल 1843, 13th of April, और उनकी शादी हो गई। आप इमेजिन कर पा रहे? आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग राइट नाउ, लेकिन मैं आगे बताता हूं आपको। तो ट्विंस जो जुड़े हुए हैं आपस में, उन्होंने दो लड़कियों से शादी करी, ऑब्वियसली एक ने एडलेट से, एक ने सारा से। सारा और एडलेट जुड़े हुए नहीं है बाय द वे, दोनों अलग अलग है। और शादी मुकम्मल हो गई, लोग बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, दो रुपए का फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों ने अलग अलग घर बनाए और डिसाइड ये किया कि हफ्ते में 3 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। एंड कहानियां खत्म नहीं होती। फरवरी की 10 तारीख 1844 सारा और एंग का पहला बच्चा हुआ, और एडलिड 16th February 1844 इनका पहला बच्चा हुआ। अब और सुनिए, चैंग और एडलिड के 10 बच्चे हुए, 10, और एंग और सारा के 11 बच्चे हुए। चैंग और एंग इनकी बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी थी अब, और ट्विंस ने डिसाइड किया कि भाई इसके भी हम पैसे बना सकते हैं। तो उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन बच्चों को लेकर ये दुनिया में इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे थे, टाई अप कर रहे थे। उनको टाई अप मिला पीटी बार्नम करके, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके साथ जुड़े और इनको बहुत बढ़िया अमाउंट मिला, बूस्ट हुई इनकी लाइफ। मगर फिर सैडली सिविल वॉर आ गई। सिविल वॉर खत्म होते होते 1865 हो गया, और इनके पास जो कन्फेडरेटेड करेंसी थी वो किसी काम की नहीं रह गई थी। इन बेचारों को वापस लोकल शोज करने पड़े घर को पालने के लिए, जो बहुत बड़ा घर हो चुका था अब तक ऑब्वियसली। अब दोनों उम्र दराज हो चुके थे और अब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, वो एक्रोबैट्स, वो नाचना नहीं हो पा रहा था, इसी बात का नहीं डर था। अभी दोनों ट्विंस, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ना भूलें, ये दोनों ट्विंस जो आपस में जुड़े हुए हैं, चैंग और एंग, इनमें से चैंग बहुत ज्यादा सैड होने लगा और उसको ड्रिंकिंग की आदत हो गई, वो नशे में रहने लगा, उदास रहने लगा। 4 साल के बाद चैंग की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे ब्रोंकाइटिस हो गया। जनवरी 1874 जनवरी का महीना, और डॉक्टर ने चैंग से कहा चैंग घर पे रहना पड़ेगा, और चैंग को रहना पड़ेगा घर पे, मतलब एंग को भी घर पे रहना पड़ेगा, चॉइस नहीं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। मगर प्लान क्या था, दोनों की फैमिलीज तो अलग है ना, 3 दिन उस घर में रहना है, 3 दिन इस घर में रहना है, ये कैसे होगा? 15 जनवरी की तारीख आई और चैंग जो था उसने बोला कि यार तेरी भी तो फैमिली है, अब तू मुझसे अलग हो नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूं तेरे साथ। और इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया दूसरे घर में जाने का, और यही थी सबसे बड़ी गलती।
ब्रीदिंग इशू, सांस लेने में मुश्किल होने लगी चैंग को बहुत बुरी तरह से। दोनों की दोनों, एक ठीक है एक को ब्रोंकाइटिस है, दोनों के दोनों चेयर पे बैठे रहे। सामने आग जल रही थी और उसकी हालत चैंग की बुरी हो रही थी, मगर एंग हिल नहीं सकता, एंग जुड़ा हुआ है, एंग तंग भी आ रहा है लेकिन वो उसका ट्विन है, क्या करे वो। फिर उसने थकार के बोला, भाई सोने चलें क्या प्लीज। और दोनों सोने चले गए। पर फिर अगली सुबह एंग और चैंग जब उठे तो सिर्फ एंग उठा, चैंग नहीं। एंग की आंखें बंद थीं और चैंग को जगाने के लिए उसकी बीवी आई थी और वो उठ नहीं रहा था। एंड फिर एंग को ये खबर दी गई कि चैंग उठ नहीं रहा है, एंड दे रियलाइज्ड कि चैंग जिंदा नहीं बचा। वो जो पैनिक था वो दुनिया में कोई भी महसूस नहीं कर सकता जो एंग को पैनिक हुआ होगा। मैं सिर्फ 2% इमेजिन कर सकता हूं। आप जरा इमेजिन करके देखिए कि आप एंग की जगह है, यू आर कनेक्टेड, लिटरली कनेक्टेड अपने ट्विन से, और आपका ही बॉडी का वो हिस्सा रहा है फॉर सो मेनी इयर्स और वो नहीं बचा। एंग को जब ये एहसास हुआ कि वो नहीं बचा, वो इतनी बुरी तरह पैनिक कर चुका था कि वो रो रहा था, चेहरे लाल हो रहा था उसका पूरा। अगले घंटे तक वो रोता रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगा अब, कैसे करेगा अब। और उसके अगले घंटे, 2 घंटे बीत जाने के बाद एंग भी इस दुनिया से चल बसा। दोनों की उम्र 62 साल थी, 62 years। पब्लिक जो थी वो बड़ी हैरान थी, परेशान थी। ऑटोप्सी के लिए पुलिस को बुला गया, पब्लिक ने बहुत जोर दिया, और फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने आई, जैसे कि दोनों की बॉडीज अलग अलग थी लेकिन दोनों के लिवर जो थे वो एक थे, बेसिकली एक लिवर दोनों के दोनों शेयर करते थे। एंड जो चैंग था ऑब्वियसली वो, उसे ब्रोंकाइटिस था, वो सेरिब्रल ब्लड क्लॉटिंग की वजह से उसकी जान गई, लेकिन ये पता लगा कि एंग की जान किसी फिजिकल बीमारी की वजह से नहीं गई थी। एंग को शॉक लगा था, वो शॉक जो शायद इसलिए भी लगा होगा कि वो क्या करेगा, उसकी बॉडी का एक हिस्सा था चैंग बचपन से, वो नहीं रहा, व्हाट विल हैपन। एंड वो शॉक में वो नहीं बच सका। मगर ये कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। दिस बिकेम अ मेडिकल फिनोमेना। आज तक उन्होंने किसी डॉक्टर को इजाजत नहीं दी थी कि उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, मगर फिर ये मेडिकल असाइनमेंट बन गया दुनिया के लिए। दिस वॉज लाइक द बिगेस्ट डिस्कवरी एट दैट टाइम। उस वक्त एवरीबडी वॉज फॉलोइंग दिस स्टोरी, सबके सब इनके बारे में जानना चाहते थे क्या कैसे। और फिर कई सारे साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन सबके सब आ गया है, और एक साइकोलॉजी बनी कि ट्विंस जो होते हैं, चाहे वो जॉइंट पैदा हो खुदा ना करे या अलग अलग पैदा हो, डज नॉट मैटर, पर दोनों को अलग अलग अप्रोच माँ बाप को देनी चाहिए ताकि दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग अलग हो सके। दिस इज वॉट दे कम अप टू, कि भाई ऐसा होना चाहिए अगर दोनों को सेम तरीके से अप्रोच दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ट्विंस है तो दे काइंड ऑफ यू नो आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दे विल शेयर द डीएनए एज वेल। मगर एक और डिस्कवरी थी, वो ये थी कि इनको क्या अलग किया जा सकता है। आज की तारीख में अगर ये दोनों होते, इन दोनों को अलग किया जा सकता था, मगर इनकी बदकिस्मत ये थी कि दे वर बॉर्न इन द 1800s, तो पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकता था, एंड ये वजह बने एक मेडिकल फिनोमिना की, जहां पर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, हाउ टू कट टिश्यूज जब ट्विंस कनेक्टेड हों, और कैसे इन पर काम किया जाए, जिसका रिजल्ट आज हम देख सकते हैं जो बहुत बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। सो या, दिस वॉज द स्टोरी। ये एक सैड, एक आई डोंट नो किस कैटेगरी में इस कहानी को रखूँ, इट कवर्स एवरीथिंग, मगर आप पे इस कहानी का क्या इम्पैक्ट है?

मैं जरूर जानना चाहूंगा। 666-22107 नंबर है, 666-22107। आई वुड लव टू नो। और भाई इन कहानियों में बहुत मेहनत लगती है।

तो बता देना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। और एक और मेरा मैसेज आया, वही पढ़ ही लेता हूँ। ये सफा बहन ने मैसेज किया मुझे, क्या अपने टाइम की स्पर्ट ले हो बहन, काम कर लो। ओ जलेदा गाना भी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ऐसा है, मिलते हैं सीधा अजान के बाद। अभी तो 6:02 हो रहे हैं। आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल है, जो है भाई अपने आप से पूछ लो, इस कहानी से जुड़े हुए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। 6:62107 नंबर है। बाकी मिलते हैं जी कुछ देर में, ठीक है? जाना नहीं, आपके मैसेज चाहिए भाई। हाँ, स्टे ट्यून्ड।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है के दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब

देखिए भाई साहब, सैयारा तो ठीक है, लेकिन आपके मैसेजेस चाहिए आज की कहानी पे। आई बहुत सारे लगातार आ रहे हैं, एंड आई वांट मोर प्लीज। अब मैं जानना चाहता हूँ आपको आज की कहानी कैसी लगी, वर यू शॉक्ड या नहीं। इसी बात तो पैसे भाई, बाकी गानों से सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं। लेट्स गो।

ये मोहम्मद भाई ने मैसेज किया, थैंक यू भाई। और मुबशर मुबीन भाई कह रहे हैं भाई क्या लिखा है भाई, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं पूछूं मैं नहीं। और एक मैसेज है ख्याल भाई, ख्याल भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे पास आए हैं फिलहाल स्टोरी कॉल लेकर।

सबासी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई और हैं, वो लिखते हैं, कबीर भाई आज की कहानी सुन के मैं बड़ा हैरत में हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कहानी आपको कैसे मिल जाती है, हमें क्यों नहीं मिलती, क्योंकि मुझे ढूंढने के पैसे मिल रहे हैं और कोई दूसरी वजह नहीं है भाई, दैट इज़ दी ओनली रीज़न। अगर आपको ढूंढने को कहा जाए आप भी ढूंढ लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक्चुअली में क्या है कि सुनानी है ना, अब तो कोई और चॉइस नहीं है, तो सुनानी है मतलब सुनानी है, तो इसलिए ढूंढनी है मतलब ढूंढनी है, वो वाला सीन है। बट थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगी इसका मतलब तो यही हुआ सीधा सीधा, तो उसके लिए आई एम रियली रियली हैप्पी एंड जज़ाकअल्लाह फॉर रिप्लाइंग ऑन द स्टोरी, मीन्स अ लॉट टू मी। और बाकी जिनको नहीं मिली, मिल जाएगी कहानी, टेंशन मत लिया करो यार, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब बाकी कुछ खबरें हैं इनकी तरफ सबसे पहले बढ़ना चाहूँगा, तो एक खबर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने मिलकर अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स और साथ में अपडेट्स हैं बहुत सारी, बहुत सारे एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स को अपडेट किया जाएगा फॉर 2026-2027 अकेडमिक ईयर। और ये जो एफर्ट हैं, इनकी कोशिश है कि कंटिन्यूसली डिवेलप हो सके करिकुलम और वो जो कॉम्पिटेंसी है वो बड़े बच्चों में, और इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, और साथ में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे वक्त के साथ बढ़ रही है वैसे वैसे सब कुछ बढ़ता रहे, दैट इज द होल आइडिया एंड पर्पस। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, गुड स्टोरी, उस जमाने में इतना कुछ नहीं था जो ऐसे जॉइंट ट्विंस को देखना भी अजीब था, और मुझे अजीब बात ये लगी कि दोनों ट्विंस अलग अलग लड़कियों ने शादी की, ऑल्दो दे आर सेपरेट ह्यूमन बट जॉइंट टुगेदर, और माशाल्लाह से बच्चे भी अच्छे खासे, जी हाँ अच्छे खासे, 1 के 10, 1 के 11, और लिखते हैं बट सैड एंडिंग। पहले कुछ फिल्म्स में ऐसा बताया जाता था कि ट्विंस मरेंगे तो दूसरे को दर्द होता है, उस तरह यहाँ भी एक मौत के बाद दूसरा भी डेथ हो गई, या अल्लाह। और आगे लिखते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑल टाइम, आई सेकंड यू, थैंक यू सो मच भाई। बट वही है कि इन पे आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री नहीं कहूँगा, इट्स अ मॉक्यूमेंट्री लाइक अ मूवी, एक है वो नाम नहीं पता मुझे, वो साइमीज लैंग्वेज है वो जो थाईलैंड में बोली जाती है, तो मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता है, बट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। चैंग एंड एंग टाइप कीजिएगा, चैंग एंड एंग बंकर ये दोनों के नाम थे, तो ये आप सर्च करेंगे, एंड सून एज यू सर्च इट आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, मुझे अच्छा लगा कि आपको कहानी अच्छी लगी, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, अगर उस दौर की बजाय इस दौर में होते तो शायद दोनों को अलग करना आसान रहता, बट It was impossible to do that. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की खबर की तरफ बढ़ते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली यानी MOSDF, उन्होंने लॉन्च किया है वॉक योर किड्स टू स्कूल। ये कैंपेन है जो कि अभी जब नया साल शुरू होगा स्कूल का, सो इट्स अ पार्ट ऑफ बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें इनिशिएटिव बड़ा कमाल का है। ये कैंपेन जो उसका नाम है, वही इसकी इंटेंशन है, वही इसकी नीयत है, बेसिकली इसका मकसद है कि जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा हो, ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो। और यूके ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली की तरफ से, सो ऑफ कोर्स देयर रोल इज़ टू फाइंड एंड डेवलप मोर स्पेस, ताकि माँ बाप और बच्चे आपस में जुड़े रहें, वो गैप ना आए, वो ऐसा ना लगे कि इतना बड़ा जनरेशन गैप है कि बातचीत ही नहीं हो रही है। सो इट्स अ प्रोसेस टू रीइंफोर्स द फैमिलीज रोल ऑन देयर प्राइमरी पार्टनर एंड यू नो, उन्हें स्कूल तक छोड़ना, उन्हें खुद पिक करना, उन्हें लेके आना, इसलिए इनिशिएटिव का नाम है वॉक योर किड्स टू स्कूल। ओवरऑल ये जो कैंपेन है ये सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आओ, डेली मिशन है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है, बट रादर मोर सुपीरियर देन वॉट एवर वी आर थिंकिंग। सो एक कॉन्वर्सेशन डेवलप करना, बातचीत करते रहना, एक कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना, वो एक छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक हो सकती है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्चुअली हैव इट। मैं इस बारे में, मुझे कम नॉलेज है भाई, जब इंशाल्लाह बच्चों के तो मैं भी इसमें और ज़्यादा ज्ञान दूंगा, आप मुझसे ज़्यादा जहीन है, बट मैं सिर्फ इस इनिशिएटिव के बारे में बता सकता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इसके अलावा एक और खबर है, एंड दिस इज़ बाय मतार, द कतर कंपनी फॉर एयरपोर्ट्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, उन्होंने ज्वाइन किया है ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स ऑफ यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ, और एक इनिशिएटिव है विच इज़ फंडेड बाय द रॉयल हाइनेस प्रिंस विलियम एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड द रॉयल फाउंडेशन, ताकि रीइंफोर्स किया जाए अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनके रोल को बढ़ावा दिया जाए, एंड जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसे रोका जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगर न्यूज़ दिस वीक। एंड इसके अलावा एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट है जो कि ब्रिटेन से है, स्वीडन से है, फ्रांस से, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है एक नया मैकेनिज्म, ये भी एक मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि आज की तारीख में हम इसमें इन्वॉल्व है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन,
जो सालों से एक परेशानी रही है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन के वो कैसे अरेंज किए जा सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैसे देखा जा सकता है, दैट इज़ व्हाट दे आर वर्किंग ऑन. सो वेरी ह्यूज इनिशिएटिव. बाकी लास्टली मैं मौसम के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि मौसम तो मौसम भाई अलग ही मूड चल रहा है इसका. तो भाई तो अभी जो है इट इज़ करंटली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, 32 मिनिमम और मैक्सिमम 44. इस पूरे हफ्ते ऐसे ही है, लेकिन जो आने वाला वेंसडे है, नॉट दिस वेंसडे, आने वाला अगला वेंसडे, उसमें थोड़ी सी हवाई शवाई नज़र आ रही है. गर्मी आपको एक दो डिग्री ऊपर लगेगी, बिकॉज अभी एक्चुअल टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाने वाली जो ह्यूमिडिटी है 41% के आसपास है, और आज हवाएं कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है. आज 12 किलोमीटर्स पर आर के गस्ट ऑफ विंड यानी झोंके, और वैसे 7 किलोमीटर. सब कुल मिलाकर गर्मी है भाई सीधी भाषा में टेक्निकल ना जाते हुए. एक मैसेज है भाई, आपकी स्टोरी स्पेशल होती है कुछ ना कुछ. थैंक यू सो मच फरद भाई, बहुत प्यार भाई आपको. और यूसुफ भाई कह रहा है आई विल वॉच इट सम टाइम इंशाल्लाह. ठीक है यूसुफ भाई, डू वॉच इट. और एक मैसेज उमर अली भाई का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, सुनकर मज़ा आया. क्या है, हिला देने वाली स्टोरी थी एंड द वे यू आर टेलिंग द स्टोरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. लव यू भाई. मैं थोड़ा बिजी था, मैडम को पार्किंग सिखा रहा था, बट स्टोरी पूरी सुनी. जज़ाकअल्लाह मेरे भाई. एंड उमर भाई बहुत सारा प्यार, बढ़िया डीपी लगाई है भाई आपने, एकदम सॉलिड दाढ़ी रखी है यानी मेनटेन करके. सो 666-22107 ये नंबर है. वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द स्टोरी आई एम हेयर, बातचीत कर लेंगे और ऐसी कहानियाँ आपके लाता रहूँगा जब तक ये जाने जहाँ मैं कहानी सुनाऊंगी. मैं क्यों गा रहा हूँ, उनको गाने देता हूँ मैं. हिमेश भाई तनिष्क बागची के संगीत में झलक दिखला जा, रीलोडेड, लॉट्स ऑफ लव उमर भाई, थैंक यू. हाँ जी, कुछ कहना चाहो भाई तो कह दिया करो, ठीक है.

देखो सवाल ये अपनी जगह है, लेकिन एक बात अपनी जगह है, आपको पता ही है मेरा बर्थडे आने वाला है 30 अगस्त को, तो मुझे अच्छा ही इस बात का लग रहा है कि 30 अगस्त को मुझे शो करने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज अबाउट इट, लेकिन 1 तारीख से मॉर्निंग शो है भाई, तो मैं ये खबर ब्रेक कर दूं पहले ही। आपको पता ही हम 3-3 महीने में चेंज होता है, एक मैसेज आया है, वह एक डायलॉग याद आ गया एफएम सब, क्या मेरा भाई अरवाज भाई कह रहे हैं कि एफएम 107 एक तरफ, वो कबीर भाई एक तरफ, मेरा भाई बहुत सारा प्यार आपको क्या। और एक और भाई ने लिख दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सब एक तरफ और कबीर भाई एक तरफ, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार इस मोहब्बत के लिए, जजाकल्ला, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और नए लुक को देख के मोहसिन भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, नज़र से बचाए अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। फरद भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडवांस, थैंक यू सो मच भाई, कदी एडवांस में भाई ने विश कर दी थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमेशा मेरे बर्थडे के दिन छुट्टी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बट दिस टाइम अराउंड इंशाल्लाह देखने को जो है मिल जाएगा मुझे वो दिन, रेडियो में शो करने को मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी। एंड 666-22-107 ये नंबर है, इस पर आप बता सकते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस तरह से हम हर जगह मौजूद हैं और आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, मतलब हम एज इन लखनऊ वाला हम, यानी मुझसे, सो दोहा वाला कबीर FM107 107, सो KABIR टाइप कीजिएगा, KABIR, ठीक है। बाकी ट्रैफिक कॉल बताइएगा 666-22-107 पे, जाना आप रहे नहीं बंटा की पब्लिक। ए ए 6:25 बाय द क्लॉक, मैसेज करते रहा करो भाई।

बादशाह पब्लिक जो है वो लाइन फेमस करे जा रही है। एक बार और भाई राणा भाई लिखते हैं, अखा दोहा एक तरफ, अखा दोहा आरजेज एक तरफ और कबीर भाई एक तरफ। मेरा भाई भाई मैं से बता रहा हूँ, अगर ये गलती से लाइन हिट हो गई ना तो कुछ हो ही जाएगा। एक मैसेज है, गुड इवनिंग कबीर भाई, इफ यू गो टू द मॉर्निंग प्रोग्राम व्हाट विल हैपन टू अस, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कृष्ण भाई शाम में मेरे ख्याल में फजील भाई आएंगे, आई थिंक सो यस। तो एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम दिल्ली वाले कबीर भाई, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था इसलिए कहानी नहीं सुन पाया, कहानी भेजेगा, नो प्रॉब्लम भाई। हॉस्पिटल क्यों गए थे, क्या हो गया, सब खैरियत? ये शमशाद भाई क्या होगा भाई, सब बढ़िया, रिपोर्ट दे दिया करो भाई, सब ठीक रहना चाहिए। एक और मैसेज है कि सारे आरजेस दोहा के एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ। अरे भाई अब तो लग रहा है ये वायरल होके मानेगा भाई। अच्छा मैं जरा ट्रैफिक की हलचल आपको बताता हूँ, किस तरफ आपको मिल सकती है किस तरफ नहीं। सो अभी अगर आप ये जा रहे हैं अहमद बिन अली स्ट्रीट की तरफ या जामिया स्ट्रीट, ये बेसिकली अलसद वाला जो एरिया है, तो अभी ठीक ठाक है यहाँ पे मामला, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। कॉर्निश की तरफ मामला ठीक ठाक है, अभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन और सिग्नल के आसपास है। मगर अगर आप ये मरखिया स्ट्रीट से होते हुए आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन थानी स्ट्रीट की तरफ से पूरा इंटरसेक्शन जो है बिजी चल रहा है, तो अगर हो सके तो अभी अवॉइड करें। वैसे अवॉइड तो कर नहीं पाएंगे, इस तरह जाने वाने का टाइम होता लोगों का, तो लोग जाएंगे भाई। बाकी बीरिंग रोड पर बढ़िया जाम लगा हुआ भाई, यहाँ है जाम कड़क वाला। और 666-22107 पर आप भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ट्रैफिक मिल रहा है। मीन वाला मोदी चौकी मुशायरब के पास अगर आप जा रहे हैं, ये वादिर मुशायरब स्ट्रीट की तरफ, तो इंटरसेक्शन की तरफ ट्रैफिक है। मगर सबसे ज़्यादा बिजी है भी है बीरिंग रोड और ये सलवा रोड, यहाँ से आपको हॉली हॉली करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अलजीरा स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं इब्न महमूद स्ट्रीट की तरफ तो ट्रैफिक है। एंड ये स्पेशली इब्न महमूद का जो मेट्रो स्टेशन है इसके पास आपको इंटरसेक्शन पे, तो सिग्नल थोड़े लंबे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि हो रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला आपको मिलेगा। बाकी कहीं पे ट्रैफिक लगा हो तो बताइएगा। 666-22107 पर एक मैसेज है, दोहा का नंबर वन आ जा रहे मेरा भाई। यार मैं बताऊँ मणि भाई, भाई बहुत बड़ी बात कह दिया मणि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू भी ना छोटा सा लगता है, लोग इतना कुछ बोल देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच। मैंने वी ओनली नीड कबीर, अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, पर मजबूर हूँ मैं, क्या करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि तीन तीन महीने का सिस्टम होता है, तीन महीने इवनिंग तीन महीने मॉर्निंग, तो इसीलिए कृष्ण भाई, पर थैंक यू सो मच भाई फॉर शोइंग सो मच लव, दिस रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी भाई। और एक फरद भाई का मैसेज है क्या भाई, ये शो चेंज मत करो भाई, सुबह सुबह नहीं हो पाता भाई। भाई मैं कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। और बाकी मैसेजेस हैं काशू भाई, अभी आपको मैसेज पढ़ता हूँ मैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। 666-22107 नंबर, 666-22107, आपने जाना कहीं है नहीं वो तो आपको पता ही है भाई। एक बढ़िया सा गाना हो जा भाई, एक सेकंड रुको। किधर गया मैं, इधर गया जाने कहाँ मैं, डोंट वरी वो नहीं चला रहा। डांडा भाई फ्रॉम न्योली वाला, डांडा न्योली वाला जगह ने

देखो जी, शाबाशी आपको मिल सकती है, आप खुद ही को शाबाशी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में AI सीख रहे हैं और मैं टेक शो में तो आपको बताते ही रहता हूँ, लेकिन अभी भी फिर से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये कि भाई अगर आपका AI में इंटरेस्ट है फोटोज एडिट करने के अलावा, बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ फोटो ही एडिट करते रह जाएंगे, दुनिया चली जाएगी आगे, हम ये करते रहते हैं उसमें, ए जे DPT बेटा ये मेरे फोटो में से बस हटा दी इसके अलावा भी बहुत कुछ करता है, तो मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है। तो कुछ लोग अगर चाहते हैं कि वो अपना सोशल मीडिया करियर या फिर कहीं पे कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको प्रॉम्प्ट देना सिखाते हैं किस तरीके से आप एक्चुअली में एक पूरी की पूरी मूवी बना सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा मोटा पैसा जो है मैं कहीं भी इन्वेस्ट करके कुछ सीख लूं और काम आए और उससे पैसा बना सकूं, तो दिस इज़ वन वे आउट। क्योंकि अभी क्या है कि AI से लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, AI से लोग पूरी पूरी सीरीज बना ले रहे हैं भाई, 20-20 मिनट के एपिसोड्स बना देते हैं, उसमें वो पूरी कहानी डन, और कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या था, डायरेक्टर बनना है तो आपको कैमरा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। अभी लोग AI से प्रॉम्प्ट देना सीख रहे हैं किस तरीके से एक डायरेक्टर एक स्टोरी बोर्ड लिखता है, स्टोरी लाइन लिखता है, और अगर आप AI को ये बताते हैं कि भाई मेरी कहानी का प्लॉट कुछ न्यू है, तो वो आपको पूरा स्टोरी बोर्ड बना के देता है। तो अगर आप इस बारे में सीरियस है ना, गो एंड वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज, सच बता रहा हूँ, ये ऐसी स्किल है ना, जब तक आप कहेगा कि ये काम की है तब तक दुनिया बहुत आगे चली गई होगी। तो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न, बिकॉज मैं अपने आपको सिखा रहा हूँ, और अभी मेरी जस्ट अभी कुछ देर पहले एक से बात हुई, तो मैं अपने आपको लगातार इस चीज़ को सिखा रहा हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, भाई सीख लो, ज़्यादा टाइम लगता और सीख जाओगे आप। ये मेरा एक सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, मैं कौन सा अपनी बात को चेप सकता हूँ आप पे, लेकिन इट्स अप टू यू, इज़ जस्ट फॉर लर्निंग, क्योंकि आपके काम आएगी ये कला, मैं बता रहा हूँ ये कला है। लोगों ने लगातार ऐप्स बना लिए भाई, ऐप्स हैं,

ड्रामास हैं उस पर, और ये ड्रामे में कोई असली नहीं है, सब एआई से बनाए हुए हैं एवरीथिंग. सो इट्स योर टाइम टू लर्न एक्चुअली. मैं तो जाके ऑनलाइन इस बारे में ढूंढना करें, बहुत कुछ मिलेगा आपको. और आने वाले टेक्स्ट शो में आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं देखने के लिए, और कौन कौन सी वेबसाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपका सोशल मीडिया करियर बन सके. तो ये भी एक तरीका है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस भीड़ में अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट. एंड बहुत सारे आपके घर में टैलेंटेड लोग होंगे, हो सकता है बच्चे हैं उसमें इंटरेस्टेड, तो उनको इस तरह भी पुश कीजिएगा. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपके में आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं कि यार अगर मैं पिक्चर बनाता तो ऐसी बनाता भाई. तो वो ज़माना गया जब आपको सोचने की ज़रूरत थी कि यार कहाँ से लाऊंगा कैमरा मैन, कहाँ से पकड़ूंगा, बजट चाहिए, चलिए फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए. लेकिन नाउ इफ़ यू हैव अ प्लॉट इन योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ एक कहानी भी आती है ना, यू कैन लिटरली मेक अ स्टोरी भाई. लिटरली बता रहा हूँ मैं. जैसे मैंने आज आपको एक कहानी सुनाई, आप इसको उठा के अगर प्रॉम्प्ट देना सीख गए ना, आपको कहानी मिल जाएगी पूरी की पूरी. इट विल जेनरेट एज इट इज. तो पिक एडिट करने के अलावा ये भी काम कर लेना चाहिए हमें, ये मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि वो क्या है, हमारा थोड़ा देसी माइंड चलता है ऐसे में कि मेरा काम आसान कर दे बस AI. उससे ज़्यादा मुझे AI से कुछ नहीं चाहिए, जबकि AI बहुत कुछ ऑफर कर रहा है. आसान करना है तो उसका बेसिक काम है कि ये मेरे लिए कैलकुलेशन कर लो, ये मेरा फाइनेंस सॉल्व कर दो, मेरी फ़ोटो में से इस लड़के को हटा दो. वो सब हम कर लिया, हमने दुनिया भी बहुत आगे चल गई. तो मेरा एक बस एक सजेशन है, मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए तो भाई मैंने कर दी. बाकी तो आपके ऊपर है, 666-22107 नंबर है, बाकी सुन लेना भाई, मिल जाएगा आपको. ठीक है, दिक्कत को नहीं आवे भाई. 666-22107 लाइक अ स्नेक. बहुत बढ़िया फोटो खींची है सनसेट की, कति शानदार, सही बता रहा हूँ, कति एक नंबर है.

यार ये सीटी बजाने नहीं आती, वरना इस गाने के साथ साथ में सीटी बजाता कसम से। ये टैलेंट नहीं मिला बस मुझे, पर ठीक है चलेगा, कोई भी और सीटी बजाएगा तो लोग मुझ पे डाउट नहीं करेंगे। 6:45 अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। और क्या हाल है भाई? देखो कुछ दिन हैं आज के दिन जो इंटरनेशनली मार्क्ड किए गए हैं उनके बारे में बता दूं। आज है जी वॉफल डे। वॉफल खाए हैं आपने? मैं पहले समझता था ये अमीरों के शौक हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैंने यहाँ आके खाया वॉफल और दो ही बार खाए हैं। पहले तो मीठा खाता ही नहीं मैं, ऊपर से ना वो अंग्रेजी सीरीज में या मूवीज में देखता था ना मैंने, ओ वॉफल ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होया करे भाई, पर खाया यहाँ आके, वहाँ पे कभी हिम्मत ही नहीं हुई खाने की भाई। यहाँ पे सब ट्राई कर लिया। इसके बाद आज है कोबी ब्रायंट डे, जो कि NBA फॉलो करते हैं या बास्केटबॉल इन जनरल फॉलो करते हैं वो इतना बड़ा नाम जानते हैं ऑब्वियसली। आज है नाइफ डे, चाकू का दिन क्यों है भाई? मैं अरे यार क्यों, कौन कौन बनाता है ये कैलेंडर? आज चाकू का दिन है, आप यकीन कर सकते हैं नाइफ डे, क्या ज़रूरत थी? ऐसे तो फिर स्टील के बर्तनों का भी दिन होना चाहिए। और आई एम श्योर होगा जब चाकू का है तो ये भी होगा, किसी अकलमंद ने रख दिया होगा ये भी। अच्छा आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आज है प्लूटो डिमोटेड डे। याद है वक्त जब प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था, आज का दिन है जब बेचारे को डिमोट कर दिया गया, बोला कि सुनो भाई तुम प्लैनेट नहीं हो। ये बिल्कुल HR की कॉल की तरह था कि विल गेट बैक टू यू। HR लोग ऐसे दिल तोड़ते हैं भाई, उनसे कुछ बात विल गेट बैक टू यू, यानी वो हो गया काम। प्लूटो के साथ बिल्कुल वैसी हुआ बेचारे के साथ, धर दिया उसमें, दे दिया भाई को साइड में कर दिया, प्लेनेट प्लूटो नहीं रहा। तो ये आज के दिन ही बेचारा डिमोट हुआ था। आज है पीच पाई डे, शक्ल देखिए भाई इसकी, खाया तो आज तक नहीं। और आज है इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे। अगर ये बनाने के लिए तो मेरी प्लेलिस्ट भाई बहुत स्ट्रेंज है, उसमें ज़रूर मैं जीत जाता। एक मैसेज है, कल वाली स्टोरी का डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? कल वाली स्टोरी डॉक्यूमेंट्री भाई, डॉक्यूमेंट्री नहीं, हाँ डॉक्यूमेंट्री है वो, हैरिसन नाम था उसका, हैरिसन, एक सेकेंड ना करण भाई, हैरिसन इकॉन नाम था जहाँ तक मुझे याद है। तो भाई ये सारे दिन हैं आज जो मैंने आपको बताए हैं। एक मैसेज है, क्या कौन जैनते लोग कहाँ से आते हैं? नाइफ डे, हाँ इस्माइल भाई बताइए नाइफ डे की क्या ज़रूरत थी भाई? ऐसे तो कटोरे का दिन होना चाहिए, मग्गे का दिन होना चाहिए, सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर नहीं है। आज नाइफ डे है, आज इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे है, और आज वॉफल डे है। आई डोंट नो कि देसी लोग वॉफल, या तो मैं भाई वक्त में पीछे चल रहा हूँ, बिकॉज मैंने दिल्ली में तो कभी वॉफल खाने की हिम्मत करी नहीं। हमारे सबसे तो लग्जरी थी भाई, यहाँ आके ज़रूर खा लिया। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई ये सलाम मेरे साथियों की तरफ से भी। सरफराज भाई आपको और आपके साथियों को बहुत सारा प्यार भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज क्या है सैम भाई ने, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से मैंने आपकी बात मानी और शादी कर ली, और अब मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती, मैं बहुत खुश हूँ। और एक मैसेज है, भाई डोनट्स खाएं? भाई डोनट खाए थे भाई, वो कुछ होते हैं ना अमीर दोस्त आपके होते हैं, तो मैंने, मेरे भी एक दो भाई थोड़े रईस दोस्त थे दिल्ली में, तो उनके साथ डोनट वोनट खा लिया था भाई, बाकी फिर यहाँ आके खाया। और डोनट के भी इतने रंग रूप होते हैं वो यहाँ आके पता लगा मुझे, मुझे नाम अभी तक नहीं पता डोनट को, और भी क्या क्या कहते हैं वो, क्या होता है शुगर, क्या होता है वो जिस पर शुगर बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, कुछ तो कहते हैं उसको, अल्लाह जाने, पर अपने बस का नहीं है भाई ये सब। हम तो यही पूछे हैं चूरमा चारमा ले रहे हो? वो वाला हिसाब है भाई, तो ये सब नीट किया डोनट, हालांकि थोड़ा सा आम है तो हमारे यहाँ आ जाता है, मगर वॉफल कुछ ज़्यादा ही ऊपर की चीज़ हो गई अपने लिए, समझ रहे हैं आप? मतलब कितना पैसा आ जाए अपन वॉफल की तरफ नहीं जाएंगे, नाश्ते में कोई कौन खाता है वॉफल यार? अपने को चाहिए वो परांठे खाया करें भाई, परांठे में जाते ना भाई, प्लेट में धर दो सवेरे सवेरे, मौज आ जाया करें भाई। और एक मैसेज है, इडली इडली डोसा तो बहुत यार, इतना भी वो मत समझो, इडली डोसा तो खाया है भाई। ये तो बिल्कुल ही, मैं वॉफल की बात कर रहा हूँ भाई, इडली डोसे की बात कर रहे हैं बताइए। एक मैसेज है, स्टोरी चाहिए चाहिए, मिलेगी भाई टेंशन को नहीं, इस्माइल भाई भेज दूंगा मैं, अभी तो फिलहाल इजाज़त लेने का वक्त आ गया, तो चाय पीते पीते कब किसी पे मार मार के आपको मैं कहानी भेजूंगा। एक भाई ने मैसेज किया है, और भाई वॉफल तो मैंने भी आज तक नहीं खाया, बस देखा है अमीरों का खाना लगता है। यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मैं भी इसे फोटो देखता रहता ना, इसके फोटो भी नहीं भाई, वो जो अंग्रेजी पिक्चरों में दिखाते थे ना वॉफल, देख रहा भाई कुछ तो बढ़िया चीज़ होती होगी यार, ये खा के देखेंगे एक बारी। और मैंने खाया, और सेम हैपेंड विद मी। देखो मेरे से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं जब मैं एवोकाडो को वो करता हूँ, क्या कहते हैं उसके खिलाफ बोलता हूँ मैं। देखो कोई दुश्मनी नहीं मेरी एवोकाडो से, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है, पर आप अगर इंडिया से हो ना, आप जानते हो एवोकाडो वहाँ पे बहुत बड़ी लग्जरी है। यहाँ आके एवोकाडो लोग ऐसे खा रहे होते हैं, ऐसे बचपन का पहला निवाला उनका एवोकाडो ही था। तो ये सब भाई कोई टेस्ट है उसमें? कोई टेस्ट है उसमें?
मेरे साथ तो नहीं हुआ भाई। एक मैसेज है, ये वॉफल क्या होता है, पहली दफा नाम सुना है भाई, बहुत बढ़िया जी रहे हैं आप। ये जिंदगी के सबसे बढ़िया आपका वो जा रहा है पूरा एरा, नहीं पता तो नहीं पता। मोहम्मद भाई पराम टिकाओ बढ़िया, रिच फूड एंड ऑल, या दिस इज रिच फूड एंड ऑल या दिस डोनट्स या वॉफल या एंड स्पेशली यहाँ पे आके वो लोग जो जिनको मैं इंडिया से जानता हूँ कहते देसी हुआ करते थे, यहाँ आके शेख जा रहे हैं भाई अलग ही। आई नीड अ ब्लैक कॉफी लाटे एंड वन वॉफल, वहां जाके उनको कोई ब्रेड नहीं पूछ रहा था, तली हुई ब्रेड और दाल खा रहे थे। यहाँ आगे आई नीड अ वॉफल एंड अ ब्लैक कॉफी। सबसे पहले ऐसे लोगों को ब्लॉक करता हूं मैं, सबसे पहले इनको ब्लॉक करो। ये है असली सांप, बीन बजा दो। तो इसी के साथ मेरे इजाजत लेने का वक्त आ गया। अगर आपके ऐसे फैंसी दोस्त हैं तो इस बारे में कल जरूर बात करेंगे। Cause I need a break now. क्या मैं भाई, मैं भाई कॉफ़ी तो मैं भी पीता हूँ यार। नहीं ठीक है आप पीते हैं, आपको वो करण भाई वो वैसे लोग मिले नहीं हैं आपको जो एक ज़माने में देसी हुआ करते थे और अचानक से आके अंग्रेज़ हो गए, ऐसे मेरे पास हैं लोग। उनको कुछ हुआ यहाँ पे आके, उनकी जेब में जैसी माल आया भाई वो सनक गई उनकी। कॉफ़ी आई डोंट लाइक टी एंड ऑल यार, टी ई यू कौन पीता यार गर्मी में इतनी सॉरी। क्या नाइफ डे दे दो उन लोगों को, आसिफ भाई। आसिफ बस ही कह रहे भाई नाइफ डे इनके लिए, बिल्कुल आसिफ भाई इसलिए आज इनकी बात छड़ी भाई मैं आपके साथ हूँ। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, बड़ा ही हेडफोन मैन। एक मैसेज है हमारे, क्या हमारे सर, हमें तो सर ये पता ही नहीं इटली डो, अरे इटली डोसा नहीं, इटली तो कंट्री है भैया। इडली, अब आप यहाँ पे रहकर अगर कह रहे हैं इडली डोसा नहीं पता है तो अरबाज भाई फिर तो झूठी कह रहे हैं आप। एनीवे तो मैं मिलता हूँ कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे एक नई कहानी के साथ और इस फैंसी पने के बारे में कल ज़रा बात करते हैं, ठीक है। कज़ानीरा काफे काफी पियूंगा मैं, दिस इज़ दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ, 7 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोहा कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं. आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर एफएम 107. फरकान शाहिद से समा कीजिए ताज़ा तरीन खबरें. इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां. साहिब सुमो अमीर को तंजानिया की सदर की जानिब से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत मुस्तहकम बनाने के तरीकों से मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ. साहिब सुमो अमीर ने यूक्रेन के सदर को उनके मुल्क के योम आज़ादी के मौके पर तहनीयती पैगाम इरसाल किया. वज़ीर बलदियात अब्दुल्ला बिन हमद बिन अब्दुल्ला अल अथिया ने कतर में इथोपिया के सफीर से मुलाकात की. और एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन ने जम्बिया में पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए तालीमी मौके बेहतर बनाने के मंसूबों की तकमील कर ली है. ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ. आप समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे दुहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो गर्मी गुर्मी थोड़ी सी जा चुकी होगी और मौसम थोड़ा सा बदल चुका होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो ऑल पावर टू एवरीबडी जो इस शो को सुन रहे हैं। आई डोंट नो ये सुनते सुनते क्या मौसम हो रहा होगा, बट टन्स ऑफ लव एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, आपको बताने के लिए भाई साहब। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? देखो कतर 2026 जो ये शो है, इसका मकसद ये है कि कुछ इवेंट्स जा चुके होंगे जो आप मुझे सुन रहे हैं और कुछ इवेंट्स आ रहे होंगे। पॉइंट इज टू टेल यू व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड कतर, अक्रॉस कतर, और कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। एक चीज मैं रिपीट करते करते थक गया हूं, लेकिन नहीं, काइंड ऑफ नहीं थका हूं, वो ये है कि स्टेकेशन पे चले जाओ। इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ कल्चर इन कतर, और आपको स्टेकेशन कतर में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। आप बोलेंगे क्या करूं, होटल में जाके वहां जाके सो जाऊं, इससे अच्छा तो मैं घर पे सो जाऊंगा। आई नो दैट पॉइंट कम्स, मैं भी यही सोचता था, लेकिन स्टेकेशन का मजा कुछ और ही है जब आप दोस्तों के साथ बुक करके कहीं ना कहीं जाते हैं। आई नो बैक इन द डे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग निकल जाते थे, चलो भाई पहाड़ियों में चलते हैं, चलो भाई नदी किनारे चलते हैं, गाड़ी में बैठे दोस्तों के साथ और चाय पीने के बहाने निकल गए 100 किलोमीटर। यू कैन डू इट इन कतर एज वेल, और ऊपर से इसमें स्टेकेशन को एड कर देंगे तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। ट्राई दिस वन आउट। अभी भी बहुत सारे होटल्स में बहुत सारे ऑफर्स हैं, उसमें ब्रंच के भी ऑफर हैं, ब्रेकफास्ट के भी ऑफर हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं स्टेकेशंस पर भी, एंड होटल्स आर गिविंग यू, माय गॉड क्या ऑफर डाले उन्होंने उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, अरे भर भर के खाते हैं उसमें, बूफे में भी बहुत सारे ऑफर्स हैं। सो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, प्लान समथिंग आउट और चले जाइए, क्योंकि अभी जब मौसम बदल जाएगा तो स्टेकेशन के ऑफर भी चले जाएंगे। तो उससे पहले इसकी रुखसती हो गर्मी की, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और इसकी आंखों में आंखें देख के स्टेकेशन बुक करिए। डरते थोड़े यार हम, ठीक है। अब इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं और बहुत सारे इवेंट्स हो चुके होंगे जब आप मुझे सुन रहे होंगे। सो उनमें से एक इवेंट है जो 5 सितंबर तक चल रहा है, और ये जो इवेंट है ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट है, कतर स्टार्स लीग QSL, दोहा बैंक स्टार्स लीग। ये मेन टूर्नामेंट है विच इज मैनेज्ड बाय कतर स्टार्स लीग, और ये लीग हर सीजन होती है, 12 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द टाइटल। फैंस अटेंड कर सकते हैं मैचेस और अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स भी। एक नई ऐप जो इंट्रोड्यूस गई है जिसका नाम है हायो प्लेटफॉर्म, HAYYOH, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हाया था तो ये हायो होगा, हायो प्लेटफॉर्म, और इस ऐप के जरिए आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। सो ट्राई दिस वन, ये भी नई ऐप है और बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स मेकिंग श्योर के टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आप अपडेटेड रहें, जुड़े रहें और चीजें मॉडिफाई होती रहें फॉर द गुड। सो ये जो फुटबॉल एक्शन होने वाला है और साथ में जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, ये मिस करने का सवाल पैदा को नहीं होता भाई। लोकेशन जो है अलग अलग स्टेडियम्स की है, तो मैं सारे के सारे स्टेडियम्स के नाम तो नहीं पढ़ने बैठूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि अलग अलग स्टेडियम्स में होंगे मैचेस, कोई एक स्टेडियम नहीं है जहां पे एक ही मैच हो रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल मैचेस हैं। और 20 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है, 5 सितंबर तक चलेगा, एंड जो टिकट की प्राइसिंग है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 कतरी रियाल ओनली। सो इफ यू आर

फैन ऑफ फुटबॉल और आप लीग्स और क्लब मैचेस क्यूएसएल के फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यू नो इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स, तो आपको तो इसका हिस्सा बनना ही बनना चाहिए। और बाकी अपडेट्स के लिए जैसे मैंने कहा कि इसकी जो ऐप है हायो, उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप टिकट्स खरीद सकते हैं और जो पॉइंट्स हैं वो अर्न कर सकते हैं। Having said that, एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आना चाहिए और वो है हमारा प्लेटफॉर्म FM 107 Qatar। FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज गेट इन टच विद अस। और आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर KABIR। कुछ लोग डबल ER लिख देते हैं भाई, दिक्कत हो जाती है, मिलता नहीं, फिर लोग कहते हैं आप तो है ये नहीं, तो KABIR कबीर ये स्पेलिंग लिखेंगे दोहा वाला कबीर तो मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा अगले इवेंट की तरफ। तो जो अगला इवेंट है इट इज फुल ऑफ एडवेंचर, इट इज फुल ऑफ फन और स्पेशली बच्चों के लिए। सो निकलोडियंस का जो पॉ पेट्रोल है, पॉ पेट्रोल मॉल ऑफ कतर में आ चुका है एंड ये 29 अगस्त तक रहेगा। 20 से शुरू हुआ है और 29 अगस्त तक रहेगा। यहाँ पे चेज मार्शल, रबल, स्काई एंड राइडर और ओएसिस स्टेज पर बहुत कुछ है। Yes, for the little ones. अब ये मिस नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में नन्हे मुन्ने राही हैं, देश की सिपाही हैं, तो उनको लेके यहाँ जरूर पहुंचिए। एंड यू कैन वॉच योर लिटिल वंस लाइट अप एज दे सी देयर फेवरेट पॉ पेट्रोल। एंड पॉ पेट्रोल का तो मैं ही फैन हूँ यार, काश मुझे भी ला होता। ये इवेंट जो है

चेयर देम अप. मीट एंड ग्रीट सेशन रखा गया एंड देयर इज मच मोर टू इट. सो बच्चों को पहली बात तो मजा आएगा, दे कैन फाइनली मीट देयर पॉ पेट्रोल कैरेक्टर्स, और मीट एंड ग्रीट सेशन में उनके लिए काफी कुछ और इनामात भी रखे गए. सो डेफिनेटली आई थिंक टू लुक आफ्टर. और जैसे मैंने कहा कि ये 29 अगस्त तक है. आपको सिंपल इतना करना है कि अगर आप इसमें हिस्सा भी लेना चाहते हैं तो मॉल ऑफ कतर जब आप जाएंगे तो उसका गिफ्ट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा 200 कतर रियाल या उससे ऊपर की शॉपिंग करने के बाद. बट यू नीड टू हरी. मीट एंड ग्रीट के जो स्पॉट्स हैं, मीट एंड ग्रीट के स्पॉट्स काफी लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है. ऐसा नहीं कि सबके सब मीट एंड ग्रीट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 20 क्वालिफाइंग फैमिलीज को ही मौका मिलेगा इस मीट एंड ग्रीट का, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर है. इसका जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ. अगर आप बच्चों को लेके पहुंच ही रहे हैं मॉल ऑफ कतर तो शाम के 5 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे. इस बीच जो मीट एंड ग्रीट का सेशन रखा गया है वो है 5:40 पे, और उसके बाद 7:10 पे शाम के, और फिर रात को 8:40 पे. एंड इसके अलावा जो टाइमिंग है थोड़ी सी बदलेंगी. सो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एक्स्ट्रा सेशन रखे गए हैं जो कि 4 बजे होंगे. सो इवन बिफोर 5 PM. लोकेशन है मॉल ऑफ कतर, और इसका जो पूरे इवेंट की टाइमलाइन है वो 20 अगस्त से रन करते हुए 29 अगस्त तक की है, और शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक. जैसे मैंने कहा मीट एंड ग्रीट बहुत फन होता है, बच्चों को बहुत मजा आता है, मगर ये मीट एंड ग्रीट जो है 30 फैमिलीज के लिए लिमिटेड रखा गया है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है. सो इफ यू कैन रन बुक कर लो भाई, जाके देख लो फर्स्ट सर्विस पे. बिकॉज आई नो जब आप ये शो सुन रहे होंगे तो तारीख आ गई होगी कि आप इसके लिए रजिस्टर कर सकें. सो गो फॉर इट. एंड स्पेशली अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं बहुत सारे उस पूरी फैमिली में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. यू कैन चेयर फॉर फॉर योर फैमिली एज वेल. और जो लोग सिर्फ देखने के लिए जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स विजिट मॉल ऑफ कतर और ओएसिस स्टेज की तरफ चले जाइएगा और आपको मिल जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ जाए फिर. ठीक है जी. So, कतर कैलेंडर पे एक इवेंट है जिसके बारे में मैं पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही खास इवेंट कतारा साउथ पार्किंग की तरफ है. इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये 4 साल है, तो सॉरी मिनिमम जो एज लिमिट है वो 4 साल है, और मेनली बच्चों के लिए है, मगर इट इज अ वेरी फन एक्टिविटी. मैंने इसकी तारीफ हर एपिसोड में करी है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ उसका. मान लीजिए कि आप जो है एक ऐसी कहानी सुन रहे हैं जो आपकी नजरों के सामने चल रही है, और उस कहानी में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. मतलब कहानी को देख रहे हैं, कहानी को सुन रहे हैं, उसको आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें रंग भर सकते हैं. और आका अगर आप नए रंग भरते हैं और बिल्कुल सही रंग भरते हैं तो आपको इनाम भी मिलता है. और क्या चाहिए. सो कतर का जो कलर वर्स एक्सपीरियंस है वो विजिटर्स के लिए ओपन है. काफी इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग की पूरी जर्नी है वर्ल्ड ऑफ कलरामा. एंड ये इतनी वाइब्रेंट दुनिया बनाई गई है कि बच्चे हो बड़े हो भाई खो जाएंगे इसमें, लिटरली खो जाएंगे इसमें. आपको जो RGB कलर्स हैं पूरी कहानी के वो एक्टिवेट करने हैं, और जो कलर कंज्यूमिंग की क्रिएचर्स हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एक विलन भी बनाया गया है. तो आप रंग भर रहे हैं, वो रंग खा लेता है. तो जो रंग खा रहा है उसका नाम है मंचर्स. ये मेन विलन है भाई साहब कहानी के बच्चों, और इस मंचर को आपको हराना है. अल्टीमेटली पूरे की पूरी दुनिया जो आपकी नजरों के सामने होगी उस कहानी में रंग भरने हैं. And you need to restore the balance and life to the world. ये है main motive. और जितना मैंने बताया, I don't know कि मेरे बताने से अच्छा लगा नहीं लगा आपको, मगर देखकर definitely आपको अच्छा लगेगा. And I can vouch for it क्योंकि मैंने इसका वीडियो देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं गया नहीं हूँ, but I definitely loved it. So ये open हुआ था 20 जुलाई से और अभी चलेगा, और ये सितंबर तक चलने वाला है. सो वीकडेज में इसका टाइम रखा गया है शाम के 4 बजे से रात की 10 बजे तक. वीकेंड्स पर टाइम रखा गया है शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक. सो एक घंटा और एक्सटेंड हो जाएगा. और इसकी लोकेशन जैसे मैंने बताई, कतारा साउथ पार्किंग, और मिनिमम एज जो है वो 4 साल के बच्चों की है. सो मिनिमम एज का बड़ा ख्याल रखिएगा. Alright, let's move on. अब आ जाते हैं जरा मॉल्स के ऊपर. वैसे भी गर्मी है तो भागने के लिए, विजिट करने के लिए मॉल्स ही रहते हैं. अभी इंशाल्लाह मौसम भी थोड़ा सुहाना हो जाएगा, लेकिन मॉल्स के अंदर एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं चाहे कैसा ही मौसम हो. तो कतर म्यूजियम, मीडिया सिटी सेंटर और SNRG उन्होंने अनवेल किया है 321 e-sports lounge को, which is powered by the media city Qatar, और एक permanent ये पूरा accessible e-sports development hub है जिसके अंदर 321 Qatar Olympic Sports Museum की बहुत सारी चीजें

0: आपको नजर आएंगी, उसी के अंदर ये है. एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट वाइबी प्लेस. यहाँ पर हाई एंड पीसी गेमिंग्स भी हैं, 12 प्रीमियम पीसीज रखे गए हैं और गेमिंग हार्डवेयर एकदम तगड़ा वाला डाला गया है कि भाई कोई भी ऐसा गेम ना हो जो ना चले. कई मरतबा पीसी थकेले निकल आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई चानस ही नहीं है भाई. इसके अलावा कंसोल गेमिंग भी रखी, विच इज माय फेवरेट. यहाँ पर भी 5 डेडिकेटेड कंसोल्स रखे गए हैं, स्टेशंस बनाए गए हैं, और उसके अलावा निंटेंडो स्विच के सेटअप्स भी रखे गए हैं ताकि मल्टीप्लेयर गेमिंग भी हो सके, प्ले स्टेशन पर भी हो सके, पार्टी गेमिंग, कैजुअल गेमिंग. अगर आप एक्सपर्ट मोड पे हैं तो आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और साथ में ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं. तो ये जो प्रोफेशनल ग्रेड स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन सेटअप डिजाइन किया गया है, ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, ई स्पोर्ट्स की कवरेज और क्रिएटर फोकस एक्सपीरियंस देने के लिए. अब एक स्पेक्टेटर एरिया बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गेम नहीं खेलते तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते. आपने कभी ना कभी किसी को खेलते हुए घर में देखा हो तो आप उसको चेयर अप जरूर कर सकते हैं. एक ओपन और कॉम्प्लीमेंट्री जगह है बेसिकली, जहां पे आप टूर्नामेंट देख सकते हैं, लाइव गेम प्ले आपके सामने होगा, आप ब्रॉडकास्ट दे सकते हैं और कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं कुल मिला के, विच इज वेरी वेरी हेल्दी इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट समबडी. एंड इसमें कैजुअल गेमिंग सेशंस भी रखे गए हैं, जो जिसका मुझे इंतजार था. फाइनली समवन सेड इट, सो आई लव द फैक्ट दैट दे हैव कैप्ड इट. और वॉक इन एक्सपीरियंस भी है, कोई बुकिंग वॉकिंग की जरूरत नहीं है. काफी अफोर्डेबल एक्सेस रखे गए हैं. एंड मेनली जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है कंपेरेटिव ईए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. सो ईए स्पोर्ट्स अपने टूर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये टूर्नामेंट्स रखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इनामात भी होते हैं. और जो रेगुलर टूर्नामेंट्स हैं वो होंगे मल्टीपल गेम्स के लिए. तो अगर कोई फीफा खेलता है, फोर्टनाइट के कॉम्पिटिशन रखे गए होंगे, तो जितने मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स हैं उनके कॉम्पिटिशन यहाँ पर हैं. तो खेल खेल में अगर कोई जीत जाए, कॉम्पिटिशन का मजा भी आए, तो और क्या चाहिए. पर कैजुअल गेमर्स के लिए भी जगह है, ऐसा नहीं उनके लिए नहीं है. तो जीतने का भी मौका है और कम्युनिटी एंगेजमेंट का मौका है. इसके अलावा एजुकेशन गेम्स और वर्कशॉप्स भी रखी गई हैं ताकि खेल खेल में थोड़ी भाई पढ़ाई लिखाई भी हो जाया करे है. तो इंटरैक्टिव क्लासरूम स्टाइल जो वर्कशॉप्स हैं वो सिर्फ आपको किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ाने की, आओ बेटा गेम छोड़ के इधर आओ पीसीएम पढ़ो, ऐसा नहीं है. इसमें गेमिंग लिटरेसी के बारे में, आई एम सो प्राउड ऑफ कतर के ऐसी चीज क्रिएट करी है जहां पे लोगों को, बड़े हों बच्चे हों, उनको गेमिंग लिटरेसी के बारे में पता लगे के फंडामेंटल क्या है, गेमिंग के, ई स्पोर्ट्स के फंडामेंटल्स क्या है, डिजिटल स्किल्स किस तरीके से एनहांस की जा सकती है, और इंडस्ट्री अवेयरनेस मिलती है. तो बच्चों के साथ साथ आप भी अपडेटेड रहेंगे. और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, उसमें बाकायदा कोचिंग मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है. प्लेयर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो आगे जाके सोचते हैं कि भाई हमें भी गेमर बनना है एंड पार्टिसिपेट करना है, हमें भी इनामात जीतने हैं. यू माइट बी अ वेरी गुड गेमर बट यू नो टूर्नामेंट के लिए आपको अगर कोचिंग चाहिए तो वो भी आपको दी जाएगी. इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में बता देता हूँ. सो 321 ई स्पोर्ट्स लाउंज जो है वो डिजाइन किया गया है इसके लिए. इट्स अ वेरी इंक्लूसिव इन कम्युनिटी ड्रिवन स्पेस जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स को ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स इन्विटेशन है. प्लीज जाइए और आप एक्सपीरियंस कीजिए डिफरेंट लेवल्स एंड एबिलिटीज कॉम्बैटिंग करके. आप अफोर्डेबल गेम एक्सेस के साथ, एजुकेशन के साथ, कंपेरेटिव अपॉर्चुनिटीज के साथ अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं और खेलने का मजा भी ले सकते हैं. और जो लाउंज है ये एक तरीके का सेंट्रल हब रहेगा 321 ओलंपिक म्यूजियम में, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग है और ई स्पोर्ट्स है इसका कल्चर कतर में बना रहे और आगे बढ़े. तो उसकी जो टाइमिंग्स है वो दिन के हिसाब से हैं, संडे, मंडे, वेंसडे और सैटरडे को सुबह के 9 से रात के 7, फिर ट्यूसडे को ये बंद रहेगा. सो इट इज क्लोज्ड ऑन अ ट्यूसडे, तो इस बात का ख्याल रखें. ऑन थर्सडे सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और ऑन अ फ्राइडे दोपहर के 1:30 बजे से 1:30 PM से 7 PM तक. तो दिस इज हाउ इट इज फ्लोइंग फॉर नाउ. इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं एंड समर कैंप की तरफ इशारा आया है भाई करने के लिए, और ये तवर मॉल की तरफ इशारा है. तवर मॉल इज वन ऑफ माय फेवरेट मॉल्स. मैं पहली बता दूं, पहली बात तो भाई इतनी पिक्चर देखी है, इतनी पिक्चर देखी है, और वहीं की खबर है कि समर कैंप वहां पे लगाया गया है. आप पूरी फैमिली के साथ सकते हैं, यू कैन जस्ट किक ऑफ समर्स फ्रॉम द बैक डोर, और अपना वीकेंड भी आप यहीं पे मना सकते हैं. तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, लाफ्टर और समर मैजिक यहाँ पर आपको मिलेगा. ये डिजाइंड है वेरी वेरी स्पेशली बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए. ये इंटरैक्टिव इवेंट जो है ऑफर देता है बच्चों को और बड़ों को जो उनके साथ आए हैं, ताकि दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट एंड उनकी उनका जो रिश्ता है वो इस खेल खेल में और डेवलप हो सके. इसके इवेंट्स की डेट है वो जा चुके हैं, प्रीटी श्योर जब मुझे सुन रहे हैं, 21 अगस्त 2026, और लोकेशन रहेगी रही इसकी 5:30 बजे ऑनवर्ड्स तवर मॉल में, एंड इट वाज ओपन टू पब्लिक और फैमिली फ्रेंडली भी. तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स और क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई गई होगी, मैं पटेश्वर को बाद में पूछूंगा, मगर इट इज़ सच अ वाइब टू बी इन सच प्लेसेस, और बच्चों के मजा आ जाते हैं, तो ऐसे इवेंट छोड़ने नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इवेंट जो आपके हाथ से फिसल ना जाए तो मैं ज़रा बता देता हूँ.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है. इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं. ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है. साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं. इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है. वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.

0: बजे और 6:30 बजे मामला शुरू हो जाएगा। 10 बजे बोल रहा था, तो आप समझ गए ना, आप जज्बात समझिए मेरे। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन,
1: कतर 2026।
0: अगला जो है ये मुझे बहुत क्यूट लगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसी वाली मतलब मेरी आवाज निकल गई। तो किटी कैफे एकेडमी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द किटी कैट फैमिली। सारे के सारे कैट लवर्स, छोटे बड़े सबके लिए है ये, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और इसके लिए पूरी वीकेंड शॉप रखी गई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कैट किस तरीके से फन हो सकती है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाखून ही नाखून मार रही है, मगर बिल्ली भी अच्छा खासा सीख सकती है। इस इवेंट से आपको पता लग जाएगा, एंड ये बहुत ही शानदार इवेंट है। बेसिक जो तरीका है किसी भी सपोर्ट करने का किसी को, वो इसमें दिखाया जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी किटी कैफे कतर। ये किटी कैफे बिसाइड द क्यू फाइट जिम में है और प्लेस वेंदोम के पीछे ओके। और 23 अगस्त से 25 अगस्त तक इवेंट होगा, दोपहर के 1 बजे से शाम के 3 बजे तक। सो ये कुछ इवेंट है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कागज के बाद आपको आई गई होगी, डोंट वरी, वो आती रहेगी, क्योंकि मुझे भी पलट पलट के देखना पड़ता है कि आज किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो किड्स एक्सपो 2026, इट रियली स्टैंड्स एज अ पायनियर। लोग भी जानते हैं कि ये जो इवेंट है वो हल्का फुल्का इवेंट नहीं है। किड्स एक्सपो भले ही आ रहा है, लेकिन ये मोमेंटरीली ऐसा हो जाता है कि हॉल्ट पे रहता है, क्योंकि इसमें विजिट करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस बार आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। सो ये इवेंट पूरा पूरा खास है मेरे लिए, एंड आप रजिस्टर भी कर सकते हैं किंग किड्स एक्सपो 2026 के लिए, या अपनी स्टैंडिंग इसमें बुक करके बता सकते हैं। जो टिकट है वो 206 से शुरू होता है, एंड ये जो इवेंट है बेहद खास है। I'm so looking forward to it, and I hope कि ये इवेंट बढ़िया से बढ़िया काम करे और बढ़िया से बढ़िया कमाए। All right, 666-22107 नंबर है, एंड आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, और बीच में जो है मैसेज वेसेज कर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं।
1: Qatar 2026।
0: अब हाला समर कैंपेन की तरफ आ जाते हैं, जहां पर बात चल रही है शॉपिंग की। यस, जब भी फेस्टिवल यहां पे आता है शॉपिंग का, मैं नहीं मानता मेरे साथ किसी को एक्साइटमेंट होती होगी। सही बता रहा हूँ, मैं तो घूमने निकल जाऊं ऐसा ही मेरा बस चले तो। और इस बार आपको घूमने नहीं देंगे। ये हलर समर जो कैंपेन लेकर आए हैं, इसके बारे में बहुत कुछ छपा हुआ है, एंड आई थिंक ये काफी एक्सक्लूसिव शॉपिंग और डाइनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है अक्रॉस कतर। तो क्यों नहीं, वाई नॉट विजिट अ थिंग, विजिट अ प्लेस जहां पे हम गए नहीं। एंड इसके अलावा जो कतर का जो लीडिंग मॉल है, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल होस्ट करने वाला है, जिसमें प्रमोशंस, सेट मेन्यूज और वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस एंड स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को रिटेल और डाइनिंग डेस्टिनेशंस में। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्टेकेशन वगैरह थोड़ा बेहतर है, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा घर से निकलना चाहिए नौ फ्लोर्स को अवेल करने के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और भी डेस्टिनेशन पर होगा जिसमें प्लास वेंदोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, दोहा सेंटर है, लैंडमार्क है, दोहा मॉल है, एंड हायत प्लाजा भी है। तो इन तमाम जगहों पर ये इवेंट होने वाला है, समर हाला समर कैंपेन, एंड मोस्टली जो मॉल्स ऑफर करते हैं वहां पे भी आपको बहुत बहुत भर बके ऑफ मिल सकता है, इंशाल्लाह दुआ करते रहें। ठीक है भाई सब, ओके अब जरा आगे बढ़ लेते हैं एक और इवेंट की तरफ।
1: Qatar 2026।
0: ये जो इवेंट है ये किड्स एक्सपो से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं मैं। तो एक टिप्पणी करी थी किसी ने मुझसे बोला कि आप ये बताइए कि ये जो है जो खबरें होती हैं ये कहाँ से आती हैं। तो मैं रास्ते में प्रमोशन कर देता हूँ, मैं कलर बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी जो खबरें हैं ये आती हैं कतर लिविंग के पेज से, ऑफकोर्स ये आती है कतर इवेंट्स के पेज से, कतर कैलेंडर से। तो अगर आप इत्तफाकन कोई चीज़ भूल जाते हैं जो मैंने आपको बताई है, आप ऑफकोर्स जाके रीचेक कर सकते हैं। कोई इवेंट आपको मिलता है और आपको लगता है ये इवेंट तो मैं जाके बताऊंगा, तो बिल्कुल होल्ड ऑन नहीं करना, ये आपको बताना ही बताना है। ठीक है, अब जरा हालर समर कैंपेन की तरफ पूरी तरीके से आ जाते हैं। तो आप जब कतर विजिट करते हैं, आप शायद पहली मर्तबा यहाँ पे आए हो, या आप 10-20-30 सालों से यहाँ रह रहे हो, लेकिन कतर हैज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड। और यहाँ पर गर्मी का मतलब ये नहीं घर से बाहर निकल रहे, गर्मी का मतलब उल्टा शॉपिंग हो जाता है, एंड इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। कतर के लीडिंग मॉल्स में ये ऑफर शुरू हो चुका है। तो प्लेस वेंदोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलाजियो सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल,

और ये हायत प्लाजा के आसपास इन तमाम जो मैंने आपको नाम लिए यहाँ पर यहाला समर कैंपेन जारी रहेगा एंड कुछ चेंजेस आए अगर इसमें तो मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा बट मीन वाइल यू हैव टू वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस बाकी सोशल मीडिया हैंडल FM107 Qatar एंड मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा मैसेज है जो आपके दिल में है और आप कर नहीं रहे कर दीजिए बिंदास 666-22107 और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar और मैं कबीर आपके साथ अब देखिए ये सारे इवेंट्स हो गए लेकिन एक इवेंट इनमें अभी भी बाकी है और वो है बच्चों में एक्सपो के जरिए इंटेलिजेंस पैदा करना और उन्हें बताना कि कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को उनका खास करके ध्यान रखें एंड स्प्रेड अवेयरनेस एज मच एज यू कैन बिकॉज ऐसे ही इवेंट्स आते रहेंगे इनफैक्ट फुल बॉडी चेक के जो इवेंट्स आते हैं तो उसको तो लोग बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं उससे पहले करने में क्या दिक्कत आती है तो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस और आप मुझसे भी रابطہ कायम कर सकते हैं और आराम से हम लोग बातचीत कर सकते हैं इसके अलावा जो मैक्स अमीनी का जो होने वाला है कुछ टाइम में बिकॉज इट गॉट डिलेड फॉर सम टाइम तो वो अभी होता हुआ नजर आ रहा है लेट्स सी क्या होता है आई एम सुपरली एक्साइटेड एंड आई वॉन्ट टू सी इट फर्स्ट हैंड बट देखते हैं एनीवे 666-22107 नंबर है एंड आप भी मुझे बता सकते हैं कि कोई जगह आपको अच्छी लगी हो किसी इवेंट में आप गए हो एंड यू वांट टू शेयर इट कैटेगरीज बड़ी सिंपल है कोई फैमिली इवेंट होगा तो कोई पूरा का पूरा गोल जो है वो शेप में आइकन्स कह रहा हूँ गोल गोल घुमाएगा कोई और कोई आपको जो इवेंट ऐसा है कि आपको बस छा जाएगा आप वेट करेंगे अगले साल कब इसका सीजन 2 आएगा सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी स्पेशल एंड 666-22107 में नंबर बार बार इसलिए पीछे बोल देता हूँ कि कहीं आपके दिमाग से स्लिप हो गया तब भाई सब दिक्कत हो जाएगी तो स्लिप होने देना है इसके अलावा कुछ दिनों पहले निकला है लोकल डेट्स फेस्टिवल जो कि बहुत शानदार गया है एंड काफ़ी टनों के हिसाब से जो है लोगों ने खजूर खाए हैं एंड ये इवेंट गया अभी कलर वर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है ये एक छोटा सा रिवीजन है जो मैं आपको दे रहा हूँ एंड ऑल दीज इवेंट्स आर रियली रियली वेल डन रियली रियली वेल कवर्ड एंड अगर आप भी देखना चाहें तो कतर कैलेंडर पे जाके आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कतर कैलेंडर के बारे में भी पता लगेंगे आपको तो इवेंट्स अपने आप ढूंढने लग जाएंगे एंड कोई भी अगर नया आया कतर में वेलकम है मेरी तरफ से और मैं आपको ये सजा नहीं दूंगा सॉरी वो तो मैंने बंद कर दिया था आपको मैं सच्चाई बताऊंगा जितने भी लोग नए हैं प्लीज जाइए हर जगह जाइए अपने आप को किसी भी जगह से घूमने फिरने से रोकने का नहीं बिकॉज कतर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है रैपिडली ग्रो करता है और कमाल की बात है कि जब भी ग्रो करता है तो अपने हेरिटेज को साथ में लेके जाता है ये मैंने सीखा है तो वही मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपसे सीखते रहें हमें बताते रहें आपके शो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है 666-22107 के अलावा FM107 Qatar FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं ऑलराइट एंड दो तीन जो डोम के अंदर स्पायर डोम के अंदर वॉकिंग का और चलने का हो रहा था वो भी हुआ और ये इसके बाद एक और इवेंट है जो कि आने वाला है बहुत जल्दी साइकिलिंग से जुड़ा हुआ इवेंट है वो इंशाल्लाह वो भी अगले मंथ में होगा लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि जनवरी में होगा वो गाड़ियों से जुड़ा हुआ है एंड ऑल द कार एंथुजियास्ट यू नीड टू असेंबल क्योंकि हमें ये तो रिवील करना ही करना है तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ये करने के बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो भाई साहब आपके मन में क्या दिक्कत है ये बताएं आप कितना मतलब कितना चाहिए आपको 666-22107 and I want के आप अगर स्टेकेशन करते हैं I request you कि हमें भी जरूर अपनी स्टोरीज में टैग करें और हमें बताएं कि आपका स्टेकेशन कैसा जा रहा है एक दो दिन पहले किसी ने मुझे टैग किया था और फिर वो टैग करके भाग गए मैंने उनका रिपोस्ट भी करना चाहा बट when I got the message it got deleted मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कबूतर पे चिट्ठी बांध के दी थी इसलिए मुझ तक देर पहुंचा इट्स जस्ट दैट मैंने देखा बाद में तो आप प्लीज टैग कर दिया करें हमारे ऑफिशियल पेज को FM107 Qatar को एंड जब उस पर आप एक बारी क्या कहते हैं हमें फॉलो कर लेंगे तो एक तो आप हमें टैग कर पाएंगे स्टोरीज में दूसरा हमारे पास कोई नई स्टोरी या कुछ भी होगी कोई जगह होगी तो हम आपको जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे एंड आई रिमेंबर मैसेज किया था मुझे अशफाक भाई ने और अशफाक भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बताया था कि कतर 2026 नाम क्यों है भाई सबसे सॉलिड नाम है ये कंट्री का नाम और सीधा साल का नाम ये

0: मेटाफोरिकली बहुत खूबसूरत लग रहा है तो इसलिए हमने रख लिया भाई, और कुछ नहीं। अच्छा तो इसके अलावा अमीनी, मैक्स अमीनी की जो कॉन्सर्ट की बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, वो भी होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत आप इंतजार कीजिए। उसके जब टिकट जैसे ही अनाउंस होंगे तो आपको टिकट्स की इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाएगी। तो ये थे सारे के सारे इवेंट्स एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। इंशाल्लाह अब आपसे अगले शो में इसकी मुलाकात होगी, ये जब भी होगा, कतर 2026। एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अभी बोलूंगा, यू कैन टैग अस इन योर स्टोरीज, और कोई जगह आपको मिल जाए सो जस्ट लेट अस नो। ओके, सो ऑन दैट नोट, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले शो में, और रابطہ कायम इसी तरीके से करते रहिएगा। आपको लगता है कि भाई सो कॉल्ड हिडन जेम कोई आपके हत्थे चढ़ गया और हमें नहीं पता है, या पब्लिक को नहीं पता होगा, तो जरूर बताया जाए कृपया करके। एंड कुछ भी आपके मैसेजेस हैं तो आप बिंदास क्या करें, आपके मैसेजेस हमारे लिए जरूरी हैं, हर शो के लिए जरूरी हैं, नॉट जस्ट दिस वन। एंड ऑल्सो दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलाम।
1: कतर 2026, कतर 2026। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

फोकस को मुतासर करे ड्राइविंग के दौरान, मज़ीद उन्होंने कहा कि खाना पीना वगैरह, तो ये तमाम उमूर भी शामिल हो जाते हैं। यानी सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर हम इक्तफा नहीं करते, यानी ये तमाम उमूर भी हैं जो हमें ड्राइविंग के दौरान हमें डिस्ट्रैक्शन का बायस बन सकते हैं। तो यानी देखें, आंख रोड से हटी और डिवाइस हाथ में हो, ये तो यानी जो भी है आपके हाथ स्टीयरिंग से हट गया और फिर कुछ भी हो सकता है। यानी जब हम रास्ते पे होते हैं तो वक्त तो यानी कुछ भी हवादिस वगैरह होने के लिए वक्त बहुत कम लगता है। अच्छा जी, मज़ीद उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ख़ुद तो यानी क़यादत के दौरान फोकस सही रखें अपनी जो भी हैं आपके डायरेक्शन पर। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों की गलतियों से भी पर भी हमें मोहतात रहना है। ये हो सकता है कि भाई दूसरा कोई यानी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, ठीक है, दूसरा कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई इस तरह मशगूल है किसी दूसरे काम में, ड्राइविंग पर उसकी पूरी तवज्जो नहीं है, तो इस वक्त आपने भी उस तरह जो है ना यानी मोहतात रहना है ताकि मसला चे देखें। उन्होंने जैसा कि हमें बताया कि ट्रैफिक के दौरान हवादसात यानी हादसा जो है ना, ये होंगे, ये होते रहते हैं, लेकिन ये मसला इसमें है कि जब आप मोहतात रहते हैं, इत्यादि तदाबीर इख्तियार करते हैं और दूसरों की गलतियों पर भी आप मोहतात रहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी है या फिर उसकी जो इसाबा या फिर जो ज़ख्मी वगैरह या फिर कुछ भी जो नुकसान होते हैं ना, नुकसान की जो परसेंटेज है हम उसको कम कर सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ थोड़ा सा यानी कुछ बॉडी में कुछ इस तरह के खुदशात वगैरह आए हैं, ठीक है, या फिर यानी थोड़ा मोटा यानी जिसे कहते हैं ना माइनर कुछ हुआ है, बड़ा कुछ नहीं, तो कम से कम तो हम इतना तो कर सकते हैं ना। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से या फिर किसी दूसरी चीज़ों में मशगूल होने की वजह से, वो एक्सीडेंट को हम तजावज़ कर सकते थे, उससे हम यानी बहुत ही कम नुकसान के ज़रिए हम उस यानी हादसा से निकल सकते थे, लेकिन फिर भी हम तवज्जो पूरी हमारी नहीं रहने की वजह से होता ये कि वो हादसात काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। तो बहुत अहम बात ये है सामने कराम कि आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बताया हमें एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज़ में ये बताया कि देखें, कतर में आप कहीं भी जाए माशाल्लाह से आपको सारे सारे स्पीड हाईवे वगैरह सब कुछ है और बहुत ही यानी फ्लेक्सिबल है, रास्तों में उतने रश भी नहीं, भीड़ भट्टा नहीं, तो फिर ये कि आप अपने मंजिल मकसूद तक काफ़ी आसानी से पहुंच जाते हैं जहां पर भी आपको जाना है बहुत कम वक्त में। तो इस सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी पूरी दिन के जितने सफ़र हैं ये वो इधर उधर जाना आना ये मिला जुला कर यानी हम इतना कह सकते हैं कि आप रास्ते पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, ठीक है। तो अगर इस मुद्दत के इतने वक्त के लिए इतने अरसे के लिए आप मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें और मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, इस वक्त आप रेडियो है कुछ भी है वो आप ऑन करके वही सुन लें, तो देखें आप यानी बिलाखिर आप यानी खसारे में नहीं हैं, बल्कि ये कहेंगे कि आप यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि आप अपने आप को पूरे यानी हिमायत कर रहे हैं, अपनी जान की हिमायत कर रहे हैं, दूसरों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस आधे घंटे के लिए बेबस हो जाएं, बेकरार हो जाएं और ये मोबाइल फ़ोन और ये वो यूज़ करने पर पूरी तवज्जो इन्हमाक के साथ हम इसको यूज़ करने लग जाएं, तो देखें इस आधे घंटे के लिए कभी हम जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक अमल है, यानी आप इस थोड़े वक्त के लिए आप अपने पूरी ज़िंदगी को कैसे इतने नुकसान का यानी शिकार या फिर इतना नुकसान का बोझ कैसे उठाएंगे आप, तो ये इस सिलसिले में हमें मोहतात रहना चाहिए। मज़ीद उन्होंने हमें ये भी एक मज़ीद एक बहुत ही उम्दा और दिलचस्प मिसाल से हमें ये समझाया कि देखें जब हम यानी कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा

होता है, ठीक है, जब आप उनसे मुखातिब होते हैं तो आप उसे एक दो तीन मरतबा बात कर लें तो वो चौथी मरतबा में जाकर वो परेशान हो जाता है बंदा, यानी बंदा गुस्से में आ जाता है, अरे क्या कर रहे हो तुम ऐसा, ये एक गुस्से की जो है ना वो एक तासुर दिखाता है। तो अगर ये एक बंदे के आम सिम्टम्स हों और ये उसकी अमूमी हालत में ये गुस्से की ये तासुरात हों तो आप सोचिए कि यानी ये मोबाइल फ़ोन ने हमें किस तरह डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम अपनों को भी इस तरह बिहेव करने लग जाते हैं, दूसरों की बात हम तहम्मुल नहीं कर पाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का काफ़ी एक यानी तासीर है, और जैसे कि उन्होंने हमें बताया एक एहसाइयात और स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट भी दी, उसमें बताया कि 98% यानी जो मशगूलियत होती है गाड़ियों में तो वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज है, इन दिनों की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हमें बताया। तो सिर्फ रह गए 2%, सिर्फ 2% रह गए, यानी 2% ये दूसरी चीज़ें होती हैं जो इंसान को मशगूल करती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का ख़तरा इस दौर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक कॉल या एक मैसेज किसी इंसान की जान से ज़्यादा अहम नहीं। जुर्माना की बात करें तो 500 रियाल जुर्माना है अगर यानी मोबाइल फ़ोन यूज़ की हालत में अगर वो कैमरा वगैरह या फिर सिक्योरिटी के अहलकार कुछ यानी वो जुर्माना आयद करें तो ये 500 रियाल की रकम है और डिस्काउंट नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने इसकी वजाहत की है। तो ये थी अहम बात हमारे इस मोबाइल फ़ोन यूजेज के हवाले से। मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और दिलचस्प माशाल्लाह से हमारे कैप्टन अहमद सालम उनकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है काफ़ी यानी अहमियत और इन चीज़ों की जो है ना गहराई तक पहुँच कर वो हमसे मुखातिब होते हैं। तो बेइज़्नल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये जो अहम छोटी मोटी बातें होती हैं गाड़ियाँ चलाने के दौरान, तो गाड़ी चलाने के दौरान ये जो बातें हैं इनका अगर हम ख्याल रखेंगे और इनकी अहमियत को समझेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद और फ़ायदा मंद बनेगी बिइज़्निल्लाहि ताला। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी, देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे फिनोमेना की दुनिया में जो अक्सर हमारी नोटिस से बाहर होता है, द साउंडलेस क्वेक, यानी जमीन का कुछ इस तरीके से हिलना जो कि इतना हल्का होता है कि आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते। अब ये बात सुनते ही आपके जहन में एक सवाल आया होगा, सफा ये क्या मुमकिन है, क्वेक्स जो महसूस ना हो? बिल्कुल मुमकिन है जी, ये है माइक्रो अर्थक्वेक्स, ये सबटल ट्रेमर्स जो हमारी अर्थ के अंदर हो रहे हैं मगर हमारे सेंसरी सिस्टम तक ये पहुँचते ही नहीं। मतलब ये ऐसे छोटे जॉल्स हैं जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमारी आँखों और कानों से ये बिल्कुल इनविजिबल हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हर साल दुनिया भर में हजारों छोटी अर्थक्वेक्स होती हैं लेकिन ये आम लोगों के लिए एकदम साइलेंट होती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये छोटी जॉल्स अर्थ के अंदर के स्ट्रेस को रिलीज करते हैं और बड़े अर्थक्वेक्स के लिए एक वार्निंग सिस्टम का काम भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, अर्थ खुद ही एक इनविजिबल हार्ट बीट मेंटेन कर रहा है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसकी धड़कन सुन सकते हैं। साइंटिफिकली ये साउंडलेस क्वेक्स तब होते हैं जब जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में थोड़ा सा स्लिप करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है मगर इतनी कम होती है कि उसकी वाइब्रेशन हम फील नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना, तो ये ऐसा है जैसे आपके कमरे की टेबल पर एक छोटी सी वाइब्रेशन हो जो इतनी सबल हो कि आप हाथ लगाकर भी महसूस ना कर सकें। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है साथियों, साइंटिस्ट ने ऐसे ट्रेमर्स को डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव सेस्मोमीटर और एक्सेलेरोमीटर डिजाइन किए हैं जो कुछ माइक्रोमीटर्स तक के मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डाटा रिसर्चर्स को हेल्प करता है समझने में कि अर्थ के अंदर कैसे छोटे छोटे शिफ्ट्स हो रहे हैं और कब ज्यादा डेंजरस मूवमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और साथियों, मजे की बात तो ये है कि ये साउंडलेस क्वेक्स कभी कभी वाइल्ड लाइफ और ओशन वेव्स को भी अफेक्ट करते हैं। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ मरीन एनिमल्स की एक्टिविटी और माइग्रेशन पैटर्न्स ये छोटी जॉल्स डिटेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि हमारी अर्थ एक ऐसा वर्ल्ड बना रही है जहाँ सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि नेचर का हर एलिमेंट इसकी सबल सिग्नल्स को फील कर सकता है। तो भाई, आज के इस एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ये इनविजिबल इनऑडिबल अर्थक्वेक्स, उनका साइंस, उनके इफेक्ट्स और कैसे ये अर्थ की मिस्टीरियस मूवमेंट्स को हम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी है एक हिडन वर्ल्ड की जहां जमीन साइलेंटली हिल रही है और हम सब उसकी कहानी सुनेंगे बस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू।

तो चलिए साथियों अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि ये साउंडलेस क्विक्स कैसे काम करते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस को भी नहीं समझ सकते। ये छोटी सी इनऑडिबल टर्मर्स असल में हमारे लिए साइलेंट टीचर्स हैं। ये हमें बताते हैं कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जर्नी पर हैं और किस तरह स्ट्रेस और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो भाई सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी अलग चीजें हैं। ये दो टर्म्स अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं लोगों को। मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वेक की टोटल एनर्जी रिलीज होना, यानी ये कितनी ताकत के साथ जमीन के अंदर शिफ्ट हुआ। इंटेंसिटी का मतलब है कि इस एनर्जी का एक्सपीरियंस सरफेस पे कितना होता है, यानी लोगों और स्ट्रक्चर्स के लिए ये कितना महसूस होता है। अब यही डिफरेंस साउंडलेस क्वेक्स को समझने में मदद करता है। इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है साथियों, अक्सर 1 से 2 के बीच, इसीलिए ये ह्यूमन सेंस से बिल्कुल दूर होते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल अर्थक्वेक के स्केल पर नापें तो ये एक हल्की सी वाइब्रेशन है जो एक माइक्रोस्कोप के लिए भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बन सकती है। लेकिन मामला ये है कि आप और मैं तो इसे फील नहीं कर पाएंगे ना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है साथियों कि इन क्वेक्स का फ्रीक्वेंसी पैटर्न प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए हैं भाई जो कि नैनोमीटर्स तक के वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो आपके हाथों में हो तो वैसे तो बाहर आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप हर छोटी सी मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन के लिए इनविजिबल ही क्यों ना हो। ये डिवाइस हमें दिखाते हैं कि जमीन पर एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अपने स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं और किस एरिया में फ्यूचर में मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है भाई। और ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है साथियों, भाई ये माइक्रो ट्रिमर्स अर्थ के नेचुरल रिलीफ वैल्यूज जैसे हैं। जरा सोचिए, अगर ये छोटी क्वेक्स ना हो तो छोटी छोटी एनर्जी का बिल्डअप एक दिन बड़ी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बन सकता है। मतलब ये साइलेंट क्वेक्स असल में हमारी सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं, एक नेचुरल वार्निंग सिस्टम की तरह साथियों। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये अर्थ का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है जो कभी कभी बड़े डिजास्टर्स से पहले एनर्जी को रिलीज कर देता है ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। और भाई दोस्तों ये बात भी तो याद रखने की है कि ये क्वेक्स सिर्फ नेचुरल नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, लार्ज स्केल ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन भी इनऑडिबल ट्रेमर्स क्रिएट कर सकती हैं। मतलब जब हम जमीन के अंदर हैवी मशीन्स या एक्सप्लोसिव्स यूज करते हैं, ये छोटी क्वेक्स ट्रिगर हो सकती हैं। ये चीज साइंटिस्ट्स के लिए एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज का अर्थ के डायनामिक्स पर क्या इफेक्ट है। एक और फैसिनेटिंग एंगल ये है कि ये माइक्रो ट्रॉमर्स इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ रिसर्च से पता चलता है कि मरीन एनिमल जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स ये छोटी वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने माइग्रेशन या हंटिंग पैटर्न्स को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब साउंडलेस क्वेक्स सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में इनविजिबल हैं, लेकिन नेचर के लिए ये एक सबल सिग्नल का काम करते हैं। ये अर्थ की एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ सेंसिटिव स्पीशीज समझ सकते हैं। और साथियों यही चीजें तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाती हैं। इमेजिन करें कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आप जमीन के अंदर इनविजिबल हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको छोटी छोटी जॉल्स का पैटर्न एनालाइज करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है और ये समझना है कि कब कब बड़ी मूवमेंट्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। ये एक तरह से डिटेक्टिव का काम है भाई। हर माइक्रो ट्रिमर एक क्लू है जो हमें अर्थ के सीक्रेट तक ले जा सकता है। तो साथियों ये साउंडलेस क्वेक्स असल में सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का टॉपिक नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल और सेफ्टी का एक सबल मैकेनिज्म भी है। साथियों ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अर्थ की मिस्टीरियस मूवमेंट्स को डिकोड करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, और हमें ये सब कुछ समझने में ये चीजें मदद करती हैं कि हमारा प्लैनेट कितना जिंदा है और कितना डायनामिक है। ये छोटी साइलेंट वाइब्रेशंस हमें अर्थ के अंदर की हिडन स्टोरी सुनाती हैं, स्टोरीज जो अक्सर हमारी आंखों और कानों से छुपी रहती हैं, मगर इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये दुनिया हमारे सामने आ जाती है। तो भाई किसी दिन जब आप जमीन के एकदम नॉर्मल सरफेस पे खड़े हो ना, या बस हल्की सी वाइब्रेशन महसूस करें या ना भी करें, तो भाई याद रखें कि जमीन अंदर से साइलेंटली हिल रही है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है।

0: है और एक इनविजिबल और इनऑडिबल वर्ल्ड का पार्ट आप भी हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
1: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। साथियों, अब हम एंटर करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी ट्रिकी दुनिया में, यानी डिटेक्ट करना। क्योंकि अगर हम ये साउंडलेस क्विक्स महसूस

इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इनक्रेडिबल टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए हैं। सबसे पहला और फेमस टूल है सिस्मोग्राफ। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राउंड के मोशन को रिकॉर्ड करता है और उसकी मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर हार्ट बीट मॉनिटर करता है। सिस्मोग्राफ्स इतने सेंसिटिव होते हैं साथियों कि ये छोटी सी छोटी वाइब्रेशन जो ह्यूमन सेंसेस से बिल्कुल इनविजिबल है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कि सफा क्या बस यही काफी है, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो जवाब है नहीं। ये काम और भी एडवांस डिवाइसेस से होता है, जैसे एक्सेलेरोमीटर्स। ये डिवाइसेस सिस्मोग्राफ से भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं भाई। मतलब अगर जमीन के अंदर एक नैनोमीटर का शिफ्ट भी हो, ये डिटेक्ट कर लेती हैं इस चीज को। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सेलेरोमीटर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये छोटी वाइब्रेशंस के डाटा को रिकॉर्ड करें और बाद में एनालाइज करें कि कौन से टाइप के ट्रूमर हैं, ये माइक्रोक्वेक हैं या फिर किसी और जियोलॉजिकल एक्टिविटी का सिग्नल। और यही नहीं साथियों, मॉडर्न टाइम्स में GPS नेटवर्क्स का भी यूज होता है। सैटेलाइट्स के थ्रू अर्थ के सबटल शिफ्ट्स को मेजर किया जा सकता है। ये हमारी मदद करता है ये समझने में कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितना मूव कर रही हैं और कौन से रीजन ग्रेजुअली स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन करने में भी बहुत हेल्प करती है। जरा सोचिए, अगर हम ये सबटल मूवमेंट्स डिटेक्ट कर लें तो हम फ्यूचर में बड़े अर्थक्वेक्स के लिए भी थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, है कि नहीं? और साथियों सबसे मजेदार बात ये है कि ये काम सिर्फ साइंटिस्ट तक लिमिटेड नहीं है, मॉडर्न AI एल्गोरिदम्स भी इस प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। AI और मशीन लर्निंग को यूज करके रिसर्चर्स माइक्रोक्वेक डाटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न समझते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन से एरियाज में बड़े स्केल पर अर्थक्वेक्स आने का खतरा है। मतलब AI हमारी मदद करता है इनविजिबल पैटर्न्स को दिखाने में, जो ह्यूमन ब्रेन और सिंपल डिवाइसेस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि कुछ रीजन्स जैसे जापान और कैलिफोर्निया, जो नेचुरली अर्थक्वेक्स से भरे हुए हैं, जहां साउंडलेस क्वेक्स का रिकॉर्ड डेकेड से मेंटेन किया जा रहा है, साइंटिस्ट के पास ऐसी हिस्टोरिकल डेटा है जो छोटी से छोटी पैटर्न्स को शो करता है। ये रिकॉर्ड उनकी नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राइसलेस है भाई। मतलब ये कि ये छोटी सी क्वेक्स जो हम फील भी नहीं कर सकते, असल में हमारे लिए साइलेंट हीरोज का काम कर रही हैं। और ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथियों कि ये डिटेक्शन प्रोसेस ना सिर्फ अर्थक्वेक्स समझने के लिए बल्कि अर्थ के अंदर के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी होता है। हर माइक्रोक्वेक एक हिंट है, एक क्लू है जो हमें ये बताता है कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम ये माइक्रो ट्रेमर्स इग्नोर करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर हम डिटेक्ट करें और एनालाइज करें तो हम अर्थ के अंदर के मूवमेंट्स के मास्टर डिटेक्टिव बन सकते हैं। और एक और फैसिनेटिंग एंगल ये भी है साथियों कि ये टेक्नोलॉजी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट स्टडीज में भी यूज होती है, जिसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि मरीन एनिमल्स और बर्ड्स छोटी क्वेक्स की वाइब्रेशंस को फील करके अपने बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न्स एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये साउंडलेस क्वेक्स सिर्फ ह्यूमन सेंसेस के लिए इनऑडियबल हैं, लेकिन नेचर के लिए एक कम्युनिकेशन सिग्नल का काम करते हैं। तो भाई साथियों, अगर आपका कभी जापान या कैलिफोर्निया जाना हो या किसी और ऐसी जगह पर जहाँ पे अर्थक्वेक्स का बहुत ज्यादा बड़ा स्केल हो, ऐसे रीजन्स के बारे में अगर आप सुने या फिर न्यूज में माइक्रो अर्थक्वेक डिटेक्ट हेडलाइन देखें, याद रखिए कि ये छोटी सी साइलेंट वाइब्रेशंस हमारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें सिर्फ अर्थ के अंदर के सीक्रेट्स नहीं बताती, बल्कि हमारी सेफ्टी प्लानिंग और अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो भाई, इन्हें डिटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ये इम्पॉसिबल नहीं। ये साउंडलेस क्वेक्स हमेशा प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, और अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो ये हमारी अर्थ की कहानी को सुनाते हैं। एक कहानी जो साइलेंट है, इनविजिबल है, मगर बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन रखती है। साथियों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एंगल की, यानी इम्पैक्ट्स की। क्योंकि सवाल ये है कि अगर हम इन साउंडलेस क्वेक्स को महसूस भी ना करते तो ये क्वेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस इम्पैक्ट है अर्थक्वेक प्रिडिक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का। ये माइक्रो ट्रेमर्स असल में अर्थ के सपल

0: सिग्नल्स होते हैं जैसे जमीन अपने अंदर एक एनर्जी को रिलीज कर रही है छोटी छोटी जॉल्स के थ्रू अगर किसी रीजन में ये छोटी क्वेक्स फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड हो रही हैं तो साइंटिस्ट उनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं ये मॉनिटरिंग उन्हें फ्यूचर में लार्ज अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर करने का चांस देती है मतलब ये छोटी सी साइलेंट वाइब्रेशंस हमारे लिए एक नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम कर रही हैं इमेजिन करें जरा अगर हम इन माइक्रोक्वेक्स के पैटर्न को समझ लें तो हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस और इवैक्यूएशन प्लान्स को और भी बेहतर बना सकते हैं और शायद लाइफ बचाने में भी मदद हो सकती है दूसरा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का जब इंजीनियर्स बिल्डिंग्स ब्रिजेस डैम्स और हाईवेज डिजाइन करते हैं ना तो उनको ये पता होना चाहिए कि एरिया में जमीन कितनी एक्टिव है और यहाँ कितनी माइक्रो वाइब्रेशंस होती हैं अगर ये माइक्रो ट्रेमर्स फ्रीक्वेंट हैं तो भाई फाउंडेशंस को और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाया जाता है मतलब ये साइलेंट क्वेक्स हमारी सेफ्टी का एक हिडन इंग्रेडिएंट है जो साइलेंटली हमें फ्यूचर डिजास्टर से बचाने का काम करते हैं साथियों इंजीनियर्स कहते हैं कि ये डाटा अर्थक्वेक्स के डिजाइन कोड्स में इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि जमीन कब और कैसे मूव कर सकती है इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी
1: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107 चलिए अब चलते हैं थोड़ी फन और सरप्राइजिंग चीज की तरफ ये क्वेक्स हमारे प्लैनेट की हार्ट बीट की तरह हैं साथियों साइलेंट कंसिस्टेंट और लाइफ मेंटेनिंग बिल्कुल वैसे जैसे हमारी हार्ट बीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है ना वैसे ही ये छोटी वाइब्रेशंस अर्थ के एनर्जी फ्लो और टेक्टोनिक बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं ये अर्थ के लिए एक रिमाइंडर है कि प्लैनेट कितना डायनामिक है और ये डायनामिक एक्टिविटी हमेशा इनविजिबल या इनऑडिबल होती है मगर हर मोमेंट एसेंशियल होता है और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अर्थ के अंदर का इम्पैक्ट है ये छोटी क्वेक्स ओशंस और रिवर्स के डायनामिक्स को भी अफेक्ट करती हैं मरीन सेडिमेंट्स अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स एंड इवन सम कोरल रीफ फॉर्मेशंस को छोटे ट्रेमर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब हर माइक्रोक्वेक एक डोमिनो अफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो इकोसिस्टम और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को टच करता है सिर्फ साइलेंटली और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि कुछ जगहें जो कि अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा भरी हुई होती हैं जैसे जापान और न्यूजीलैंड में ये माइक्रो ट्रेमर्स के रिकॉर्ड्स डेकेड से मेंटेन किए जा रहे हैं ये रिकॉर्ड सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्राइसलेस ट्रेजर हैं ये हमें सिखाते हैं कि हर छोटी सी वाइब्रेशन एक लेसन है अर्थ के अंदर की एनर्जी और मूवमेंट को समझने का सफल तरीका तो साथियों अब आते हैं आखिरी बात की तरफ और यहाँ बात करते हैं फ्यूचर और मिस्ट्रीज की ये साउंडलेस क्वेक्स या माइक्रो ट्रेमर्स अभी भी साइंस के लिए बहुत यंग और फैसिनेटिंग फील्ड है साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे ये माइक्रो ट्रेमर्स को और एक्यूरेटली डिटेक्ट और प्रिडिक्ट किया जा सकता है और इसमें मशीन लर्निंग AI और बिग डाटा का भी यूज हो रहा है मतलब कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स अब अर्थ की छोटी सी वाइब्रेशंस को समझने में ह्यूमंस के साथ कोलैब कर रहे हैं और ये फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है साथियों एक इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग थ्योरी ये भी है कि कुछ डीप अर्थक्वेक्स जो सेवरल किलोमीटर्स बीनीथ द सरफेस होते हैं सिर्फ सेस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं ये ऑडिबल नहीं होते और ना ही हम इन्हें फील कर सकते हैं मगर ये प्लैनेट के कोर और मेंटल की डायनेमिक्स को रिवील करते हैं सोचिए हमारी जमीन के अंदर काफी मिस्ट्रीज चल रही हैं और हर एक टाइनी इनऑडिबल क्वेक एक सीक्रेट मैसेज जैसा है सिर्फ साइंटिफिक आईज और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिकोडेबल और ये मत भूलिएगा साथियों ये साइलेंट ट्रेमर्स सिर्फ जमीन की सरफेस तक लिमिटेड नहीं है डीप ओशंस फ्लोर्स में भी ये क्वेक्स होती हैं और इन्हें भी डिटेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि पानी के करंट्स और वेव्स भी इंस्ट्रूमेंट्स के रिकॉर्डिंग में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं और इसके लिए साइंटिस्ट स्पेशली डिजाइंड अंडरवाटर सेस्मोमीटर्स यूज करते हैं जो ओशंस के हिडन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं ये एक तरह का साइंटिफिक एडवेंचर है इमेजिन करें कि आप डीप ओशन के फ्लोर पर खड़े हैं और अर्थ की छोटी जॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जो किसी भी ह्यूमन के लिए इनविजिबल है

0: की बात ये है कि नासा भी अर्थ के साइलेंट वाइब्रेशंस को स्टडी कर रहा है। उनका गोल सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं, वो ये नॉलेज मार्स और मून जैसे रॉकी प्लैनेट्स के लिए भी यूज करना चाहते हैं। मतलब जो टेक्निक्स हम अर्थ के माइक्रो ट्रेमर्स के लिए डेवलप कर रहे हैं, वो फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी डायनामिक्स को समझने में भी मदद करेगा। सोचिए, एक छोटी सी वाइब्रेशन जो हम फील नहीं करते, पूरा स्पेस एक्सप्लोर का पार्ट बन सकती है। और साथियों, ये क्विक्स एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है प्लैनेट के अंदर की मूवमेंट्स का, एक साइलेंट डायलॉग जो सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ही विजिबल होता है। और भाई, मुझे तो ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि शायद हमारे घर के फ्लोर पर भी हर वक्त इनविजिबल क्विक्स हो रहे हैं और हम बस उन्हें महसूस नहीं करते। अर्थ साइलेंटली अपनी स्टोरी सुना रही है और हम हर मोमेंट में उसका हिस्सा हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है साथियों। तो साथियों, आज की हमारी ये जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। हमने ये जाना कि साउंडलेस क्विक्स क्या हैं, कैसे ये डिटेक्ट होते हैं और कैसे हमारी सेफ्टी, साइंस और नेचर के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये साइलेंट ट्रेमर्स, इनऑडिबल क्विक्स, माइक्रो अर्थक्वेक्स, ये सब एक छोटी सी वाइब्रेशन से लेकर प्लैनेट की डायनेमिक्स तक का कनेक्शन रिवील करते हैं। और एक और पर्सपेक्टिव भी सोचिए जरा, कि ये सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं, ये हमें जिंदगी का एक लेसन भी देता है। कभी कभी जिंदगी में भी छोटे साइलेंट चेंजेस होते हैं जो हम महसूस नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं हम पर। जैसे ये साउंडलेस क्विक्स, इनविजिबल, इनऑडिबल और साइलेंट, मगर बहुत ही मीनिंगफुल। हर छोटी वाइब्रेशन एक सिग्नल है, सिर्फ देखना और समझना जरूरी है। और साथियों, हमें ये जर्नी ये भी रिमाइंड कराती है कि हमारी दुनिया एक बहुत ही डायनेमिक और अलाइव सिस्टम है। हर माइक्रो ट्रेमर एक साइलेंट शिफ्ट, एक पार्ट है इस प्लैनेटरी सिम्फोनी का। और हम ह्यूमंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वर्ल्ड हमें समझ में आ जाए। ये हमें इंस्पायर करता है, क्यूरियोसिटी जगाता है हमारे अंदर की, और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इम्पोर्टेंस समझाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ सफा और ये था आज का एपिसोड एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी से। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियस रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और दुनिया के साइलेंट वंडर्स को नोटिस करते रहिए। और याद रखिएगा कि कभी कभी सबसे छोटी और साइलेंट चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल होती हैं। अर्थ साइलेंटली हिल रही है और हमारी जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है उसकी स्टोरीज को समझने के लिए। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सुनते रहिए FM 107।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
4: Absolute cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ।
6: ताकि

0: एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107। दिल से दिल।

0: 7.
1: Dil Se Desi.
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर चेस एसोसिएशन और कतर की आर्बिटर सारा अल मोहनदी। पहले तो आपको बता दूं कि आर्बिटर होता क्या है। आर्बिटर जो होता है कि जैसे कि फुटबॉल में रेफरी है, क्रिकेट में अंपायर्स हैं, वैसे ही चेस में यानी शतरंज के खेलों में आर्बिटर की ज़रूरत होती है। और आर्बिटर जो है बेसिकली वो अंपायर का ही रोल अदा करते हैं। और यहाँ पर सारा अल मोहनदी एक नुमाया किरदार है जिन्होंने कतर चेस एसोसिएशन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आर्बिटर के नोबल बूते पर बहुत नाम कमाया है। कतर चेस एसोसिएशन ने हाल ही में ऐलान किया है कि सारा अल मोहनदी को फीडे की इंटरनेशनल आर्बिटर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और ये एक अहम कामयाबी है जो कतर में स्पोर्ट्स रेफरिंग स्किल्स की तरक्की को जाहिर करती है। सारा को इंटरनेशनल आर्बिटर का टाइटल उनकी सालों की मेहनत और लगन का नतीजा मिला है। उन्होंने कई मकामी अरबी और बैन अवी चेस टूर्नामेंट्स में आर्बिटर के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। उनके अहम इवेंट्स में 2023 कतर मास्टर्स ओपन, 2024 वर्ल्ड चेस ओलंपिक जो बुदापेस्ट हंगरी के शहर बुदापेस्ट में हुआ था, 2025 का एशियन मेंस और वीमेंस इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो यूएई के अल ऐन शहर में मुनक्किद हुई, और 2025 वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स टीम चेस चैंपियनशिप जो लंदन में हुई। इनमें ये सारे टूर्नामेंट शामिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में सारा और भी इम्प्रूव करेंगी और कतर का नाम रोशन करेंगी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता एपिसोड में भी हमने एनजाइटी की बात की, आज हम बात करेंगे कि ये जो एनजाइटी है, बेचैनी है, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। मगर सबसे अच्छी खबर ये है कि मुनासिब इलाज और अच्छी आदत के जरिए बेचैनी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। रोजाना की जो आदतें हैं वो हमें तब्दील करनी है, और जैसे कि गहरी और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की एक्सरसाइज कीजिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी कीजिए या कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। मुनासिब और पूरी नींद आप जरूर लीजिए। बैलेंस डाइट का बहुत अहम किरदार।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, गर्मियों का मौसम आते ही हमारी डेली लाइफ में एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या है वो? कूलिंग भाई, कूलिंग, एयर कंडीशनर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स और भाई ऐसे दूसरे तीसरे अप्लायंसेस जो घर को कंफर्टेबल बनाते हैं, खास तौर पर कतर जैसी गर्मी का मौसम। ओए होए होए होए होए, इस मुल्क में एसी हमारी जरूरत बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि समर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है भाई? और क्या हम कंफर्ट को मेंटेन करते हुए एनर्जी भी सेव कर सकते हैं? भाई मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट हैबिट्स के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो भाई आज के इको स्विच में हम बात करते हैं सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इन समर, यानी के गर्मियों में एनर्जी को स्मार्ट तरीके से दिमाग लगा के इस्तेमाल करना। लेकिन पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए साथियों, मामला पता है क्या है? समर के महीनों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से कुछ वजूहात मैं आपको बता देती हूँ जो कि बड़ी कॉमन है। एयर कंडीशनिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कूलिंग अप्लायंसेस का कंटिन्यूसली चलते रहना, डोर्स और विंडोज जो होती हैं उनसे ठंडी हवा का बाहर निकल जाना, अननेसेसरी लाइट्स और डिवाइसेस का ऑन रहना। अच्छा, कभी कभी हम एसी को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रख लेते हैं, मतलब कभी किसी का टेम्परेचर 16 पर होता है, कभी 18 पर होता है, इस पे सेट कर देते हैं और कमरे से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। हम कूलिंग चलती रहती है, हमें बस ये होता है कि हाँ, हमारे दिल को तसल्ली होती है कि हाँ एसी चल रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है बल्कि एनर्जी और रिसोर्सेज पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर ये चीज डालती है। लेकिन कुछ सिंपल हैबिट से हम अपना घर कंफर्टेबल भी बना सकते हैं और एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सिंपल इको सॉल्यूशन ये है साथियों, कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि समर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम सिंपल टिप्स क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि एसी को मेहरबानी करके स्मार्टली यूज करें। देखिए, एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रखने के बजाय कंफर्टेबल सेटिंग चूज करें। एसी ने वैसे भी तो कूलिंग करनी है, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। रेगुलर एसी मेंटेनेंस और फिल्टर्स जो हैं उनकी सफाई किया करें। एसी को इफेक्टिव तरीके से चलाने में ये चीजें मदद करती हैं। आपका अगर फिल्टर एसी का भरा पड़ा होगा कचरे से, तो आप उसका टेम्परेचर कितना भी रख लें, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि डोर्स और विंडोज सही से सील रखें। जब एसी चल रहा होता है तो अपने खिड़की दरवाजों को प्रॉपरली बंद रखें, इससे ठंडी हवा बाहर नहीं जाती और एसी का ज्यादा जो है वो इस्तेमाल भी इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। अच्छा, तीसरी चीज है नेचुरल लाइट का फायदा उठाएं। देखिए, दिन के वक्त ना जहां मुमकिन हो नेचुरल लाइट का यूज करें। मुझे तो याद नहीं पड़ता भाई दिन के टाइम मेरे घर में मैं कोई एक बत्ती भी जलाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से दिन की रोशनी इतनी तेज होती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास अच्छी खासी विंडो हैं तो आप उन्हें उनकी बजाय लाइट्स ऑन करें। इट्स वेरी अननेसेसरी, इससे अननेसेसरी लाइट्स ऑन रखने की जरूरत कम हो सकती है। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चूज करें ना। जब नया अप्लायंस खरीदें तो एनर्जी एफिशिएंट मोड्स को कंसीडर करें। ये लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने में मदद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनयूज्ड डिवाइसेस को बंद करें। ये मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि आपका टीवी, चार्जर, कंप्यूटर और दूसरे तीसरे जो डिवाइसेस होते हैं ना जो यूज में नहीं होते, उन्हें स्विच ऑफ कर दें प्रॉपरली। छोटी छोटी एनर्जी सेविंग्स मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क करती हैं साथियों। अच्छा, अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए ना साथियों, तो अगर एक फैमिली समर में एसी को स्मार्ट टेम्परेचर पर रखे, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करें, कर्टन्स का यूज करके आप कह लें कि वो जो धूप होती है ना गरम गरम उसका अंदर आना कम कर दे, और अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करें, तो वो अपनी डेली लाइफ की एनर्जी यूज को बेहतर मैनेज कर सकते हैं।

0: अच्छा कुछ फैमिलीज समर रूटीन बना लेती हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक ना वो घर में नेचुरल वेंटिलेशन का फायदा उठाते रहते हैं। दिन के पीक आवर्स में वो कूलिंग को स्मार्टली मैनेज करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचाती हैं बल्कि रिस्पॉन्सिबल लाइफ को भी प्रमोट करती हैं। तो साथियों आज का इको सूट चैलेंज आपके लिए ये है कि आज से एक वीक के लिए मतलब अगले आने वाले हफ्ते के लिए आप अपने घर में एक एनर्जी सेविंग हैबिट ट्राई जरूर करें। चाहे एसी को स्मार्ट यूज करना हो, उसका टेम्परेचर 22-24 पे रखें, अननेसेसरी लाइट्स बंद करना हो या अप्लायंसेस को प्रॉपरली स्विच ऑफ करना हो। और हाँ हमें जरूर बताएं समर में आपके घर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की वजह से यूज होती है, एसी, फ्रिज, लाइट्स या कोई और अप्लायंस। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए एनर्जी बचाना सिर्फ बिल कम करना नहीं होता बल्कि फ्यूचर की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना भी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है घर वालों के साथ हुस्न सलूक। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हक हमारे घर वालों का होता है। अक्सर हम बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन घर वालों के साथ नरमी भूल जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने घर के लोगों के साथ मोहब्बत, सब्र और इज्जत का रवैया रखें। छोटी छोटी बातें जैसे प्यार से बात करना, हेल्प करना और उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना रिश्तों को मजबूत बनाता है। घर का माहौल अगर प्यार और सुकून भरा हो तो पूरी जिंदगी बेहतर लगती है। आज का अमल ये है कि अपने घर के किसी फर्द के लिए कुछ छोटा सा काम करें या उनसे प्यार से बात करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
2: One Step to 2030.
3: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरह से हमारी मदद करती है। देखिए, आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई इम्पोर्टेंट सर्विसेज असल में हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से ही मिल रही है। सैटेलाइट एक एडवांस्ड मशीन होती है जो अर्थ के ग्रिड ऑर्बिट में घूमती है और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स भेजती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी अहम हो चुकी है कि अगर सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें तो दुनिया की बहुत सी सर्विसेज मुतासिर हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल है जीपीएस नेविगेशन का। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, नई लोकेशंस का रास्ता देखते ढूंढते हैं, तो जीपीएस सैटेलाइट हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करती है। इससे ड्राइवर्स, डिलीवरी सर्विसेज, टैक्सी ऐप, ट्रैवलर्स को बड़ी आसानी होती है। अगर जीपीएस ना हो तो नए शहरों में सफ़र करना नामुमकिन हो जाए। जी हाँ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इंटरनेशनल फोन कॉल्स हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा सैटेलाइट्स के जरिए मुमकिन होता है, खास तौर पर रिमोट एरियाज में जहां केबल्स या फिर मोबाइल टावर्स नहीं पहुंच सकते। वहां सैटेलाइट इंटरनेट लोगों को दुनिया से कनेक्ट करता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग भी सैटेलाइट की मदद से होती है। सैटेलाइट अर्थ की तस्वीरें और एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करता है जिससे साइंटिस्ट मौसम की फ्यूचर कंडीशंस का अंदाजा लगाते हैं, और इसी वजह से हमें पहले से पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, स्टॉर्म आने की जो है वो चांसेस है या नहीं, टेम्परेचर कितना होगा वगैरह। ये इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को, एयरलाइंस को और गवर्नमेंट्स के लिए या और गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बड़ी वैल्यूबल होती है। एग्रीकल्चर में भी सैटेलाइट जो है वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। फार्मर्स सैटेलाइट की मदद से अपनी जमीन की कंडीशन मॉनिटर कर सकते हैं। उन्हें पता चल सकता है कि किस एरिया को ज्यादा पानी की जरूरत है और किस जगह क्रॉप्स की ग्रोथ कम हो रही है। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट्स इंसानों की जान बचाने में मदद करते हैं। जब अर्थक्वेक आए, फ्लड हो या कोई और मसला आता है तो सैटेलाइट्स अफेक्टेड एरियाज की रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। रेस्क्यू टीम्स इन इमेजेस की मदद से जल्दी प्लानिंग करती है और लोगों तक मदद पहुंचाती है। वहीं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी सैटेलाइट सिस्टम से बहुत फायदा होता है। बहुत से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और टाइमिंग सिस्टम सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए एक्यूरेटली किए जाते हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली वर्क करते हैं। आजकल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉरेस्ट, ओशंस, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करती हैं। साइंटिस्ट पोल्यूशन लेवल्स और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को स्पेस से देख सकते हैं और बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का एक रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिमोट एरिया में ऑनलाइन लर्निंग, टेलीमेडिसिन सर्विस सैटेलाइट कनेक्टिविटी की वजह से ही मुमकिन हो रही है। इससे लोगों को बेहतर एजुकेशन और मेडिकल एडवाइस हासिल करने में मदद मिलती है। दोस्तों, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पेस में नहीं घूमती हुई एक मशीन है, बल्कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जीपीएस से लेकर इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट तक हर जगह सैटेलाइट्स हमारी मदद कर रहे हैं। आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी और सैटेलाइट्स हमारी जिंदगी को ज्यादा स्मार्ट, सेफ और कनेक्टेड बनाएंगी। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट्स खामोशी से स्पेस में रहकर हर रोज हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी माँ या हमारे वालिद साहब, वो भी खामोश रहकर बहुत सारे काम यूं ही कर जाते हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है या कई बार पता ही नहीं चलता, और शायद हम शुक्रगुजार भी नहीं हो पाते। तो चलिए आज अल्लाह ताला की दी हुई तमाम बेशुमार नेमतों का शुक्रिया भी अदा करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की हैं और हम हमेशा ही शिकायतें करते रहते हैं, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सोचें और अपनी शिकायतों पर कहीं फुल स्टॉप या फिर कॉमा तो लगाइए। चलिए इसी थॉट के साथ अब मैं आपसे तो इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह नए फिलर में एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए नासिया और शकीब अहमद हम दोनों के इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: One step to 2020. आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आराम से आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और बाजू में एक पॉपअप आता है, लिखा है उसमें ऑनलाइन आईफोन 17 प्रो मैक्स सिर्फ 4000 रियाल में, लिमिटेड स्टॉक, लास्ट 10 मिनट्स। और इसमें आप क्लिक करते हैं और कर बैठते हैं अपनी जिंदगी की एक और गलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह की किसी भी वेबसाइट में पेमेंट तो आप कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी, सेलर और वेबसाइट, थोड़े दिनों के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। फेक वेबसाइट्स, फेक इंस्टाग्राम पेजेस, फेक फेसबुक सेलर्स, सब एक ही चीज करते हैं, पैसे लो और गायब हो जाओ। आपकी पेमेंट हुई और ये लोग छूमंतर हो जाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग प्रोडक्ट के इंतजार में रह जाते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। कई दफा इस तरह के ईमेल्स भी आते हैं आपको, लिमिटेड पीरियड ऑफर, कोई लुभावनी या ट्रेंडिंग चीज का प्राइस बहुत कम करके दिखाया जाता है और आप उस पे क्लिक करते हैं एंड उस क्लिक के साथ ही आप काफी सारी मालूमात शेयर कर देते हैं। सो अवॉइड, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक करने से बचे। तो आखिरकार हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? नंबर वन, सिर्फ ट्रस्टेड एप्स और वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी करें, जिससे सामान जब आएगा तभी आपको पैसे देना है, सामान नहीं आया नो पैसे। अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी डील दिख रही है तो एक बार ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, ध्यान से देखो क्या ये सही वेबसाइट है, क्योंकि ऐसी चीजों में आदमी लालच में पड़ जाता है और बड़े बुजुर्गों ने कहा है लालच बुरी बला है। रैंडम इंस्टा व्हाट्सएप सेलर से थोड़ा बच के रहो, तो कभी कभी जो सस्ता है वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करो लेकिन दिमाग के साथ।
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा,

प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे साथ प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, नॉलेज वो रोशनी है जो हर नस्ल को रास्ता दिखाती है, और कतर के दिल में ये रोशनी सबसे पहले उस दरवाजे से चमकी जो उसकी पहली लाइब्रेरी का था। ये वो जगह थी जहां कहानियां तालिबे इल्म से मिलती थी, जहां दानाई ने अपना घर बनाया और जहां से कतर ने तालीम और सकाफत के मरकज बनने का सफर शुरू किया। आज हम आपको ले चलते हैं उस गुजरे हुए वक्त में जहां हम कतर की पहली लाइब्रेरी का जायजा लेंगे, एक ऐसी बुनियाद जो इस कौम के जहनी विरसे की निगहबान बनी और जो उसके जदीद तालीमी नजरिए का पहला कदम था। तो आज के इस प्रोग्राम कतर फर्स्ट में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जब हम तारीख के सफ़े पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक लाइब्रेरी ने इस मुल्क के ख्वाब और सोच को ताबीर किया। तो दोस्तों, दारुल कुतुब अल-कतारिया सबसे पहले एक पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर कायम हुई थी और इसने अपना सफर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए 29 दिसंबर 1962 को शुरू किया। उस वक्त मिनिस्ट्री ने दो मौजूदा लाइब्रेरीज यानी पब्लिक लाइब्रेरी और अल-मारिफ लाइब्रेरी को मर्ज करने का फैसला किया, भाई ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स और अवाम को बेहतर सर्विसेज फराहम की जा सकें और बुक्स और पीरियोडिकल्स के जरूरी रिसोर्सेज मुहैया किए जा सकें। दारुल कुतुब के डायरेक्टर उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर थे, जिन्होंने स्कूल की जरूरत को बेहतर समझने और लाइब्रेरी के ऑपरेशंस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद दी। ये वही शख्स थे जिन्होंने एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने का आइडिया दिया ताकि स्कूल्स को सपोर्ट किया जा सके और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इल्म फराहम किया जा सके। उसके बाद उन्होंने डैक को मैनेज करने, डैक का मतलब दारुल कुतुब, कतर के अंदर दारुल कुतुब को शॉर्ट में डैक कहा जाता था, तो उसके बाद उन्होंने दारुल कुतुब को मैनेज करने और उसकी कामयाबी को इंश्योर करने का जिम्मा उठाया। दारुल कुतुब तकरीबन 30 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मारिफ के अंडर रही, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंडर चली गई। 1971 में मिनिस्टर्स काउंसिल के फैसले के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और इस फैसले के बाद दारुल कुतुब को मिनिस्टर्स के अंडर रखा गया, जबकि स्कूल लाइब्रेरीज को डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अंडर कर दिया गया। भाई 1998 में ये नेशनल काउंसिल फॉर कल्चर, आर्ट्स, लिटरेचर एंड हेरिटेज के अंडर चली गई। 1982 में दारुल कुतुब को एक नेशनल लाइब्रेरी का मैंडेट मिला जब इमीरी डिक्री नंबर 14/1982 इशू हुआ, जो कि कतरी पब्लिकेशन के लीगल डिपॉजिट प्रोसेस के कायम से मुतालिक था और ये प्रोसेस डैक के जरिए मैनेज किया गया। इस फैसले के बाद डैक गल्फ स्टेट्स की पहली लाइब्रेरीज में से एक बन गई, जो नेशनल पब्लिकेशन को ऑर्गेनाइज और कलेक्ट करती थी। ये लाइब्रेरी मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर काम करती रही, जब तक 2012 में एक नई नेशनल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर दारुल कुतुब को मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि वो मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स और बाहर के इदारों से राबता कर सके, जिससे नए

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। माइक्रोफिश लाइब्रेरी को एक आर्काइविंग सेंटर या एक डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने का इरादा रखा गया था ताकि कतरी विरसे को महफूज किया जा सके। इसे एक मुकम्मल लाइब्रेरी सर्विस फैसिलिटी बनाने के लिए बुक्स और पीरियडिकल्स की बाइंडिंग का एक नया सेक्शन कायम किया गया। हर साल बुक फेयर्स में लोकल और इंटरनेशनल सतह पर हिस्सा लिया गया। बुक फेयर से हासिल होने वाली आमदनी को दारुल कुतुब ने अपने मुख्तलिफ सेक्शंस और सर्विसेज की तरक्की में लगाया, जैसे कि आर्काइविंग, कैटलॉगिंग प्रोसेसेस, नए इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर्स को फराहम किया गया और इंटरनेट एक्सेस दिया गया। 2012 में ये कहा गया कि डैक एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है ताकि अपनी सर्विसेज को मजीद बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। 2018 में एक रिसर्च स्टडी के जरिए दारुल कुतुब के मुतालिक कम्युनिटी का परसेप्शन समझाने की कोशिश की गई। इसमें ये सामने आया कि बहुत सी कम्युनिटी मेंबर्स को ये मालूम था कि डैक दो लाइब्रेरीज के मर्जर का नतीजा है और 1960 में ये रीजन की पहली पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी। जो लोग लाइब्रेरी विजिट करते थे उन्होंने दारुल कुतुब से अपनी पर्सनल अटैचमेंट का इजहार किया और बताया कि वो छोटी उम्र से ही रेगुलरली लाइब्रेरी आते जाते रहे थे। 1970 तक दारुल कुतुब ने दोहा में एक अहम लैंडमार्क का दर्जा हासिल कर लिया था और कतर को बाकी अरब दुनिया से जोड़ना शुरू किया था, जब वो मुख्तलिफ अरब कंट्रीज के पीरियडिकल्स का सब्सक्रिप्शन हासिल करने लगे। आज भी दारुल कुतुब में अरब कल्चर से मुतालिक कीमती और नादर कलेक्शन मौजूद है। 2012 तक डैक के पास 281,000 अरबिक और 38,098 इंग्लिश बुक्स थी, 1,163 अरबिक और 266 इंग्लिश पीरियडिकल्स थे। वहीं 865 अरबिक और इंग्लिश डिसर्टेशंस जो कतरी स्टूडेंट्स ने लिखी थी और वहीं 533 माइक्रोफिश, 2018 मैनुस्क्रिप्ट्स और 154 सीडीज थी। 2011 में डैक के पास 16,000 से ज्यादा मेंबरशिप रिकॉर्ड में मौजूद थी। कतरी कम्युनिटी की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए दारुल कुतुब ने एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया। लाइब्रेरी बिल्डिंग में मॉडिफिकेशन की गई और एक एडिशनल लेवल बनाया गया जो यूजर्स के लिए एक बड़ा रीडिंग स्पेस था। 1970 के दौरान मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में पब्लिक लाइब्रेरी ब्रांचेस कायम की गई जिनकी तादाद 5 तक पहुंच गई। इनमें से एक ब्रांच सिर्फ विमेन के लिए डेडिकेट की गई थी। हर ब्रांच की कलेक्शन उस शहर की स्पेसिफिक कम्युनिटी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तय की गई थी, जैसे कि अलखोर की फिशिंग कम्युनिटी को फिशिंग से मुतालिक टॉपिक्स में दिलचस्पी थी और अशमाल की फार्मिंग और पोएट्री कल्चर को उसकी ब्रांच की कलेक्शन में शामिल किया गया था। वहीं अलवाकरा और मी सईद ऑयल एक्सप्लोरेशन के मरकज रहे हैं तो इस वजह से उनकी लाइब्रेरीज में टेक्नोलॉजी और ऑयल प्रोडक्शन से मुतालिक मटेरियल्स मौजूद थे। वहीं अर्रैयान की बात करें तो अर्रैयान की पब्लिक लाइब्रेरी ने अपनी कलेक्शन को पोएट्री और इस्लामिक स्टडीज पर फोकस किया है, जबकि अल खानसा लाइब्रेरी ने विमेन और चिल्ड्रन को अपना प्राइमरी यूजर ग्रुप बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब डेक में इंटरनेट कैफे बनाने का प्लान तय हुआ और एक्सपेंशन प्लान्स में मोबाइल लाइब्रेरी या मजीद ब्रांचेस शामिल की गई ताकि ज्यादा यूजर्स तक लाइब्रेरी सर्विसेज पहुंच सके। डेक के ऑब्जेक्टिव्स में कम्युनिटी को सर्व करना शामिल था, जैसे कि जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन फराहम करना, नई पब्लिक लाइब्रेरी ब्रांचेस कायम करना, लीगल डिपॉजिट का निजाम, कतर की तमाम लाइब्रेरीज के लिए एक यूनियन कैटलॉग बनाना और मेंटेन करना, रिसर्च लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए लेजिस्लेशन रिकमेंड करना, वहीं बुक एक्सचेंज और लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में डैक के पास लाइब्रेरी सर्विसेज का एक डेडिकेटेड सेक्शन हुआ करता था, जो कि मैनेजमेंट के 10 सेक्शंस में से एक था, जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, फैसिलिटीज, हेरिटेज वगैरह वगैरह। सर्विस सेक्शन में बोरोइंग, इंटरनल रीडिंग और रेफरेंस कलेक्शन शामिल थी, जो यूजर्स को कैटलॉग सर्च में मदद देती थी। डैक ने वर्कशॉप्स और लेक्चर्स कंडक्ट किए, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस को ट्रेन किया और डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस को टूर्स के जरिए होस्ट किया। दोस्तों, 1990 के बाद दारुल कुतुब को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो अक्सर स्टाफ के तरफ से तब्दीली और तरक्की को कबूल ना करने की वजह से पैदा हुई। 2017 तक डैक की प्राइमरी बिल्डिंग और ब्रांचेस में टोटल 131 स्टाफ मेंबर थे, जिनमें से सिर्फ 60 डैक में मौजूद थे। सिर्फ एक शख्स के पास लाइब्रेरी साइंसेज में डिग्री थी। सन 2000 में कतर में जो अकेली लाइब्रेरी प्रोग्राम चल रही थी, वो भी बंद हो गई, और ये वजह समझी जाती है कि उस वक्त दारुल कुतुब की ऑपरेशंस में कमी आई। आज का मौजूदा बिल्डिंग आउटडेटेड समझा जाता है और अब वो लाइब्रेरी के मकासद को पूरा करने के लिए काफी नहीं रहा। 1970 में दारुल कुतुब ने स्पेस एक्सपेंशन की जरूरत को समझा था, मगर उसके बाद आने वाली मैनेजमेंट ने इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। लाइब्रेरी उसी बिल्डिंग में काम करती रही, ना एक्सपेंशन हुआ और ना ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, ताकि बढ़ती हुई आबादी और स्पेस की लिमिटेशंस को दूर किया जा सके। एक रिसर्च स्टडी से ये सामने आया कि दारुल कुतुब में सीरियस कमी है लाइब्रेरी प्रोग्राम्स और सर्विसेज की। लाइब्रेरी को आउटरीच एक्टिविटीज कायम करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर प्रमोट की जा सके। इसके अलावा रिपोर्टिंग सेक्टर की तरफ से सपोर्ट और इनकरेजमेंट की कमी भी है। लाइब्रेरी को अपने प्रैक्टिसेस का जायजा लेना चाहिए और उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाइन करना चाहिए। इसी कल्चरल लेगेसी के तौर पर जो अहमियत है, उसे हर लेवल पर तस्लीम किया जाना चाहिए। ये अहम पॉइंट्स जो रिसर्च स्टडी में सामने आए, उन्हें दारुल कुतुब की ओवरसीइंग ऑफिशियल्स ने आगे बढ़ाया। और भी नए प्लान्स तय किए जा रहे हैं, ताकि लाइब्रेरी के तमाम एस्पेक्ट्स को रेनोवेट और अपडेट किया जा सके। बिल्डिंग को उसकी ओरिजिनल डिजाइन में रिस्टोर करने का काम इस वक्त जारी है। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा, तो नई कॉन्सेप्ट्स और सर्विस मॉडल्स यूजर्स और दारुल कुतुब के शायकीन के लिए दस्तियाब होंगी। लाइब्रेरी का विरसा एक गहरी नॉलेज हब के तौर पर आइंदा नस्लों के लिए जारी रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज की शानदार लाइब्रेरीज तक, कतर का इल्म से लगाव बढ़ता ही जा रहा है, जो नए रीडर्स, रिसर्चर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करता है। कतर की पहली लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स और शेल्फ्स का मजमुआ ही नहीं थी, ये तरक्की, तजस्सुस और सकाफती फक्र का एक निशान थी। तो भाई, आज की कहानी का ये सफर भी इख्तिताम पजीर होता है, और याद रखिए, हर अजीम कौम का आगाज एक किताब से होता है और हर अजीम सफर का आगाज इल्म हासिल करने की ख्वाहिश से। तो भाई, कीप रीडिंग, कीप डिस्कवरिंग और इल्म की रोशनी को जिंदा रखिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी

इस्लामाबाद हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6622107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर स्वस्थ से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है. इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है. अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं. रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है. हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से. अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है. रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी

यकीनी बनाएं। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कतार दर कतार सफ बांधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, वो जो जमीन और आसमानों का और तमाम उन चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमान में है और सारे मशरकों का मालिक। हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया है और हर शैतान सरकश से उसको महफूज कर दिया है। ये शयातीन मलए आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं और उनके लिए पै हम आजाब है। ताहम अगर कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज शोला उसका पीछा करता है। अब इनसे पूछो, इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी है? इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो और ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो सरीह जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मट्टी बन जाएं और हड्डियों का पंजर रह जाएं, उस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएं? और क्या हमारे अगले वक्तों के आबाओ अजदाद भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। बस एक झिड़की होगी और यकायक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जजा है। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम जुटलाया करते थे।

हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को कर्बे आजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब के हुजूर